من المقبول فنهني ومن المطرود فنعزي.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy, Health for All. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum listeners. खाने तो सभी अहम हैं, मगर हम आज बात करेंगे दिन के सबसे अहम खाने की यानी नाश्ते की यानी ब्रेकफास्ट की। जी हाँ, सुबह का नाश्ता हमारे सारे दिन की तवानाई और तंदुरुस्ती का आगाज है। अक्सर आपने सुना होगा कि नाश्ता दिन का सबसे अहम खाना है। इसकी वजह यह है कि रात को 8 से 10 घंटे सोने के बाद हमारा जो मेदा है वो खाली हो जाता है और नाश्ता हमें नई तवानाई देता है, हमारे जो दिमाग को जगाता है यानी एक्टिव करता है और हमारे जिस्म को दिन भर के काम के लिए तैयार करता है। अगर आप नाश्ता छोड़ देंगे तो थकान, चिड़चिड़ाहट और गैर सेहतमंद चीजें खाने का ज्यादा इम्कान होता है। तो आइए देखते हैं कि एक जो बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट है या एक मतवाजन नाश्ता हमें क्या फायदा देता है। उसमें ज्यादा तवानाई देता है यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन हमें दिन के आगाज के लिए ताकत देते हैं। बच्चे और बड़े दोनों को नाश्ता करने से पढ़ाई और काम में ज्यादा परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह याददाश्त और जो कंसंट्रेशन है या तवज्जो है उसको बेहतर बनाते हैं। इसमें भी बच्चे और बड़े दोनों ही नाश्ता करने से पढ़ाई और काम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। नाश्ता करने वाले अफराद दोपहर में जरूरत से ज्यादा नहीं खाते और इसी तरह दिल की सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। दलिया, फल और जो नट्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल और जो दिल के मसाइल हैं उनसे हमें दूर रखते हैं और आपका जो मिजाज है वो तो खुशगवार होता ही है। और नाश्ते में ब्लड शुगर को मतवाजन रखता है जो हम नाश्ता करते हैं, तो उससे हमारा जो मूड है वो बेहतर रहता है। अब सवाल ये है कि नाश्ता होना कैसे चाहिए। सिर्फ चाय के साथ बिस्किट नाश्ता नहीं कहलाता है। एक अच्छे नाश्ते में 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि दलिया है, ब्राउन ब्रेड है और इसी तरह से रोटी है, प्रोटीन जैसे अंडा है, दूध है, दही या नट्स हैं। फल और सब्जियां भी शामिल कीजिए ताकि जिस्म को विटामिंस और फाइबर मिले। मिसाल के तौर पर एक अंडा, ब्राउन ब्रेड और साथ एक सेब या दलिया दूध के साथ, और इसके अलावा केला और बादाम, ये सब आसान और सेहतमंद इंतखाब हो सकते हैं। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो रात को ही तैयारी कर लीजिए, और अगर आप बिल्कुल भी आपके पास वक्त नहीं है नाश्ते करने का तो फिर आप सिर्फ एक सेब और एक मुट्ठी भर बादाम भी एक बेहतरीन नाश्ता हो सकते हैं। याद रखिए, नाश्ता सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि सेहत और खुशी की है यानी चाबी है। दिन का आगाज अच्छे नाश्ते से कीजिए ताकि पूरा दिन तवानाई और सुकून के साथ गुजरे। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियां नेहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक सहरा में, जो कि बेहद खुश्क और बेआबो गया था, एक खूबसूरत गुलाब का फूल खिला। गुलाब का रंग इतना हसीन था कि पूरे सहरा में उसकी चर्चा थी। उसके नरम पत्ते और खुशबू पूरे सहरा में मशहूर थी। गुलाब अपने आप को कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जैसा महसूस करता था और अपनी खूबसूरती पर इतना फखर करता था कि वो हमेशा दूसरों को कमतर ही समझता था। जिस जगह गुलाब था, उसी के करीब एक और पौधा भी था। उसका नाम था कैक्टस, जिसकी शक्ल गुलाब की तरह बेहद खूबसूरत तो नहीं थी, मगर वो भी एक आम सा पौधा ही था। उसके जिस्म पर कांटे ही कांटे थे और वो जमीन में गहराई तक जड़ा हुआ था ताकि पानी का जखीरा कर सके। कैक्टस को देखकर गुलाब हमेशा उसका मजाक उड़ाया करता था। अरे देखो, इसकी शक्ल कितनी बदसूरत है। तुम तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हो कि मेरे आस पास भी नजर आओ। तुम्हारी जगह यहाँ सहरा में नहीं है। मुझे तो लगता है तुम्हें तो होना ही नहीं चाहिए था। गुलाब का कैक्टस को ऐसी अजीबोगरीब बातें बोलना रोज का मामूल बन चुका था। दूसरी तरफ सहरा के दूसरे पौधे और दरख्त कैक्टस की तरफदारी करते थे, लेकिन गुलाब को अपने ऊपर इतना गुरूर था कि वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। कोई नहीं, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैक्टस हमेशा गुलाब को यही जवाब दिया करता था। और गुलाब आगे से ये कहता कि मेरी खूबसूरती ही सब कुछ है और तुम्हारे जैसे पौधे को कोई अहमियत दे ही नहीं सकता। एक दिन सहरा में ऐसा गर्म मौसम आया कि पानी की कमी और शिद्दत गर्मी ने सबको तंग कर दिया। गुलाब की नरम पत्तियों वाली पंखड़ियां, वो तो सब जैसे मुरझा ही गईं और उसकी खुशबू भी कम होती चली गई। उसकी हालत

बहुत खराब होने लगी और उसके पत्ते बिल्कुल खुश्क होने लगे। अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है? गुलाब ने खुद से कहा, मेरे पास पानी नहीं है और मेरी शक्ल और हालत दोनों खराब होते जा रहे हैं। इसी दौरान कैक्टस की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी दोस्तों। वो अपनी जड़ों में जखीरा शुदा पानी से खुश था और सहरा के दरख्तों और पौधों को अपने आस पास की रेत में से पानी फराहम कर रहा था। छोटे परिंदे जैसे कि चिड़िया कैक्टस के इर्द गिर्द आकर उसके जिस्म से टपकने वाले पानी को पीते थे। गुलाब ने ये सब देखा और वो तो बस हैरान हो गया। उसने एक दिन कैक्टस के करीब जाकर कहा, कैक्टस मुझे तुमसे मदद चाहिए, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ और मुझे पानी की जरूरत है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हो प्लीज? कैक्टस ने नरमी से गुलाब को जवाब दिया, गुलाब तुमने हमेशा मुझे बुरा भला ही कहा है ना, लेकिन खैर है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी खूबसूरती तो हो सकती है मगर पानी की कमी ये तो हम सबको मुतासर करती है, और मैं तुम्हें वो पानी दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। कैक्टस ने अपनी जड़ों से थोड़ा सा पानी निकाल कर गुलाब के करीब डाल दिया। गुलाब ने हैरत से पानी पिया और फौरन उसकी हालत बेहतर हो गई। उसकी पंखड़ियों ने कुछ हल्की सी ताजगी महसूस की। गुलाब ने कैक्टस का शुक्र अदा किया और कहा, मुझे तुम्हारे बारे में गलत फहमी थी मेरे दोस्त, तुम चाहे दिखने में जैसे भी हो, तुम्हारी मेहरबानी और सखावत ने मुझे ये सिखाया कि हर चीज की असल हकीकत उसके अंदर छुपी होती है, ना कि उसकी जाहिरी शक्ल में। कैक्टस मुस्कुराकर बोला, शुक्रगुजार होने की कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हम सबका मकसद यही तो है कि हम सब एक दूसरे की मदद करें। तुम्हारे लिए मेरी शक्ल बेमायने हो सकती है लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि कुछ चीजें उनकी खूबियों की वजह से अहम होती हैं। गुलाब ने अपनी गलती को तस्लीम किया और कैक्टस से माफी मांगी और कहा, अब मैं जान गया हूँ कि सिर्फ खूबसूरती से कुछ नहीं होता, तुम्हारी मदद के बगैर मैं यहाँ सहरा में नहीं होता, मैं तो कब का मर चुका होता। गुलाब का दिल बदल चुका था और अब कैक्टस के साथ दोस्ती करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार था। उसने बाकी दरख्तों और पौधों को भी बता दिया कि किसी को उसकी शक्ल के हिसाब से नहीं परखना चाहिए बल्कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई खास बात होती है। इस वाकये के बाद सहरा में गुलाब और कैक्टस दोनों अच्छे दोस्त बन गए। गुलाब अब दूसरों का मजाक नहीं उड़ाता था और कैक्टस हमेशा अपने जखीरा शुदा पानी से दीगर पौधों की मदद करता रहा। गुलाब ने अपनी खूबसूरती की हकीकत को समझा और सिर्फ जाहिरी नहीं बल्कि अंदर की खूबसूरती के साथ जोड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी को उसकी शक्ल के हिसाब से मत परखें, उसकी असल खूबी उसके अंदर की खूबसूरती में होती है।

स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे

0: बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
0: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकॉनमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाअत कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद। तलहा अशरफुल ज़मान की तरफ से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। हमीन, आज के इस सेगमेंट में हम दुनिया की सबसे कीमती शय सियाह सोने के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सियाह सोना यानी तेल। आलमी सतह पर अगर तवानाई की सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि दुनिया की मईशत तेल से तर है और ये दुनिया की तवानाई की एक तिहाई तलब को पूरा करती है। ये कोयले से ज्यादा है और जौहरी तवानाई बिजली और गैर रिवायती तवानाई के जराए की मुश्तरका सलाहियत से दोगुनी है। तेल और गैस तवानाई की हमारी तलब का एक चौथाई हिस्सा पूरा करते हैं। इतना ही नहीं, ये प्लास्टिक के शोबे को भी खाम माल मुहैया करता है। कारों से लेकर ट्रकों तक, माल बरदार जहाजों से लेकर जेट तैयारों तक, ये वो तेल ही है जो हमारी दुनिया को चला रहा है। इसमें हैरत की बात नहीं है कि तेल की कीमत ही दुनिया की शायद सबसे अहम कीमत है जिस पर दूसरी कीमतें मुनहसर करती हैं। जैसे जैसे तेल की कीमत बढ़ती है, मईशतें भी उसी रास्ते को अपनाती हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर हम इस पर इतना इन्हिसार क्यों करते हैं, तेल पर इतना मसला क्यों है। दरअसल इसे बरामद करने से आपकी करेंसी की कदर बढ़ जाती है और उस मुल्क में तेल के अलावा हर चीज़ को महंगा कर सकती है। अरसों से कोशिश की जा रही है कि तेल के बजाय कुछ और तवानाई के तौर पर इस्तेमाल की जाए। मौसमियाती तब्दीली वाज़ह तौर पर इसमें मजीद एक मसला है। एक वेबसाइट रिपोर्ट के मुताबिक 159 लीटर खाम पेट्रोल से हासिल होने वाले साफ पेट्रोल का हजम सिर्फ 73.44 लीटर होता है, यानी कि फी बैरल खाम पेट्रोल से निकाले जाने वाले साफ पेट्रोल की शरह 46% है। बकिया मकदार को दीगर सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये सवाल जन्म लेता है कि बकिया मकदार किन चीज़ों में इस्तेमाल में लाई जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत की तारीख का आगाज 1872 से होता है जब रॉबर्ट जेसबर्ग नामी एक कीमियादान ने तेल के कुएं में रह जाने वाली बाकियात से मोम का लेप निकालने का तरीका जान लिया। आज उसी लेप का नाम वैज़लिन है और उसी के बाद से रफ्ता रफ्ता तेल से माखूज मसनूआत महज नकलो हमल से कहीं ज़्यादा शोबों में सरायत कर चुकी है। ख्वातीन के कॉस्मेटिक्स के सामान में भी मादनी तेल, पैराफिन ऑयल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक की बहुत सी अशिया, मसलन लिपस्टिक और माए मुरक्कबात, तेल से माखूज मसनूआत से तैयार की जाती है। पैराफिन का मोम लिपस्टिक को उसकी नरम शक्ल बरकरार रखने में मुआविन होता है। इसी तरह माहिरीन के मुताबिक टूथपेस्ट की तैयारी में किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा तेल से माखूज अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ सामीन, مختلف شعبوں میں پیش

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, इस्लाम की असल रूह अखलाक की बुलंदी और किरदार की पाकीज़गी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि ईमान और बिर यानी नेकी का मेयार सिर्फ इबादात ही नहीं बल्कि अच्छे अखलाक और साफ दिली में भी है। नवास बिन समाद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी हुस्न अखलाक है और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तू ये पसंद न करे कि लोग इस पर मुत्तले हों। समीन, कितनी जामे और दिल को छूने वाली तारीफ है, यानी नेकी का मतलब इंसाफ, नरमी और हुस्न अखलाक, और गुनाह वो है जो दिल को बेचैन करे, जिसे छुपाने की ख्वाहिश पैदा हो। ये उसूल हमें रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों में रहनुमाई कर सकते हैं।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीस टू हैबिट, हदीस टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

ईरान के 30 साला स्ट्राइकर सरदार अजमून पिछले 10 सालों से कामयाबी के साथ ईरान फुटबॉल टीम की अटैक की रहनुमाई कर रहे हैं। पहली जनवरी 1995 में गोंडबाद एक आवूस में पैदा हुए और 9 साल की उम्र से वॉलीबॉल खेलने लगे, लेकिन कब और कैसे फुटबॉल की ओर खींचे चले गए आपको बताता हूँ। ओगाब गोंडबाद में अपना करियर शुरू किया, लेकिन साथ साथ क्लब के वॉलीबॉल टीम के मैचेस में भी हिस्से लेते रहे। यहाँ तक कि सरदार को ईरान के नेशनल अंडर 15 वॉलीबॉल टीम में भी जगह मिली। कुछ सालों के बाद सरदार ने शामुशक गोरगान और इटका गोरगान क्लब्स में ज्वाइन किया। उस वक्त ये क्लब्स ईरान लीग के डिवीजन 1 में हिस्सा लेते थे। अपने मुल्क में सरदार ने कभी भी किसी क्लब से नहीं खेला, सुनकर जरूर ताज्जुब तो हुआ होगा। ऐसा ही कुछ है, और वैसे देखा जाए तो एशिया और वर्ल्ड लेवल पर ईरान की फुटबॉल टीम काफी मजबूत है। उनके मुल्क में फुटबॉल का कल्चर इतना स्ट्रांग है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन कौमी टीमों के लिए एक सप्लाई लाइन तैयार हो चुकी है। ये वजह है कि उन्होंने रशियन प्रीमियर लीग की टीम रूबिन काजान से अपने सीनियर करियर का आगाज किया।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: FM 107, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। आप सभी सुन रहे हैं FM 107, जहां पर ढेर सारे आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलते हैं। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और आपके लिए लेकर आई हूं फैंटास्टिक लाइफ हैक्स। सबसे पहला लाइफ हैक आज का है हमारा क्लोथ पिंस एज टूथब्रश होल्डर्स। हाँ जी, तो कैसे ये आपकी मदद कर सकता है आपको बताती हूँ। तो हमारे बाथरूम में अक्सर जो हमारे टूथ ब्रशेज होते हैं वो इधर उधर पड़े रहते हैं, कई बार कप में, कई बार किसी काउंटर पे, और ढंग से सूख भी नहीं पाते। तो फिर क्या करना है हमको? ये बहुत ही आसान सा तरीका है जो मैंने अपनाया है कि आपको वो जो कपड़े सुखाने वाले क्लिप्स होती है ना, उसे आपको लेना है और टूथब्रश का जो हैंडल है उस पे लगा देना है और फिर सही तरीके से उसे खड़ा कर देना है। ऐसे में हवा भी लगती रहेगी, हाइजीनिक भी रहेगा, टूथब्रश बिल्कुल सूख भी जाएंगे और इधर उधर नहीं रुलेंगे। ठीक है, डू ट्राई दिस। उसके बाद DIY लेमन क्लीनर, ये बड़ा ही पावरफुल और नेचुरल क्लीनर है, क्योंकि जब भी हम बाजार से कोई भी सरफेस क्लीनर लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारा केमिकल होता है। लेकिन अगर आपको टोटली केमिकल फ्री जाना है तो घर पे क्या करना है, आप नेचुरल क्लीनर बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा नींबू का रस लेना है, उसमें बेकिंग सोडा मिलाना है, ये पेस्ट की तरह बन जाएगा और जहां पर भी जिद्दी दाग धब्बे हो किचन काउंटर पे या कहीं पर भी, वहां पर जाकर उस चीज को थोड़ा सा रगड़ना है और साफ कर देना है। And then you will see the magic. सारे दाग धब्बे गायब हो जाएंगे, सरफेस एकदम चमकने लगेगा, बिल्कुल नेचुरल, कोई टेंशन नहीं एंड कोई केमिकल नहीं। So yes, मैंने ट्राई किया है, आप भी जरूर ट्राई करें। For more life hacks tips, stay tuned to FM 107, दिल से देसी।
3: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
4: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now. Shining.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ग्रीन पाथ, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में। हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज हम बात करेंगे कंपोस्टिंग के बारे में कि कैसे आप अपने फूड वेस्ट को वैल्यूएबल कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं जो आपके गार्डन के लिए बेनिफिशियल हो। अगर आप नए हैं तो छोटे कंपोस्टिंग बिन से स्टार्ट करें। किचन वेस्ट जैसे फ्रूट पील्स, वेजिटेबल्स स्क्रैप को कंपोस्ट में डाल सकते हैं। कंपोस्ट को अच्छे से मिक्स करना जरूरी है ताकि ऑक्सीजन अच्छे से सर्कुलेट हो और डीकम्पोजिशन एफिशिएंटली हो सके। ग्रीन वेस्ट में फ्रूट और वेजिटेबल स्क्रैप्स आते हैं और ब्राउन वेस्ट में लीव और ड्राइड प्लांट शामिल हैं। इन दोनों को बैलेंस रखें। कंपोस्टिंग में मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं डालने चाहिए क्योंकि ये स्मेल क्रिएट करते हैं। कंपोस्टिंग आपको अपने फूड वेस्ट को रीयूज करने का मौका देती है जो आपके गार्डन को हेल्दी बनाता है। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज़।

कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक

सवाल और डायरेक्शन सही कर लेते हैं. सवाल ये है कि अगर आज किसी नौजवान से पूछा जाए कि तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की फिक्र है, तो आपको क्या लगता है वो क्या जवाब देगा? नौकरी कब मिलेगी, मुस्तकबिल कैसा होगा, शादी कैसे होगी, घर कैसे बनेगा, बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, आमदनी काफ़ी होगी या नहीं? और अगर हालात मज़ीद मुश्किल हो तो इंसान कभी कभी ख़ुद को तन्हा भी महसूस करने लगता है. लेकिन कुरान मजीद इन तमाम सवालात के दरमियान इंसान को एक बुनियादी हकीकत याद दिलाता है. वो हकीकत यह है कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे करब है, खालिक है, राजक है, मालिक है, वो तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता है. समीर कराम, कुरान बार बार हमें अल्लाह ताला की सिफत रज़ा की तरफ मुतवज्जे करता है. रिज़्क ये तनख्वाह का नाम नहीं, रिज़्क सिर्फ कारोबार का नाम नहीं, बैंक बैलेंस का नाम नहीं. सेहत भी रिज़्क है, इल्म भी रिज़्क है, औलाद भी रिज़्क है, दोस्त भी रिज़्क है, इज्जत भी रिज़्क है, कबूलियत भी रिज़्क है, और इन सब का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है. इसीलिए कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अला अल्लाह रिज़्कुहा, ज़मीन पर चलने वाले कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मा न हो. ज़रा गौर कीजिए, जब आप अपनी माँ के रहम में थे उस वक्त आपके पास कौन सी डिग्री थी, कौन सी नौकरी थी, कौन से ताल्लुकात थे? कुछ भी नहीं था, सिफर. लेकिन फिर भी रिज़्क आ रहा था, दिल धड़क रहा था, ग़िज़ा पहुँच रही थी, नशोनुमा हो रही थी. किसने इंतज़ाम किया? अल्लाह ने. तो जो रब रहम मादर में रिज़्क दे सकता है, क्या वह दुनिया में आने के बाद अपने बंदे को भूल जाएगा? हरगिज़ नहीं. यही यकीन कुरान पैदा करता है, यही तदब्बुर का समरा है. हम अक्सर ज़िंदगी को अपनी ताकत के जाविये से देखते हैं, कुरान हमें अल्लाह की कुदरत के जाविये से देखना सिखाता है. कोई कहे मेरे पास वसाइल कम है, कुरान कहता है तुम्हारा रब बड़ा है. रास्ते बंद हैं तो कुरान कहता है अल्लाह के ख़जाने वसी है. अगर कोई कहता है मुझे कोई सहारा नहीं, कुरान कहता है अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं? अब सामिन कराम, एक बड़ी गलत फहमी ये है कि कामयाब ज़िंदगी का मतलब मुश्किलात से खाली ज़िंदगी समझ लेना. हालांकि कुरान इस तसव्वुर को बिल्कुल बदल देता है. कुरान हमें अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियां दिखाता है. अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में गए, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुँचे, मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत करनी पड़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ की तकलीफ बर्दाश्त की. अगर कामयाबी का मतलब आराम होता तो सबसे पहले अम्बिया को आराम मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दुनिया इम्तिहान की जगह है, इनाम की नहीं. इनाम दुनिया में भी मिलता है, लेकिन असल इनाम तो आखिरत में है. यही कुरान का तसव्वुर हयात है. यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया इस सिलसिले में बहुत बड़ी तालीम देता है. सोचिए, एक इंसान समंदर में है, फिर मछली के पेट में है, चारों तरफ अंधेरा, कोई दोस्त नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई ज़रिया नहीं, कोई उम्मीद नहीं. ऐसे वक्त में उन्होंने क्या कहा? ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन. इस दुआ में एक अजीब राज है. उन्होंने सबसे पहले अपनी मुश्किल बयान नहीं की, उन्होंने अल्लाह की तौहीद बयान की, उन्होंने अल्लाह की पाकी बयान की, उन्होंने अपनी आजिज़ी का इतराफ़ किया. गोया ये पैगाम था, ए अल्लाह मेरी उम्मीद सिर्फ तुझसे है, कोई और नहीं, सिर्फ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू. सामने कराम, जब हम रिज़्क की तंगी में होते हैं, जब नौकरी नहीं मिल रही होती, जब रास्ते बंद नज़र आते हैं, तो सिलसिले में कुरान हमें ये बताता है कि असबाब इख्तियार करो, कोशिश करो, दरवाजे खटखटाओ, लेकिन दिल का सहारा सिर्फ अल्लाह को बनाओ. क्योंकि असबाब अल्लाह के हाथ में है ना, नतायज अल्लाह के हाथ में है, ख़जाने अल्लाह के हाथ में है, और रिज़्क भी अल्लाह के हाथ में है. एक और बड़ी हकीकत यह है कि इंसान अक्सर इम्तिहान के खात्मे के बारे में सोचता रहता है. वो पूछता है ये मुश्किल कब ख़त्म होगी, ये आजमाइश कब ख़त्म होगी, ये कर्ज कब उतरेगा, ये बीमारी कब जाएगी. लेकिन कुरान हमें ये बताता है कि दरअसल सवाल तो ये होना चाहिए कि मैं इस आजमाइश के दौरान अल्लाह के साथ कैसा ताल्लुक कायम कर रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ या नहीं, सब्र कर रहा हूँ या नहीं, मैं अल्लाह से करीब हो रहा हूँ या दूर. क्योंकि मोमिन का मकसद सिर्फ आजमाइश का खात्मा नहीं होता, मोमिन का मकसद आजमाइश में अल्लाह की रज़ा हासिल करना होता है. सामने कराम, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला मुश्किल को फौरन ख़त्म नहीं करते, लेकिन इस मुश्किल के अंदर ऐसा ईमान अता कर देते हैं जो मुश्किल से कहीं ज़्यादा कीमती होता है. इसलिए कितने लोग दुनियावी एतबार से मालदार हैं मगर बेसकून होते हैं, और कितने लोग महदूद

0: लेकिन हम अंधेरों में भटकते रहते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को जब हम अलविदा कहेंगे तो आपके बैलेंस में एक ऐसी बात रहे जिसकी आपको रोज़मर्रा की ज़रूरत है। इन अजीम अखलाक में से एक खुलक है, खुलक तगाफुल। तगाफुल यानी गफलत नहीं, गफलत यह है कि आपको किसी बात का इल्म ही ना हो। तगाफुल यह है कि आप जानते हो, समझते हो, देखते हो, मगर बड़ी हिकमत, मोहब्बत और खैरखाही की खातिर इस बात को नज़रअंदाज कर दें। यह कमज़ोर लोगों का नहीं, बड़े लोगों का अखलाक है। ये दिल की वसअत का नाम है, नफ्स की तरबियत का नाम है, ये रूह की पाकिजगी को कहते हैं। अब जहाँ घर टूटते हैं, दोस्तियाँ ख़त्म हो रही हैं, शराकतें बिखर जाती हैं, अक्सर इसलिए कि लोग हर बात का हिसाब रखते हैं, हर गलती, हर लफ्ज़, हर लग्जिश। हालांकि ज़िंदगी का हुसन माफ़ करने में है, ज़िंदगी का हुसन दरगुजर करने में है। ज़िंदगी का हुसन यह है कि इंसान हर छोटी बात पर रद्द अमल न दे, हर गलती पर गिरफ्त न करे, हर लग्जिश को मौजू न बनाए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर गौर कीजिए। भाइयों ने कुएं में डाला, घर से जुदा किया, ग़ुलाम बनाया, उनकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। लेकिन जब इख्तदार मिला और वही भाई उनके सामने खड़े हुए तो उन्होंने क्या फरमाया था? ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। यह है अम्बिया का अखलाक, यह है कुरान की तरबियत। मोमिन माफ़ कर देता है, मोमिन एहसान याद रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो इस बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो इस सिलसिले में सबसे रोशन मिसाल है। वो मुनाफिकीन को जानते थे, उनके नाम जानते थे, उनके इरादे जानते थे, लेकिन फिर भी हुस्ने सलूक फरमाते थे, बुर्दबारी का मुजाहरा फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को तोड़ने नहीं आए, जोड़ने आए थे, नफ़रत नहीं मोहब्बत पैदा करने आए थे। समय के नाम आज सोशल मीडिया के दौर में तगाफुल की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। एक जुमला सुना फौरन नाराज, एक तबसरा देखा फौरन बदगुमानी, एक पोस्ट पढ़ी फौरन दुश्मनी। हालांकि मोमिन का मिजाज ये है कि वो दूसरों के लिए अच्छा गुमान रखता है, वो अल्फाज की बेहतरीन साख तलाश करता है, वो लोगों के अयूब की तशहीर नहीं करता, वो पर्दा पोशी करता है। इसीलिए सलफ सालहीन कहा करते थे, हम अपने भाई के लिए 70 उज़र तलाश करते हैं। कितने उज़र तलाश करते हैं? एक, दो, या एक भी नहीं, 70 उज़र। सामने के नाम ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, ये नफ़रतों के लिए नहीं, ये हिसाब किताब के लिए नहीं, ये दिलों में कीना पालने के लिए नहीं, ये अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए है। अल्लाह सुबहान ताला हमें कुरान के सच्चा आशिक बनाए, हमें अहले कुरान में शामिल फरमाए, हमारे दिलों को कीने, हसद और नफरत से पाक फरमाए, और क़यामत के दिन कुरान को हमारे हक में शफीया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के हलके से साउंड डिज़ाइनर शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मअस्सलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
4: दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरा

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: FM 107 Time check.

Assalamu alaikum and good morning. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महावेश खान. मैं आ गई हूँ यहाँ पे छबट के हो रहे हैं दो मिनट. मेरे और आपका साथ रहना है अब से लेके नौ बजे तक. उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे और सब कुछ एकदम से बिल्कुल फिट होगा, आपकी लाइफ में सेट होगा, सब कुछ सही चल रहा होगा और आप जो है अच्छी सी सुबह का आगाज कर चुके होंगे.

ये सब नाश्ता वाश्ता शायद कर लिया हो, अगर नहीं किया हो तो फिर नाश्ते की तैयारी हो, तो आप जो है वो अच्छा फील कर रहे होंगे। अगर रस्ते में हैं तो इस वक्त जो है आपको यही कहेंगे कि केयरफुली गाड़ी चलाइए, ख्याल रखिए अपना, और ये देख के गाड़ी चलाइए कि कोई इधर उधर वाला जो है वो आपको अगर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी, तो आपका नुकसान ना हो। मतलब थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, रोड पे जब आप मौजूद होते हैं तो आपकी तवज्जो जो है वो मुकम्मल तौर पे रोड पर होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि गलती हमारी नहीं होती, गलती किसी और की होती है, लेकिन फिर भी ट्रबल में हम आ जाते हैं।

ذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك

राइट, वेलकम बैक समर मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं आरजे मवेश के साथ और एक दफा फिर आपको खुश आमदीद शो में. और अब आ जाते हैं हम वेदर अपडेट की जानिब के इस वक्त क्या मौसम का हाल चाल है आपको बताते चलें. तो जी, कम से कम दर्जे हरारत आज रहेगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जा सकता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम से कम और 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा से ज़्यादा. तो ये आज का सीन है. और इसके साथ ये भी बताती चलूँ आपको कि हो तो इतना रहा है लेकिन फील्स लाइक जो है वो 37 तक अभी भी हो रहा है. तो फील्स लाइक जो है वो हाल अभी आगे जा सकता है. लेकिन खैर 38 सुन के अच्छा लगता है, मतलब महसूस ऐसा होता है ना आपको कि हाँ सही है, मतलब ठीक है, बर्दाश्त करने वाली गर्मी है, ऐसा फील हो रहा होता है. तो खैर जी, आज जो होने वाला है सिलसिला और वेदर के हवाले से, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है थोड़ी सी, 55-56 तक रहेगी, तो ये अच्छी बात है. जिन लोगों को ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा इशू रहता है तो उन लोगों के लिए अच्छा है, बेहतर है कि अब जो है वो ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा ना बढ़े, बस इतनी काफ़ी है. एयर क्वालिटी जो है वो इस वक्त बहुत मतलब अच्छी नहीं है, अनहेल्दी की तरफ है. तो इसलिए अगर बाहर निकलना हो तो थोड़ा सा मतलब लॉन्ग आउटडोर एक्सपोजर जो है वो अवॉइड करें. अच्छा, ये हमें महसूस नहीं हो रहा होता लेकिन आप नोट करते होंगे कि थोड़ी देर भी आप वॉक वगैरह कर कर आएँ कुछ हो तो आपको ना फिर उसके बाद एक अजीब सा एहसास होता है, मतलब नज़ला खांसी ना भी हो रहा हो लेकिन फिर भी ऐसा कुछ लग रहा होता है. तो ये जो सिलसिला है वो होता है क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती हमें.

मिल रही होती है साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अभी जैसे कल बता रहे थे, आई थिंक जावेद साहब बता रहे थे ना, कि उस वक्त में जब बचपन हुआ करता था यहाँ पे उनका, तो सही है ये एसी वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उस वक्त गर्मी भी नहीं थी. क्योंकि अक्सर मैं ये बात सोचा करती हूँ कि जब अभी इतनी गर्मी पड़ती है, आज तो चलो सबकी गाड़ियों में एसी है, घरों में एसी है, लेकिन उस वक्त में क्या होता होगा जब ये चीज़ें नहीं होती होंगी. तो इसका जवाब कल मिल गया कि उस वक्त इतनी गर्मी का एहसास भी नहीं होता था वाकई, मतलब क्योंकि हर जो चीज़ जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, जैसे जैसे मतलब हमारा लिविंग स्टाइल जो है ना, जो हमें लग रहा होता है लग्जीरियस और लविश होता जा रहा है, तो वैसे वैसे गर्मी का एहसास भी आई थिंक ज़्यादा होता जा रहा है. अच्छा मैं सोचूं अपने बचपन में ना, तो मुझे लगता है उस वक्त ज़्यादा गर्मी होती थी. मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा होता है कि मेरे बचपन में, मतलब चाहे वो कुवैत की बात करूं मैं, लेकिन जब हम मतलब कराची जाते थे उस वक्त की भी बात करूं, तो मुझे लगता है उस वक्त लोग बहुत ही बेहाल हुए भी होते थे कुछ गर्मी से. अब वो गर्मी का कराची में तो खैर अभी भी इसी तरह से बेहाली कुछ सुनी जाती है मेरे छोड़ने के बाद से, लेकिन उससे मतलब बीच का बड़ा अच्छा टाइम गुजरा भाई. इतना ज़्यादा कोई हमें गर्मी वर्मी महसूस नहीं हुई जो हमने मतलब एक यूनिवर्सिटी टाइम वगैरह जो गुजारा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ऐसी कयामत की कोई गर्मी होती थी. लेकिन अब फिर दोबारा से लगे हैं तो खैर मतलब कोई रीजंस हैं, दरख्त वगैरह का लगाना ना, मतलब अगर नहीं है दरख्त तो फिर गर्मी का एहसास बढ़ेगा. इसी तरीके से और चीज़ों पे जहाँ पे मतलब काम हो रहा है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन पे, तो फिर साथ साथ इसके ऊपर भी काम होना चाहिए. खैर जी आ जाते हैं इससे हटकर, मतलब वेदर से हटकर हम ट्रैफिक अपडेट की तरफ. तो अभी नॉर्मल है, नॉर्मल से मॉडरेट रश है और ज़्यादा कोई मतलब रश वगैरह देखने में नहीं आ रहा. थोड़ा बहुत आपको हस्ब मामूल वेस्ट पे कॉर्निश सीरिंग रोड सलवा रोड डी रिंक और इंडस्ट्रियल एरिया पे होता ही ट्रैफिक ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल सकता है. अलबत्त उससे हटकर देखा जाए तो मतलब इतना ज़्यादा मसला नहीं है. लुसील साइड पे भी थोड़ी सी स्लो मूवमेंट हो सकती है, लेकिन ये कि इतना वहाँ पे भी ट्रैफिक इस वक्त नहीं है, तो सब कुछ सेट है. वेदर भी और इसके साथ ही साथ ट्रैफिक के हालात भी मतलब नॉर्मल है. कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन करना क्या है आपने, पानी ज़रूर

तो 23 जून को भी मैंने देखा कि बहुत सारे 23 जून को भी ना इंटरनेशनल अवेयरनेस डेज, पब्लिक हॉलीडेज और बहुत कुछ होता है, तो उसमें एक दिन इसके हवाले से भी है। अभी जब मैं आपको बताऊंगी तो फिर हम आपको बताते हैं डिटेल में, लेकिन आ जाते हैं इस तरफ कि क्या क्या होता है आखिर 23 जून को और कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले तो 23 जून को हर साल यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है, और इस दिन का मकसद ये होता है कि दुनिया भर में उन लोगों की सर्विसेज को अप्रिशिएट किया जाए जो कि पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, यानी हम जैसे, तो यानी वो लोग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस या फिर सोशल सर्विसेज के जरिए आवाम की खिदमत करते हैं। इनमें टीचर्स भी आ जाते हैं, हेल्थ वर्कर्स भी आ जाते हैं, म्युनिसिपल स्टाफ, सिविल सर्वेंट्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स, पॉलिसी मेकर्स वगैरह वगैरह वगैरह, तो बहुत से लोग होते हैं इसमें। और उनका मकसद ये होता है कि पब्लिक सर्विस को सिर्फ एक जॉब ना समझा जाए बल्कि उसे कौम और इंसानियत की खिदमत के तौर पे देखा जाए। ठीक है, तो ये वाला सीन है, मतलब ये दिन मनाया जाता है यूएन की तरफ से खास तौर पे 23 जून को मनाया जाता है। और ये याद दिलाता है कि किसी की भी मुल्क की तरक्की में ना सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड्स ही नहीं होते बल्कि मजबूत पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, सिंसियर पब्लिक सर्वेंट्स भी होते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा दिन है जो इंटरनेशनली सेलिब्रेट तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ये कि मनाया जाता है अवेयरनेस वगैरह के लिए, वो है ये कि इंटरनेशनल विडोज़ डे। और ये दिन विडो यानी जो बेवा ख्वातीन होती हैं उनके लिए ये रखा गया है, और उनके मसाइल, उनके सोशल और इकोनॉमिक राइट्स और उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों पर तवज्जो दिलाने के लिए बेसिकली ये दिन मनाया जाता है। और दुनिया के कई हिस्सों में जो बेवा ख्वातीन हैं उनको सिर्फ जज्बाती दुख का ही सामना नहीं होता बल्कि उन्हें फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और सोशल आइसोलेशन, लीगल प्रॉब्लम्स, इनहेरिटेंस के जो इश्यूज होते हैं और ये सारी जो चीज़ें उनका सामना भी करना पड़ता है। तो इसीलिए ये दिन सिर्फ सिंपैथी का दिन नहीं है बल्कि अवेयरनेस, डिग्निटी और राइट्स का दिन है, और उस दिन बेसिकली उनको मजीद इज्जत, सपोर्ट मिलनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा मतलब जो है ध्यान दिया जाता है, उनके लीगल और इनहेरिटेंस राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, इकनॉमिक जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए, सोशल इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, और सोसाइटी में उनके साथ सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि इंसाफ और सपोर्ट के साथ लोग उनके साथ खड़े हों, उनकी मदद करें, तो ये इसलिए मनाया जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा तीसरा जो दिन है वो भी कुछ ख्वातीन के हवाले से ही है, वो ये कि 23 जून को हर साल इंटरनेशनल वुमेन इन इंजीनियरिंग डे भी मनाया जाता है, और ये उन ख्वातीन के लिए है जो कि इंजीनियर्स हैं, डेफिनेटली इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में काम कर रही हैं। और इंजीनियरिंग को ट्रेडिशनली अगर देखा जाए ना तो अक्सर मेल डोमिनेटेड फील्ड समझा जाता है, जो कि है भी काफ़ी हद तक, मतलब ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ख्वातीन नहीं नज़र आ रही होती हैं इस फील्ड में। और लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ ख्वातीन भी जो हैं वो काफ़ी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, सॉफ्टवेयर हो, इलेक्ट्रिकल हो, बायोमेडिकल, एरोस्पेस या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो, तो इसमें हमें नज़र आती हैं अब ख्वातीन भी। और इस दिन का मकसद ये है कि विमेन जो इंजीनियर्स हैं उनकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाए, और यंग जो लड़कियाँ हैं उनको स्टेम और इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जो है इनक्रेज किया जाए, और ये जो जेंडर गैप है इसको हाईलाइट करना, इंक्लूजन को प्रमोट करना, ये जो सारी चीज़ें वो आज के दिन के हवाले से की जाती हैं। तो ये एक पावरफुल मैसेज देता है कि टैलेंट का जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ जो बात है वहाँ पे स्किल, डेडिकेशन, क्रिएटिविटी हो तो ख्वातीन भी इंजीनियरिंग की दुनिया में लीडरशिप का रोल अदा कर सकती हैं। फिर भाई एक और दिन है, मतलब दिन काफ़ी हैं उसमें से मैं कुछ आपको खास खास ही बताऊंगी, लेकिन खास खास भी अच्छे खास हैं। तो 23 जून को हर साल ओलंपिक डे भी मनाया जाता है, और ये दिन मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट की याद में मनाया जाता है। ओलंपिक डे का मकसद सिर्फ स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करना नहीं होता बल्कि फिटनेस, यूनिटी, एक्सलेंस और फ्रेंडशिप और फेयर प्ले के कॉन्सेप्ट को भी प्रमोट करना होता है। और दुनिया के कई ममालिक में इस दिन फन रन्स होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल्स और कम्युनिटीज़ में गेम ऑर्गेनाइज की जाती हैं, बच्चों और यंग एथलीट्स को मतलब जो है सपोर्ट किया जाता है। तो ये एक है बेसिकली, ये दिन भी मनाया जाता है। अब मैं कुछ दिन स्किप करती हूँ। अच्छा, ये अभी हमने कल परसों मनाया था ना फादर्स डे, जो सेलिब्रेट किया था 21 जून को था ना गालिबन, लेकिन पोलैंड में आज मनाया जाता है 23 जून को फादर्स डे, वो सेलिब्रेट करते हैं और अपने फादर को गिफ्ट देते हैं, कार्ड देते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ, हाँ, जिस दिन के बारे में मैंने आपसे शुरू में कहा था उस

0: दिन पे भी आती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और दिन है, वो है नेशनल टाइपराइटर डे. अब ये टाइपराइटर रह कब गया, मतलब है ही नहीं, लेकिन दिन अभी भी मनाया जा रहा है. तो खैर ये दिन मनाया जाता है, और ये कोई मतलब ग्लोबल यूएन लेवल पे नहीं है, बल्कि एक फन डे कह सकते हैं आप इसको, कि ये याद के तौर पे मनाया जाता है उन लोगों के लिए जो राइटिंग, लिटरेचर, जर्नलिज्म और विंटेज टूल्स से मोहब्बत रखते हैं. तो इस दिन टाइपराइटर की हिस्ट्री, ओल्ड स्कूल राइटिंग कल्चर और क्रिएटिव एक्सप्रेशन को सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये वाला सीन है भाई, मतलब किसी ने टाइपराइटर पे राइटिंग की है वो मुझे ज़रूर बताया. मुझे बड़ा शौक था, पता है, बहुत शौक था. हमारा एक टाइपराइटर हुआ करता था जो हमारी मतलब पप्पो के बेटे ले गए थे. मैं बड़ी पीछे पड़ी रही थी कि हमें वापस कर दें, मैं सीखूंगी, लेकिन वो मुझे खैर मिला ही नहीं था, तो मुझे टाइपराइटिंग आती नहीं है. लेकिन जिन कुछ लोग ऐसे हैं या हमारे सुनने वालों में जिन्होंने कभी टाइपराइटर यूज़ किया हो, तो ज़रूर बताइएगा. अच्छा जी, इसके साथ वो वाला दिन आ गया है जिसके बारे में बात करी थी. आज 23 जून को नेशनल हाइड्रेशन डे भी मार्क किया गया है, और इसका मकसद है लोगों को रिमाइंड कराना, ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में, कि पानी पी लो भाई. तो ये सीधा सीधा दिन है आज, हाइड्रेशन मेंटेन करना है और हेल्थ का ख्याल रखना है. तो ये दिन इसलिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है. आप लोग भी ये दिन मनाइए, एक पानी की बोतल उठाइए और उसमें से कुछ सिप्स लीजिए. मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ, सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
3: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट.
2: गेम ऑन,
3: वॉल्यूम अप.
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
3: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन.
2: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें. सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए. गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा. इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें. हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है. बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें. इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है. दरवाजों को फोर्स ना करें. ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है. ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें. हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें. ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है. पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें. अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं. रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें. सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें. घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें. FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है.
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब. सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
2: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है. अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो. सबसे पहला कदम यह है

0: के पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हो कि बच्चे उसे आसानी से पार ना कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।

0: रेडी राइट समर मॉर्निंग में एक दफा फिर से आप लोगों को वेलकम बैक. मैं हूं आपकी आरजे महावर्ष और वक्त हुआ है 6:38 और साथ रहना है मेरा आपका 9 बजे तक. प्रीत जी, अब सवाल की तरफ आ जाती हूं मैं. सवाल आपको बताती चलूं कि आज आपसे ये है सवाल कि अगर आपको अपनी जिंदगी में एक दिन दोबारा जीने का मौका मिले तो वो कौन सा दिन होगा. मतलब पास्ट में गुजर चुका है वाला दिन, ठीक है, पहले ये जहन में रखें. तो अगर वो दिन आपको दोबारा से जीने का मौका मिले तो वो कौन सा दिन होगा और आखिर क्यों, वही दिन क्यों, वो इतना ख़ास क्यों था. ठीक है, तो ये आपने मुझे बताना है कि कौन सा दिन आप जीना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में दोबारा. थोड़ा सा सोचिए कि कौन सा दिन हो सकता है वो. आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कि आज तक आपको इतना दिल के करीब है कि जो आप चाहते हैं कि आपको दोबारा जीने का मौका मिल सके, दोबारा से वो दिन आ सके. मैं ख़ुद भी सोच रही हूँ कि कौन सा दिन हो सकता है और मुझे लग रहा है ऐसा एक दिन नहीं होता. मतलब अगर देखा जाए ना तो कई दिन ऐसे हमें लग रहे होते हैं कि फ़लाँ दिन फ़लाँ दिन फ़लाँ दिन, कुछ ना कुछ जो आपकी मतलब यादें होती हैं उसके साथ वाबस्ता. तो आपकी ज़िंदगी में वो दिन कौन सा है, कोई है, ज़रा सोचें, सोच के हमें बताएं और कॉल कीजिएगा हमें 4434377 पे. अच्छा, थोड़ी देर के बाद मैसेज कीजिएगा क्योंकि अभी भी थोड़ा सा इशू ही है मैसेज का, मेरे पास फ़ोन नहीं है. तो इसलिए आप ऐसा कीजिएगा कि मुझे कॉल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा. हम आपसे कॉल पर बात करते हैं. 4434377 पे आप कॉल कीजिए और बताइए कि वो कौन सा दिन होगा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी आरिफ अंसारी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त जबरदस्त. तो बताएं भाई कि अगर आपको मिलता है मौका एक दिन जीने का जो जिंदगी में आपके गुजर चुका है लेकिन वो बहुत ही खास था, तो वो कौन सा दिन होगा और क्यों?
1: वैसे तो एक दिन कहना मुश्किल है.
0: अच्छा, ओके, जिस दिन आपका लाइफ पार्टनर आपको मिला था उस दिन को दोबारा जीना चाहेंगे, राइट? हाँ, गुड, जबरदस्त जबरदस्त. चलें, गुड जबरदस्त. तो ये इसीलिए डेफिनेटली कि वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, राइट?
1: हाँ, बाकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी पहले तो
0: सही सही, गुड जबरदस्त. तो वो दिन आप दोबारा

0: दोबारा जीना चाहते हैं, सही हो गया। चलें दीप भाई, और कुछ कहना चाहेंगे?
1: और कल मैंने सर कुछ पूछा था।
0: क्या? अच्छा हाँ, वो जो आपने उसके हवाले से पूछा था, विनर वाला, सही। अच्छा, कल मेरी किसी से मुलाकात हो नहीं सकी, तो कल मैं नहीं पूछ सकी हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको पूछ के बताऊँ, ठीक है? चले जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। राइट, तो हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
0: जी, आज तो सुबह सुबह, क्या बात है।
2: आज थोड़े से मैं ये हो गया कि जल्दी नाश्ता किया और थोड़ी सी जल्दी तैयारी की, तो इस वजह से फिर मैं बोला चलो कॉल भी जल्दी करूं।
0: गुड।
2: अच्छा, मौजू क्या है आज, सवाल
0: आज का सवाल मैंने ये किया है कि अगर आपको मौका मिले आपकी जिंदगी का कोई एक दिन दोबारा जीने का, तो वो कौन सा दिन होगा और क्यों?
2: कोई भी दिन
0: जो गुजर चुका हो और आपको वो इतना मतलब आज भी याद आता हो कि आप चाहते हो कि वो दिन दोबारा आपको मिले, तो वो कौन सा दिन होगा जिन आप बहुत खुश थे?
2: सही। सबसे पहले तो ये कि जो दोबारा मिले वो दिनों में जो 18 नवंबर 2010 हुए, 18 नवंबर 2010, ये अगर दोबारा मिले तो शायद उससे ज्यादा खुशी और होगी इससे कि 18 नवंबर 2010 को मैं दुबई में था, वापस आया दुबई से, और मेरी वाइफ हज पे गई थी और वापस जब आ रही थी तो मैं वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था एयरपोर्ट पे। वो खुशी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। वालिदैन ने भी हज किया हुआ था, भाइयों ने भी किया था, और हमारी फैमिली में मैं कहता हूँ कि जो बहू होती है सबसे पहली मेरी वाइफ थी, तो उसने हज किया।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, सही सही
2: माशाल्लाह। और ये इसलिए खुशी हो रही थी कि उसके साथ मैंने ये प्रॉमिस किया था, ये बार बार नहीं बताना चाहिए ऐसा, लेकिन उसके साथ ये मैंने प्रॉमिस किया था, उसकी शादी का गिफ्ट उसको हज मैंने दिया था।
0: सही, गुड,
2: ये
0: सही। तो वो फिर पूरा
2: आने की खुशी, वो आने की खुशी बहुत ज्यादा थी, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि वो सब मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा खुशी थी।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह
2: माशाल्लाह,
0: जबरदस्त। तो उन्होंने आपसे ये गिफ्ट मांगा था हज का?
2: मैंने दिया था, मैंने खुद कहा था, शादी का गिफ्ट मैंने खुद दिया था।
0: वेरी नाइस।
2: इसलिए कि मैं शादी मेरी 2001 में हुई थी और मैंने उससे ये वादा किया था कि मुझे तो कुछ और मेरे पास नहीं है, इतना मैं नहीं दे सकता, लेकिन हज जो है हज का गिफ्ट इंशाल्लाह आपको हज का तोहफा दूंगा। तो फिर वो नसीब अल्हम्दुलिल्लाह 2010 उनके भाई थे, वो स्कूल में टीचर थे, तो वो बाद में बोले कि चलो मेरे साथ जाएगी, मैं ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन उनके लिए फिर मैंने उनको अपने भाई के साथ दे दिया।
0: माशाल्लाह,
2: ये मेरी खुशी की बात। बहरहाल अच्छी बात है और माशाल्लाह, लेकिन ये शेयर नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन मैं अभी बात कैसे आई,
0: अच्छी बात है, इसमें शेयर क्यों नहीं करना चाहिए था, अच्छी चीज है माशाल्लाह से, इतनी बड़ी बात है कि वो एक आपको माशाल्लाह से, मैं सोच रही हूँ डेट तक याद है, आज तक
2: डेट भी याद है और वो टाइम भी याद है जब हम लोग एयरपोर्ट गए थे, और एयरपोर्ट में वो जो मैं कहता हूँ कि हमारी फैमिली के सारे माशाल्लाह मेरे उस टाइम एक बेटी और वो दूसरा बेटा जो है बड़ा वाला, वो भी साथ में गए थे, तो ये ऐसे वो खुशी मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता।
0: माशाल्लाह,
2: बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी कभी कभी हम लोग डिस्कस करते हैं तो वही बात याद आती है।
0: ग्रेट भाई, जबरदस्त जबरदस्त, तो ये खुशी का दिन है।
2: जी जी जी, ये मेरे लिए खुशी के दिन है, वो दिन वापस तो आता नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे, दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह वापस आए, ऐसी खुशी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और बाकी शादी और वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ऐसे वो तो है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी वही खुशी है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात है। और दूसरी बात ये कि शरीक हयात जो है वो खुशी की एक अलामत होती है।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
2: वो हम लोग अगर वो बोले कि शादी का दिन नहीं, वो शादी के बाद जो है शरीक हयात वो खुशी की अलामत है। ओके जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, दूसरे कॉलर भी होंगे, लेकिन आज का बस यही, बहरहाल मुझे मालूम नहीं होता, ऐसे मैं सुनता नहीं हूँ रेडियो, इसीलिए कि सुबह सुबह तो जैसे आप सवाल करती हो तो जवाब बस में देते।
0: हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा था, जबरदस्त आदिब भाई, थैंक यू, ख्याल रखिएगा।
2: ओके, बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। रही जी, तो हमारे साथ थे खादिम भाई और इन्होंने बताया अपना दिन कि कौन सा दिन दोबारा

0: लेकिन मेरी ये जरूर ख्वाहिश, मतलब इस तरह हो नहीं सकता, लेकिन ख्वाहिश इंसान है, ख्वाहिश आपने सवाल पूछे इसलिए इसका जवाब दे रहे हैं।
1: जी जी बिल्कुल सही बात है। तो आपके वालदेन हयात नहीं है ना?
0: नहीं मेरे वालदेन दोनों हयात नहीं है। तो एक दिन मैं तस्करा कर रहा था ना कि जब वो लोग उम्र रसीदा हो जाते हैं तो आप यकीन कीजिए कि मैं उस चीज को देखता रहता हूँ कि उस मतलब 70s 80s मतलब जो एज पहुंचती है तो लोगों के वालदेन की शक्लें आपस में लगता है एक जैसी शक्लें सबकी सोते हैं ऐसे फील होता है। तो बस और जिनके हयात है उनके लिए दुआ है। और रही बात शादी की जो मेरे भाई ने भी कहा तो डेफिनेटली वो तो खुशी का मौका होता है तो होना भी चाहिए। और जिनकी नहीं हुई उनके लिए दुआ है कि उनकी हो जाए और जिनकी हुई हुई है अल्लाह ताला उसको बड़े प्यार से निभाए निभाता रहे। ये मेरी दुआ है सबके लिए।
1: सही गुड जबरदस्त। और कुछ कहना चाहेंगे जावेद साहब?
0: और बस यही था कि आज मैं सोच रहा था कि फोन करूं या ना करूं क्योंकि आपने ऑलरेडी मेरा नाम ले लिया था कल मौसम के हवाले
1: से। फोन तो बनता है ना, आपकी कॉल तो बनती है।
0: वो डेफिनेटली मैंने पहले भी एडवांस में माजरत क्योंकि बाज़ औक़ात मुझे पता नहीं होता कि विदिन सेकंड में कहां चला गया हूं।
1: नहीं, वो तो है डेफिनेटली, लेकिन जब भी कभी मौका मिला करे तो इसी तरह से कॉल जरूर किया करें क्योंकि अच्छा लगता है, बात आप करते हैं मजा आता है सुनकर, तो जबरदस्त। तो ये थे भाई आपके दिन और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रे जी, तो हमारे साथ जावेद साहब मौजूद थे और अभी तक हमारे जितने कॉलर्स आए सबने अपने अपने दिन बताए। ज़्यादातर लोगों के लिए वैसे शादी का दिन जो है ना उनका बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि वो दोबारा से उनकी ज़िंदगी में दिन आ सके। मेरा ख्याल है सबके साथ ही होगा ऐसा, मतलब कौन होगा ऐसा जिसको मतलब खुशी नहीं होती होगी। डेफिनेटली डेफिनेटली हर बंदा जो है ना वो खुश होगा। अच्छा मैं सोचूं तो हाँ, शादी वाला दिन भी है और मुझे जो अगर ख़वातीन के हवाले से पूछा जाए ना तो उनको शादी से ज़्यादा जो खुशी होती है वो उनकी आई थिंक पहली औलाद जब होती है। तो मुझे वो दिन मैं आज भी सोचती हूँ ना, बल्कि वो एक दिन नहीं वो बहुत सारे दिन जब मतलब नया नया ये हुआ था ना कि मेरा पहला बेटा माशाल्लाह से पैदा हुआ था तो वो मैं दिन सोचती हूँ। अक्टूबर के दिन थे, 23 अक्टूबर को पैदा हुआ था वो और कराची में थी उस वक्त मैं। और ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही कोई दिलफरेब मौसम हकीकतन हो रहा हो, लेकिन मुझे लगता है सोचकर मुझे लगता है कि कितना मतलब कोई ना दुनिया बदल गई थी, कितनी खूबसूरत हो गई थी हर चीज़, मतलब ना कुछ नई नई थी तो मुझे ये फील हो रहा होता है। तो दूसरे पे भी आपको खुशी होती है लेकिन पहली दफ़ा का जो एक एहसास होता है ना कि दुनिया में कोई अब ऐसा है जो कि मुकम्मल तौर पर आपका है और आप उसे मुकम्मल तौर पर ओन कर सकते हो, ये एक बड़ी मतलब जो है ना माओं के लिए एक बड़ी बात होती है। तो मुझे वो दिन मतलब शादी का दिन भी लेकिन ये वाला दिन भी जो मेरा पहला बेटा माशाल्लाह जिस वक्त पैदा हुआ था तो वो दिन मैं सोचती हूँ, वो सारे दिन सोचती हूँ, वो तकरीबन समझें कि कोई एक डेढ़ महीना, और वो सोच के बड़ा एक अजीब सा मतलब जो ना लगता है मैं हवाओं में उड़ रही थी। तो ये वाला सीन होता है, तो ये वाला चक्कर है। और इसके अलावा अगर इससे हटकर देखा जाए तो मैं चाहूँगी कि मेरे जो यूनिवर्सिटीज़ के जो डेज थे ना वो वापस आ जाएँ, क्योंकि वो इतने इतने मैं अपने अपने बच्चों को भी बोल रही होती हूँ कि अब जब इंशाल्लाह ताला तुम लोग आगे के सालों में जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कि और जगहों पे कैसा होता होगा लेकिन हमारी कराची यूनिवर्सिटी का टाइम जो है ना वो मतलब वो दिन थे इतने यादगार थे कि मुझे लगता है कि अगर वो मुझे जीने को मिल जाए एक दफ़ा फिर से तो मैं ज़रूर जीना चाहूँगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं नूर मोहम्मद मंसूर साहब, क्या हाल चाल है आपके भाई? ठीक है
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: मैं बता देती हूँ आपको कि आज मैंने ये पूछा है कि अगर जिंदगी का कोई दिन जो कि गुजर चुका है वो आपको दोबारा जीने का मौका मिले तो वो कौन सा दिन होगा और क्यों?
2: मुश्किल जवाब दे दिया। मैं इस बात में खुशी हूँ, तो मेरे घर में बहुत मतलब कि फिलहाल मेरा भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा फर्स्ट औलाद जो आया ना तो मेरे अब्बू बहुत खुश हुए थे।
1: अच्छा।
2: और उससे भी ज्यादा खुश मेरी अम्मी हुआ था क्योंकि मेरा फर्स्ट बच्ची हुआ था।
1: अच्छा।
2: लड़की
1: हुआ था,
2: मेरा फर्स्ट लड़की था।
1: हाँ,
2: तो मैं उस दिन को मेरे हिसाब से एंजॉय करना
1: चाहूंगा।
2: हाँ,
1: सही सही। तो आपका भी इस तरह का सीन है, मेरा वाला सीन है कि जो पहला बच्चा है उस दिन को दोबारा। सही हो गया।
2: हाँ, सही। वो दिन मुझे आज भी याद आता है।
1: हाँ,
2: मेरे माँ बाप कितने खुश थे।
1: हाँ, सही बात है, सही बात है। वाकई बहुत ज़्यादा खुश

0: का दिन होता है वो इंसान के लिए कि आपकी अपनी औलाद है. मुझे तो मतलब ना कई अरसे तक यकीन ही नहीं आता था इस बात पे कि मेरी मतलब मेरा बेटा पैदा हुआ है, ये मेरा बेटा है. तो ये होता है माशाल्लाह. मतलब अल्लाह ताला सबकी औलादों को बहुत लंबी ज़िंदगी दे और सबको मतलब जो ना औलाद की नियमत से नवाजे. इससे बड़ी मुझे लगता है नियमत नहीं होती दुनिया में कोई.
1: पैदा हुआ था तो मैं नहीं था उस टाइम वहाँ पे, मैं हाँ हाँ नहीं था. मेरे अम्मी और अब्बू मेरे वाइफ बता रहे थे.
0: सही सही चले. नहीं गुड, जबरदस्त. तो ये दिन है भाई. और कुछ कहना चाहेंगे नूर भाई?
1: नहीं बस चले जी, कलर को मौका दीजिए और मैं चलने का काम करता हूँ, बात करने का जगह नहीं.
0: चले जी, तो आप सुनिए आराम से बैठ के और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है. ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. रोहित जी तो हमारे साथ हमारे कॉलर, और इनका जवाब था कि भाई जब पहली बेटी हुई थी उस वक्त. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.
0: जी कौन बात कर रहे हैं? सुबह खैर. कौन बात कर रहे हैं?
2: मोहम्मद फहरान, श्रीलंका.
0: मोहम्मद
2: फहरान.
0: ओह, मोहम्मद सहरान. ओके, प्लीज टर्न ऑफ योर रेडियो. यस जी, तो मोहम्मद सहरान क्या कहना चाहेंगे आप?
2: हम कहना है तो हम इधर से जब कोरोना का समय हमारा माँ बाप गुजर गया दोनों.
0: क्या हो गया?
2: माँ बाप दोनों गुजर गया हम इधर से कोरोना का समय. हम सोच रहे हैं जो आपका वो सब्जेक्ट था, ये दोनों फिर हमको कब मिलेगा? तो दोनों का साथ आखिरी मौका में ये लोग का साथ होना चाहिए था.
0: सही सही.
2: अब मिस किया, बहुत मिस किया वो टाइम. जाना नहीं पाया, उस टाइम क्वारंटीन बैठना था.
0: सही सही. सही. तो आप चाहते हैं कि वो दिन मिल जाए ताकि आप उनके साथ उनका आखिरी वक्त जो है वो गुजार सकें. सही सही. हाँ हाँ सही सही है. ठीक हो गया. और मोहम्मद सहरान पहली दफा कॉल किया आपने?
2: हाँ हाँ,
0: पहली दफा कॉल किया. तो उर्दू समझ लेते हैं आप?
2: हाँ,
0: गुड, जबरदस्त. कहाँ से हैं? श्रीलंका से.
2: हम श्रीलंका डिस्ट्रिक्ट है.
0: अच्छा अच्छा, तो कैसे उर्दू यहीं पे बोलना आई या पहले से श्रीलंका में भी आती थी?
2: 20 साल का ऊपर हो गया था बाहर
0: कतर में.
2: हाँ, पाकिस्तानी लड़का था, वो बोला था कुछ भी बात करो हम आपको बनाएंगे करके उर्दू बात करने का. काम कर रहा था, हाउस ड्राइविंग कर रहा
0: है.
2: जब उस टाइम बोला तो उसका नाम शरीफ था.
0: सही सही.
2: अच्छा लड़का था, वो बोला कुछ भी बोलो, जो जोकिंग में वो कुछ भी है, मुश्किल नहीं है, डरना नहीं, हम आपको बनाएगा बात करने के लिए.
0: अच्छा. तो उसने फिर आपको सिखा दिया?
2: हाँ सिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह.
0: गुड हो गया, ये तो जबरदस्त हो गया. चले जी मोहम्मद सहरान, अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे. तो आइंदा भी जरूर कॉल कीजिएगा, आप तो अच्छी खासी उर्दू बोलते हैं.
2: ओके इंशाल्लाह.
0: ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. रे जी, तो हमारे साथ काफ़ी सारे कॉलर्स और मोहम्मद सहरान जो है वो दिन वापस जाते हैं कि जब उनके माँ बाप मतलब आखिरी दिन थे तो ये उनके साथ गुजार सकें. हाँ, ये भी बिल्कुल एक वैलिड चीज़ है कि डेफिनेटली मतलब हर बंदे को ये होता है, अगर वो दूर होना तो फिर उसको मतलब महसूस होती है चीज़. तो खैर जी, आप सुन रहे हैं FM 107. सवाल मैंने आपसे किया है कि कौन सा दिन है जो अपनी ज़िंदगी का आप चाहते हैं कि एक दफ़ा फिर जी सकें और क्यों. तो ये आपने मुझे बताना है. 4434377 पे आप कर सकते हैं कॉल. कॉल कीजिएगा, थोड़ी देर में मैं चेक करती हूँ, अगर हमारा फोन चल पड़ता है तो हम आपको बताते हैं. फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कीजिएगा, ठीक है? लेकिन थोड़ी देर के बाद आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा जब मैं बता दूँ. और अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. कॉल कर सकते हैं आप हमें, बहुत सारी अपडेट्स वगैरह भी मेरे पास हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी और भी बहुत कुछ होगा. गेम भी खेलेंगे. अच्छा, गेम के हवाले से ना बड़े मज़े की चीज़ है, मैं आके बताती हूँ. पहले ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आके बताती हूँ.

ready, right? Welcome back. आप सुन रहे हैं summer morning. Good morning to all of you. और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम उन तमाम लोगों को जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, जिनकी आंख अभी भी खुली है. और मेरे पास एक न्यूज मौजूद है आपसे शेयर करने के लिए, तो सबसे पहले वो शेयर करते चले. मैं आपको बताती चलूँ कि कतर रेल ने की तरफ से एक न्यूज है. वो क्या है कि कतर रेल ने ऐलान किया है कि लुसेल ट्राम सर्विसेज अभी 26 जून से 5 जुलाई तक, मतलब ये टेम्परली सस्पेंड होगी. और कंपनी के मुताबिक ये सस्पेंशन नेटवर्क में इम्प्रूवमेंट वर्क के लिए की जा रही है. और इतवार को जारी की गई स्टेटमेंट में कतर रेल का ये कहना है कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से इसको सस्पेंड किया जा रहा है टेम्पररी. और इसमें ये होगा कि पैसेंजर सर्विसेज को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा, ट्राम नेटवर्क की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जाएगा इस दौरान. और स्टेटमेंट के मुताबिक सस्पेंशन के दौरान लक्तेफिया स्टेशन और तरफत साउथ स्टेशन के दरमियान रिप्लेसमेंट बस सर्विस चलाई जाएगी ताकि मुसाफिरों को सफ़र में कम से कम मुश्किल का सामना करना पड़े और सर्विस कंटिन्यूटी बरकरार रहे. तो ये है भाई सीन कि अगर आप लुसेल ट्राम में सफ़र किया करते थे तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे रिप्लेसमेंट है बस सर्विस को आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो कीजिएगा. और ये भी साथ में कतर रेल ने वाज़े किया है कि मेट्रो एक्सप्रेस सर्विस जो है वो मामूल के मुताबिक चलती रहेगी, मेट्रो लिंक सर्विसेज भी कोई उसमें भी तब्दीली नहीं होगी और स्केजुअल एज यूजुअल रहेगा. तो ये आपके लिए खबर थी, वहाँ से गुजरते हैं. अगर आपका जाना आना होता है तो फिर आपने बस थोड़ी सी तब्दीली ये है कि ट्राम अभी नहीं चलेगी, बल्कि आपको उसके थोड़े से मुतबादल जो ट्रांसपोर्टेशन के जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करना होगा. तो ये वाला सीन है. आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पे. साथ ही कुछ मैसेजेस मेरे पास आ गए हैं. अच्छा, मैसेजेस का मैं पहले ही बता दूं कि बहुत ज़्यादा इक्तफा नहीं कीजिएगा इस बात पे कि आप मैसेज भेजते रहें, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी भी इशू ही रहेगा, मतलब इसकी चार्जिंग काफ़ी कम है. और ये कहते हैं मोहम्मद तौफीक फ्रॉम अलवकरा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल हैं तौफीक भाई आपके. इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम एफएम 107 फैमिली को. और कहते हैं कि उम्मीद है कि तमाम लिसनर्स हैप्पी होंगे और ड्यूटी जाते जाते एफएम 107 लगा लिया, गुड मॉर्निंग हो गई. ओके, मोहम्मद नफीस का मैसेज है. मोहम्मद नफीस कॉल भी कीजिएगा तो हमारी भी गुड मॉर्निंग हो जाएगी. और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. ऐसे तो बहुत सारे दिन हैं जो फिर से जीना चाहती हूँ. ओके, जैसे कि जब मैं अपनी फर्स्ट सैलरी अपने पेरेंट्स को दी थी, तो द लास्ट डे आई स्पेंड विद माई फादर माई डॉटर्स फर्स्ट बर्थडे. और बचपन के दोस्त के साथ गुजरा हुआ वक्त, हम जब समर में सुबह सुबह उठ के पार्क जाया करते थे खेलने के लिए, और कॉलेज के दोस्त जिनके साथ क्लास बंक करते थे, तो ये सब बहुत ही खास है. और ये किसके लिए बहुत खास है? समीरा जी. समीरा, आज तो मैंने आपका मैसेज सुना फ़ौरन से पढ़ लिया ना, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया. अब आप ये नहीं कह सकती मैं आपका मैसेज लेट पढ़ती हूँ. तो खैर जी, आप लोगों की मैसेजेस, और हो सकता है भाई मैसेज में कभी ऊपर नीचे हो जाए, मतलब नहीं पढ़ सकें टाइम पे, तो समझ जाइएगा कि जिनका इशू चल रहा है. तो ये वाला सीन है. खैर जी, इस वक्त हम बढ़ते हैं म्यूजिकल ट्रैक की तरफ. आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं कि कौन सा दिन है जो कि आप चाहते हैं आपकी जिंदगी का आपको दोबारा मिले और क्यों. सही है, तो ये आपने मुझे बताना है, कॉल करनी है. लेकिन अभी चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी,
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it. Don't miss it.
2: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से ना सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखिला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
4: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे भावेश खान और मैं एक दफा फिर से आ गई हूँ आपके साथ। 7:19 मेरा आपका साथ रहना है 9 बजे तक, और इस दौरान होगा बहुत कुछ, अपडेट्स वगैरह हम आपसे शामिल करते रहेंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे। और मुमताज अहमद ने मुझे मैसेज किया है और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये सॉन्ग लगा दो मैम, ओके। लेकिन उससे पहले भी कुछ कहते हैं, उससे पहले कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भावेश खान सिस्टर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। और जब घर से कतर आया था ना, अच्छा मोमेंट था, जब मेरा पहला फर्स्ट बेटा हुआ था, और सही, अच्छा सैड मोमेंट था जब घर से कतर आया था, ओके, और अच्छा मोमेंट था जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था, राइट। और भावेश खान मैम, आपका बेटा 23 तारीख को हुआ था, बिल्कुल जी, 23 अक्टूबर, और मेरी शादी सेम डेट को हुई थी, ओके, ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल से जब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ था सेम मंथ को मेरे अब्बू का भी इंतकाल हुआ था, 2015 में, अभी वो बात कर रहे थे ना भाई 18 नवंबर की, तो मेरे जहन में उससे वही आ गया था। तो खैर जी, और इसके साथ ही मुमताज़ अहमद का मैसेज है, आए हो मेरी ज़िंदगी में, तुम बहार बन के लगा दूँ। अच्छा, आपके लिए लगा देते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है, ये वाला चला देंगे। और इसके अलावा मेरे पास और भी मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैसेज से बढ़ के ना आज ज़रा कोशिश कीजिए कि आप कॉल कर लें, क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं है कब ये दगा दे जाए थोड़ी देर के बाद, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप जो है वो कॉल करें, ठीक है। मुमताज़ अहमद, मैंने आपका सॉन्ग लगा दिया, थोड़ी देर में चल जाएगा। इसके साथ ही जी हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? आरिफ अंसारी का मैसेज है, मेरा ख्याल है ये है ना, आरिफ अंसारी है ना, हाँ। अच्छा, आरिफ अंसारी, अभी एक और आरिफ अंसारी थे ना, तो वो तो शादी की बात कर रहे थे, ये वाले जो आरिफ अंसारी हैं ये 23 साल के आए थे, इनकी शादी नहीं हुई है, दो आरिफ अंसारी हैं, इसका मतलब है हमारे पास मोहम्मद आरिफ अंसारी और एक दूसरे सिर्फ आरिफ अंसारी, तो ठीक है। अच्छा जी, आरिफ अंसारी का कौन सा सॉन्ग रिक्वेस्ट है? तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इतना पुराना गाना, ओके, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, ये वाला गाना भी जो है वो हम ढूंढ लेते हैं, थोड़ी देर में मिल जाता है, तो ये भी आपके लिए चला देंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये भी तो बताएं ना कि अगर आपको जीने का मौका मिला, वो एक दिन दोबारा जो कि आप जीना चाहते हैं, तो वो कौन सा होगा और वो क्यों होगा, ये भी आपने मुझे बताना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माय नेम इज़ फैसल, सॉन्ग पल दो पल के साथ। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट लेने बैठी हुई हूँ क्या? मैंने आपसे एक सवाल किया है, पहले वो सवाल का जवाब तो दें, सवाल का जवाब दें, कॉल करें फैसल, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। ऑन ईयर आएँ, 4434377 पे आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि कौन सा दिन था भाई जो कि आप दोबारा चाहते हैं जीना, और वो क्यों है इतना ज़्यादा ख़ास के लिए कि आप वो दोबारा जीना चाहेंगे। अच्छा, वही होता है ना, अच्छा देखें, कॉल आ रही है मेरे पास, लेकिन व्हाट्सएप पे आ रही है, कॉल कीजिए 4434377 पे, और यहाँ पे आप मुझे बताइए जो आप बताना चाहते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये दिन की जब बात होती है ना, तो वो एक दिन वाकई नहीं हो सकता। मुझे बैठे बैठे बहुत सारे दिन याद आ रहे हैं, जैसे कि मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब हमारी बचपन वाली जो है ना, बचपन वाली तो नहीं कहना चाहिए, टीनेज वाली कहना चाहिए, हाँ टीनेज वाली जो है, वो ईदें चल रही थी और हम अपने मामों के घर पे जाया करते थे हर ईद पर। ईद का पहला दिन जो है वो लाजमी हमारे बड़े मामों के घर पे होता था, कि हम उनके घर जाते थे और खाने तो खैर बनते ही थे अब, लेकिन बच्चों को क्या इतना इंटरेस्ट होता है खानों वानों से, मतलब उस एज में भी, टीनेज में भी आपको खाने से इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसके अलावा मतलब आपके कज़न्स हैं, फिर मतलब आप कपड़ों के ऊपर उस वक्त बड़ा ध्यान होता है ना, तो वो वाला वो दौर था कि सब अपने अपने कपड़े पहन के अपने कपड़ों की जो है ना वो एक तरह से शोकेसिंग के लिए आए हुए होते थे, तो वो दिन भी मैं चाहती हूँ कि वापस आ जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, तो आपका नाम मैं सही तरह से समझ नहीं पाई।
1: मैं ड्राइव कर रहा हूं, तो शायद आवाज कम आ रही है। मेरा नाम
0: अच्छा,
1: सैयद कैस हैदर।
0: कैस हैदर, कैस राइट, लैला वाला कैस।
1: जी,
0: कैस। हां,
1: लैला वाला कैस।
0: सही सही, तो क्या हाल चाल है कैस, और किसने नाम रखा था आपका?
1: ये नाम मेरे दादा ने रखा था।
0: नाम पे खुश हैं या फिर क्या हुआ बचपन में, मतलब यही तो नहीं बोला जाता था जो मैंने कहा है आपको?
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं,
0: ऐसा नहीं। सही है,
1: थोड़ा डिफरेंट नेम होना चाहिए सबको, बहुत यानी कि जल्दी याद रहता है।
0: हाँ।
1: आपको मतलब कि जल्दी भूलता नहीं है, आप एक दफा मिलते हैं तो वो याद रखते हैं, क्योंकि डिफरेंट नेम होता है ना, तो वो रह जाता है दिमाग में।
0: हाँ, ये तो है।

0: डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये है, दादा ने नाम रखा था आपका कैस, राइट. तो कैस कहाँ से हैं आप?
1: बेसिकली मैं पाकिस्तान से हूँ.
0: पाकिस्तान, कौन सा शहर?
1: कराची.
0: कराची, ओके, जबरदस्त भाई. मैं भी कराची की
1: हूँ. माशाल्लाह.
0: हाँ हाँ, कराची में कहाँ से हैं आप?
1: मैं कराची
0: गुलशन इकबाल ब्लॉक. गुलशन इकबाल, जो पूरा एड्रेस बता दिया. गुड, जबरदस्त. चलें जी, तो गुलशन के जी, तो कब से हैं कैसे यहाँ पे?
1: मुझे आज तकरीबन 4 इयर्स हो गए.
0: 4 इयर्स हो गए. ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त ज़बरदस्त. अच्छा जीत कैस, तो मैं आपसे ये, मतलब मैंने सवाल किया सब लोगों से कि अगर ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा हो जो, मतलब आप चाहें कि उसको दोबारा से जी सकें, तो वो कौन सा दिन होगा और क्यों, अगर आपको मौका मिले?
1: मुझे लगता है कि एक जमाना ऐसा या एक वक्त, यानी कि एक यूं कहेंगे कि एक लाइक आपकी कुछ सर्टेन एज होती है ना, कि इतने सालों का जो वक्त था या मुद्दत थी, उसको आप दोबारा जीना चाहेंगे, तो मेरे नजदीक वो जरूर मैं फाइंड कर सकता हूँ. बट कोई एक दिन अगर स्पेसिफिक कहें तो देयर आर लॉट ऑफ डेज, यानी कि एक दिन पे आप इंतजार नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, ये कहूंगा कि हाँ, एक टाइम फ्रेम अगर आप कहें ना, तो एक टाइम फ्रेम जरूर हो जाएगा जिसको आप जीना चाहेंगे. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार स्कूल का जमाना, कुछ को यूनिवर्सिटी का टाइम याद आता है. ठीक है, इस तरह आपका पता नहीं, यानी कि एक टाइम पीरियड होता है, आप कहते हैं यार वो जो टाइम था ना, वो जो जमाना था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, या वो मैं चाहूंगा कि दोबारा वहीं चला जाए. जैसे तो कहते हैं ना कि वो गजल है, बचपन लौटा दो, क्या वो एक जगजीत सिंह की गजल है, अगर वो लौटा दो बचपन का सावन, तो वो दैट्स द थिंग एक्चुअली, कि आप उस वहाँ उस टाइम पीरियड में, उस टाइम फ्रेम में जाना चाहते हैं कि वहाँ सही जिंदगी स्टार्ट हो दोबारा.
0: हाँ, सही सही. तो कौन सा टाइम है आपकी जिंदगी का जो आपको लगता है कि वो दोबारा आना चाहिए?
1: मेरी लाइफ में आई थिंक आफ्टर 15 टू 25 ईयर्स का जो टाइम फ्रेम था ना मेरे पास, तो मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ से अगर दोबारा स्टार्टअप मिले लाइफ का, तो मैं जरूर जाना चाहूंगा.
0: हाँ, अच्छा, उसके पीछे रीजन क्या है, वही वाला वक्त क्यों?
1: अच्छा, उसके पीछे रीजन ये कि एक तो आप उस टाइम मैच्योर होते हैं थोड़ा सा, मैंने मेच्योर मतलब आजकल की मेच्योरिटी तो आफ्टर 30 का आ जाता है ना. लाइक आप वो जो बचपन आपका होता है, उससे आप जवानी के अंदर दाखिल होते हैं. ठीक है, तो बहुत से डिसीजन आप उस टाइम ले सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर. ठीक है, बहुत से चेंजेस आप कर सकते हैं. ठीक है, तो आज आप फील करते हैं कि यार वहां से अगर दोबारा स्टार्ट लिया जाए, तो आप बहुत से डिसीजन चेंज करना चाहेंगे, जिससे आपको लगता है आपकी लाइफ एक डिफरेंट इम्पैक्ट होगा, एक डिफरेंट होते होंगे.
0: सही सही. तो मतलब अपनी अगर आप एजुकेशनल फील्ड के हवाले से देखें, तो वो आप चेंज करना चाहेंगे कि मैं कुछ और ले लेता, कुछ और कर लेता.
1: आप एजुकेशनल फील्ड भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं आप, यानी कि और बहुत कुछ, यानी कि आप डिसीजन ले सकते हैं उस टाइम.
0: सही सही. तो वो वाला टाइम आपको दोबारा चाहिए 15 से 25 साल का, और उसमें बहुत सारे डिसीजन ऐसे होंगे जो कि आप चेंज करेंगे. सही सही, गुड जबरदस्त, ये भी सही. तो चलें जी, गुड जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा कैस आपसे बात करके, और अच्छा लगा आपने कॉल की. पहली दफा कॉल की है, मतलब मेरे ही शो में या फिर किसी भी शो में?
1: मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है.
0: चलें, तो फिर आइंदा ज़रूर कॉल कीजिएगा. फर्स्ट टाइम कर ली है, तो अब तो इंशाल्लाह हो गया, और आपको तो याद भी रखेंगे जैसे आपने कहा आपके नाम से. तो इंशाल्लाह ज़रूर कॉल कीजिएगा. थैंक यू जी, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. रोहित जी, तो हमारे साथ थे हमारे कॉलर कैस, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कराची के ना बड़े लोग आ गए हैं. मतलब आप पहले नहीं कोई सुनने को मिलता था, कि कहते तो थे पाकिस्तान से, लेकिन कराची का कोई शाज़ो नादिर ही होता था, लेकिन अब तो हमारे बहुत सारे कॉलर्स हैं जो कि कराची से हैं. चले जी, इसके साथ ही गाने मैंने आप लोगों के लगा दिए हैं जो अभी तक मुझे कहे हैं आप लोगों ने, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कीजिएगा, रिक्वेस्ट शो नहीं हो रहा. रिक्वेस्ट शो जो होता है वो हमारा फजील करता है शाम को 4 से 5, तो उस वक्त आप कर सकते हैं. सलाम मैम सुरजीत, कैसे हैं सुरजीत? ठीक ठाक हैं आप, और बताएं कैसे हैं. और कहते हैं कि हैप्पी मंडे. अच्छा, ये वाला कल का मैसेज मैंने नहीं पढ़ा था क्या आपका? मैम, मेरी तो एक कामयाबी थी, मैं काफ़ी टाइम पहले दुबई में गया था, और दुबई में बिग ट्रक का लाइसेंस लिया था. अच्छा, ये कल का मैसेज मैं आज पढ़ रही हूँ सुरजीत का. सॉरी सुरजीत, मैंने कल जो है ना, वही मेरा ख्याल है या तो आखिर में आया होगा या क्या चक्कर था, लेकिन ये मिस कर गई थी. चलें जी, तो फिर इसके साथ ही हम बढ़ते हैं, जो म्यूज़िकल रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, तो उसकी तरफ चलते हैं. इन्जॉय करते हैं ये ट्रैक, वापस आते हैं, आपकी कॉल लेंगे. आपने मुझे बताना यह है, अगर आपको मौका मिले जिंदगी का कोई एक दिन दोबारा जीने का, तो वो कौन सा दिन होगा और क्यों होगा, साथ में ये भी बताना.

0: hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: FM 107 par apna business advertise karne ke liye aaj hi raabta karein.
4: Aaj hi raabta karein.
3: Hamari Qatar Media Corporation ki marketing team se. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
5: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.

0: राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मवशान, और समर मॉर्निंग में वक्त हो गया है आपसे शेयर करने के लिए एक और न्यूज़। लेकिन उससे पहले अच्छा चलें, कॉल आ रही है तो कॉल लेते हैं, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ न्यूज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रेडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। जी हेलो, कौन बात कर रहे हैं?
1: आमिन बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी।
0: वालेकुम सलाम। कौन, फिर से नाम बताइएगा।
1: आबिद।
0: आबिद जी, आबिद क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? पहली दफा बात हो रही है मुझसे?
1: हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा बात हो रही है मैडम।
0: हाँ सही सही जी। आबिद तो कहाँ के हैं आप, कहाँ होते हैं, कब से सुन रहे हैं?
1: मैडम मैं रहने वाला इंडिया का हूँ।
0: गुड।
1: हाँ पहली बार कतरा आया हूँ मैडम।
0: अच्छा सही।
1: हाँ पहली बार ही मैंने कल कॉल की थी, लगी नहीं थी मैडम, आज कल करी है। बहुत अच्छा लगा।
0: चले जी, गुड, जबरदस्त भाई। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी भी आपका रेडियो लेकिन ऑन है? हाँ
1: घर जाकर मैडम बंद कर दिया मैंने।
0: बंद कर दिया। अच्छा जी, तो अभी तो अगर आपको जिंदगी में मौका मिलता है कोई दिन दोबारा से जीने का, तो वो कौन सा दिन होगा और क्यों होगा?
1: यस मैडम, बचपन का ही मौका मिला तो बचपन का मौका बहुत अच्छा है।
0: हाँ बचपन अच्छा गुजरा आपका?
1: हाँ जी बहुत अच्छा गुजरा।
0: सबसे अच्छी बात क्या थी बचपन की जो आपको याद आती है अभी?
1: सबसे अच्छी बात यह है मैडम, बहुत अच्छे हैं, जैसे स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल के टाइम में बहुत मौज मस्ती करी।
0: सही।
1: अब मुझे जब से बहुत अच्छा लगा मैडम, मैं तो पहली बार बात कर रहा हूँ, मुझे फोन लेने को कुछ तब भी नहीं मिल पा रहा है।
0: नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, पहली दफा बात कर रहे हैं, लेकिन मसला नहीं है, हो जाता है आराम आराम से, आप मतलब आदि भी हो जाएंगे। अच्छा तो भाई इंडिया में कौन सी जगह से हैं ये बताएं आप?
1: मैं इंडिया में मुजफ्फरनगर यूपी 12।
0: अच्छा अच्छा, वहाँ से ताल्लुक है आपका। सही। अच्छा आपकी जो वो इलाकाई जबान होती है वो कौन सी है, क्योंकि आपका बोलने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे।
1: जी
0: जो आपके यहाँ बोलने वाली जबान है कौन सी जबान बोलते हैं आप लोग?
1: हाँ ये बोलते हैं जैसे अपनी। हाँ भाई क्या हाल है?
0: तो कौन सी जुबान कहलाती है ये?
1: हिंदी भाषा बोलते हैं मैडम।

0: अच्छा अच्छा ठीक है,
1: शुद्ध हिंदी असली वाली,
0: शुद्ध हिंदी
1: गन्ना होता है ना
0: अच्छा अच्छा सही सही, तो ये वाली शुद्ध हिंदी है इसलिए थोड़ी सी जो है ना वो डिफरेंट लग रही है। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आबिद आपसे बात करके, और कुछ कहना चाहेंगे या फिर अभी नहीं आ रहा है समझ में?
1: बस मैंने, मुझे कुछ समझ में नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैंने पहली बार फोन मिला, पहली बार मैं कतर में आया मैडम, दो मुझे 4 महीने हुए हैं।
0: नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आबिद, और बाद में जरूर कॉल कीजिएगा, ठीक है? तो थीक, अच्छा थीक लगेगा। चले दी, थैंक यू आबिद, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी, तो पहली दफ़ा जो है वो आबिद से हमारी बात हुई है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आबिद बहुत खुश थे। और पहली दफ़ा ऐसा होता है वाकई, ये पहली दफ़ा आप बात करो ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, एक्साइटमेंट में सारी बातें बंदा भूल जाता है। खैर जी, एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
2: हेलो
0: हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अभी आपको भी रेडियो ऑफ करना पड़ेगा।
2: ऑफ कर दिया,
0: कर दिया, गुड, जबरदस्त। कौन बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सॉरी,
2: अहमद बोल रहा हूँ।
0: अहमद बात कर रहे हैं जी, अहमद कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के जो टॉपिक है उसके मुताल्लिक यानी मैंने कॉल किया, मैंने कहा चलो अपना भी एक किस्सा शेयर कर देते हैं।
0: हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं।
2: जैसे आपने पूछा कौन सा लम्हा है जो आप दोबारा नहीं गुजारना चाहेंगे, करेक्ट?
0: दिन दिन
2: तो कतर आया था द बिगिनिंग, तो हम लोगों की जो माली हालत थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी ना, तो कर्ज लेकर जब आया यहाँ पर मैंने मम्मी का पूरा गोल्ड मॉर्गेज किया था। और वहाँ पर वो आप कमिटी बोलते हैं, आपको पता है?
0: जी जी बिल्कुल पता है,
2: कमिटी डाली जाती है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल पता है।
2: तो सब लड़कों ने यहाँ पे मिलकर कमेटी डाली ना, तो मेरी कमेटी जो है वो सेकंड निकली, यानी पहला महीना तो गुजर चुका था और सेकंड मेरी ही निकली। तो जितना पैसा भरकर मैंने आया था मम्मी का गोल्ड रखकर, वो पैसा मुझे नहीं यहाँ पर मिल गया उतना ही। मैंने जब मम्मी को रिटर्न भेजा पैसा तो मेरी मम्मी डर गई, बोलती तो कुछ गलत काम है तो नहीं चला दिया, इतने फौरन तो इसको पैसा कैसे भेज दिया। तो वो लम्हा जो था ना, आप यकीन करें वो आज तक भी यानी भूल नहीं पाते, क्योंकि वो कर्ज लेकर आना उस सिचुएशन में दोबारा पैसे इनिशियटली इतने पहुंच जाना,
0: हाँ।
2: वो एक सरप्राइज, एक सडन शॉक था मम्मी के लिए।
0: हाँ, सही।
2: वो आज भी यानी जहन में घूमते रहता, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बहुत यानी बेहतर हालात है, पर उस वक्त सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी। ये मैं आपको 30 years बिफोर की बात बोल रहा हूँ।
0: हाँ सही सही,
2: मुझे कहता था 30 years हो चुके
0: हैं। ग्रेट, अच्छा, लेकिन ये बड़ी बात है कि आपको,
2: बिल्कुल जी, क्या कर
0: दिया? मैं कह रही हूँ बड़ी बात है, वरना लोग जो है ना, जैसे कर्ज जो होता है कोई भी किसी भी तरह का, जैसे आप अपनी वालदा का लेकर आए थे, तो एक होता ना माँ ने गोल्ड बेच के भेजा है तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपका फौरन से माशाल्लाह से अल्लाह ने जो है ना आपकी वालदा को वापस दिलवा दिया।
2: आप यकीन नहीं करेंगे, जिस वक्त वो मेरी कमेटी उठी थी मैं इतना खुश हुआ कि मैं अपने दोस्त लोग के गले लग रहा था 2-3 मिनट तक वही। तो जब मैंने मम्मी को पैसे भेजा और रिटर्न, वो बिल्कुल डर गई।
0: हाँ।
2: वो बोलती तू जरूर कोई गलत काम में चला गया लगता वहाँ पर,
0: हाँ।
2: तो इतने जल्दी इतने पैसे कैसे भेज सकता है। तो मैंने उनको समझाया कि मम्मी मैंने कमेटी डाला था,
0: हाँ।
2: वो कमेटी मेरे नाम की आई है तो इसके लिए मैंने पैसे भेजा, तब जाके उनको सही तसल्ली हुई।
0: सही सही,
2: बहरहाल वो आप यकीन करें मम्मी जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था,
0: मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल अंदाजा हो रहा है।
2: उस वक्त भी नहीं थे तो सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट थी, यानी घर में आप समझ सकते हो।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ बिल्कुल अंदाजा, बिल्कुल। और फिर वाकई मतलब इतनी जल्दी हो जाए,
2: बिल्कुल। और वो अल्लाह की तरफ से पता नहीं एक थी, यानी कि भाई वो मेरी कमेटी उस वक्त उठना था फॉरन, यानी हमें वो रिटर्न करना था, हमने रिटर्न कर दिया और मम्मी ने वो गोल्ड लेकर भी आ गए रिटर्न।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये तो बहुत बड़ी बात है,
2: मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंस रखता है।
0: हाँ,
2: मैं अभी तक भी नहीं भूलता हूँ और शायद कभी भी नहीं बोलूंगा।
0: हाँ सही बात है,
2: उसी वक्त से यानी फिर अल्हम्दुलिल्लाह यानी हम लोगों की सिचुएशन बेटर से बेटर बेटर से बेटर होती गई,
0: अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट ग्रेट,
2: और मैं आपका रेगुलर लिस्नर हूँ, आई वुड से 30 years बिफोर से, 30 years से ही।
0: अच्छा, तो जब से सुनते हैं रेडियो,
2: आई थिंक ये जो जी 1602 पर शायद ये पहले टेलीकास्ट होता था, इफ आई एम नॉट
0: रॉन्ग, शायद उसका तो मुझे अंदाजा नहीं, क्योंकि मुझे 2014 से मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे।
2: और ऐसा था कि हमारे यहाँ तो वो छोटे छोटे पहले रेडियो थे, तो एंटेना जो था ना वो फ्रिक्वेंसी कैच नहीं होती थी क्लियर।
0: अच्छा।
2: तो एंटेना से हम लोग जो ये एल्यूमिनियम का जो हैंगर होता था ना, एल्यूमिनियम के हैंगर पे एक पतला वायर ऐसे उसको टर्न करके वो जिसे

0: टीवी के एंटेना को कैसे रोटेट करते थे उसी तरीके रोटेट करते थे ताकि फ्रिक्वेंसी कैच करे।
1: सही सही।
0: उस वक्त रेडियो ही सबका बहुत बड़ा सहारा था, इंटरनेट नहीं था।
1: हाँ सही सही।
0: रेडियो से ही लोग एक दूसरे से एक काइंड ऑफ जुड़े रहते थे।
1: हाँ सही बिल्कुल ऐसे ही होता है।
0: सबको मारूस थी जैसे अमीन सयानी की हमारे यहाँ होती थी बॉम्बे में।
1: हाँ सही सही। तो गुड जबरदस्त। तो आपने आज मेरी आपसे पहली दफा बात हो रही है अहमद?
0: ऐसे तो मैं पहली बात नहीं हो रही, लेकिन जो टॉपिक से रिलेटेड है उस वजह से ये टॉपिक सब आ गया
1: है। मुझे याद पड़ रहा है, मैं भी यही सोच रही हूँ, मेरी आपसे बात हो चुकी है, मेरा ख्याल पिछले हफ्ते में किसी दिन हुई है ना।
0: श्योर हुई होगी, श्योर। मुझे भी याद नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस जाता रहता हूँ उस वक्त, अगर मुझे मौका मिल गया, क्योंकि कभी कभार कॉल लगती नहीं है, डिपेंड्स अपॉन टॉपिक। अगर टॉपिक ऐसा हो कि मैं हर बंदा अपना अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहे तो फिर वो नहीं मिलता, बिजी मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पर थोड़ी सी गैप मिल गया तो फिर लोगों के कॉल लग जाते हैं।
1: सही सही।
0: अदरवाइज ट्राई कि मैं अपना पर्सपेक्टिव किसी तरीके से रखूं और आपका भी पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करूँ।
1: जबरदस्त
0: मिलते हैं
1: आपका, बड़ा जबरदस्त है आपका, बहुत ही जबरदस्त है। कि मतलब अल्लाह ताला का ये बड़ा ही मतलब जो ना एक अलग सा मामला हुआ आपके साथ, कि बहुत सारे लोग कर्जा लेकर आते हैं किसी सूरत में और वो उतारते उतारते उनको जो ना सालों लग जाते हैं, लेकिन अब फौरन मतलब आपको तो फौरन हो गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप यकीन करें, हम लोगों को एक महीने ड्यूटी पे नहीं जाने बोला था, क्योंकि हम लोग कार्ड वगैरह रेडी हो रहे थे, तो कमेटी तो हमने पहले ही महीने डाल दी थी।
1: सही।
0: जब वो कार्ड आया सेकंड महीने की, जैसी सैलरी आई और मेरी कमेटी उठ गई, आप यकीन करें वो खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
1: बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त।
0: मुझे अच्छा लगा जब आपने पूछा ना क्या कौन सा दिन आप दोबारा जीना चाहेंगे, तो मतलब चलो ये शेयर करते हैं, मुझे भी खुशी होगी इंशाल्लाह।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जबरदस्त, हमें भी बड़ा अच्छा लगा सुन के।
0: बहुत अच्छा
1: जी,
0: अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखिए अल्लाह की तरफ से तो देखिए वो रहता ही है जरिया ना, अल्लाह ने चाहा था कि भाई किसी तरीके से इसका कर्ज निपट जाए, और वो उस पहले महीने में होना है नहीं,
1: बहुत अच्छा लगा जान के, और बहुत अलग सा दिन था आपका ये, तो ये सुन के भी बड़ा अच्छा लगा।
0: बिल्कुल, और थैंक यू, आप डेली कुछ नए टॉपिक ला रहे हैं, मैं डेली आपको सुन रहा हूँ।
1: चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते रहे और जब भी मौका मिले आप जरूर कॉल करें, ठीक है?
0: चलिए,
1: थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। रे जी, तो हमारे साथ अहमद थे, और भाई उनके साथ तो बड़ा ही कोई मतलब जो है ना जबरदस्त किस्म का मामला हुआ, कि पहले ही महीने इनको अपने पूरे पैसे वापस मिल गए और उन्होंने अपनी वालदा को दे दिए, तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो,
1: यस, आप मुझे सुन सकते हैं?
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: मोहम्मद शहजाद बात कर रहा हूँ।
1: जी मोहम्मद शहजाद, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक शहजाद, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसा गुजर रहा है आपका दिन, सुबह का आगाज कैसा हुआ, कब हुआ?
2: सुबह का आगाज हमारा जी होता है 5:45
1: पे। अच्छा, 5:45 का आगाज हुआ, सही।
2: ड्यूटी स्टार्ट होती है ड्राइविंग, पिक एंड ड्रॉप है हमारा, पिक एंड ड्रॉप का।
1: सही। तो नाश्ता वाश्ता हो गया आपका?
2: जी नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, सबसे पहले जी नाश्ता ही करते हैं, फिर ही एनर्जी आती है ना।
1: हाँ। आप शहजाद कहाँ से हैं आप, ये बताएं पहले, कौन से शहर से हैं आप?
2: जी मैं लाहौर पाकिस्तान।
1: लाहौर, सही। इसीलिए क्योंकि नाश्ते पे आपने इतना स्ट्रेस दिया ना, मुझे लगा कि आप लाहौर के होंगे। तो सही है, चले जबरदस्त नाश्ता हो गया आपका, दिन का अच्छा सा खास हो गया। अब ये बताएं शहजाद कि कौन सा दिन ऐसा है जिंदगी का जिसको आप दोबारा से जीना चाहते हैं और क्यों?
2: दोबारा से दिन जीना चाहेंगे जी, मेरे ना पहले बड़े भाई की शादी हुई, ठीक है, माशाल्लाह, उसकी बेटी हुई पहले, फिर मेरी दो सिस्टर की शादी हुई, उनकी बेटियां हुई, मेरे छोटे भाई की शादी हुई मेरे से पहले, उसकी पहली बेटी हुई, और जब मेरी शादी हुई ना, मेरा माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बेटा दिया मुझे। तो वो दिन बहुत खुशी का था मेरे लिए, मैं दोबारा उसे सेलिब्रेट करना चाहूंगा वो दिन को।
1: मतलब जिस दिन आपका बेटा पैदा हुआ,
2: बेटा पैदा हुआ था, बेटी अल्लाह ताला ने दी थी, तो ख्वाहिश थी सारा की भी उनकी भी अपनी, तब उनके माशाल्लाह दो दो तीन तीन बच्चे हो चुके थे जब मेरी शादी हुई है ना।
1: अच्छा अच्छा।
2: लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया था।
1: सही। तो पहला बच्चा मतलब पहला बेटा है, इसलिए बहुत खुशी थी घर पे।
2: जी
1: हाँ ये होता है अक्सर घरों में ना, मतलब अगर लड़की ना हो तो फिर लड़की के होने पे बहुत खुशी होती है, और लड़का ना हो तो लड़के के होने पे बहुत खुशी होती है।

0: जी माशाल्लाह खुशी तो हुई है, बेटियों पर भी खुशी
1: जी जी। लेकिन ये एक अलग चीज़ है ना, मतलब इतने अरसे से है नहीं, फिर वो मतलब जो ना बेटा हो या बेटी हो, जो भी इतने अरसे के बाद जो आता है ना, तो बड़ा मतलब खास होता है वो सब घर वालों के लिए। जबरदस्त। तो ये मतलब दिन आप चाहते हैं दोबारा जीना। अब माशाल्लाह कितने साल का हो गया बेटा आपका?
0: बेटा मेरा 7 साल का हो गया।
1: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट, जबरदस्त। चलें जी, तो बहुत आला, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शहजाद कुछ और कहना चाहेंगे?
0: नहीं जी, दुआएं आप लोगों के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए।
1: चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह दुआओं में भी याद रखें और कॉल भी करते रहा करें। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। राइट जी, तो हमारे साथ थे शहजाद, और इसके साथ ही मैं आपसे खबर शेयर करने वाली थी, तो वो खबर शेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप जिंगल के बाद फिर आपकी कॉल लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, तो कतर में एक्सेसिबिलिटी के हवाले से गुफ्तगू अक्सर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक सर्विस तक महदूद रही है। इंक्लूसिव क्लासरूम से लेकर वर्क प्लेस अकोमोडेशन तक कतर का जो नेशनल विजन है 2030 के मुताबिक एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस को बेहतर बनाने के लिए काम हो रहा है। लेकिन एक्सेसिबिलिटी रिसर्चर और हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी की रीसेंट हैं ओला मुस्तफ़ा, उनका कहना है कि इंक्लूजन का मतलब सिर्फ तालीम, जॉब्स और सर्विसेज तक महदूद नहीं होना चाहिए। मीडिया और एंटरटेनमेंट भी जो पर्सनस हैं जो कि विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। तो इन्होंने अभी ये किया है कि इन्होंने ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन में मास्टर्स डिग्री हासिल की है, और उनकी रिसर्च का जो मरकज़ी मकसद है वो ये है कि टीवी शोज़, गेम्स और मीडिया के दूसरे फॉर्म्स को उन लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी के साथ जी रहे हैं। उनका जो मास्टर थीसिस है उसमें उन्होंने ब्लाइंड जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ मिलकर टॉम एंड जेरी के लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शंस डिज़ाइन किए हैं। इसके अलावा उनका जो स्टार्टअप इनिशिएटिव प्लेएबल भी इसमें मिशन का हिस्सा है। यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिशनल गेम्स को एक्सेसिबल फॉर्मेट में डिज़ाइन किया है, और ये सब इस बात की मिसाल है कि एक्सेसिबिलिटी को मतलब जो है बाद में ऐड करने वाली चीज़ नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन का बुनियादी ये हिस्सा होना चाहिए। तो ये है भाई, मतलब कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि जितने भी लोग हैं जो किसी अगर एबिलिटी का भी शिकार हैं, तो उनके लिए भी हर चीज़ एक्सेसिबल हो और वो इंटरटेनमेंट तक भी उसी तरीके से रसाई हासिल कर सकें जिस तरीके से दूसरे लोग करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे एक म्यूजिकल ट्रैक की तरफ।

0: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।
0: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check. Time Check. राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग। वक्त हुआ है 8:02 और मेरा आपके साथ 9 बजे तक है। अच्छा जी, हमारे साथ आ गए कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू।
1: जी, क्या हाल है? हम हैं आपके साथ FM 107। क्या हाल चाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का सवाल ऑलरेडी पहले आपने एक बार किया था, मेरा हाल है।
1: नहीं, कुछ थोड़ा मिलता जुलता होगा। हाँ, सवाल क्या है कि अगर कोई मतलब दिन ऐसा कोई आपकी जिंदगी में दिन है जिसको दोबारा जीना चाहते हैं और क्यों?
2: अच्छा अच्छा, सिर्फ दिन? हाँ, सिर्फ दिन।
1: हाँ, दिन दिन।
2: वही मेरी वो अपना फैमिली वाले का, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था ना, मतलब हम लोग मेरी फैमिली वगैरह उम्र सब कर लिए थे, हम लोग एक साथ ही ना वहाँ से सऊदी से ना बॉम्बे आए थे, सऊदी आए थे एक ही फ्लाइट में ना ट्रैवलिंग। तो वो अगर एक दिन मुझे ऐसा मिला ना तो वही लेके मैं और कहीं दूसरी जगह मतलब फैमिली के साथ है ना ट्रैवलिंग करने।
1: अच्छा,
2: बाय एयर। हाँ, बाय एयर।
1: सही सही।
2: हाँ, वो एक बार तो वो तो आ गए थे पहले, मैं सऊदीया में था, मैं रिसीव किया था, लेकिन बाद में सारा उम्रा होने के बाद 2 महीने रुके थे, उसके बाद मैं ड्रॉप करने गया था ना साथ में। तो वो हाँ, वो लम्हा वो
1: सब साथ मिलके ट्रैवल करें, मतलब वो वाला आपको दोबारा चाहिए।
2: हाँ हाँ
1: हाँ, सही सही सही। अच्छा, आज पता है क्या मजे की बात हुई? आज मैं सुबह से वो बात करना चाह रही हूँ लेकिन फिर पता नहीं मैं भूल जाती हूँ। आज ये हुआ कि ख्वाब में मैं ये देख रही थी कि मैं गेम खिलवा रही हूँ, मैं गेम वो वाला खिलवा रही हूँ जो आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि वो खिलवाएं, और उसमें मुझे टॉपिक तक याद है सीरियसली। मतलब मेरी बीच में ना एक दफा आँख खुली, या पता नहीं ख्वाब के दौरान ही मैं सोच रही हूँ कि ओके मैं ना याद कर लेती हूँ कि ये क्या है, क्या मैंने खिलवाया है, क्या मैंने बोला है, ताकि मुझे शो के दौरान याद रहे। और मुझे याद है, पता है क्या दिया था टॉपिक उसमें, बात का बतंगड़ में मैंने दिया था कि अगर आपसे कोई उधार ले लेता है तो फिर क्या करना है। मतलब उसके ऊपर पूरी, पता नहीं कोई बंदा था, मुझे याद नहीं कौन कॉलर थे, वो उन्होंने पूरी कोई स्पीच दी है मेरे ख्वाब में उस चीज के ऊपर, और वो सुनते सुनते मेरी आंख खुली है। और मैंने बकायदा ख्वाब में देखा है, और मुझे कुछ याद पड़ रहा है कि जब मेरी आंख खुली ना तो कोई 1:30 बजे के करीब का टाइम था शायद, या पता नहीं खुली थी या फिर मैं ख्वाब में ही सोच रही थी कि मैं ये याद रखूंगी और फिर मैं ये वाला टॉपिक दूंगी। तो एक मुझे याद रही है वो उधार, कि अगर कोई उधार मांग लेता है, और कोई दूसरा भी था पता नहीं वो क्या था, वो मैं भूल गई हूँ।
2: हाँ, उधार था और गाड़ी, मतलब है ना गाड़ी एक्सीडेंट हो गई।
1: हाँ, तो आपका, आप मुझे बोल रहे हैं बार बार, मेरा इरादा नहीं था खिलवाने का, लेकिन आज मैंने ख्वाब में खिलवा लिया ये वाला टॉपिक। ये वाला जो गेम था
2: तो उसमें ना सब लोग मतलब अपना अपना मतलब परफॉर्म करते थे।
1: हाँ,
2: बड़ा अच्छा होता था उसमें, लेकिन टाइम ज्यादा होता था, तो ये तो 30 सेकंड का भी इनफ है एक्चुअली।
1: हाँ, नहीं टाइम हम ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन मसला जो मुझे जो लगता है ना वो यही है कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, सवाल ये है, क्योंकि अभी थोड़ी सी कॉल्स मुझे लगता है कम आती है हमारे पास उस वक्त।
2: लेकिन वो है ना 8:30 पे स्टार्ट हो जाना पड़ेगा जो टाइमिंग्स है ना।
1: हाँ,
2: कि भाई स्टार्ट हो गया 8:30 पे।
1: हाँ,
2: नियर एकदम से न्यूज के करीब पे वो नहीं होगा।
1: हाँ,
2: क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग है ना, हर एक अपने लोग।
1: चलिए फिर आज करके देखते हैं, आज मैंने ख्वाब में तो खिलवा ही दिया है, तो आज करके देखते हैं। ठीक है, मैं कुछ चीजें निकालती हूँ अभी थोड़ी देर में, और उधार वाला तो हो ही गया, उधार वाला जहन में रखे, क्योंकि मैंने ख्वाब में खिलवाया तो बनता ही है। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि कैसे आप लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जो लोग नहीं समझे उनको बता दें कि होता यह है कि जैसे आपसे किसी ने उधार मांग लिया और आपको उधार अपना वापस लेना है, ठीक है, तो बात का बतंगड़ का मतलब यह है कि आपने इस बात को मतलब जरा करनी है पूरी, आपने बताना है क्यों चाहिए उधार वापस। ठीक है, तो ये करना है। ठीक है शहजाद सलीम, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप दोबारा कॉल करेंगे ताकि लोगों के लिए मतलब एक बन जाए ना, रोल मॉडल बन जाए कि इस तरह से करना है। ठीक है,
2: ये खाप ने या ये पुरानी याददाश्त मतलब ताजी कर दी। दिया
1: कि आपका क्रेडिट जाता है। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि खिलवाऊंगी, लेकिन मुझे इतनी हंसी आ रही थी सुबह से उठकर।
2: ये चलेगा और इंशाल्लाह सब यूसुफ भाई है और भी कितने भी लोग हैं, राज साहब है और भाई बहुत से लोग हैं, सबके पास बहुत फन है, बहुत टैलेंट है, सब पेश करेंगे। अच्छा अच्छा मजा आएगा।
1: चलिए गुड, जबरदस्त। तो फिर जरूर आप कॉल कीजिएगा थोड़ी देर के बाद, वेट करती हूँ। ठीक है, चले शहजादा सलीम, थैंक यू जी, थैंक यू। राइट, तो बड़ा ही मतलब मज़े का सीन होता है, आप ख्वाब में कुछ इस तरह की चीज़ देख लेना अनएक्सपेक्टेड, और रात के को 1:30 बजे देखा है मैंने ये, और बकायदा पता नहीं मुझे याद पड़ा, मैंने ख्वाब में ही सोचा था कि इसको याद रख लेती हूँ, ये बात हो रही थी, तो इस पर फिर मैं बात करूँगी कल शो में। जी अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम आयुष्मान, कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक।
3: आज तो आपने मेरे दिल की बात कर दी।
1: कौन सी वाली?
3: रात मैंने भी एक ख्वाब देखा है।
1: अच्छा, आपने क्या ख्वाब देखा है?
3: आपसे जो बातें हुई थी ना कल, मैं ये इमेजिन कर रहा था कि महवेश मैम देखने में कैसी होंगी, गोल सा चेहरा होगा, चश्मा लगा हुआ होगा,
1: चश्मा तो लगा हुआ,
3: वाइट सी गाड़ी होगी छोटी सी, और क्या कहते हैं बर्खे वगैरह में आती होंगी, मैं कुछ ऐसा इमेजिन कर रहा था।
1: अच्छा, ये आपने कैसे इमेजिन किया? कहीं तो देखा होगा मुझे, क्योंकि काफी हद तक तो चीजें सही हैं आपकी।
3: मैंने तो कभी आपको देखे, मैं तो आपसे मिला ही नहीं हूँ। मैं
1: हाय अल्लाह, ये कैसे हो गया? आपको मैं ख्वाब में नजर तो नहीं आई हूँ?
3: पता नहीं मैम, मुझे कुछ इमेजिन कर, मैं आपसे बात कर रहा था ना, तो कुछ मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं वश में।
1: देखिए अब मैं बुरखा भी पहनती हूँ, पहले नहीं पहनती थी, लेकिन अब मैं पहनती हूँ, चश्मा भी लगाती हूँ मैं, और किसी हद तक अब मेरा चेहरा भी गोल मटोल हो चुका है। और गाड़ी का रंग क्या बताया आपने?
3: व्हाइट, मैंने कहा
1: व्हाइट कलर की तो है मेरी गाड़ी। अरे भाई, मतलब क्या हो गया ये, क्या चल गया रहा है ये?
3: पता नहीं मैम, नहीं मैं रात में भी ख्वाब में मैंने कुछ ऐसा देखा, मैंने कहा वो असल में ऐसा होता है ना, जब आप दिन भर जो आप शुरुआत करते हैं, अभी तो मैं सीधा इधर ही आपके पास में ही हूँ, बिल्कुल मस्जिद जो है ना छोटी सी, आपने देखी होगी।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पता है हमारे सामने ही तो है बिल्कुल।
3: अच्छा अच्छा, तो मैं उसमें दिन भर का जो भी होता है ना वो माइंड में चलता रहता है, हमने किससे बात की, कैसे करा, क्या नहीं करा, लेकिन मैं ये सोच रहा था रात में लेटा हुआ कि यार बात हुई महवेश मैम से तो देखने में कैसी होगी, तो मैं कसम से वो रात वो ख्वाब भी आया कि यार वो देखने में ऐसा लगता है कि गोल मटोल सा चेहरा होगा, चश्मा भी शायद लगाती होंगी, बुरखा भी पहनती होंगी, या फिर व्हाइट गाड़ी भी होगी छोटी सी, ये मैं अपना इमेजिन कर रहा हूँ, ना तो मैं कभी आपसे मिला हूँ ना आपने मुझे
1: देखा। लोग सोच रहे होंगे ये कहीं तो देखा है, ऐसे तो नहीं बोल रहे।
3: नहीं मैम, अच्छा आप खुद बताइए, आपने मुझे कभी देखा?
1: नहीं मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो नहीं
3: पता। मैंने आपको कभी देखा?
1: मुझे क्या पता।
3: तो मैम अच्छा ठीक है, अगर मैंने देख भी लिया, मान लीजिए देख भी लिया, तो मुझे आपका नाम क्या मालूम कि आप ही महवेश मैम?
1: हाँ ये बात तो वैलिड है, ये बात तो सही है। लेकिन बड़ा आपको ख्वाब में सही दिखाई दिया है, इसमें मुझे हंसी आ रही है ना, तो ये मतलब ख्वाब कुछ हमारे मतलब रियल हो रहे हैं, ये इसका मतलब है। जी तो नदीम भाई, ये बताएं भाई कि क्या है आज सिलसिला, और ये बताएं कौन सा मतलब दिन है आपकी जिंदगी का जिसको आप चाहते हैं दोबारा आ जाए आपकी जिंदगी में, और क्यों?
3: मैं मैम आपको ना एक वीडियो भेजूंगा, लेकिन आप वो प्लीज देखने के बाद।
1: पता है क्या, पता है सिलसिला क्या है कि हमारी ना चार्जिंग नहीं हो रही है मोबाइल की, और ये वो हाँ ये बड़ा मसला बना हुआ है कल से, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ज्यादातर लोग कॉल करें मोबाइल, मतलब जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं मिल नहीं रहे।
3: आप अपना मोबाइल दे दीजिए, मैं बैटरी चेंज करवा दूंगा।
1: ये मेरा नहीं है ना, ये यहाँ स्टूडियो का है।
3: अरे तो स्टूडियो वाला आपको नया मोबाइल नहीं देते?
1: नहीं नहीं अभी पता नहीं क्या मसला चल रहा है।
3: माशाल्लाह वैसे तो बहुत से मैम ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि आदमी नहीं भूलना चाहता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अभी माशाल्लाह मैं गया था इंडिया छुट्टी पर, तो वहाँ पर हमारे भतीजे साहब ने भी माशाल्लाह कुरान हिफ्ज किया है, तो दस्तारबंदी होती है आपको मालूम है, तो वहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था हम लोगों ने कि वो जैसे शादी से पहले गुलगुले वगैरह बनते हैं ना,
1: और सब अच्छा बनते हैं आप लोगों के अभी भी बनते हैं?
3: अरे बिल्कुल, जब भी तो मैं आपसे कह रहा हूँ मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। माशाल्लाह मेरी मम्मी है, मैं हूँ, सारे लोग बहने वगैरह सब आई हुई है, खालाजाद बहने यानी सारे यानी खानदान के लोग आई हुई और हम लोग गुलगुले वगैरह बना रहे हैं, यानी कि वो कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि आदमी नहीं भूलना चाहता है।
1: सही। अच्छा, इससे ना मुझे अपनी फूफो के घर की शादी याद आ गई। तो जब हम उनके घर बहुत छोटी होती थी, मुझे मतलब याद है कुछ ऐसे 5-6 साल की होंगी, तो उस वक्त हमारी नई नई फूफो की जो बेटियां थी ना, मतलब उनकी शादियां होना शुरू हो गई थी, बड़ी वाली जो कजन्स हैं, तो उनके घर पे बनते थे गुलगुले, रात जगा होता था, पूरी रात जाग रहे हैं सब लोग। सही सही, गुड, जबरदस्त।
3: हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई छोटा मोटा भी प्रोग्राम होता है ना, तो हम लोग ये चाहते हैं सारे मेहमान आ जाएंगे, गुलगुले वगैरह बना लेंगे, या फिर भी कुछ भी खाने वाने का प्रोग्राम तो होता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं कि लाइफ थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो जाता है बस यही। तो वो दस्तारबंदी का एक मोमेंट जो है वो अलग है, यानी ये बच्चे ने कुरान हिफ्ज किया है तो क्या कहते हैं उसकी दस्तारबंदी, दूसरे दिन है माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि यार सब लोग आ जाएंगे, उससे एक दिन पहले ये सारा प्रोग्राम हुआ, तो उसमें मुझे गुलगुले बनाने बहुत अच्छे आते हैं।
1: अच्छा, कैसे बनाते हैं आप गुलगुले?
3: यानी कि वो जो उसे आटा वगैरह जो गुनता है ना, उसमें उसका चीनी का पानी, चीनी वगैरह मिलाने के बाद उसका आटा गूना जाता है, लेकिन उसका आटा जो है वो सबसे मेहनती काम है कि उसको गूनना, उसको आपने गून लिया ये समझ लीजिए गुलगुले आपसे जबरदस्त बनेंगे।
1: जबरदस्त भाई, जबरदस्त, ग्रेट, बहुत आला। तो ये जो है आपने बचपन ही मेरी यादें ताजा कर दी है इस वक्त, तो आपका अरमान ये है कि वो दिन मिल जाए जब आप गुलगुले बना सके।
3: नहीं इंशाल्लाह, मैं सोचता हूँ, मैं अभी माशाल्लाह मैंने अपने बेटी की अभी दस्तारबंदी नहीं करी क्योंकि उन्होंने खत्म किया था कुरान शरीफ, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा प्रोग्राम कर लिया था, लेकिन इंशाल्लाह मेरी वाइफ भी बोलती है कि बेटे का प्रोग्राम करेंगे तो सारे खानदान के लोगों को बुलाएंगे खाने के लिए, तो मैं चाहूंगा वही मोमेंट दोबारा हो फिर।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो फिर बिल्कुल आप वो दिन दोबारा जी सकते हैं, गुलगुले बनाने का अरमान अपना फिर पूरा कर सकते हैं।
3: आपको मैं वीडियो जरूर भेजूंगा, अगर आपका कोई अपना पर्सनल नंबर होगा।
1: चल जाता है तो मैं जरूर देखती हूँ। ठीक है,
3: ठीक है मैम,
1: चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: आप माइंड नहीं करिएगा, मैंने जो मेरी दिल की फीलिंग थी वो सिर्फ मैंने आपको बताई है, इमेजिन किया था मैंने कि आप ऐसी होंगी।
1: अरे नहीं, तो मैं मजाक कर, मैं माइंड क्यों करूंगी इस बात पे, इतना मतलब सीरियस होने वाली क्या बात है। मैं तो हंस रही इस बात पे हूँ कि तकरीबन यही वाला हुलिया है मेरा जो आपने मुझे जो है ना इमेजिन किया है। तो कोई मसला नहीं, थैंक यू जी, थैंक यू नदीम भाई, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू जी। राइट जी, तो हमारे साथ नदीम भाई, और देखिए भाई आज ये ख्वाबों का क्या सिलसिला चल रहा है, मुझे तो हैरत हो रही है इस बात पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं?
4: जी मेरा नाम अहमद है।
1: अहमद है, अच्छा दूसरे वाले अहमद,
4: दूसरे वाले बोल रहे हैं ना जाने।
1: जी जी
4: जी, नहीं नहीं, आपका मौजू एक तो मतलब काफी यादगार है, लेकिन उसमें एक अलग पर्सपेक्टिव से मैं शेयर करना चाहूंगा। पहले हमारे अभी साथी जो एक बात कह रहे थे कि उन्होंने जो इमेजिन किया है उस तरह से, तो मुझे ऐसा लगता है मतलब उर्दू रेडियो में मैं भी काफी समय से सुन रहा हूँ, बचपन से सुन रहा हूँ, तो पहले ये तो जब AM पे आता था 1600 पे आता था 1600।
1: अच्छा अच्छा, सही।
4: उस वक्त 3 hours की हुई हुआ करती थी, तो उस वक्त से मेरा ख्याल है एक अभी भी है आपकी सीनियर के लिए डॉक्टर फौजिया शफी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
4: फौजिया आंटी कहा करते थे।
1: अच्छा,
4: तो उन्हें हमने देखा था एक आध बार, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी शक्ल उनसे मिलती जुलती होगी।
1: नहीं, डिफरेंट है।
4: डिफरेंट है तो अच्छी बात है माशाल्लाह, लेकिन मैं आपको एक अंदाजा ऐसा लगा रहा हूँ कि उनकी एक पिक्चर है वीडियो जो कि मैं इस तरह से जो जैसी उनकी पिक्चर थी मेरे जहन में, तो मैंने ओवरलैप किया क्योंकि उनको हमने देखा था, उनको और इससे पहले एक और आरजे हुआ करते, मतलब बचपने में एक आध बार हमने सबको देखा था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब वो खैर मैं उन जैसा दिखना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर फौजिया माशाल्लाह से बहुत ही ग्रेसफुल खातून है, और वो हमेशा ही मतलब जब से मैंने रेडियो ज्वाइन किया है जिस तरह से मैंने देखा है, तो मैं उनसे पर्सनली बड़ी इम्प्रेस रही हूँ। वो माशाल्लाह जैसे उनका रख रखाव है, जैसे अपने आप को रखती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगा सुन के। हाँ,
4: क्योंकि बचपन में मिला हूँ तो हमने सामने सामने मुलाकात की थी,
1: अच्छा अच्छा,
4: मुझे चेहरा वो इनका याद रहेगा कि बड़ी मेहरबान थी।
1: हाँ बहुत अच्छी हैं डॉक्टर फौजिया माशाल्लाह से, मतलब उनको देख के आपको बहुत अच्छा एहसास होता है, बहुत अच्छा, मतलब जो ना शफीक, उनका फौजिया शफीक नाम है,
5: उनके नाम में ही
1: शफीक है तो है भी शफीक, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है तो। लेकिन हाँ, लेकिन फेस जो है ना उनका मुझे अपनी कजन जैसा लगता है, मैं हमेशा उनको जब देखती हूँ तो मुझे मेरे जहन में अपनी कजन आ रही होती है, तो वो मिलती तो नहीं है मुझसे, लेकिन ये अच्छा मुझे और नाजिया को पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, हम दोनों को लोग मिलाते हैं जबकि हम दोनों को वो भी नहीं लगता, लेकिन लोग बोलते हैं ऐसा। अब तो मतलब अब तो हर जगह तस्वीरें हैं तो ये इन लोगों को क्यों नहीं नजर आया,
5: अगर आप फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे तो देखिए।
1: बिल्कुल नदीम भाई, फॉलो नहीं किया हुआ आपने हमें जी भाई, तो अहमद क्या मतलब कौन सा दिन है वो ये बताएं।
5: दिनों में तो लोग अच्छे अच्छे मोमेंट्स याद कर रहे हैं, तो अच्छे मोमेंट्स तो मैं भी याद ही कर रहा हूँ, लेकिन दो या तीन दिन है, मैं एक आध मेंशन भी कर दूंगा जिन मोमेंट्स में वो अच्छे मोमेंट्स है लेकिन उनमें कुछ गलतियां हुई, तो मैं वो दोबारा जीना चाहता हूँ कि वो गलतियां मैं ना करूँ फिर अब उस मोमेंट पे।
1: अच्छा सही,
5: एक ऐसी चीज है तो मेरा ख्याल एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तो शायद ज्यादा बेहतर समझ
1: आएगी।
5: एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ हज के दिन में, जब मैंने हज अदा किया था अपने वालदा के साथ, तो वो एक बहुत नेक दिन है, यकीनन वो दिन दोबारा जीना चाहेंगे, वो सारे दिन दोबारा जीना चाहेंगे, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक मोमेंट था कि अब वो हज में क्या होता है, आपके खेमे वगैरह होते हैं तो कई बार इंतजाम में मुश्किलें आ रही होती हैं, इंतजाम सही से नहीं हो पा रहे होते, तो एक चीज में ऐसे ही मसला आ रहा था बहुत ज्यादा, तो मैं बार बार गुजारिश कर रहा था इंतजामिया वगैरह से कि भाई ये चीजें बेहतर कर दें, कुछ मसाइल आ रहे हैं, वालदा हैं जो है सब लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो बोल रहे थे अच्छा रुको टहला रहे थे, तो एंड में मैंने लेकिन फिर मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ

0: जी राइट, वेलकम बैक। आप सुन रही हैं 107 FM समर मॉर्निंग और मैं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। 8:30 हो गए और अब आप लोगों के पास टाइम है, हम शुरू करके देखते हैं आज अपना ये गेम, क्योंकि मैंने ख्वाब में खेल लिया ना, फिर मुझे लगा कि भाई शहजादा सलीम इतने अरसे से बोल रहे हैं तो कुछ तो है, कुछ तो कनेक्शन है कि रात को मैं ख्वाब में भी देख रही हूँ। तो आज हम बात का बतंगड़ वाला ही जो सीन था वो हम देखते हैं कि लोग कैसा खेलते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे। होना कुछ यूँ है कि मैं आपको एक टॉपिक, जैसे समझो उधार ही है, उसी के ऊपर हम सारी कॉल्स लेंगे, ठीक है। तो किसी को आपने उधार दिया था और वो उधार अब आपने वापस मांगना है, ठीक है, वो पैसे आप वापस मांग रहे हैं और वो उस पे जो बंदा है ना दूसरा वाला जिससे आप पैसे वापस मांग रहे हैं वो करेगा उधम। तो यानी मतलब आप वो नहीं है जिसने उधार दिया था, आप वो हैं जिसने उधार लिया था, ठीक है। तो ये वाला करेक्टर आपने निभाना है और उसके ऊपर आप जितना आर्ग्यू कर सकते हैं, जितना आप मतलब एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, बातें बना सकते हैं, तो वो आपने करना है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके शामिल हों, हौसला कीजिए। ये गेम बड़े मज़े का होता था जब भी शहजादा सलीम को अभी तक याद है, लेकिन वही है कि कॉलर्स का वो होना ना ज़रा थोड़ा सा मतलब इंडल्ज होना वो बड़ा ज़रूरी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, शहजादा सलीम आ गए हैं जी, क्या हाल चाल है फिर दोबारा?
1: वालेकुम सलाम। मैं ये अपना जो आज का जो है प्रोग्राम है ना, और इस ये जो गेम्स के लिए मैं काफी ना एक्साइटमेंट था बहुत पहले से।
0: हाँ, तो और एक तरह से समझे हम कह रहे हैं कौन सा दिन दोबारा जीना चाहोगे, तो आपको ये वाला दिन दोबारा जीना था जो आपको मिल गया। और मेरे ख्वाब में आके बकायदा मुझे कहा गया कि भाई ये खिलवा लो।
1: जी,
0: तो शहजादा सलीम उधार आपने दिया, मतलब आपने नहीं दिया था, सॉरी आपने लिया था, अब वो मुतालबा कर रहा है जिसने दिया था और आपने एक्सक्यूजेस बनाने जितने आप बना सकते हैं।
1: तो मैं उधार लिया था अपने भाई साहब से, भाई साहब का पैसे उधार वापस से लेना चाह रहे हैं।
0: हाँ,
1: यही है ना?
0: हाँ,
1: ऐसे है ना। हाँ, तो भैया जरा आसिफ यहाँ आओ, तो मेरा जो 100 रियाल आपको दिया था ना परसों, तो उसका वापस दे दो। भाई जान, 100 रियाल आपने तो दिए थे, कितना नेक काम किया, इतना बेहतरीन काम किया, अल्लाह आपको इतना अजर दे दे, अल्लाह आपकी कमाई में खैर बरकत अदा फरमाए, और आपने उस टाइम पे मुझे 100 रियाल दिया। पता है भाईजान वो 100 रियाल से मेरा कितना काम हुआ अबे, लेकिन वो 100 रियाल मुझे अभी उधार चाहिए। अरे उधार उधार उधार, ये उधार उधार नहीं होता, ये भाई भाई का रिश्ता है, इसमें ये दरारें पैदा हो सकती है। आपने कभी सोचा नहीं, आपने 100 रियाल मुझे मदद किया, इसका अल्लाह कितना आपको अदर देगा, आपके कमाई में कितनी खैर बरकत आएगी। अरे लेकिन मेरा 100 रुपया, अरे 100 रियाल तुम कहाँ देख रहे हो, 100 रियाल को आप देखो आगे 1,000,000,000,000 देखो, इस 100 में क्या रखा है। अल्लाह आपको तौफीक दे, आपने आज मुझे 100 दिया, कल मुझे जरूरत पड़ेगी, कल आप 200 दोगे, फिर 500 दोगे। अबे 100 तो दे ही नहीं रहा है और 200 और 500 का चूमा लगा रहा है मेरे को, और जा तेरे पास ही रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, दिमाग खराब कर दिया मेरा। और यार लिखता वक्त पे और दिया नहीं अभी तक। अरे भाई साहब सुनिए, आप बैठिए मेरे साथ, मैं चाय भी मंगाता हूँ और नाश्ता भी मंगाता हूँ, बेशक आप मेरे बड़े भाई है, आप बड़ा डील कर रही है, आप ही पैसे पेमेंट करना। अभी और कितना चूना लगाएगा, मुझे ना सौ चाहिए ना कुछ चाहिए, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई साहब ऐसा नहीं करिए, आइए और कल

0: दूर आई है और जब भी आई है तो 2-5 सौ पॉकेट में रख के आई है। आपको तो पता है मेरी क्या हालात है, मैं रोजगार हूँ कभी नहीं हूँ कभी हूँ नहीं हूँ। तो आप मेरे बड़े भाई, बड़ा भाई जो होता है बाप दाखला होता है, यकीन करें, आप यकीन करें आपको अल्लाह, अरे मुझे नहीं चाहिए अल्लाह का हुजूर, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, बोलती चले जाते पैसे उधर वापस।
1: जबरदस्त सलीम, जबरदस्त, आपने दो दो कैरेक्टर निभा लिए, दो कैरेक्टर बना के, मतलब जबरदस्त भाई, अच्छा आपने जन्नत का जो ना बहाना दिया है। चले जी, गुड, जबरदस्त सलीम, गुड ट्राई, वेरी नाइस ट्राई, थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो वाले जी बिल्कुल, अल्लाह हाफिज। रे जी, तो ये था भाई, मतलब इस तरह का सीन है, आप भी इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हमें पता चल जाएगा कि कितने कलाकार हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कि मतलब कहानी को ड्रैग कर सकते हैं। अब इन्होंने जैसे भाई के साथ बना लिया था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी करेक्टर बना ले और आप शामिल होना चाहें तो ज़रूर 4434377 पे कॉल कीजिए और बताइए कि आप खेलना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं कुछ मैसेजेस अगर मेरे पास हैं तो वो भी मैं शामिल करती हूँ, लेकिन कॉल आ गई पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, कहाँ आप इतनी जुठाई बुलाने पे लगे हो भैया, शहजादा सलीम ने फंसा दिया कि सारी जुठाई की वो इतने सारे लोग को लाके जमा करके फिर उसी के ऊपर मुंह पे मारते हैं। अरे बात करेंगे सलाम दुआ के बाद, यार कई धंधा बिजनेस भाई, यार बिल्कुल एकदम यार, आजकल इतना खस्ता हाल है कि बस अल्लाह माफ करे यार, बस कैसे कैसे करके बस सारी परेशानियां मतलब दिखाना शुरू हो गई यार। आजकल फला जगह उसको ये किया, वहाँ पे काम किया यार, वहाँ से पैसा नहीं मिला, इतना दिन काम करके उसके बाद में भी वो भी हमारे साथ में फ्रॉड करके ये पैसा नहीं मिला। अभी हमारे ऊपर ये फला रूम में थे यार, उसका रेंट भी अभी नहीं दे पाया यार, खाने का भी था अभी, वो भी समझ लो कि वो भी अभी बाकी है, उसका मेस का भी अभी सैलरी आएगा भी, जो भी सब ले दे के घुमा के अभी घर पे भी ये उनको देना है, उनको देना है, घर पे भी फोन आया था फला बीमार है उनके लिए ये करना है भाई, सारी मजबूरियां बता के उसके बाद में सामने वाला इसे मजबूर हो जाता कि यार ले ले मेरे से 100 रियाल 200 रियाल और ले ले घर पे भेज दे, कम से कम घर का तो प्रॉब्लम हल कर दे, कम से कम यहाँ पे हल है।
1: तो कभी मतलब अगर आपने आपने अच्छा खासा वैसे परफॉर्म कर दिया, लेकिन थोड़ा सा इसको और बढ़ा दे तो आप भी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, क्या मतलब क्या होगा, क्या क्या बहाने और बना सकते हैं आप पैसे ना देने के।
2: बिल्कुल सारी मजबूरियां बता के भाई यार घर पे यार वो फला ये चल रहा है यार, मसला चल रहा है घर पे भी, अभी वो उसको ये किए थे फोन, बच्चा का भी स्कूल का यार फीस जमा करने का यार, वो लोग भी स्कूल वाले भी अभी इतना फ्रॉड कर रहे हैं, अभी देखो इस साल फीस बढ़ा दिए, देखो ट्रांसपोर्ट का भी रेट बढ़ा दिया उन लोगों ने यार, अभी देने के लिए ऐसे पढ़ाना मुश्किल हो रहा है सामने, फिर ट्रांसपोर्ट का भी इतना बढ़ा के अभी साल का इतना हो रहा है यार, अभी पहले 20,00,000 20,000 30,000 था, अभी वो उन लोगों ने सीधा 35,000 40,000 कर दिया, अभी हमारी कमाई तो यार इतना इधर से तुमको पता है कि इतने 1,000 में हमको इसी में खाना है उसी में बचाना है फिर घर पे भी भेजना है सारे लोगों को यार मैनेज करके, अपने को सारी फैमिली यहाँ पे भी दुख तकलीफ इतना उठा के कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो रहा है सारा मसला, यही सब है बस इसे बता दो लपेट दे सामने वाला खुद
1: बेचारा वाकई पैसे दे के नहीं जाएगा आपको।
2: बोलेगा कि यार ऐसे ले ले 500 रियाल ले ले और मेरे से घर पे भेज दे, कम से कम बच्चों का स्कूल यहाँ जारी रहे, बंद मत करी स्कूल घर का।
1: जबरदस्त, बहुत आला बहुत आला, कमाल।
2: मूवी का देख लो ना, वो बोलता है वो किश्ती आने वाली है उसमें देख इतना 1,000 का मेरी मछली आ रही है, तेरा बाकी कितना है, इतना इतना बाकी है, फिर मेरा इतना मान लो 1.5 लाख का आया, तेरा बाकी कितना है 50,000, अभी अभी 1 लाख का मछली आ रहा है, अभी 50,000 तेरे को मान लो मैं इतना कमाया ये करके इतना दे के मेरे मैं तेरे को दिया इतना, अभी तू मेरे को वापस कभी दे रहा है इतना
1: आपने पूरा हिसाब किताब याद रखा हुआ है, आपने पूरा पकड़ा देना है। चलें जी, गुड, जबरदस्त रईस, बहुत आला बहुत आला बहुत आला जी, आपके लिए भी क्लैपिंग, बहुत आला जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रई जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर्स आ रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे और आप ये साबित कर सकते हैं कि अगर आपसे कोई उधार लेने आया वापस अपना तो आप तो नहीं देने वाले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी
3: गेम बहुत जबरदस्त है, मैं बोला नूर मोहम्मद, मैंने आप उधार लिया है आपसे, ठीक है।
1: अच्छा, मुझसे ही लिया है। दे भाई मुझे पैसे वापस करें मेरे, कब वापस करेंगे आप पैसे, इतने अरसे से मैंने आपको दिया हुआ है, जब भी मैं मांगने आती हूँ आप कुछ ना कुछ कहते हैं, आज क्या बहाना है आपके पास
3: भाई जी, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा घर पे अभी बहुत मजबूरी हो रहा है, मुझे पता है कि आपका पैसा मेरा पास है सौ रियाल, पर आप मेरा मजबूरी

0: ये नहीं समझोगे दोस्त हो के तो मेरा मजबूरी कौन समझेगा। अगर आप 100 रुपए की बात है तो इसलिए कोई बात नहीं, पर मैं कोशिश करता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए आपके लिए, तो मैं क्या बताऊँ। इस पर एक शायरी मुझे याद आ रही है आपके ऊपर कि समुंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, अगर मजाक ना हो तो ये दोस्ती किस काम की। मैं सारी खुशियाँ लुटा दूँ इस दोस्त के लिए, अगर ये दोस्त ना हो तो ये उधार किस काम की।
1: सही है जी।
0: नहीं
1: तो आपने डायरेक्टली रोना धोना डालना अपना।
0: अरे अगला का महसूस होना चाहिए ना कि सही में
1: बहुत बहुत दुखी बंदा है। चले गुड, जबरदस्त बनाओ मोहम्मद नूर मोहम्मद मंसूर साहब, बहुत आला बहुत आला। थैंक यू जी, थैंक यू आपकी कॉल के लिए। रही जी, तो भाई इन्होंने तो फौरन ही रोना धोना डाल देना है अपना, इन्होंने अपने सारे गम बताने हैं कि भाई ये मुश्किलात हैं, अब भी तुम मुझसे मांग रहे हो। तो खैर ये सिलसिला है, आप भी कॉल कर सकते हैं और देखते हैं कि मेरे पास मैसेजेस, अब इत्तफाक है भाई ये चल रहा है तो मैसेजेस पढ़ ही देते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जसविंदर सिंह काला कहते हैं गुड मॉर्निंग, और इसके साथ ही गुड मॉर्निंग मैडम जी। और अपनी मतलब जो है मंगेतर के साथ जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी ना, तो वो पल मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, बहुत ही खूबसूरत पल था वो। अभी तो मैं परदेश में हूँ। अच्छा जी, और ये कौन है? ये है एहसान। ओके, अच्छा मुझे भी वैसे ऐसे लगता है कि जब पहली पहली दफ़ा मुलाकात हुई होगी ना, वो फिर एक अलग ही मतलब सिनेरियो होता है। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैंने आपका क्या मालूम नहीं है, मैं बड़ा कम चलाता हूँ, अच्छा इंस्टा बड़ा कम चलाता हूँ, ओके, और थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया, लेकिन आपके अकाउंट के बारे में मालूम है। दूसरी बात है, मैं आपको वाकई में नहीं देखा है, सिर्फ देखा है एक बार कबीर भाई को, अमिता मैम को। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं भाई मैं आपके ऊपर शक ही नहीं कर रही, मैंने कब बोला आपसे कुछ। अच्छा जी, सईद खादिम हुसैन है और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, गुड मॉर्निंग, ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब, आपको भी आदाब। और माही मैम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आप कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे। ये है राजू मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ राजू, आप बताएं कैसे हैं। और थैंक्स अ लॉट फॉर सॉन्ग, और मैंने ये सॉन्ग अपनी वाइफ को डेडिकेट किया था, क्या बात है, तुम मुझे कबूल, क्या बात है। अफरोजान चकवा कहते हैं कि माही मैम आपने अपने आप को काफ़ी बदल लिया है और माइंड नहीं करती अब आप। ओके ये तो है, ये बात सही है बिल्कुल, ये मैं पहले मैं काफ़ी छोटी छोटी बातें माइंड कर जाती थी। और नाइस सॉन्ग, ओके जी गुड, ज़बरदस्त, गुड मॉर्निंग माही जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राज का मैसेज है, राज आप भी तो ज़रा ट्राई करके देखें ना कैसा आप मतलब उधार किस तरह से आप जो है ना एक्सक्यूज़ बनाएंगे, मैं देखना चाहती हूँ। गुड गुड परफॉर्मेंस शहजादा सलीम, ज़बरदस्त क्या बात है। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, और आपकी दुआ जो है आपकी तकदीर बदल सकती है, ये कहना है किसी का नाम ये लिखते नहीं है। चले दी, तो इसके साथ ही हम करते हैं ऐसा कि एक सॉन्ग प्ले करते हैं, सॉन्ग प्ले करके वापस आते हैं। जितने कॉलर्स आएंगे इतना मज़ा आएगा, आहिस्ता नहीं आ गए कॉलर, चलो आ गए तो हम ले ही लेते हैं फिर कॉलर को। हेलो अस्सलाम वालेकुम, रेडियो ऑफ प्लीज जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी नसीम भाई क्या हाल है आपके?
2: बेटा बेटा बेटा किधर है, पानी ना दो खाना को,
1: डायरेक्ट शुरू हो गए जी।
2: अब वो पानी नहीं है क्यों बेटा, और पानी कली से नहीं आ रहा ना, वो पैसा देखिए मेरे पास पैसा नहीं है, पानी भी नहीं है, घर में बिजली भी कटी हुई है,
1: सही
2: पैसे राशन है भाई, थोड़ा चाय बना दो। अब वो दूध भी नहीं है, चीनी भी नहीं, देखिए आप तो आए, मुश्किल नहीं है, मैं पैसा मैं आपको बहुत दे देता, लेकिन राशन नहीं है, बिल नहीं है, बच्चे की फीस दे रहे हैं, कई दिन से पढ़ने ही नहीं जा रहा है, ऐसा कीजिए आप एक रियल अब आप ही दे दीजिए, जो मेहरबानी होगी मैं आपको दोनों पैसा मिला के दे दूंगा प्लीज।
1: अच्छा रियल दे में। अच्छा जी भाई माफ़ किया मैंने, आपके तो बहुत ही बुरे हालात हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, और मुझे देना ही नहीं है, अपने पास ही रखो ठीक है। बहुत शुक्रिया नजीम, ज़बरदस्त भाई। अच्छा अब ये जो है ना सिलसिला, आप मुझे एक दो लोग प्लीज़ कॉल कर लें और मुझे ये बताएं कि किसकी सबसे अच्छी अभी तक की परफॉर्मेंस लगी, क्योंकि बिल्कुल आखिर तक का टाइम। नसीम गुड, ज़बरदस्त, बहुत आला, थैंक यू जी जी। तो अब देख लेते हैं, हम पूछ लेते हैं क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम होता है, न्यूज़ का वक्त होता है ना, तो फिर हमें आगे जो है वो गाना भी चलाना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम,

0: स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: एफएम 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद फुरकान शाहिद।
2: वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-खारजा ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत मुज़ाकराती अमल की अहम बुनियाद है, जो जंग के खात्मे, जौहरी और इलाकाई मसाइल के हल और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए रास्ता हमवार करती है। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-खारजा और अमरीकी आला हुकाम ने लुबनान के सदर से टेलीफोनिक रबते में जंगबंदी के नफाज, इलाकाई अमन इस्तेहकाम और कतर की सालिसी और सिफारती कोशिशों के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया। स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात कतर और पाकिस्तान की सालिसी में मुस्बत पेशरफ्त के साथ मुकम्मल हुए, जिनमें फ़नी बातचीत के तसलसल, मुनजमद असासों की मुमकिन बहाली और खत्े खसूसन लुबनान में जंग मंदी और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक इकदाम पर पेशरफ्त सामने आई है। बरजान गैस प्लांट में पेश आने वाले हादसे को हादसाती करार देते हुए 13 अफराद की हलाकत और 66 जख्मियों की तस्दीक की गई, जबकि कतर एनर्जी ने तहकीकात के आगाज़, पैदावार के मामूल के मुताबिक जारी रहने और मुतअद्दिद अरब ममालिक की जानिब से कतर के साथ इजहार यकजहती की तस्दीक की है। इसी के साथ साथ उर्दू रेडियो कतर एफ एम 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उर्दू कतर रेडियो की स्टूडियो से तकनीकी मुआविन सारा, सोशल मीडिया से युसरा और न्यूज़ रूम से मोहम्मद अमीन और मुझे फुरकान शाहिद को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। मैं आज कतर के एक अहम खिलाड़ी के बारे में जिक्र करूंगा, जिनका नाम है अमरो अल हमाद। दोस्तों, अमरो अल हमाद पहले तो कतरी बाइकर थे, यानी बाइक रेसिंग में हिस्सा लेते थे। आज कतर मोटर स्पोर्ट्स के एक टॉप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। या दोस्तों, अमरान हमाद कतर के मोटर स्पोर्ट्स के सबसे नुमाया नामों में से एक हैं और उन्होंने मुल्क में मोटर रेसिंग की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। उनका नाम खास तौर पर कतर मोटर एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन यानी QMMF के साथ जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने कई सालों तक लीडरशिप के फराइज अंजाम दिए। उनकी कोशिशों की वजह से कतर ने मोटर स्पोर्ट की दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाई और कई बैनुल अक्वामी इवेंट्स की मेज़बानी की। अमरो ने सिर्फ इंतजामी सतह पर ही काम नहीं किया, बल्कि मोटर स्पोर्ट को आवाम तक पहुंचाने और नए टैलेंट को मौके फराहम करने में भी अहम किरदार निभाया। उनकी क़यादत में कतर ने मोटो जीपी और वर्ल्ड सुपर बाइक चैम्पियनशिप जैसे बड़े पैमाने के इवेंट्स की मेज़बानी की, जिसमें मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ। लोसेल इंटरनेशनल सर्किट को दुनिया के बेहतरीन रेसिंग वेन्यूज में शुमार किया जाता है और इस कामयाबी के पीछे अमरो अल हमाद की मेहनत भी शामिल है। उनका नजरिया हमेशा ये रहा है कि कतर को मोटर स्पोर्ट का रीजनल हब बनाया जाए, इसीलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ डेवलपमेंट और इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर खास तवज्जो दी। दोस्तों, आज अमरो अल हमाद को कतर के मोटर स्पोर्ट के तरक्की पसंद रहनुमाओं में शुमार किया जाता है, जिन्होंने इस खेल को नए बुलंदी तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमरास ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बाइस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि एक खूबसूरत मुस्कुराहट ना सिर्फ हमारी शख्सियत को निखारती है बल्कि अच्छी मजमूई सेहत की भी अलामत होती है। तो आइए जानते हैं कि दांतों की जो सेहत है वो कितनी ज़रूरी है और इस तरह से दांतों की सफाई और कैविटीज और बाकायदा जो डेंटल चेकअप है वो क्यों ज़रूरी है। दांत हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं, जो कि खाना चबाने, साफ बोलने और चेहरे की खूबसूरती बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर दांतों की मुनासिब देखभाल ना की जाए तो मुख्तलिफ मसाइल सामने आते हैं, जैसे कि दांतों में दर्द, गम्स की सूजन, सांस में बदबू और फिर दांतों का खराब हो जाना। ओरल हाइजीन यानी मुंह और दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम 2 मरतबा फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से आप दांत ब्रश कीजिए। ब्रश

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: टेक इनोवेशन शो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो मेरी तरह हैं। गैजेट को देखते ही हमें कुछ हो जाता है। मैं बता रहा हूं, ये ऐसा खर्चा है कि कंपनीज ने डिसाइड किया है कि हम आप पे बिल्कुल रहम नहीं खाएंगे। आगे आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे गैजेट्स आने वाले हैं ना भाई साहब, कुछ तो मैं आपको बता दूंगा जो आ चुके हैं और आप बोलेंगे भाई ये तो खर्चा करना पड़ेगा। खैर अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, वेलकम टू टेक इनोवेशन, वो दुनिया जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है, जहां पर गेमिंग की बात होती है, जहां पर गैजेट्स आते हैं, जहां पर एप्स आती हैं। पिछले हफ्ते लोगों ने बोला भाई एंड्रॉयड को ही सब देते रहोगे, हम iOS वाले को तो भला करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो हमारा फॉरन बड़ा सिंपल है, पहले एप्स आएंगी, देन गैजेट्स, देन इन टेक न्यूज। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ऐप से, एप्स दिस वीक,
1: ट्रेंडिंग एप्स।
0: देखो ये जितनी भी एप्स हैं ये बिल्कुल भी रैंक्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1-2-3 बता रहा हूँ तो ऐप नंबर 1, तो ओहो इससे बढ़िया तो कोई ऐप ही नहीं है, नहीं रैंक्ड नहीं है, बट मैं इन ऑर्डर बता रहा हूँ विदाउट रैंकिंग। तो नंबर 1 जो ऐप है ऑन द लिस्ट टुडे इज अ वेरी सिंपल ऐप और ये एप्पल की ही है, ये iOS ही दे रहा है लेकिन लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। ये ऐप जो है इसका नाम है फाइनल कट कैमरा, एक है फाइनल कट प्रो एज वी ऑल नो, एक है फाइनल कट कैमरा। अब अगर आपने ये ऐप कभी डाउनलोड करी है इससे पहले, मेरे बताने से पहले, तो आप शायद जानते होंगे कुछ ना कुछ इसमें होता रहता है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो भाई साहब एक नंबर ऐप है। आप अपने वीडियोस पे पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, एडिट करना बेहद आसान है, प्रोफेशनली यू कैन एडिट योर वीडियोस, एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसमें जब आप फाइल सेव करते हैं तो वो ऐप के अंदर सेव होती है, ना कि आपकी फोन की गैलरी। That makes a lot of sense because जब कोई ऐप चीजें सेव करती है और आपकी गैलरी को भर देती है तो आपकी गैलरी में आप डिलीट कर करके थक जाएंगे या आप भूल जाएंगे, फोन आपको बोलेगा स्टोरेज फुल है मालिक, आगे नहीं चल सकता मैं। बट इन दिस केस ऑफकोर्स आपका फोन हो सकता है कि स्टोरेज तब भी भरे क्योंकि ऐप भी हैवी होती है, बट देन अगेन एवरीथिंग इज ईजी टू डिलीट, ऑमिट, एडिट इन साइड द ऐप इटसेल्फ। तो ये जो ऐप है ये आपको पूरा कंट्रोल देती है आपकी फोटोग्राफी के लिए और स्पेसिफिकली आपकी वीडियोस के लिए, एडिट करने के लिए, शूट करने के लिए। एक इसका ड्रॉबैक है मैक्रो शॉट्स नहीं ले पाता है, विच इज ओके, अगर आपको मैक्रो शॉट लेना तो आप एनीवे अपने फोन के जो जनरल ऐप है उससे ले सकते हैं, मगर आपको थोड़ा सा इन्हांस करना है iOS, थोड़ा बढ़ाना है, घटाना है, शेडोज पे आपको बहुत टेंशन होती है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, दिस इज समथिंग टू डाउनलोड टू एंड ऑल्सो टू लर्न। इस ऐप के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज फाइनल कट कैमरा, अगेन इट इज बाय एप्पल ऑन द iOS। हम पढ़ते हैं आगे, अगली ऐप अगेन फ्रॉम iOS और ये मेरी फेवरेट ऐप है बिकॉज आई यूज इट ऑन डेली बेसिस। इसका नाम है डैज कैमरा, DAZCAMERA, डैज कैमरा। अब ये क्या करता है, ये आपको बहुत बेहतरीन फिल्टर्स देता है। देखो आप कहेंगे फिल्टर्स का जमाना भाई सब चला गया, आप कौन यूज करता है फिल्टर, आई कैन यूज एन AI, सिंपल। बट देन आपको AI के लिए प्रॉम्प्ट श्रॉम्प्ट देते रहो, उसमें AI के लिए आप भरेंगे, मगर जो एक सीमिंगली एक इजी नॉस्टैल्जिक आपको जो पिक मिलेगी एडिट होगी तो सामने आएगी, वो इस ऐप से बहुत बढ़िया आती है। आई हैव टेस्टेड टू मोर AIs अगेंस्ट दिस ऐप और सच बता रहा हूँ ये AI एक्चुअली में इसके आगे थोड़े फीके पड़ जाते हैं बिकॉज दिस डज अ ग्रेट जॉब विदाउट चेंजिंग और altering anything in your photo. तो इसका नाम है डैज कैमरा, आप nostalgic filters लगा सकते हैं, वो early 2000s वाले क्या क्या कैमरा के वो आते थे फिल्टर्स यार उस जमाने में, मतलब ऑटोमेटिकली कैमरा वैसे ही फोटो खींचता था। आई नो उस टाइम पे हमें लगता था ओहो काश और ज्यादा क्लीन अप हो सकता, लेकिन अभी फोटोज इतने ज्यादा क्लीन आने लगे हैं कि उनका वो जो nostalgic फील है, वो जो थोड़ा सा रेट्रो फील है, वो चला गया है। आई एम फीलिंग टू ओल्ड राइट नाउ, मैं अर्ली 2000s को रेट्रो कह रहा हूँ, क्या ज़माना आ गया। बट एनीवे डाउनलोड दिस ऐप फॉर योर ओन गुड, ऐप का नाम है डैज कैमरा, DAZCAMERA। ऑलराइट द नेक्स्ट वन, अब नंबर 3 ऑन द लिस्ट, ये बहुत बहुत काम आने वाली ऐप है मेरे फोन में जमानों से और अपडेट हो चुकी है, बहुत ज्यादा अपडेट हुई है, बहुत कमाल की। इसका नाम है डॉक्यूमेंट्स, iOS यूजर्स इसे जरूर डाउनलोड कर, जरूर मैं ये कह रहा हूँ ये हर किसी काम आने वाली है, मतलब इट गोज विदाउट सेइंग ये ऐप आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपके फोन में कभी डिलीट नहीं करेंगे। मैं उसकी वजह देता हूँ आपको, सारी की सारी मेजर ड्राइव्स, चाहे आपके फोटोज आपके डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव पे हों, आई क्लाउड पे हो, किधर भी हो, आई क्लाउड तो आपके फोन के अंदर ही है, कोई सी भी ड्राइव हो, है ना, सारे के सारे पोर्टल, सारी की सारी ऐप एक ही जगह पर इस ऐप के अंदर. यू कैन एक्सेस ऑल योर फोटोज, ऑल योर वीडियोज, वन ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे, कहीं पर भी हो. और ये जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो यू विल फील कि हाँ मैं काफी ऐप जगल कर रहा था. क्योंकि क्या होता है जब आपको गूगल ड्राइव से फोटोज चेक करने होते हैं, निकालने होते हैं, डाउनलोड करने होते हैं, डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, यू गो एंड डाउनलोड गूगल ड्राइव सेपरेटली एंड देन यू चेक. इसमें सब कुछ है, सब कुछ है. एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत काम की ऐप है. ये आपने एक मरतबा डाउनलोड कर ली, आई डोंट थिंक सो आप इसे डिलीट करने वाले. आई रियली डोंट थिंक सो. सो डॉक्यूमेंट्स इसका नाम है, DOCUMENTS. iOS यूजर्स के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत कमाल की ऐप है. एंड ये भाई साहब आपके फोन के साथ चिपकी रहेगी, ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिए. ये तो हो गई ऐप्स, अब बढ़ते हैं जरा गैजेट्स की तरफ. इन गैजेट्स दिस वीक,
1: कूल गैजेट्स.
0: ऑलराइट, सो गैजेट नंबर वन, मुझे बहुत मजा आया भाई ये गैजेट देख के, मैं सही बता रहा हूँ. सिंपल सटीक काम की चीज, आप इसे गैजेट कह रहे हैं, फर्नीचर के लिए किसी में फर्नीचर मान लीजिए, आपकी मर्जी है. बट लेट मी टेल यू, इसका नाम है डॉक सेफ चेयर. ये एक चेयर है. आप बोलेंगे गैजेट थोड़ी हुआ है तो फर्नीचर बता रहा है. नहीं, ये चेयर है, इसके अंदर स्टोरेज है, ये फायर और वाटर रेजिस्टेंस है, और इसको इजिली इधर से उधर मूव किया जा सकता है. इट इज अमेजिंग. मुझे कभी नहीं लगा था, अगर 2-3 साल पहले भी आप पूछते कि कोई चेयर की तारीफ करेगा, मैं इतनी तारीफ तो नहीं करता, वो भी टैग शो के अंदर. बट डॉक सेफ चेयर सच में बहुत बहुत सही है. इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बड़ी कमाल की है, एंड उसके ओपन करने का तरीका भी अच्छा, और ऊपर से फायर और वाटर रेजिस्टेंस है. यू कैन मूव इट एनी वेयर यू वॉन्ट, टेक इट ऑन अ बीच, नो प्रॉब्लम. और इसके साथ आप घर में रखें, लिविंग रूम में रखें, एंड इवन आप गिफ्ट करें. भाई ये भी गिफ्ट दिए जाते हैं, ऐसी चीज़ें दिया करें, ये बड़ी काम की चीज़ें हैं जो लोगों को पता लगते हैं, भाई ये तो बड़ी काम की चीज़ दे दी इसने. पर लोग ये ऐसी चीज़ें गिफ्ट करते नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट गिफ्टिंग के तौर पे भी ये बड़ी कमाल की चीज़ है. डॉक सेफ चेयर प्लस स्टोरेज, आप देखिएगा अमेजोन पे जाके अवेलेबल है, एंड ऑफर्स में मिल जाएगी आपको. बहुत सही है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो आपके सीधा किचन में जगह बनाएगा. अगली जो ऐप, सॉरी गैजेट है, मैं ऐप्स पे टिका हूँ, गैजेट की तरफ आ चुके हैं हम. अगला गैजेट है, इसका नाम है फेपो फूड वार्मिंग मैट, FEPPO फूड वार्मिंग मैट. सच में मैट ही है, आपको लगेगा कि छोटा सा दस्तरखान है, मगर ये छोटा और कमाल का दस्तरखान जो है आपके खाने को गर्म रखेगा, घंटों तक गर्म रखेगा. ठंडा खाना है तो उसे ठंडा रखेगा, खराब नहीं होने देगा.

इसके अंदर 6 एडजस्टेबल डायल्स के जरिए टेम्परेचर्स हैं, आप उन्हें सेट कर सकते हैं और आप इस पर खाना रख दीजिए भाई, ताज़ा गर्म रहेगा, घंटों तक गर्म रहेगा। ये ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि घरों में होनी चाहिए। ऑफकोर्स बच्चों से थोड़ा दूर रखिएगा इन्हें, बट बहुत बहुत कमाल की चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो खाना रखा रहता है और वो नहीं खाते। मुझे डांट पड़ चुकी है इसलिए मेरी टोन नहीं चल रही। ये घर में रखने वाली चीज है भाई, इसको लाके रखिए, आपके काम आएगी सीरियसली। सो फैपो फूड वार्मिंग मैट जरा से दिखने वाला है, इसमें 6 एडजस्टेबल टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा इवन आपका खाना ठंडा भी है तो उसको ठंडा रखिएगा, टेम्परेचर सेट कर दीजिए बिल्कुल माइनस में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। खाना गर्म रखना है गर्म रखो, कुछ लोगों को ये होता है ना, कह देते हैं बस मैं आया आया आया और फिर आने में एक घंटा लग जाता है। सो इस पे खाना रख दिया, छुट्टी हो गई आपकी, वापस इसे हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप घर में आराम से रख सकते हैं और जैसे मैंने कहा बच्चों से दूर रखिएगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे अगर हाथ लगा देंगे तो ओ हाथ जल गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत बहुत अच्छे कंट्रोल्स हैं इसके एंड ये ऐसा गैजेट है जो एक बार आप घर ले आए, आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी यूजिंग इट एवरी नाउ एंड देन। और मेहमान आते हैं उन्हें भी तो कूल लगता है ना, अरे भाई क्या चीज़ है उनके घर में। तो अगर शोबाजी के लिए भी आप लेना चाहें तो गो फॉर इट, फैपो फूड वार्मिंग मैट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट गैजेट है, इसका नाम है YTT टच स्क्रीन मिस्ट क्लीनर। YTT टच स्क्रीन मिस्ट क्लीनर। अब ये एक छोटी सी, हम हिंदी में कहते हैं ना डबिया है डबिया, इस पे इसके अराउंड पूरा का पूरा एक वो लगा हुआ है साफ करने के लिए और अंदर इसके मिस्ट क्लीनर, आपने स्प्रे किया और स्प्रे करके इसी से साफ कर लिया। बहुत बहुत इजी टू यूज एंड आपको एक्स्ट्रा कोई भी कपड़ा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली, अरे मेरी स्क्रीन खराब हो जाएगी, नहीं जी इससे आप कर लीजिए। ये चीज को मैं हल्के में लेता था बट आई रियलाइज कि भाई फोन की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, आजकल आधी चीजें स्क्रीन पर हैं एंड यू वॉन्ट टू क्लीन दम अप। इट जस्ट दैट क्या आपको लगता है अरे कौन स्प्रे लाए, ये लाए वो लाए, ये आप अपने बैग में रखिए, आपको कहीं भी लगे फोन गंदा हो गया, कुछ हो गया, लैपटॉप की स्क्रीन साफ करनी है, ये बेस्ट चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। दिस हैज टू बी इन योर बैग ऑल द टाइम और जरा सा यार, बहुत जरा सा स्प्रे है और स्प्रे से ही सबको साफ हो जा रहा है, ये बहुत काम की चीज है। आई एम गोइंग टू बाई दिस फॉर श्योर एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड कि ये आप जरूर रखें अगर आपके पास एन नंबर ऑफ गैजेट्स हैं जिनपे स्क्रीन हैं। तो YTT टच स्क्रीन मिस्ट क्लीनर बजट फ्रेंडली क्लीनर है और बहुत अच्छे से साफ करता है। ओके, बड़े हैं खबरों की तरफ, सो आइए इन टेक न्यूज की तरफ। देखो खबरों में सबसे पहले गूगल छाया हुआ है, गूगल ने नेक्स्ट पिक्सल ड्रॉप कर दिया था, उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी, उसमें बहुत सारे अर्ली एड्स दिए थे, एक टीजर दिया था, उन्होंने कहा था कि नाउ स्क्रीन रिएक्शंस विद जेमिनाई ओमनी पावर्ड फीचर्स, ये अगली अपडेट का हिस्सा होगा। तो ये लास्ट पिक्सल ड्रॉप जो उन्होंने किया था वो मार्च की 2026 में किया था, मतलब इसी साल में किया था, और अब गूगल जो है वो आगे बढ़ रहा है, दे आर मूविंग ऑन विद अदर स्टफ इन देयर इकोसिस्टम। सो इसमें म्यूजिक जनरेशन एंड स्क्रीन रिएक्शंस, ये उनका नेक्स्ट पिक्सल ड्रॉप अपडेट होने वाला है, विच इज ह्यूज। आई बिलीव गूगल पिक्सल के जो फोन्स हैं वो धीरे धीरे धीरे धीरे सैमसंग और एप्पल की लड़ाई के बीच में आगे आके कहीं जीत ही ना जाए रेस, यू नो स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आई वुड रियली वॉन्ट समबडी एल्स टू टेक द थ्रोन और प्रोबेबली बी इन द रेस एंड गूगल पिक्सल बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंटर नजर आ रहा है। ये जो वीडियोस अभी आ चुके थे बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं एंड यूट्यूब पर स्पेशली अवेलेबल हैं एंड गूगल हैज बीन अपडेटिंग क्या हो गया मेरी इंग्लिश को, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द पास्ट 2 or 3 years और उन्होंने बहुत अच्छे अपडेट्स दिए हैं अपने फोन्स के साथ स्पेसिफिकली जो गूगल पिक्सल्स आते रहे। आई एग्री उनकी प्राइसेस थोड़े से ज्यादा हैं बट देन उस प्राइस में जो आपको चीज मिल रही है वो बड़ी कमाल की है। एंड आई थिंक एक बग एक फीचर जो है फिक्स करें जहाँ पे स्क्रीन अपने आप को लॉक कर लेती है एंड देन यू रिक्वायर कि उसको आप पीसी से कनेक्ट करें और एक सॉफ्टवेयर रन करें, वो परेशानी दूर हो जाए। बाकी गूगल पिक्सल बहुत सही फोन से और अपडेट जो है बड़ी कमाल की, सो यू कैन एडिट योर वीडियोज
इन रियल टाइम एज यू शूट. उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख सकते हैं. उसका एआई बहुत स्ट्रॉन्ग है. फिर अभी आने वाले वक्त में दे आर ड्रॉपिंग म्यूजिक जनरेशन. सो आई थिंक इंडस्ट्री इज गोइंग टू चेंज एंड गूगल पिक्सल बहुत कमाल करने वाला है. ऑलराइट, नाउ द गेम गेमिंग

0: क्योंकि अगली और लास्ट चीज पे ध्यान देंगे। पेपर के बाद आइए, ये पेपर आपके लिए पलट रहा हूं मैं।
1: गेम एंड एंटरटेनमेंट।
0: अगली खबर बड़ी मेन है। अगली खबर जो है वो गेमिंग की दुनिया से आती है, सीधा उस गेम से जुड़ी हुई जो कि तहलका मचा सकता है। इस साल सबको इंतजार है नवंबर में GTA 6 आएगा, एवरीबॉडी नोस दैट। और नवंबर में कोई भी गेमिंग कम्युनिटी, कोई भी गेमिंग डेवलपर राजी नहीं है रिलीज करने के लिए, सबको डर लग रहा है। लेकिन एक गेम है जो तहलका मचा सकता है, वो है फैंटम ब्लेड जीरो। जब इसका टीजर ट्रेलर आया था, हमें लगा भाई ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने असली मोकैप आर्टिस्ट हैं जो रिकॉर्ड करते हैं पूरी सीन्स को, उसके लिए असली मार्शल आर्ट आर्टिस्ट और कंग फू फैंस को लिया है जो कंग फू जानते हैं। देन दे हैव डेवलप्ड द गेम्स एंड दे आर सेइंग कि जो भी हमने आपको दिखाया है ये तो साइड कॉन्टेंट है, समझ रहे फ्लेक्स आप। Phantom Blade Zero can be the next contender जो GTA 6 से पंगा ले सके, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ठीक है? ये अपने दिमाग में रखिएगा, let this sink in, especially gamers. On that note, social media handles FM107 Qatar, FM107 Qatar, और शो के बिल्कुल इख्तिताम पहुंच चुका हूँ, तो आपसे बहुत प्यार, आप भी भेजिएगा मुझे कोई भी ऐप गैजेट आपको नजर आए और मुझे दीजिए इजाजत। This is Doha Wala Kabir signing off. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मास्टराम
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए।

0: कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई। बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और बहुत रेलिवेंट और मॉडर्न स्टाइल एपिसोड। देखें, आज हम बात करेंगे फैशन के एक ऐसे ट्रेंड पर जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है लेकिन उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्वाइटली बहुत बड़ा होता है। मतलब मैं बात कर रही हूँ फास्ट फैशन से दूरी की। चलिए एक रिलेटेबल बात बताती हूँ आपको। देखिए, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं या मॉल में वॉक कर रहे होते हैं। मुझे विंडो शॉपिंग पसंद है, वैसे मॉल जाती नहीं लेकिन जब जाती हूँ तो मुझे विंडो शॉपिंग पसंद है। वैसे ही आप मॉल में वॉक कर रहे होते हैं मेरी तरह, हर तरफ नए आउटफिट्स, सेल, ऑफर और ट्रेंडिंग स्टाइल्स नजर आ रहे होते हैं। भाई बहुत टेम्पटिंग होते हैं वो। आप सोचते हैं ये ड्रेस बहुत ही सस्ता है भाई, सेल में लगा हुआ और स्टाइलिश भी है, क्या करूं ले लूं। मेरे भी दिमाग नहीं चल रहा था, ले लो सफा, ले लो ऑफर में, प्रमोशन में, ले लो। फिर नेक्स्ट वीक एक और न्यू कलेक्शन आ जाता है, हाँ ठीक है, और वो पहला ड्रेस वार्डरोब में पहले ही यूज नहीं हुआ होता लेकिन अटेंशन ऑलरेडी नेक्स्ट आइटम पर शिफ्ट हो चुकी होती है हमारी। ये सबके साथ होता है। अब थोड़ा सा रियलिटी से इसे समझने की कोशिश करते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, फास्ट फैशन का मतलब होता है रैपिडली प्रोड्यूस्ड क्लोथ्स जो लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक बनाए जाते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में मार्केट में आ जाते हैं। इस प्रोसेस में प्रोडक्शन स्पीड हाई होती है लेकिन अक्सर औकात क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। और जब कपड़ा जल्दी यूज के बाद डिस्कार्ड हो जाए ना तो टेक्सटाइल वेस्ट बढ़ जाता है। अब इसमें इको स्विच इस सिचुएशन में क्या है मैं आपको बताती हूँ। आइडिया बड़ा सिंपल है, फैशन को माइंडफुल और सस्टेनेबल बनाए ना, मतलब कम ले, बेटर क्वालिटी क्लोथ्स चूज करें और उनको ज्यादा टाइम तक यूज करें। अब बात करते हैं कि भाई देखें कि फास्ट फैशन से दूर रहने का क्या फायदा है। देखिए, सबसे पहला फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाटर एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा यूज करती है और वेस्ट भी जनरेट करती है तो एनवायरमेंट बचेगी उससे। दूसरा फायदा है वेस्ट प्रोडक्शन। जितना कम कपड़ा डिस्कार्ड होगा उतना कम लैंडफिल बर्डन होगा। तीसरा फायदा है मनी सेविंग। क्वालिटी पीसेस लॉन्ग लास्टिंग होते हैं साथियों, इसीलिए बार बार शॉपिंग की जरूरत कम होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल स्टाइल डेवलपमेंट। आप ट्रेंचेस के बजाय अपनी यूनिक वार्डरोब बिल्ड करते हैं। तो भाई सोचिए, आपके पास 10 सस्ती टी शर्ट है जो 2 या 3 वॉशेस के बाद अपनी शेप और अपना कलर दोनों लूज कर देती हैं, और दूसरी तरफ 3 क्वालिटी शर्ट्स हैं जो सालों तक यूज होती हैं। दोनों सिचुएशंस कंपेयर करें तो सेकेंड ऑप्शन ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है ना, इकोनॉमिकल और सस्टेनेबल लगता है कि नहीं। लेकिन दोहा जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में फैशन बहुत फास्ट इवॉल्व करता है। हर सीजन न्यू ट्रेंड्स आते हैं, नई कलेक्शंस आती हैं, सेल्स आती हैं जो कंज्यूमर्स को फ्रीक्वेंट बाइंग की तरफ पुश करती हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इसीलिए यहाँ कॉन्शियस शॉपिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूं जो आप फॉलो कर सकते हैं तो वो ये है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चूज करें, कम आइटम्स लें लेकिन ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग हो आइटम्स, ठीक है। और एक और चीज जो बहुत जरूरी है भाई, ये माइंडसेट फ्लिप है, नीड वर्सेस वांट चेक करें। हर शॉपिंग से पहले अपने आप से पूछें कि क्या ये जरूरत है या सिर्फ एक ट्रेंड है। बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, ट्रस्ट मी। वार्डरोब रोटेशन करें, पुराने कपड़ों को मिक्स एंड मैच करके नए लुक्स क्रिएट करें ना। देखिए, सस्टेनेबल ब्रांड्स एक्सप्लोर करें, ऐसे ब्रांड्स चूज करें जो एथिकल प्रोडक्शन फॉलो करते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोनेशन हैबिट अडॉप्ट करें। जो कपड़े यूज नहीं हो रहे उनको डिस्कार्ड करने के बजाय डोनेट करें। अगर वो अभी भी यूजेबल हैं, और कुछ लोगों का ये होता है कि भाई प्री लव्ड क्लोथ्स होते हैं या आपका दिल भर गया, एनीथिंग, आप उसको कचरे में नहीं फेंक देना। इफ इट्स, अगर आपका है इतना कि वो कपड़ा यूजेबल है तो आप उसे डोनेट करें। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव इस बात का ये है कि फास्ट फैशन इंडस्ट्री दुनिया के लार्जेस्ट एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स में

0: से एक रहती है हमेशा, स्पेशली वाटर यूजेज और टेक्सटाइल वेस्ट के हवाले से। इसीलिए ग्लोबली अब स्लो फैशन का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया जा रहा है, जहां फोकस ड्यूरेबिलिटी, एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी पर हो रहा है। साथियों देखिए, अक्सर हम ये सोचते हैं कि सस्ता है तो भाई ले लो, प्रमोशन है तो भाई ले लो, सेल्स है तो भाई ले लो, लेकिन असल में अगर वो आइटम 2 से 3 बार यूज होकर वेस्ट हो जाए तो भाई वो सस्ता नहीं रहता, बल्कि वेस्टफुल डिसीजन बन जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें ना बिहेवियरल चेंज एंगल के बारे में, तो जब आप फास्ट फैशन से दूर होते हैं ना, तो आप अपनी शॉपिंग हैबिट्स को ज्यादा इंटेंशनल बना लेते हैं, और आप सिर्फ बायर नहीं रहते, आप शॉपहोलिक नहीं हो जाते बल्कि कॉन्शियस कंज्यूमर बन जाते हैं। तो भाई हमारा इको स्विच बड़ा सिंपल है, फास्ट फैशन से डिस्टेंस बनाएं और सस्टेनेबल क्लोथिंग चूज करें, अडॉप्ट करें। तो भाई आज का चैलेंज ये है कि आज आप अपनी वार्डरोब को चेक करें और देखें कि कौन सा आइटम सच में यूज हो रहा है, और नेक्स्ट शॉपिंग से पहले एक कॉन्शियस डिसीजन लें कि भाई क्वालिटी है या ट्रेंड है, इन दोनों में से चूज करें। और अगर आप ऑलरेडी सस्टेनेबल फैशन फॉलो कर रहे हैं तो किसी और को भी इंस्पायर करें ना, ताकि वो शॉपोहॉलिक से सस्टेनेबल शॉपिंग पर आ सके। साथियों, फैशन सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं होता बल्कि सोच का एक्सप्रेशन होता है। जब हम सस्टेनेबल फैशन चूज करते हैं ना, तो हम सिर्फ स्टाइलिश नहीं लगते बल्कि रिस्पॉन्सिबल भी लगते हैं। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है, ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107। FM 107,
0: दिल से देसी।
3: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान, और आज हम बात करेंगे रहम दिल होने के बारे में। रहम दिल होना एक ऐसी सिफत है जो इंसान को दूसरों के करीब लाती है। जब हम दूसरों पर रहम करते हैं, उनकी तकलीफ को समझते हैं, तो सोसाइटी एक बेहतरीन जगह बन जाती है। रहम सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों और हर मखलूक पर होना चाहिए। इस्लाम हमें हर मखलूक के साथ नरमी का बर्ताव करना सिखाता है। जब आप किसी पर रहम करते हैं तो अल्लाह आप पर रहम करता है। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो जिंदगी बदल देता है। आज का अमल ये है, किसी की मजबूरी को समझने की कोशिश करें और उसके साथ नरम रवैया अख्तियार करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 11:02।
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
2: जी वेलकम, अहलन व सहलन, खुश आमदीद और कहेंगे स्वागत हम सभी को। आपका इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम में सन एंड साउंड, जहां पर साहब सन तो अपनी शेखी में रहता है और साउंड आप लोगों की गूंजती है। आज आ गया लिए साहब ट्यूसडे और करीब ही हैं हम अब वीकेंड के भी। ट्यूसडे भाई बीचों बीच का दिन कह सकते हैं, और एक नया दिन, एक नई उम्मीद और कहना चाहिए नई मंजिलों का सफ़र जो है हम इस दिन तक आते आते बना लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी सुबह जो है वो खुशगवार गुजरी होगी, और इसी उम्मीद में कि दिन इंशाल्लाह ताला अच्छा गुजर जाए। अब इस वक्त तक हम एक साथ पहुँच गए हैं, तो जो दोस्त ऑफिस जा रहे हैं, जो घरों में हैं या रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हैं, और जो भाई सड़कों पर इस वक्त सफ़र में हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी के लिए नेक तमन्नाएं। तो साहब आपका अपना प्रोग्राम जहां पर खूब सारी बातचीत होगी, अपडेट्स होंगी और जाहिर बात है खासम खास आज जो दिन है उसके हवाले से बात होगी, मौजू के ऊपर बात होगी, एंटरटेनमेंट के हवाले से बात होगी और गेम शेम भी खेलने वाले हैं हम लोग। तो तैयार हो जाइए खूबसूरत और एक ऐसे सफर में जहां खूब सारी मालूमात भी आप लोगों को देने वाला हुआ है। चाय कहवा या जो भी काम कर रहे हैं उसको सेट कर लीजिए पूरे तरीके से, क्योंकि अब अगले 2 घंटे हम एक साथ रहने वाले हैं। 1 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा, जहां पर आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अपने मैसेजेस मुझे आप 666-22-107 पे भेज सकते हैं, 666-22-107 पे आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, और वहीं कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77। बहुत आराम से बता रहा हूं क्योंकि काफी लोग नंबर सुन के ही हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नई नई कॉल आ रही हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो भाई 443-443-77 इस नंबर को आप सेव कर लीजिए FM 107 के नाम से। और उन तमाम लोगों के लिए जो अभी अभी और नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं कि हमारा वेब एड्रेस है www.urduradio.qa। इस पे जाके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और सारी मालूमात स्टेशन के हवाले से जो है आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाती है। कौन से आरजे किस वक्त कौन सा प्रोग्राम दे रहे हैं, कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम है, अपकमिंग क्या है, क्या न्यूज़ है, और जो पिछले प्रोग्राम आपसे मिस हो गए वो भी आप हमारे वेबसाइट पे जाकर सुन सकते हैं, समात फरमा सकते हैं। और वहीं सोशल मीडिया पे हम हर जगह आपके लिए हाजिर खिदमत हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, टिकटॉक हो, हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो आइए अब करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज, और यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ, जानते हैं उनका हाल अहवाल और बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ? फैजल भाई, हाउ आर यू? कैसे हैं फैजल भाई और कैसी हुई सुबह?
4: हाय
2: हाय। तो कैसी हुई सुबह?
4: मैं सोचा कि मैं आज पहले ही कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि बीच में आजकल मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और जब कॉल करने जाता हूँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। माशाल्लाह से फैमिली इतनी बड़ी होती जा रही है।
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
4: जिस तरह रोड में नहीं ट्रैफिक है माशाल्लाह, उससे ज्यादा ट्रैफिक हमारे 107 में है।
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप लोगों की दुआएं हैं और माशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है, इसके बगैर ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और इसी सिलसिले से हम भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ

0: हाँ तो दिल जो है वो लगा के रखें।
1: मोहब्बत आपकी भी है सरवर भाई, आप आपकी वजह से जो ये दोपहर का वक्त है 2 घंटा पता ही नहीं चलता।
0: अरे मेरा भाई कहता
1: है अमिता जी आती हैं तो फिर और पता नहीं चलता।
0: क्या बात है भाई, आप माशाल्लाह जुड़े रहते हैं हमारे साथ, ये मोहब्बत है।
1: बिल्कुल, मैं लास्ट प्रोग्राम कबीर भाई तक मैं जुड़ा रहता हूँ।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है, इसी तरीके से मोहब्बतों से नवाजते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह हम भी वादा करते हैं कि पुर जोश और पुर खुलूस कोशिश भी रहेगी कि इंशाल्लाह ताला एहतियात के साथ आप लोगों को एंटरटेन भी करते रहें।
1: मैं तो सिंपल यही एक वर्ड कहना चाहता हूँ कि हर मर्ज की जैसे दवा होती है ना, तो कतर में अगर गर्मी की किसी को भी कोई मेडिसिन चाहिए तो वो 107 लगा ले। क्या बात है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारी बातें करने के लिए और इतने अच्छे हमें इतनी अच्छी बात करने के लिए फैजल भाई। आज खासम खास दिन है, आज हाइड्रेशन डे भी है और आज इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी है, तो दोनों ही के हवाले से इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं। और हाइड्रेशन के हवाले तो जाहिर बात है हम एक दूसरे को बताते ही रहते हैं, बट अगर बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक डे की तो हर साल ये 23 जून को मनाया जाता है और ये दिन दुनिया भर में ओलंपिक गेम्स की कहना चाहिए रूह है, यानी दोस्ती फ्रेंडशिप वगैरह इज्जत रेस्पेक्ट और बेहतरी के लिए एक्सेलेंस के पैगाम को फरोग देने के लिए मनाया जाता है। और ये दिन 23 जून 1894 की याद में मनाया जाता है जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसको तैयार किया था और बनाना शुरू किया। तो कहने का मकसद ये है कि गेम के हवाले से, खेल के हवाले से आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, उससे जुड़ी आपकी क्या यादें हैं, क्या अभी तक आपने कोई स्पोर्ट्स में अपने आप को कंटिन्यू किया हुआ है, किसी एक गेम में किसी चीज़ का आपको शौक है, इंटरनल हो मतलब इंडोर हो आउटडोर हो किसी भी तरीके का, तो आज इंशाल्लाह ताला इस पे हम शुरुआत में बात करने वाले हैं। आपका अपना पसंदीदा खेल, उससे जुड़ी यादें और उससे जुड़े किस्से और वाकयात।
1: सरवर भाई ऐसा है कि मेरा सबसे पसंदीदा खेल जो है ना, मेरे 3 खेल है।
0: अच्छा।
1: जो इंडोर में हो गया, जैसे मुझे चेस खेलना पसंद है।
0: वो होए, तो फिर तो खूब मिलेगा रंग जब मिल बैठेंगे मैं आप और चेस। मैं भी खेलता हूँ एक्चुअली।
1: खेल का मैं इतना आदि हो गया था सरवर भाई कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जा चुका था।
0: ओह वाओ, वंडरफुल। अरे नहीं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है मेरा आपके साथ बैठ के, मैं तो बराबर में खड़ा रहूंगा बस।
1: नहीं सरवर भाई ऐसा भी नहीं है, मतलब खेलना, हाँ बहुत अच्छा खेलता था
0: यार। मबरूक यार, जबरदस्त बात हो गई यार ये तो। देखिए आज खासम खास दिन और हमारा मौजू भी है और पहली कॉल आपकी और आप निकले डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैंपियन चेस के अंदर। ओए होए, क्या बात है।
1: और आउटडोर में सबसे ज्यादा मुझे पसंद था क्रिकेट। क्रिकेट मतलब हम लोग बहुत खेलते थे क्योंकि मैं बिहार से हूँ और बेसिकली जो है ना वहाँ क्रिकेट का क्रेज भी ज्यादा था, तो उसकी मुझे आदत पड़ी थी कि
0: भाई क्रिकेट का तो क्रेज कहाँ नहीं है हमारे हिंदुस्तान में।
1: बारिश पानी कुछ भी हो, क्रिकेट मैच है तो जाना है। खाना नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन क्रिकेट मिलना चाहिए,
0: क्रिकेट मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि चेस की अगर हम इस वक्त पहले बात करें, क्रिकेट की भी बात करेंगे, तो ये किस उम्र से खेलना शुरू किया आपने?
1: चेस मैं खेल रहा था जब मैं 6th standard में था।
0: okay.
1: तब से मुझे आदत लगी चेस खेलने,
0: सिक्स
1: क्योंकि वो स्कूल में जो थे ना तो वहाँ हुआ करता था।
0: नहीं तो क्या घर में भी कोई खेला करता था, दादा चाचा अब्बा वगैरह या कोई और?
1: नहीं घर में कोई नहीं खेलते थे, हम 3 भाई हैं, मैं और मेरे बड़े भाई, हम दोनों ने खेलना स्टार्ट किया। खेलते अब बहुत झगड़े लड़ाई भी हुए क्योंकि कभी भाई जीतता कभी हम जीतते, वो भी अच्छा चेस।
0: और बीच में माजरत के साथ बेमानी तो चलती है, इधर थोड़ा सा मुंह इधर हुआ, घोड़े की चाल जो है कहीं बदल के कहीं और चल दी।
1: बिल्कुल बस मुंडी घूमी की चाल भी बदल जाती थी।
0: ओहो भाई वाह, क्या बात है यार, और मुबारक हो यार आपको, आप तो माशाल्लाह चैंपियन निकले। अच्छा वहीं क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें तो अभी कंटिन्यू है या फिर बस अब?
1: नहीं, अभी तो सरवर भाई बिल्कुल कंटिन्यू है, हर वीकेंड को अपना क्रिकेट शेड्यूल रहता है। 3 बजे हम लोग मैदान में चले जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल,
1: क्रिकेट खेलते हैं,
0: बिल्कुल,
1: एक एक्सरसाइज भी हो जाती है और मजा भी, लोग रहते भी साथ में। अब कुछ लोग देखते रहते हैं तो उनको भी हम लोग ऑफर करते हैं, अगर वो खेलना चाहते हैं तो आप भी खेली।
0: क्या बात है यार, नहीं ये तो मैंने देखा है और ये मतलब मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ हमारे कतर में जो ये क्रिकेट के हवाले से जो निजाम बना रखा है हम लोगों ने,

0: इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेश, नेपाल भाइयों ने, तो वो हम फ्राइडे और सैटरडे में हमेशा से मैं देखता आ रहा हूँ जो भी मैदान खाली होता है। अब तो माशाल्लाह से इतने प्रोफेशनल हो गया है मामला कि स्कूल्स वगैरह में जाके और वो रेंट पे लेकर जो मैदान वगैरह होता है और मजीद चीज़ें इसके अंदर बहुत बढ़ गई हैं, काफ़ी क्रेज़ बढ़ गया है। और क्यों ना हो भाई, हमारे कतर में तो माशाल्लाह हर चीज़ की कहना चाहिए आसानी है और हम सब के लिए हर चीज़ मौजूद है जो जिस तरीके से चाहता है एंटरटेनमेंट के हवाले से वो होता रहता है। भाई वाह, क्या बात है यार, जबरदस्त फैजल भाई, और मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के। और ये भी अच्छा लगा सुन के कि भाई हमारे साथ कोई बड़ा खिलाड़ी इस वक्त जुड़ गया आज।
1: सरवर भाई इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं, लेकिन अरे यार, लेवल पे
0: यार, डिस्ट्रिक्ट लेवल, यार आप समझ रहे हैं, हम मोहल्ला लेवल पे कुछ नहीं कर पाए कभी अपनी जिंदगी में, आप तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चले गए यार।
1: मैं गांव में, मतलब मेरे गांव में कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं था जो मुझसे चेस से हारा ना हो। वो लोग पहले मुझे खेलने नहीं देते थे कि बच्चा है ये क्या खेलेगा ये क्या,
0: अंडरएस्टिमेट करते।
1: जब मैंने शुरुआत करी तब लोगों ने कि सराहा नहीं,
0: क्या बात है,
1: कोई बच्चा नहीं होता,
0: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह वाह, चलिए साहब जबरदस्त, और बहुत ही अच्छा लगा यार आपने कॉल करी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फैजल भाई। ख्याल रखिए अपना, इंशाल्लाह ताला आगे भी बात करते रहिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। तो जनाब ये थे फैजल साहब, चैंपियन हमारे साथ, और आज खासम खास बात हो रही है क्योंकि आज ओलंपिक का खास दिन है, तो मैंने सोचा इसी के हवाले से बात कर ली जाए। उसका एग्जैक्टली तो नहीं, बट क्या कोई ऐसा है जो वाकई दूसरी चीज़ों में भी महारत हासिल लगता है, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। 443-443-77 पे आप कॉल करके बता सकते हैं अपना मन पसंदीदा स्पोर्ट्स और उसमें आपने क्या क्या महारत हासिल करी और क्या क्या आपने कीर्तिमान स्थापित किए, ये भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई और हमारे साथ जुड़ गया, ये जानते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
0: आदम भाई, अहलन व सहलन, कैसे हैं, खैरियत से?
2: मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारा ब्रेक टाइम होता है जस्ट 15 मिनट।
0: और उसमें आप तशरीफ ले आते हैं यार, मोहब्बत यार खादिम भाई।
2: उसमें मैं तशरीफ नहीं लाता, मैं आपकी खिदमत में हाजिर
0: गिर जाऊंगा।
2: नहीं,
0: क्या बात है,
2: ये तो आपकी मोहब्बत है कि हमें खींच के लेके आते हैं सर।
0: अरे सर, ये मोहब्बत आपकी है कि आपने इससे नवाजा हुआ है हमें, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: मतलब ये कि आपसे मोहब्बत और FM 107 से
0: सहलन,
2: मोहब्बत।
0: सहलन, मोस्ट वेलकम खादिम भाई। खादिम भाई कैसा रहा अभी तक का दिन और कैसी हुई सुबह?
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ताला आसानी रखे, आगे भी आसानियां हो। आज खासम खास दिन है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जा रहा है और उसी के हवाले से आज हम भी अपनी वार्तालाप कर रहे हैं खादिम भाई। तो कोई ऐसा स्पोर्ट्स जिसकी यादें जुड़ी हुई हो, अभी तक कंटिन्यू कर रहे हो, कोई ऐसी बात जो शेयर करना चाहते हैं अपने खेल कूद के हवाले से, कुछ भी हो सकता है। वो
2: शुरुआत उस टाइम से करूं जब हम मार खाते थे, जब क्रिकेट खेलने जाते थे और घर में आके मार खाते थे।
0: अच्छा, ऐसा होता था क्या? हमें तो कंचों के ऊपर बहुत और वीडियो गेम के ऊपर बहुत मार पड़ी। अगर
2: नहीं
0: बाकी तो
2: वो तो शौक नहीं था बिल्कुल। हाँ। और सिर्फ क्रिकेट से शौक था और क्रिकेट के शौक ने इतने पागल हमें बनाए हुए थे। पागल ये, मैं और हमारे एक भाई वो रशिया में होते हैं अभी, वो क्रिकेट के बहुत शौकीन भी थे और अच्छे बॉलर भी थे। तो मैं छोटा था, मेरे से जो बड़े भाई थे वो हम सब जाते थे दूसरे गांव में जाते थे क्रिकेट खेलने। तो वापसी में वो बैट और विकेट और बॉल ये मुझे पकड़ाते थे कि चलो आप लेके जाओ। मैं छोटा था तो चलो बाबा मुझे कुछ नहीं कहेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लेट आए, जब लेट आए तो बाबा इंतजार में थे कि अभी बस ये सब्र आने दो। तो जब देखा तो मैं अकेले ऐसे वो कहते ना कि बड़ा ऐसे बन के ऐसा आ रहा था कि चलो मुझे तो कुछ नहीं बोलेंगे वो कहेंगे। जैसे मैं घर के अंदर गया, उसने विकेट पकड़ के ना, विकेटें तीन विकेटें थी और साथ में और बैट भी था, बैट तो खैर साइड में रखा और विकेटें पकड़ के मारना शुरू किया। न भाग सकता हूँ न रुक सकता हूँ, चिल्लाना शुरू हो गया। हाँ, और हम अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, दोनों हयात नहीं है, दो माँ बोलती है मारो और भी मारो,
0: इसीलिए सबक मिले, हमारी तो सुनता नहीं।
2: नहीं नहीं, अगर वो साइड लेती तो फिर वो बाबा मुश्किल करते थे, उसको भी सुनाते थे। बहरहाल वो माँ बोलती है कि मारो और भी मारो। फिर बाद में जब मैं थोड़ा साइड में हो गया तो माँ बोलती है कि देखो बेटा टाइम पे आया करो, खेलो लेकिन टाइम पे आया करो। हम बहुत लेट हो गए थे, बहरहाल ये हुए। फिर मैं UAE गया, 96 में गया और मैं कंटिन्यू 16 ईयर्स

0: 16 साल में अपने टीम का कैप्टन रहा। मैंने क्रिकेट टीम बनाई थी
1: 16 साल। खादिम भाई, अरे यार बड़े बड़े आज तो चैंपियन भाई हमारे साथ जुड़ गए यार, क्या बात है।
0: अच्छा, उसके लिए बेट और हम लोग टेनिस बॉल पे खेलते थे, जो टेप बॉल होते हैं उस पे खेलते थे। उसके लिए टेप बॉल, टेप और बेट्स, विकेट्स और इवन ये जो पिच है वो भी मैंने कंक्रीट का उन लोगों के लिए बनाया था, अपने टीम एक बनाई थी। उसमें श्रीलंकन, बांग्लादेश का, हमारे इंडियन भाई भी थे और हम पाकिस्तानी भी थे। हम यानी एक ऐसे टीम बनाया हुआ था माशाल्लाह की, बहुत अच्छी टीम थी उसमें। और हम, मैं वो जो भी उनको चाहिए था, इवन वो जो जर्सी होती है
1: जी,
0: जो
1: जी, जी, उसका, जी,
0: वो भी मैंने दिया था। और उसके लिए हम लोग फ्राइडे को डेली, हम हर फ्राइडे को खेलते थे 2 बजे से 5 बजे तक।
1: ओके।
0: और फिर ये गर्मियों में भी, जून जुलाई में भी हम लोग खेलते थे। टूर्नामेंट जिधर भी होता था हम लोग जाके उधर खेलते थे।
1: क्या बात है।
0: बहरहाल क्रिकेट से बहुत शौक था, हॉकी से भी शौक था, क्रिकेट से भी,
1: हॉकी से भी शौक था। ये आपने अच्छी बात बताई।
0: कतर आके फुटबॉल के दीवाने हो गए हम। जिधर भी टूर्नामेंट होता है तो बस ये जो अरब कप हो गया, एशियन कप हो गया, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी मैचेस देखे हुए। वर्ल्ड कप में तो नहीं मिले, अभी बहुत अफसोस हो रहा है कि ये फीफा वर्ल्ड कप 22 हमारे घर में आके हमें ऐसे मैच दे रहे थे कि ये ले लो और देखो, लेकिन हम नहीं गए, ये हमारी बदकिस्मत।
1: और अभी भी क्या कतर में भी क्रिकेट को आपने जिंदा किया हुआ है?
0: नहीं, अभी बिल्कुल चांस नहीं मिल रहा है इसके के सिर्फ
1: मजबूरियत की वजह से।
0: बिल्कुल नहीं मिल रहा। और ये है कि वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, तो क्रिकेट के साथ वॉकिंग बहुत ज्यादा होती थी। ये है कि तकरीबन 3-4 घंटे ऐसे वॉकिंग भी मैं करता था।
1: ओके।
0: बहुत इसलिए वो माशाल्लाह थोड़े से फिट रहते, अभी तो बूढ़े हो गए, अभी तो वॉकिंग नहीं।
1: अरे अभी तो आप यार, अभी तो शुरू पार्टी शुरू हुई है यार। कादिम भाई कैसी बात कर रहे हैं।
0: लेकिन ये है कि क्रिकेट देखने का भी शौक था और खेलने का भी बहुत शौक था, बहुत ज्यादा।
1: क्या बात है, वो आज तक हम सभी के अंदर है। और बात करें अगर हम बड़े तकलीर की, तो जो हमारे कहना चाहिए ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले ममालिक हैं, इसमें हम सबको बेइंतहा मोहब्बत है क्रिकेट से ऑब्वियसली। बहरहाल क्या बात है
0: भाई, आपको तो याद नहीं है उस टाइम की, मैं जो सुनील गावस्कर साहब थे वो मेरे बहुत पसंदीदा प्लेयर थे, बहुत उनकी बैटिंग में बिल्कुल नहीं छोड़ता था, और देखता था बहुत, जरूर देखता था मैं।
1: क्या बात है।
0: उस टाइम महेंद्र अमरनाथ साहब थे, ये सब आते थे जी, पाकिस्तान टूर थे या पाकिस्तान उधर इंडिया टूर करते थे, तो ये बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते थे उसमें, मुदस्सिर नजर साहब, मोहसिन खान साहब थे, ये सब, जहीर अब्बास साहब, मैंने खुद उनको देखा।
1: क्या बात है यार, क्या बात है, वाह वाह क्या बात।
0: और बाद में जब ये आए वसीम अकरम साहब और ये सब, ये नहीं, ये तो बाद में आए, लेकिन वो जो पुराने थे, ये श्रीलंकन में जो मधुगाले थे, अरविंद डिसिल्वा थे,
1: अरे भाई
0: तो अरविंद डिसिल्वा साहब को तो मैंने पिशौर में आए थे एक मैच के लिए, उधर मैंने देखा
1: था
0: जी जी जी
1: क्या बात है,
0: वो अच्छे प्लेयर थे
1: जी जी। अरे
0: तो क्रिकेट की हिस्ट्री तकरीबन मुझे बहुत मालूम होती है, अभी दिमाग भी कम से बुढ़ापे की असरात है ना, ऐसे असरात ही है बुढ़ापा।
1: क्या बात है भाई, बहुत खूब। अरे सर बहुत शुक्रिया, आप आए तशरीफ लाए और जरूरी वक्त में से आपने इतना टाइम निकाला भाई, थैंक यू सो मच।
0: ये FM 107 हमारा अपना चैनल भी है और हमारा घर भी है,
1: मोहब्बत सर।
0: जितने भी आते हैं कॉलर्स आते हैं हमारे भाई बहन भाई सब,
1: क्या बात,
0: तो बहुत अच्छा लगता है, यकीन करें इतना, वो कहते ना कि एक सुकून मिलता है।
1: हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, और उससे दुगना हमें मिलता है। खादिम भाई आते रहिए, तशरीफ लाते रहिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहतियाब रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो खातिनों, हजरात, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, यहाँ पर बातचीत हो रही है आपके अपने फिटनेस के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, एक्टिविटीज के हवाले से, जो भी आपको अच्छा लगता था स्कूल टाइम में, अब कुछ कम्युनिटी के हवाले से जो भी है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज 23 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जा रहा है, और ये दिन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का आगाज जो है उसकी याद में मनाया जाता है। और इसका मकसद सिर्फ यही है, मेरा भी मकसद यही है कि भाई खेलों के बातों के जरिए या खेलों के जरिए दोस्ती हो, इज्जत हो, बेहतरी हो, ये सारे पैगाम जो हैं इनको आमो खास किया जाए, और ओलंपिक मूवमेंट लोगों को सेहतमंद जिंदगी, मेहनत और दूसरी मजीद इसी तरीके की चीजों को जीने की और अपनाने की कोशिशों में मनाया जाता है। यहां पर कोई और हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे करते हैं बात। हेलो, सलाम अलैकुम।
2: हाँ जी।

0: कैसी रही सुबह, कैसा गुजरा अभी तक का दिन, पहले तो ये बताइए
1: जी। ऑल वेल सर्वर भाई, ओके रिपोर्ट।
0: ओके रिपोर्ट, ये बहुत सही रहता गावा भाई का, ओके रिपोर्ट है। क्या बात है। तो गावा भाई, आज जैसे कि मैंने अर्ज किया कि आज खासम खास दिन है और ओलंपिक डे है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है, और ये दिन खासम खास दोस्ती के हवाले से, इज्जत देने के हवाले से, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाने से इसका पैगाम देता है। तो इसी से को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा बातचीत करी जाए। तो कोई ऐसा स्पोर्ट्स, कोई ऐसी फिटनेस की बात, या कोई ऐसी याद स्कूल की, कॉलेज की, जवानी की, अभी की कुछ शेयर करना चाहते हैं?
1: जी बिल्कुल सर्वर भाई, उससे पहले मैं, अगर आप इजाजत दो, आपसे पहले पूछूं थोड़ा सा या बाद में पूछूं?
0: प्लीज प्लीज प्लीज, गो है डारे, पूछिए पूछिए सर।
1: सर थोड़ा आप भी बताइए ना, आपको कौन सी गेम का शौक है और आपने कौन सी गेम खेली है?
0: क्या बात है यार, शायद मेरी बातों से आपको भरोसा ना हो, बट ये हकीकत है कि वक्त रहते मेरी ज़िंदगी में काफ़ी पहलू आए और बदले। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हैवी वेट चैम्पियन रहा हूँ इंटर यूनिवर्सिटी, और वहीं टग ऑफ वार चैम्पियन भी रहा हूँ मैं इंटर यूनिवर्सिटी। और क्योंकि अपने हिसाब से करता था ना मैं, अल्हम्दुलिल्लाह फिट था भाई, ऐसी हालत नहीं है, फिट अभी भी हूँ ऐसी बात नहीं है। और हैंड रेसलिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे आगे रहा। तो स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी कुछ किया करता था, और मैं क्रिकेट में भी खेला करता था। हाँ ये बात अलग है कि मैं स्लिप पे ही लगता था, दूसरी और जगह मैं लगता नहीं था फील्डिंग के लिए, और बैटिंग करता था, ये चीज थी मेरे साथ। तो भैया ऐसी बात नहीं है गावा भाई, हमने झंडे हर जगह गाड़े।
1: सर्वर भाई एक्चुअली पता क्या है, आपकी बातों से ना यार मेरे को एक चीज याद आ गई, अगर टाइम मिले आप जरूर सर्च करना। अभी ना रिसेंटली एक चैंपियनशिप हुई थी, आई थिंक 2024 में,
0: 2024 में,
1: वो थी 24 में इंटरनेशनल स्लैप चैंपियनशिप।
0: अरे वो चल रहा है यार, वो तो बहुत आमो खास है इस वक्त, और बहुत ज्यादा जोरों शोरों पर है वो, तो चारों तरफ लेडीज में भी जेंट्स में भी चल रहा है मामला उसका भाई।
1: बहुत ही बिल्कुल, तो ये आपकी बातें सुन के मेरे को याद आ गया ना, मैंने कहा भी अगर अपना सर्वर भाई उसमें कंटेस्टेंट हो तो भाई क्या
0: नहीं,
1: ही
0: वो तो
1: बात
0: सही है
1: सर्वर भाई।
0: नहीं देखो मारने तक सही है भाई, मगर मार खाने तक इसमें मेरा हिस्सा नहीं होगा भैया। अपनी जगह मैं किसी और को खड़ा करवा दूंगा कि भैया इनको मान लो, अब मेरी बारी आएगी तो मैं अपनी तरफ से मार तो दूंगा, मार खाऊंगा नहीं यार। वो इतने जबरदस्त चाटे पड़ते हैं भाई, उसपे थपेड़े पड़ते हैं, आदमी उल्टा हो गया भाई, वो गिरा आसमान क्या, असल में जब वो बेहोश होकर गिरते हैं, आपने देखा होगा किसी में जोरदार पड़ जाता है तो उनको जो तारे और चिड़ियां दिखती हैं वो आप भी महसूस कर सकते हैं, इतनी जोरदार पड़ता है भाई उसमें लपड़, जिसको कहते हैं, समझ रहे हैं? बहुत ही खतरनाक यार, अलग अलग तरीके के गेम आ गए भाई दुनिया में, ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल में, ये तो बहुत नई ईजाद है थप्पड़ वाला जो है स्लैब, क्या कहते हैं
1: इंटरनेशनल स्लैब चैंपियनशिप,
0: स्लैब चैंपियनशिप कह लीजिए, चलिए इंटरनेशनल, और अब तो गांव देहात में भी हमारे शुरू हो गया ये मामला, आपको मालूम है जितने भी पहलवान हैं, देखा देखी, हाँ भाई उन्होंने जैसे कुश्ती होती थी या जैसे पंजा लड़ाना होता था, इसी को देखा देखी, क्योंकि ये भी थोड़ा कहना चाहिए कि मर्दाना गेम है, बट अब तो माशाल्लाह लेडीज भी आगे आगे, लेडीज भी खेल रही है भैया ये वाला गेम, मैंने देखा जबरदस्त।
1: जी आपने सर्वर भाई गांव देहात की बात की ना, अभी मेरे को एक और चैंपियनशिप याद आ गई।
0: अच्छा कौन सी?
1: अभी एक ही ना, पीछे थोड़े से कुछ महीनों पहले पंजाब में एक चैंपियनशिप हुई है।
0: हाँ।
1: उसको बोलते थे भी खाली रहने का मुकाबला, वेले रहने का मुकाबला।
0: अजी हाँ, मतलब कोई जितना हाँ। खाली रह ले।
1: हाँ वो टाइम दिया जाता था, एक टाइम पीरियड बंदे को, ना तो बंदे ने उस समय में मोबाइल यूज करना है, ना किसी से बात करनी है,
0: ओके,
1: ना जो बंदा अपने आसपास बैठा है उसको इशारे से कुछ बोलना है।
0: अरे
1: उनको वो रोटी पानी टाइम की टाइम देते थे, जब आपने वॉशरूम जाना है वो अलाउ करते
0: थे। अच्छा ये काम चल रहा है बस, तो फिर तो ठीक है, मैं भी खेल लूंगा भैया, फिर कोई मसला नहीं है, फिर तो मैं भी खेल लूंगा। खाना टाइम में मिल रहा है और हाजत के लिए जाने दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए लाइफ से, फिर तो मैं आराम से कर लूं।
1: सर्वर भाई टाइम में मिल रहा है उसका मतलब ये थोड़ा भी बार बार मिलेगा, दो
0: आया नहीं, और ये टर्म्स एंड कंडीशन है, और भाई बड़ा मुश्किल होता है। और जैसा हम जैसा आदमी यार, जिसको बिना बोले जिसका एक मिनट ना गुजरे अगर सो नहीं रहे हैं तो हमारे लिए तो वाकई बहुत मुश्किल है यार, ये बहुत ही मुश्किल है, खामोश रहना अपने आप में मुश्किल है। ये तो आप चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं,
1: सर्वर भाई अगर अगर टाइम मिला ना तो आप जरूर देखना सर्वर भाई। यार
0: यार असल में गावा भाई, आपने कुछ बातें ऐसी याद दिला दी, ये चीजें बहुत पुरानी हैं। और पहले के हवाले से अगर बात करें तो जो हमारे यहाँ की अगर बात करें हम, तो जमींदार और पुराने लोग ना, तो शाम में बैठ बैठ के खाने पीने पे भी चैंपियनशिप लगती थी भाई। ये चैंपियनशिप तो बात का लफ्ज है, बट के शाम में बैठे हुए हैं कि साहब इतने किलो ये खा जाऊंगा, इतने 200 गुलाब जामुन खा जाऊंगा और यूं कर दूंगा और 36

0: पूरियां और समझ रहे हैं बाल्टी भर के सब्जी, ये गेम तो हमारे यहाँ हमने देखे हैं भैया होते हुए, पुराने पुराने लोगों में काम कुछ नहीं है, है? जिम्मेदारी का मामला है और ये खेल है उनके लिए। और उसके बाद फिर
1: सर्वर भाई एक और चैंपियनशिप याद आ गई, मैं अपनी बात नहीं करूंगा। तो क्या होता है सर्वर भाई, हमारे वहाँ पे ना जो बुजुर्ग होते हैं पुराने बुजुर्ग या लड़के बहुत कम होते हैं उसमें, वो लोग जैसे गांव के बाहर एक जगह बनी होती है उसको सत बोलते हैं, उसमें बड़ा सा टेबल लगा रहता है पेड़ के नीचे,
0: ओके
1: सत भाई इकट्ठे बैठने की जगह, तो वहाँ पे ताश बहुत चलती है जी।
0: ओके
1: तो सर्वर
0: सुनो, हल्के से बता रहा हूँ, सुनो किसी को बताना मत, हल्के से बता रहा हूँ, बहुत बड़ा चैंपियन हूँ मैं तो जिक्र नहीं कर रहा था इस बात
1: शायद यूपी में चौपाल बोलते हैं सर उसको।
0: हाँ मतलब चौपाल तो वही है ना, एक साथ आप बैठ जाएं एक जगह पे जाके चौपाल लगी हुई है
1: जी बिल्कुल। तो सर्वर भाई वो जब बाजी शुरू होती है ना, आप यकीन मानिए बंदे का उठना मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से इतनी लड़ाइयां होती है ना घर में, क्योंकि बंदा बोलता है बस मैं 2 मिनट में आ गया, 2 मिनट में आ गया, और वो 2 मिनट सर्वर भाई कब 2 घंटे क्या 12 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक गेम ऐसा है कि मैं अब क्या ही कहूँ।
1: नहीं आपको कौन सी गेम पसंद है उसमें, बस इतना सा बता दीजिए।
0: यार हमारे यहाँ जो कोर्ट पीस करके खेला जाता है वो हर स्टेट में और हर जगहों में अलग अलग नाम है, गेम भी कभी कभार सेम होता है बट उसका नाम अलग अलग होता है, तो अब वो पार्टनर बन के खेला जाता है, समझ रहे हैं, 4 लोग खेलते हैं पार्टनर बन के, तो वो ऐसे है
1: जी हमारे सर्वर भाई सबसे फेमस है सीप।
0: अच्छा हाँ, मैंने
1: उसके बाद दूसरा है उसको बोलते हैं भाभी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुना है मैंने इसके बारे में भी,
1: दोनों बहुत फेमस
0: है और बड़े पुराने गेम है यार। अगर इंडोर गेम्स की बात करें तो उसमें चेस हो गया, कार्ड्स हो गए, है ना, लूडो है, ऑब्वियसली कैरम है, ये सारी चीजें तो इतने पुराने सदियों से चली आ रही हैं भाई, और इसमें ज्यादा से ज्यादा कहना चाहिए वक्त गुजर जाता पता ही नहीं चलता यार, क्या बात है यार।
1: सर्वर भाई कैरम का मजा उस टाइम आता है जब घर में रिश्तेदार आए हो,
0: हमें याद है कि गर्मियों की छुट्टियों में यही टाइम हुआ करता था जब हमारे यहाँ भी रिश्तेदार वगैरह आते थे, क्योंकि दादा दादी हमारे साथ ही होते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सब जगह से ही लोग आते थे, इवन पाकिस्तान से भी लोग घर आते थे, ताया चचा जो भी लोग हैं पाकिस्तान में वो लोग भी आते थे, तो पूरा माशाल्लाह घर में कहते हैं ना सब लोग जमा होते थे और फिर ये चीजें आमो खास होती थी, बिल्कुल घर के अंदर लूडो हो गया कैरम हो गया।
1: सोच रहा हूँ भी आपके घर पे कितनी महफिल लगती
0: है। अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अल्लाह ताला ने इसका जो है फायदा हमें उठाने की बहुत बहुत हमें वक्त दिया अल्लाह ताला ने, कि हमने घर वालों रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारा, एक एक साथ बैठ के 30-30 लोग खाना खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह घर में, तो ये टाइम हमने देखा यार अल्लाह का शुक्र, और मैं अल्लाह का शुक्र भेजता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो सोच भी नहीं सकते।
1: लास्ट में बस वही बात बोलना चाहूंगा, बात तो आप चाहे 1 घंटा कर लो
0: जी,
1: असल में सर्वर भाई बात पता क्या है, ये जो आपने एक साथ बात की बैठने की, आपने देखा होगा जो बंदा मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ना, जो लोग हमारे गांव में या आपके गांव में,
0: जी जी जी,
1: वो लोग जिस हिसाब से उसको समेट के रखते हैं ना, उसकी वैल्यू सर उन लोगों को ही पता है।
0: वाह,
1: इसी हिसाब से हमारे घर को जो बंदा समेट के रखता है,
0: क्या मिलाया है यार गाबा भाई, यार दिल जीत लिया यार, क्या बात कह दी भाई, वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ा मजा आया भाई बात करके एज यूजुअल, और बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए गाबा भाई, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए, थैंक यू सो मच गाबा।
1: ओके सर, टेक केयर,
0: थैंक यू। तो ख्वातीन हजरात ये थे हमारे साथ मिस्टर गाबा, और क्यों ना होती इतनी बातचीत भी, आप लोगों ने बताया अभी तक कि भाई कौन कौन क्या क्या किस किस तरीके से अपनी यादें जो हैं ताज़ा कर रहा है, आज जो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम है और इंटरनेशनल ओलंपिक गेम डे है, और इसके हवाले से आज मैं भी बातचीत कर रहा हूँ, आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स, आपका पसंदीदा गेम, आप क्या खेलना पसंद करते थे, क्या आज तक आप खेलते आए हैं, क्या अभी भी खेल रहे हैं, और फिटनेस के हवाले से, क्योंकि देखिए आज के दिन का पैगाम यही है, इज्जत देना, दोस्ती बढ़ाना, है ना, बेहतरी लाना, फिटनेस के हवाले से, खेल कूद के हवाले से, इट्स ऑल अबाउट दिस। तो यहां पर कोई और भी जुड़ गया है, ब्रेक पे जाने से पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नसीम भाई हमारे साथ, कैसे हैं नसीम भाई?
2: बाहर आया।
0: वाकई साहब आप आए, ये तो मैं कहूंगा नसीम भाई, आप आए बाहर आई, कैसे हैं, खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ साथ में आई।
0: क्या बात है नसीम भाई, कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
2: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का,
0: अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज कुछ लाए हैं क्या, शायरी वगैरह?
2: नहीं, वो आपके पाले में आ जाए
0: जी,
2: वो आपके हिस्से में आ जाए
0: आज हमारे हिस्से में। चलिए ठीक है, हम अता कर देंगे। तो नसीम भाई, आज बात हो रही है खेल कूद के हवाले से, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी याद, कोई ऐसा स्पोर्ट्स, कोई ऐसा खेल जो आप खेलते आए, जिसका आपको बहुत शौक है और जिसके बगैर आप आज भी नहीं रह पा रहे, कुछ शेयर करना चाहते हैं?
2: खेल तो वैसे बहुत कम खेलता हूँ, हमारे एक खेल है,
0: खेल तो कम खेलता हूँ, दिल से ज्यादा खेलता हूँ, है नसीम भाई?
2: ओ, कबड्डी वाला है।
0: कबड्डी खेलते हैं?
2: हाँ, कबड्डी पहले मैं खेलता था, लेकिन और खेल है हमारे यहाँ।
0: अच्छा,
2: बिल्कुल कबड्डी में प्लेयर होता है ना, वैसे इसमें भी तो उसमें कम बेस हो सकता है।
0: क्या क्या क्या क्या इसमें होता क्या है ये तो बताइए, इसका नाम क्या है पहले ये बताइए।
2: नाम है चुक्का, हमारे यहाँ बोलते हैं
0: चुक्का।
2: हाँ,
0: क्या बात है, और होता क्या है चुक्का में?
2: जिस तरह कबड्डी में खेलते है ना,
0: ठीक है,
2: वैसे ही, लेकिन उसमें कबड्डी कबड्डी नहीं बोला जाता है, बस और कुछ प्लेयर बीच में होते हैं, कुछ आगे होते हैं, घर बना होता है, उस लाइन पे रहना होता है।
0: अच्छा,
2: उस आदमी को फिर जो है पैर से उस आदमी को छूना रहता है, फिर पैर से उसको छू करके,
0: अच्छा,
2: छू गया तो वो मर गया, नहीं छुआ वो दूसरे तीसरे घर फलांग के तीसरे घर में जाके वो बाहर में बोलता है चुक्का, फिर उधर से वो वापस।
0: वाह, तो ये तो यार, ये तो कबड्डी से ज्यादा टफ हुआ, ज्यादा मुश्किल हुआ है ना।
2: चारों तरफ जो लाइन पे आदमी है वो चारों तरफ से रहेंगे, जो लाइन के बाहर है इसको
0: समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। वाह, क्या बात है, तो ये खेला करते थे आप यार, देखिए ये भी नई चीज पता चली भैया, चुक्का, अब कहूंगा सबसे भाई चुक्का खेला तुमने। इसके अलावा कुछ और पसंद करते थे आप खेलना, या कोई और ऐसी याद जो कोई तफरी वाली बात शेयर करना चाहते हो?
2: चुक्का ही में एक और फर्रेट हम लोग बोलते थे।
0: क्या फर्रेट? वाह, इसमें क्या है भाई?
2: इसमें भी यही सेम सेम है, लेकिन उसमें दूर भागना पड़ता है, ऐसा नजदीक का था, बस इतना फर्क।
0: अच्छा, क्या बात है यार, सारी तो आज फर्रेट और चुक्का दो चीजें पता चली। हाँ,
2: ये खेल में कबड्डी से ज्यादा मजा आता है खेलने के लिए, और इसमें दौड़ भाग भी ज्यादा है,
0: दौड़ भाग भी ज्यादा। क्या बात है यार, क्या कहने भाई, जबरदस्त। चलिए साहब, ये अच्छा लगा सुन के, और नई चीज आपने हमारे साथ शेयर करी, यही है कासम खास दिनों की खास बात, कि कुछ नया नया पता चले और नई ताजी बात पता चले। और कुछ शेयर करना चाहते हैं नसीम भाई?
2: बस
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर,
2: हैं आपसे शेर एक सुनना चाहता हूँ और कुछ
0: शेर सुनना चाहता हूँ, जरूर सुना दूंगा अभी इंशाल्लाह, और कॉल भी हैं क्योंकि ब्रेक पे जा रहा हूँ, उससे पहले इन लोगों से बात करके और उसके बाद इंशाल्लाह शेरो शायरी का भी जमेगी महफिल, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे नसीम भाई हमारे साथ, और बता के गए हमें दो दो नई नई चीजें, एक है चुक्का, एक है फर्राटा जो इनका खेला जाता है, क्या कहने भाई। और यहाँ पर कोई और हमारे पास, आइए इनसे करते हैं बात और उसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हेलो, सलाम अलैकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम सरवर भाई, क्या हाल है?
0: वैस भाई, कहाँ यार, किधर भाई, क्यों ऐसा यार?
3: आप मेरा फोन नहीं उठाते, हम आपसे नाराज हो गए थे, इसलिए मैं दो तीन दिन किया ही नहीं।
0: अरे यार, कैसी बातें कर रहे हैं यार वैसे भाई, ऐसा ना करें भाई, बिजी थे। चलिए साहब, अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे। तो कोई ऐसा खेल, कोई ऐसा कूद जो आप कूदते हो और पसंद करते हो?
3: मेरा पसंदीदा एक ही एक है जो क्रिकेट, उसके तो बता रहे हैं आप फंसे हुए हैं तो खेल नहीं पाते हो ना, आज भी खेलते हैं क्रिकेट और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खेलते हैं।
0: क्या बात है, माशाल्लाह, अभी भी खेल रहे हैं या कतर में भी खेल रहे हैं?
3: कतर में टाइम नहीं मिलता इसलिए नहीं खेल पाते, हमारे भांजे खेलते हैं तो हम जा नहीं पाते हैं।
0: अच्छा, चलिए साहब अच्छी बात है, मगर कोई ऐसी याद, कोई ऐसी और बात जो शेयर करना चाहते हो?
3: बात क्या, बस एक बार कबड्डी खेल रहे थे तो कबड्डी में थोड़ा सा एक बहन के घर पे गए, ससुराल गए हुए थे, तो वहाँ खेल रहे थे, तो वो जो कबड्डी वो लोग खेलते हैं तो पता नहीं उसमें एक लड़के ने मेरी टांग को कैसे दबा दिया, मेरे दोनों जो वो नहीं होते ऊपर के टखने,
0: हाँ, उनमें चोट लग गई,
3: नहीं वो दोनों आपस में टकरा गए, मेरे ही आपस में, और टकराने के बाद पता नहीं क्या जैसे जैसे टांगों में
0: ओहो, और मुझे लगता है कि

0: कॉल ड्रॉप भी हो गई। चलिए साहब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं अजान भी और उसके बाद वापस आके बातचीत जारी रहेगी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर।

0: जेनजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कदर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: वेलकम बैक, अहलन वसहलन, खुश आमदीद, स्वागतम। बिल्कुल भाई, सन एंड साउंड पे इस वक्त संत जोरों शोरों पर है और साउंड आपकी गूंज रही है पूरे ही कतर में। और यहाँ पर आज बातचीत हो रही है इंटरनेशनल ओलंपिक डे खासम खास, और वहीं नेशनल हाइड्रेशन डे भी है भाई, तो पानी वगैरह का भी ख्याल रखना है। तो आज इसके हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ, आइए उनसे बातचीत करते हैं और फिर मजीद आपको और भी अपडेट देता हूँ। हेलो, सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम सरोवर भाई, कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कौन है हमारे साथ?
3: मैं नदीम नजाकत।
2: नदीम नजाकत साहब, वाह माशाल्लाह। नदीम भाई कैसे हैं, खैरियत से?
3: आप सुनाई कैसे हैं?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं नदीम भाई। और कैसा रहा नदीम भाई दिन अभी तक का?
3: आज आपसे मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सुनता रहता हूँ लेकिन टाइम ऐसा होता है कि नहीं बात हो पाती है मेरी।
2: अच्छा।
3: लेकिन आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है।
2: अरे
3: कभी चाय पे बात होती है तो कभी किसी चीज पे बात होती है।
2: अरे सर,
3: कभी कोई आपको चाय भेज देता है, कभी कोई चाय भेज देता।
2: ये तो मोहब्बत है सर, कहना चाहिए कि बराबर और दोनों ही तरफ से जब होती है तो ही मजा आता है। और ये आप लोगों की मोहब्बत है, और खासतौर पर जैसे आप बता रहे हैं नदीम भाई कि आप सुनते रहते हैं।
3: मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं आपसे मुलाकात करूं, लेकिन आपका टाइमिंग मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको बताया था ना, मैं टेलीविजन 37 में आपको फोटो भी भेजा।
2: आपने फोटो जी पिछले दिनों आपने फोटो शेयर किया था नदीम भाई, राइट।
3: तो मैम जो है वो सुबह में उधर ही जाती है, तो मैं वहाँ पर तकरीबन 9:30-10 तक रहता हूँ।
2: अरे वाह माशाल्लाह। नहीं तो आप
3: मैम से तो माशाल्लाह रोजाना ही बात होती रहती है। और रात तो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आज वो कुछ ख्वाबों पे बात चल रही थी, तो मैंने ऐसी इमेजिंग किया कि मैंने कहा मैम मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे ऐसे ऐसे होंगी, तो करेंगे ये तो सच बता रहे हो, और कभी मैं उनसे मुलाकात ही नहीं हुआ पाए।
2: वाह क्या बात है। तो ये यही मोहब्बत का सिलसिला है सर, कि हम जो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो मोहब्बत अपने आप आ जाती है। और आप जरूर मुझसे मुलाकात करें इंशाल्लाह, जब भी आप तशरीफ लाए यहाँ पर तो आप उर्दू रेडियो की तरफ।
3: क्योंकि मैम जो है अभी तकरीबन उधर ही जा रही है,
2: तो आप जब उर्दू रेडियो में तशरीफ ले आइए और इंशाल्लाह ताला आपका भाई हाजिर खिदमत है, इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। मैं सुबह से ही आ जाता हूँ सर और दोपहर तक रहता हूँ।
3: अच्छा चलिए इंशाल्लाह बात करूंगा। और मैं वैसे बहुत करीब से हूँ आपकी।
2: अच्छा,
3: आप शायद अलीगढ़ से हैं?
2: जी बिल्कुल, मैं अलीगढ़ से हूँ। आपका ताल्लुक कहाँ से?
3: मेरा ताल्लुक बस आजम खान का एक शहर है, रामपुर।
2: ओके भाई वाह क्या बात है यार, आप तो हाँ वाकई हमारे करीब से हैं, बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत जगह, बड़ी हिस्टोरिक जगह से हैं आप तो माशाल्लाह से। क्या बात है भाई। तो अब चलिए कम से कम कड़ाऊ गोश्त जो है उसको मिस नहीं करूंगा मैं। और बात अपनी बात पे और औकात पे आ जाता हूँ फौरन। अहलन वसहलन भाई। नदीम भाई बड़ा अच्छा लगा कि आपने कॉल किया, और आज का जो मौजू है उसके हवाले से भी कुछ कहना चाहते हैं हम। स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, खेल कूद, नॉट ओनली स्पोर्ट्स एक्चुअली, खेल कूद के हवाले से बात कर रहे हैं। आज जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे है, तो क्या ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हो खेल से, मोहब्बत के हवाले से?
3: यहाँ तो जो टाइम गुजरा है ना वो शगल में ज्यादा टाइम गुजरा
2: माशाल्लाह। नहीं तो चलिए ये तो यहाँ की बात हो गई, पुराना पिछला कोई खेल कोई बात याद हो?
3: शुरू कर रहा हूँ, शायद मैंने शायद होश भी नहीं संभाला था, तब से मैं कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थी, घर के हालात ऐसे थे कि उसमें पड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हाँ पहले जो गेम खेलते थे हम
2: जी,
3: ओ शायद आपको मालूम होगा लब्बादास,
2: ये यूपी के कुछ खास गेम है। अच्छा मुझे लगता है कि जैसे लब्बादास हो गया या गिल्ली डंडा हो गया, ये और जगह भी खेला जाता है या नहीं, तो भाई हमें जरा बताइएगा, दूसरे लोग भी जो हमें सुन रहे हैं आप मैसेज करके भी बताइएगा, गिल्ली डंडे को किसी और नाम से भी आप क्या कहा जाता है, या फिर वो जो हम लकड़ी से टायर को चलाते हैं उसका भी एक नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा नदीम भाई, अगर आपको याद हो।
3: नहीं नहीं मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ बस बहुत सारे ऐसे गेम हैं। और आपको तो मालूम है रामपुर जो है वो नवाबों का शहर है, तो आजम खान ने एक बात कही थी कि रामपुर वालों को जरूरत नहीं है कि कहीं काम करने की, वो तो खुद नवाबों की शहर थे तो वहाँ तो लोग इसी उसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है एहसान है आप लोगों से बात करके टाइम गुजर जाता है
2: माशाल्लाह बहुत। अरे सर बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए और बहुत अच्छा किया आपने कॉल किया, और इंशाल्लाह मुलाकात भी करेंगे
3: माशाल्लाह से अमिता मैम से और कबीर भाई से, तो मुलाकात है 21 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तब से।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहतियाब रखे और भी कामयाबी दे, और इंशाल्लाह जरूर मुलाकात कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई कनेक्ट करने के लिए।
3: सबसे फेवरेट जो है गेमों में मैं रेसलिंग देखता हूँ, WWF की, वो मेरा सबसे फेवरेट है,
2: वो फेवरेट है, वो मेरा भी एक टाइम पे फेवरेट मेरे ख्याल में सभी का होता था। हमें याद है कि फ्राइडे के दिन टेलीकास्ट होता था वो खासम खास, और नमाज के बाद बैठ के देखा जाता था, और कभी मौका तो नहीं मिला लड़ने लड़ाने का, शरीफ आदमी हूँ क्योंकि मैं, मगर देख लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच
3: सर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर।
2: अरे सर
3: इंशाल्लाह कभी रामपुर आइए, हम आपका पैर कोरमा खिलवाएंगे।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, अहलन वसहलन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे नदीम भाई, और प्यारी प्यारी बातें, और आप लोगों की मोहब्बत हमेशा से ही मिलती आई है हम सभी को, इसी तरीके से ये सिलसिला जो है जारी और सारी रखी है इंशाअल्लाह। और खासम खास आज जो दिन है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई और कनेक्ट हो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कौन जुड़ गया है हमारे साथ? अहलन वसहलन मुदस्सिर भाई हैं हमारे साथ,
4: कैसे हैं सर भाई? ठीक ठाक,
2: अल्लाह का शुक्र है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसे हैं, खैरियत से हैं?
4: अल्लाह का करम है, अभी तक तो बिल्कुल खैरियत है, अल्लाह का
2: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला रखे हम सभी के साथ। तो मुदस्सिर भाई क्या कहना चाहते हैं, कोई ऐसा खेल कूद जो पसंद किया और अभी तक जारी सारी है, या कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात शेयर करना चाहते हैं? मुदस्सिर भाई हैं या गए? आवाज भी बंद हो गई जो हवा की तेजी से आ रही थी, और वो हवा भी बंद हुई और आवाज भी बंद हुई, दोनों एक साथ बंद हुए। चलिए खैर कोई बात नहीं भाई, हमारे साथ फिर कनेक्ट हो जाएंगे। तो आइए जनाब अब जरा जान लेते हैं कि क्या है
5: वेदर का हाल 107 दिनाल।
2: भैया जबरदस्त हो रखा है इस वक्त वेदर, और ये सुनने के बाद मुझ पर गुस्सा मत करिएगा, जो लिखित में है वो बता रहा हूँ, 38 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है ओनली, बिल्कुल सही सुना आपने, 38 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त। हाँ फील्स लाइक अगर बात करें तो इस वक्त 43 डिग्री है, 43 डिग्री सेल्सियस। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है अब सर चढ़ के बोलने लगी है, और 34% इस वक्त बताई जा रही है, 35% के करीब इस वक्त ह्यूमिडिटी है मौसम में। हवाएं वहीं 11 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चल रही, तो हवाएं भी क्योंकि हल्की हो रही हैं इधर, और ये बिल्कुल हल्की हो जाएंगी भाई, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 4-3-2 तक भी पहुंच जाएंगी। खासम खास क्या है QMD के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं कि कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक कल का दिन जो था, बल्कि पिछले 3 दिन जो थे वो बड़े खासम खास थे। वो क्या थे मैं आइए आपको बताता हूं, और वो थे समर सोल्स्टिस या सोल्स्टाइस अगर मैं सही कह रहा हूं तो। और इसमें क्या होता है, सूरज शुमाल मगरब यानी नॉर्थ ईस्ट से निकल कर शुमाल मगरब यानी नॉर्थ वेस्ट में गुरूब होता है, शुमाल मशरक से निकल कर शुमाल मगरब नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट में गुरूब होता है, और दोपहर के वक्त जो साए हैं, जो परछाई है, वो बहुत ही छोटे नज़र आते हैं। डिपार्टमेंट ने बताया कि ये जो दिन है ये गर्मियों की शुरुआत की निशानी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये साल का सबसे ज़्यादा गर्म दिन भी हो, बट ऐसा हुआ अभी तक का तो गर्म दिन कल का ही रहा, तो इसके बाद दिन धीरे धीरे छोटे और रातें लंबी होना शुरू हो जाती हैं। और ये जो दिन है वो लंबा होता है, साल का सबसे लंबा दिन होता है जो कल था। और जमीन के शुमाली हिस्से में यानी नदर्न हेमिस्फेयर में सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है सूरज इस दिन के ऊपर, तो इसी वजह से सूरज आसमान में सबसे बुलंद रास्ता इख्तियार करता है और दिन की रोशनी सबसे ज्यादा होती है। अगर बात करें साल का सबसे लंबा दिन, तो वाकई ये था कल जो गुजरा। और जमीन के झुकाव की वजह से जमीन पे अपने एक्सिस पर तकरीबन 23.5 डिग्री जो लिखित में वो बता रहा हूँ झुकी हुई होती है जमीन जो है। जब शुमाली हिस्सा सूरज की तरफ ज्यादा झुकता है तो समर जो है, समर सोल्स्टिस जो है वो होता है, जो कल हो के चुका है। अच्छा साहब, कब होता है ये? जब होता है कि तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आमतौर पर ये जो तीन दिन गुजरे हैं 20, 21, 22 जून ये दिन खासम खास होते हैं। और क्या सबसे गर्म दिन होते हैं? तो ऐसा नहीं है, बट जमीन और समंदर को गर्मी जमा करने वाले जो वक्त है वो इसमें लगता है, इसलिए अक्सर सबसे ज्यादा गर्मी जुलाई या अगस्त में महसूस की जाती है यहाँ की अगर बात करें तो। तो साहब कतर में समर सोल्स्टिस जो है ये तीन दिन जो गुजरे हैं वो उसमें रहा, और दिन की मुद्दत साल की दूसरी तक

0: दोपहर के वक्त जो साया था वो इंतहाई छोटा रहा, तो ये चीजें शायद आपने भी ऑब्जर्व की हो। मैंने तो नहीं करी भाई, बट गर्मी मैंने जरूर करी। कल गर्मी सबसे ज्यादा महसूस हुई, आज भी कुछ ऐसे ही माहौल है क्योंकि मेरे ख्याल में ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। तो आइए साहब, आप बढ़ते हैं आप लोगों के मैसेजेस की जानिब और आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 666-22-107 इज द नंबर, और वहीं मैसेज भेजने के लिए आप इस पे कांटेक्ट करें, और मैं कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? विनर के प्राइस का पूछ रहे हैं, मेरे साथ कौन है? बिल्कुल आप तक पहुंचने वाला है आरिफ अंसारी साहब। आरिफ भाई, जो मैसेज और आपको आया है या जहां से भी मेल आया है उस पर इंशाल्लाह कांटेक्ट करें। मेरे पास इतनी ही खबर है मेरे भाई कि वो जल्दी मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप जितनी बार बताएंगे मैं भी यही याद दिला पाऊंगा क्योंकि मेरे पास भी अभी उतनी ही अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग सरोवर भाई, कैसे हैं आप? होप वेल, वेलकम टू सन एंड साउंड। दिल से देसी यूसुफ भाई हमारे साथ जुड़ गए। कहते सरोवर भाई, मुझे आउटडोर गेम्स में बैडमिंटन अच्छा लगता है, कभी भी खेलता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इंडोर गेम्स में तंबोला बिंगो अच्छा लगता है, घर में मैं कभी कभी अपनी बेटी के साथ खेल लेता हूं। क्या बात है यार यूसुफ भाई, और बच्चों के साथ ये जो मशगूल रहना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा भी होता है। अस्सलाम वालेकुम सरोवर भाई, कैसे हैं आप? और खासम खास दिन में खासम खास क्या है? खासम खास कह रहे हैं, खास खास हो गए, क्या कहना चाहते हैं? फराज हैदर है हमारे साथ, आइए एक कॉलर है हमारे साथ, पहले उनसे बात करते हैं फिर मैसेजेस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, हजरत कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, हमजा है हमारे साथ, राइट?
1: जी बिल्कुल।
0: क्या बात है भाई हमजा, कैसा गुजरा दिन? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ मेरे भाई, आप बताइए कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ा गरम गरम
0: गुजरा है भाई, बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत, पानी चानी पीते रहे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रखे हमजा। तो हमजा, आज हम खेल कूद के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या कहना है आपका
1: भाई? आपके टॉपिक ने कुछ बचपन की यादें ताजा कर दी
0: है।
1: कुछ बचपन की वो मारे जो हम डिजर्व नहीं करते थे,
0: अच्छा
1: वो हमें पड़ी है और हमें वो याद आ गई है दोबारा
0: खेल कूद के चक्कर में।
1: खेल कूद के चक्कर में,
0: अच्छा तो क्या थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ
1: भाई। हाँ। कि मैं बचपन से थोड़ा ना खेल कूद के मामले में इतना खास नहीं था, लेकिन बस देखने में ज्यादा मजा आता था।
0: ओके।
1: हाँ भाई, अगला खेल है, कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो बड़ा मजा आता था।
0: हाँ।
1: तो वो जो पतंगबाजी का सीन होता था ना, अब उसमें देखना पड़ता था ऊपर।
0: ओके।
1: मैं उस वक्त थोड़ा ज्यादा ही छोटा था, यानी कि पांच साल का था। तो मैंने ना घर से जिद करके साइकिल ली थी, मुझे साइकिल चलानी है।
0: ओके।
1: वो घर वालों ने दिलवाई, मैं बाहर जाके पतंग देखने लग गया, नीचे से कोई साइकिल ले गया। वो घर पे आया तो मुझे डांट पड़ी, उसके बाद नहीं तेरे को साइकिल नहीं मिलेगी।
0: यार ये साइकिल चोरी जो होती है ना, ये वाकई बड़ी तकलीफ भी देती है, और उसपे फिर घर वालों की भी बातें, मेरे साथ भी हो चुका है यार, और बड़ा अफसोस। और साइकिल तो हर एक चीज होती है उस वक्त हमारे लिए। अच्छा साहब, तो ये भी हो चुका आपके साथ। वैसे क्या पसंद करते हैं खेलने में हमजा यूजुअली?
1: भाई स्नूकर का शौक रहा है एक हद तक।
0: ओके,
1: काफी टाइम खेला भी है, लेकिन ये है कि मैं इसे इतना प्रॉपरली नहीं खेला कि किसी इवेंट्स वगैरह में खेल सकूं।
0: अच्छा।
1: हाँ, शौकिया तौर पर खेला है दोस्तों के साथ बहुत सारा।
0: स्नूकर ज्यादा या पूल ज्यादा?
1: स्नूकर, पूल आज तक नहीं खेला।

0: बड़े खिलाड़ी हैं हमजा।
1: स्नूकर का टेबल बड़ा होता है और उसमें चलो दिमाग लगाना पड़ता, पता होता है कि हाँ यार ये अभी चेरी फंस गई या कलर फंस गया
0: एग्जैक्टली,
1: तो उसमें देखना पड़ता, उसमें मजा आता, तो वो शुरू से वही खेला। दूसरा पूल का शौक ही नहीं रहा।
0: क्या बात है।
1: और एक वक्त था पतंगबाजी का शौक रहा था।
0: ये है बड़ा शौक, ये है बड़ा शौक जिसमें जिसमें पूरी दुनिया बुला दी।
1: कब आता था भाई
0: है?
1: इसमें सबसे ज्यादा गुस्सा पता है कब आता था? जैसे अगर आप का पेचा लग जाए दूसरे पतंग के साथ,
0: ठीक है
1: ठीक है, और आपने डोर पकड़ी हुई है और कोई दोस्त आके आपका डोर पकड़ ले और आपकी पतंग कट जाए,
0: पूरी जिम्मेदारी उसकी।
1: यकीन माने दिल करता था कि उसको उधर ही लिटा के मारना शुरू कर। तो बहुत बार लड़ाई हुई भी है इस बात पे कि अगर तो नहीं पकड़ता तो
0: मोहल्ले की जो लड़ाइयां हैं यार वो छोटी छोटी बातों पे ही होती हैं और वो वाकई यादगार रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं। और मोहल्ले के जो दोस्त होते हैं वो वाकई बहुत ज्यादा करीबी दोस्त हो जाते हैं। अगर आप वहीं रहते आए हैं तो शायद लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। क्या बात है भाई हमजा, और कुछ शेयर करना चाहते हैं?
1: सर आपसे एक शेयर सुनना चाहता हूँ कि आपका कैसा गुजरा बचपन, आपकी कोई याद आपका कोई इस तरह?
0: यार मेरे बहुत सारी यादें हैं और हंगामा तफरी तो हमारा हमेशा से रहा और मैं बहुत पिटा हूँ अब्बा से और ये खेल कूद के चक्कर में ही। जैसा कि मैंने बताया कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ स्कूल वगैरह से निकल के कॉलेज वगैरह में आया तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एथलीट बना और मुझे खेलकूद का शौक भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंडोर में मैं चेस में और वीडियो गेम में बहुत फंसा रहता था और इतनी चसक लग गई उसकी कि वीडियो गेम फिर बाहर किराए वगैरह पे जो आज तक का माहौल है वो तो ऐसा, मतलब अभी भी हमारी तरफ, हमारे कहना चाहिए छोटे शहर या गाँव की तरफ वो माहौल है जहाँ रेंट करके खिलवाया जाता है, थोड़े पैसे लेते हैं वो। और उस टाइम पे भी ऐसी था तो जब घर में बंद कर दिया जाता तो मैं बाहर चला जाता था खेलने और वो फिर पैसे दे के और खेलता था। तो उसमें जो मेरी मार पड़ती थी यार घेर घेर के वो बहुत ही जबरदस्त पड़ती थी और अब्बा मारते थे क्योंकि मैं सुनता नहीं था। और मैंने कल परसों भी जिक्र किया था कि मेरे
1: याद आया।
0: अच्छा क्या था?
1: मेरा छोटा भाई जो है ना उसने एक बार अब्बू से मार खाई थी इसी बात पर। वो माशाल्लाह हाफिज़े कुरान है।
0: माशाल्लाह।
1: उसको ना न्यूली शौक चढ़ा था कि सी एस आई थी काउंटर स्ट्राइक। तो वो क्या करते थे कि कंप्यूटर उन्होंने लाइन से लगाए थे 10-12, ठीक है, तो हाफ कंप्यूटर पे टेररिस्ट वाले और हाफ कंप्यूटर काउंटर स्ट्राइक वाले। तो इकट्ठे बैठ के ना शोर मचा बचा के उन्होंने खेलना। तो एक बार इसी तरह 3-4 घंटे घर नहीं आया। तो वाले साहब ने मुझे बोला कि इसको ढूंढो खाया किधर।
0: ये जो प्रोसेस शुरू होता है हमजा, बात रोक रहा हूँ तुम्हारी, ये जो तंदूरी चिकन का मैरिनेशन कहते हैं जब शुरुआत होती है ना भाई, उसके बाद मैरिनेट करके जो पकाई होती है, ओए होए होए। तो क्या किया, ढूंढ के लाए फिर?
1: भाई मैंने क्या ढूंढा था?
0: अच्छा इसमें रहम भी तो आ जाता है ना। अब्बा ने ढूंढने भेजा, अब वहां जाके पहले तो उसके ऊपर थोड़ी अपनी धाक बिठाना, आ बेटा चल घर, अब्बा बुला रहे हैं, अब देखा जाएगा जो होगा, अब चल घर,
1: तुम्हारे लिए बनी है चिकन बिरयानी,
0: दावत रेडी है।
1: तो मैंने क्या ढूंढना था भाई, वो इत्तफाकन उसका दोस्त मिला वाले साहब को और वाले साहब ने उससे पूछा, उसने सिंपली बोल दिया अंकल वो तो बैठा हुआ है काउंटर स्ट्राइक खेल रहा है उधर। तो वो वाले साहब उधर खुद पहुंच गए, वहीं से थप्पड़ पहला रसीद हुआ है।
0: वाह वाह।
1: और उसके
0: वहां से जो शेर सुनाना शुरू किए हैं अब्बा ने, वहां से जो शेर सुनाना शुरू किए तो घर तक जो गजल पूरी करी है आते आते।
1: उसको नहीं भूलती होगी
0: ये यादें हैं यार। और ये वाकई ये रहम हुआ हमारे ऊपर के अम्मा अब्बा ने हमारे ऊपर सख्ती करी और ये सारी चीजें यादें हैं और हमारे लिए वाकई ये चीजें यादगार हैं और कारगर साबित हुई। भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमजा हमें ज्वाइन करने के लिए, एज यूजुअल बड़ी अच्छी बातें हमेशा की तरह। अपना ख्याल रखिए, हाइड्रेटेड रहिए और बहुत एहतियात और ख्याल से इंशाल्लाह ड्राइविंग कीजिएगा, ठीक है? ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज हमजा, अल्लाह हाफिज। तो भाई लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, यूं गया और यूं वापस आया।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: लीजिए साहब, बज गए 12 बल्कि 12 बज के सही 7 मिनट।
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड, आरजे सर्वर मिर्ची।

इसके लिए रुका हुआ था मैं। शश्वत सचदेव भाई, बैक टू बैक इसी मूवी से दो गाने एंजॉय कीजिए। सर्व मिर्जा आपके साथ। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जुल्म बस इतना है आपसे प्यार।

0: भाई कुछ आवाजें ऐसी हैं जो नई आती हैं मगर दिल में जगह बना लेती हैं। उनमें से देखिए ये भी बेहतरीन नए नए सिंगर्स, जिसमें सरताज ने चली और गाने गाए बट जैस्मीन ने एकदम से जो जगह बनाई इंडस्ट्री में वो काबिले तारीफ है।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ।

0: 107 पर दिल से देसी।
1: हाँ जी वेलकम बैक हेलन बस हेलन, खुश आमदीद। बिल्कुल सन एंड साउंड में सरवन रजा आपके साथ, और सन तो अपनी इस वक्त शेखी और जोरो शोर में, और साउंड आप लोगों की। यहाँ पर आइए हमारे साथ कुछ जुड़ गया है, ये उनसे बात करते हैं। हेलो सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम सरवन भाई, कैसे हैं? वो कॉल कट गई ना।
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुदस्सर भाई।
2: जी जी सरवन भाई,
1: क्या बात है मुदस्सर भाई, खैरियत से हैं?
2: जी अल्लाह का करम है, बस सॉरी मेरे पास ऑर्डर था वो मैंने डिलीवर कर दिया।
1: अरे अरे अरे, आपके पास एक मोहब्बत का पैगाम था जो आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। बड़े भाई यही तो है खूबसूरत और खासियत। तो मुदस्सर भाई, कोई ऐसा खेल, कोई ऐसा कूद जो याद आता हो?
2: जी जी सर भाई बिल्कुल, आपको पता है हम डीसी लोग हैं, हमने ये जो स्पोर्ट्स है क्रिकेट वगैरह ये सारी चीजें हम लोगों ने खेली है गांव में बचपन में, लेकिन मैं ज्यादातर मैंने क्रिकेट खेला है। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन और बहुत बड़ा शौक है मेरे क्रिकेट का।
1: अच्छा, तो कोई ऐसा किस्सा कहानी, कोई ऐसी याद जो शेयर करना चाहते हो, इफ कोई याद है?
2: क्रिकेट में तो दो चीजें है सर और भाई, आपने या तो क्रिकेट खेलने और बचपन में क्रिकेट के बाद घर में जाके मारपीटने, बस ये दो चीजें हैं।
1: और घर पे जाके हमारी बॉल बनाई जाती थी, यही दो चीजें हैं क्रिकेट में।
2: जी, तो असर दोपहर और असर के टाइम हम लोगों ने क्रिकेट खेली थी और शाम को घर वालों से मारपीट। आपको पता है जरूर भाई, लेकिन जितना हम लोगों ने क्रिकेट की वजह से मार खाई थी उतनी वजह उसकी वजह से हम लोगों क्रिकेट का बहुत शौक और भी बढ़ जाता था।
1: क्या बात है, क्या अब और करूंगा। अब और करूंगा।
2: जी जी, मना तो नहीं होना था ना, लेकिन मार तो हमको पता है असर के टाइम हम लोगों ने क्रिकेट खेलने और शाम को जब हम लोग घर जाते थे तो वालिद साहब और जो चचाजाद बड़े भाई थे तो उन लोगों ने थोड़ी सी वो इस्तकबाल करनी थी, लेकिन उनके लिए हम तैयार होते थे, कोई बात नहीं, क्रिकेट तो खेलना है ना।
1: उसके लिए तैयार थे, आगे पीछे कपड़े ज्यादा पहन लेते थे, ऊपर नीचे डबल ड्रेस।
2: सर भाई, जी जो हमारा बचपन था पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि नहीं, लेकिन हम शेयर कर रहे जो बचपन का हमारी जो जवानी की जो दिन थी, मतलब जब हम लोग दोपहर को अरसर को क्रिकेट वगैरह खेलते थे, जिस टाइम हम लोग शाम हुआ करते थे, शाम के टाइम हम लोग जब घर जाते थे, आपको पता है हम देहाते लोग तो हमारी सोसाइटी में हमारी इलाके में तो शाम के वक्त सारे जो लोग है वो इकट्ठे खाना खाते थे, इकट्ठे बैठते थे। जो शाम का वक्त था वो बहुत मतलब घर वालों से पेश करना बहुत बड़ी मुश्किल थी वो। आपको पता है जिसकी पूरी दिन की जो कहानी थी, पूरी जो दिन की जो डिटेल थी वो, मतलब उन लोगों के साथ बैठना, उन लोगों के साथ सामना करना वो बहुत मुश्किल थी। ये बस आपको पता है ये बहुत मुश्किल टाइम थी शाम के वक्त लोगों का सामना करना
1: उन लोगों को जाके, ये वाकई मुश्किल होता था दिन भर हंगामा काटने के बाद। क्या बात है भाई मुदस्सर भाई, आइए अब तीन के दम के लिए रेडी।
2: जी जी खेलेंगे सर भाई, क्या नहीं,
1: क्या बात है। तो चलिए साहब शुरुआत कर देते हैं आज मुदस्सर भाई से तीन कदम की। दरिया में पानी होता है या चाय?
2: दरिया में पानी भी होते हैं और मछलियां भी होती हैं।
1: नहीं मैंने कहा चाय, मछली नहीं।
2: नहीं चाय क्या होते हैं ना, चाय पानी से बनती है लेकिन चाय नहीं होती है।
1: चाय नहीं होती है। चप्पल पैर में पहनते हैं या हाथ में?
2: मैं तो पाँव में पहनते हैं लेकिन कुछ लोग हाथ में भी पहनते हैं। देखा है मेरे कुछ लोग सीरियस है, मेरे कुछ लोग हाथ में भी पहनते देखा है।
1: पहले देखा है वो हाथ में पहने देखा, उस वक्त जब हम कोई हरकत करते हैं और उसके बाद उसका आउटपुट जो होता है वो जब हाथ में पहनी जाती है, मतलब सर भाई ऐसे थोड़ी
2: हम लोग पाँव में पहनते हैं।
1: क्या बात है, चलिए ओके। तो कल वाला एक सवाल जो अभी मैसेज भी आ रहे हैं उसके जवाब अभी तक कोई दे नहीं पाया, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। अदनान एक 15 मंजिल की बिल्डिंग पर रहता है, ओके, और 15th फ्लोर पे ही रहता है, ठीक है,
2: ओके।
1: जब वो घर वापस आता है, बाहर वो चला जाता है, ठीक है, जब वो घर वापस आता है तो लिफ्ट यूज करके अपने घर पहुंचता है, लेकिन जिस दिन लिफ्ट में उसके साथ लोग होते हैं उसी दिन वो घर जाता है, जिस दिन उसके साथ कोई भी नहीं होता लिफ्ट में उस दिन वो 9th फ्लोर पे जाता है, 9वें माले पे, और उसके बाद का सफर वो सीढ़ी से करके अपने घर जाता है। तो ये बताइए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है।
2: अच्छा, जिस दिन लोग उनके साथ होते हैं तो उस दिन वो अकेला जाता है या लोगों के साथ जाता है?
1: लोगों के साथ, लोगों के साथ। जिस दिन उसके साथ लिफ्ट में लोग हैं वो अपने घर जाता है सीधा, मगर जिस दिन वो अकेला होता है पहले वो नवे माले पे जाता है और फिर वहां के बाद वो सीढ़ी से घर जाता है। तो ये नवे माले पे क्या गड़बड़ हो रही है? अदलान कर क्या रहा है अदलान भाई? मतलब क्या कर रहे हैं अदलान भाई?
2: मतलब वो 15 फ्लोर से 9th फ्लोर आता है, 9th फ्लोर से वो घर जाता है।
1: हाँ, 15 देखिए 15 पे तो वो रहता है, ठीक है। अब जब वो घर ओके वो अपने स्कूल वगैरह चला गया या जो भी हुआ, अब जब वो वापस घर आता है तो वो पहले 9th फ्लोर, अगर उसके साथ लोग हैं घर में, कोई मोहल्ले वाला है, बिल्डिंग वाला है, तो वो सीधे अपने घर जाता है। अगर कोई उसके साथ नहीं है तो वो पहले 9th फ्लोर जाता है और उसके बाद का सफर वो सीढ़ी से जाता है ऊपर तक।
2: अच्छा अच्छा, मतलब वो रहता 15th फ्लोर में है लेकिन जाते वक्त वो 9th फ्लोर जाता है, तो वो 15 जाता है।
1: हाँ, 9 तक तो लिफ्ट से जा रहा है, उसके बाद वो सीढ़ी से ऊपर जा रहा है।
2: तो अदनान, क्या नंबर आपके पास है

0: बड़ा अच्छा जवाब है इसका।
1: तो शायद उनके दो घर होंगे, एक नाइन्थ फ्लोर में, एक 15th फ्लोर में।
0: तो ऊपर क्यों जा रहा है फिर? नहीं, घर उसका एक ही है, एक ही घर है, वहीं रहता है।
1: अच्छा, घर भी एक है और वो नाइन्थ फ्लोर से 15th फ्लोर जाता है।
0: बिल्कुल,
1: सोचने की बात है सर भाई।
0: चलिए तो सोचिए और फिर मुझे इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे भी जवाब दे सकते हैं, नो वरी।
1: ओके ओके ठीक है, इंशाल्लाह मैं सोचता हूँ अगर कोई स्पेसिफिक जवाब मिल गया तो हम लोग व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है।
0: अच्छा ये बताइए, पिछला सवाल आपने जो जवाब दिया था कौन सा था, कुछ याद है?
1: इससे पहले
0: हाँ, लास्ट टाइम जब भी हम खेले,
1: आपने बोला कि चप्पल हम
0: नहीं नहीं नहीं नहीं वो नहीं, लास्ट टाइम आज नहीं, इससे पहले आपने
1: तीसरा वाला जवाब था।
0: हाँ,
1: वो आपने बोला था कि एक मुर्गा ऊपर अंडा देता है तो वो नीचे गिरता है, तो ऐसा कुछ सवाल था, तो मैंने बोला कि मुर्गा अंडा देता ही नहीं।
0: अच्छा चलिए, तो आपने ये वाला जब नहीं, मैं ढूंढ रहा था, मैंने कहा कौन सा वाला आपसे पूछूं या कौन सा वाला नहीं पूछूं।
1: एक और मैं के लिए
0: नहीं, इसका जवाब नहीं दे पा रहे, इसके तो जवाब आते रहेंगे, ये तो अब जब तक जवाब इसका नहीं आ जाता अदनान वाली पहेली का, ये तो चलती रहेगी।
1: अदनान से हम पूछते हैं ना, अदनान का हम पता करते हैं, लेकिन कोई फ्रिज वगैरह का पूछे कि फ्रिज में वो कौन सी चीज रखते हैं जो फ्रिज में रख कर भी वो
0: याद रखा है, सोच के लेके आए, ये वाला जवाब दूंगा। उसी हिसाब से तो करना पड़ता है। अच्छा बताइए, वो ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती तो हरी है निकलती लाल है?
1: देखती
0: हरी है निकलती लाल है,
1: ये तो तरबूज भी हो सकते हैं।
0: नहीं, तरबूज नहीं है, तरबूज तो काफी रंग होते हैं उसमें।
1: अच्छा, देखती हरी और एक चीज थी मैंने वो दिन,
0: चलिए तरबूज भी, अगर तरबूज भी ले लें, चलिए दूसरी क्या चीज है?
1: ओके, एक और चीज है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक लाल है। सरल भाई
0: कौन है, कौन है?
1: ये सर भाई मूंगफली भी हो सकती है, मूंगफली।
0: अरे अल्लाह से तौबा करो यार, मुझे भाई मूंगफली हरी कब से हो गई?
1: अच्छा तरबूज
0: है। कौन सी चीज है तो लगती तो हरी है निकलती लाल है?
1: चलो सोचते हैं,
0: ओके ओके ओके, मुझे सर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, तो ये थे मुदस्सिर भाई जिन्होंने मूंगफली को हरा कर दिया। बहनों और भाइयों, आपने कभी हरी मूंगफली खाई है? ये भी अगला सवाल पूछ लूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान।
0: हाय फैजान भाई, कैसे हैं आप?
2: जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं?
0: माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
2: जी बहुत अच्छा गुजर रहा है, मैं एक जरा पर्सनल काम गया हुआ था।
0: अच्छा,
2: तो छुट्टी की थी आज ऑफिस से, तो अभी रेडियो मैंने ट्यून ऑन किया तो आपको माशाल्लाह सुन रहे हैं, बड़ा मजा आया सुन के कि हरी मूंगफली भी होती है।
0: हरी मूंगफली लाए हो? लाए हो फैजान भाई?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं खाई, बिल्कुल नहीं खाई।
0: अच्छा तो चलिए ठीक है, तो आपके साथ भी तीन का दम खेल लेते हैं। फैजान भाई रेडी?
2: जी जी मैं रेडी।
0: एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं?
2: हफ्ते में 7 दिन होते हैं।
0: आसमान का रंग दिन में कैसा होता है?
2: दिन में वाइट होता है।
0: चलिए तो अब वही सवाल जो इस वक्त मैंने किया था, आपने सुना था या नहीं सुना था, मैं कर लेता हूँ फिर भी। अदनान का सवाल सुना आपने?
2: जी मैंने अदनान वाला सवाल सुना था।
0: क्या कहते हैं?
2: मुझे लगता है कि या तो अदनान साहब ब्लाइंड है, उनको लिफ्ट ऑपरेट नहीं करनी आती,
0: तो 9 तक तो जा रहे हैं, 9वें फ्लोर तक तो खुद जा रहे हैं अकेले, या अकेले रहने में धांधलेबाजी हो रही है कुछ?
2: नहीं, वो एक्चुअली क्या है, हो सकता है उनके घर पे कोई और बंदा भी रहता हो, लेकिन कि वो जब निकल के आ रहे हैं लिफ्ट से और लोगों के साथ ही आ रहे हैं, लोगों के साथ ही जा रहे हैं,
0: जब तक तो वो
2: ऑपरेट करने का इशू नहीं है,
0: वो जब तक ऑपरेट कर सकते हैं, जब तक तो लोगों के साथ। अरे भाई अकेले जा रहे हैं वो 9th फ्लोर तक, जब कोई उनके साथ नहीं है। हाँ 9th तक जा रहे हैं, फिर 9th पे जाने के बाद वो सीढ़ी का सफर कर रहे हैं 15th फ्लोर तक।
2: नहीं
0: जा पा रहे। मैं नहीं जाने दूंगा भाई, अदनान को नहीं जाने दूंगा। कह रहे फैजान भाई कि अदनान मैं हूँ, फैजान कहाँ जा रहे हो मेरी जान, इधर आओ।
2: नौवें फ्लोर पे वो लेने क्या जा रहा है?
0: यही तो मसला है, मैं खुद यही जानने

0: कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अदनान कौन, अदनान कहाँ है, पहले तो अदनान फोन करें हमें, उसके बाद पता करेंगे कि गलबल क्या चल रही है।
1: ज्यादा छुट्टी वाले दिन ही है, नवे फ्लोर पे।
0: नहीं नहीं, जब भी हर बार यही हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट छुट्टी।
1: अच्छा,
0: ये डेरी का मामला है। नॉटी फैजान भाई, आप क्या सोच रहे हैं, अदनान बहुत शरीफ है बेचारे, और अदनान नाम के तो सभी शरीफ होते हैं यार, ये बात तो है।
1: चले ठीक है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए आपसे एक और पूछ लेता हूँ, आप तशरीफ लाए हैं तो ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे काटते भी हैं, पीसते भी हैं, बांटते भी हैं, मगर खाते नहीं हैं।
1: काटते भी हैं, पीसते भी हैं, बांटते भी हैं, लेकिन खाते नहीं हैं।
0: खुद खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, दूसरों को काट कूट के पीस पास के बांटना सब अंजाम दिया जा रहा है, मगर खुद खाना पसंद नहीं किया जा रहा।
1: मैं तो आटा कहने लगा था, लेकिन वो तो खुद मैं को यार ये क्या आखिरी पॉइंट पे आके आपने दुनिया बदल दी बिल्कुल।
0: फैजान भाई मजा आ गया भाई आपसे बात करके, तो इंशाल्लाह ताला चलिए सोचिएगा फैजान भाई, और फिर मैसेज कीजिएगा याद आ जाए, वरना फिर कल इंशाल्लाह तशरीफ लाइएगा और जवाब दीजिएगा, क्योंकि अदनान का जवाब तो आज मिलना मुश्किल ही लग रहा है। इंशाल्लाह सोच के बताइएगा। ऑलराइट अदनान, फैजान भाई थैंक यू सो मच। तो ये क्या गड़बड़ चल रही है अदनान भाई, क्या करते फिर रहे हो, नवे फ्लोर पे क्यों जा रही हो, और वहां से ऊपर सीढ़ियों से क्यों जा रही हो, ऐसा क्या चल लिया है लाइफ में। आहा, दोपहर के इस टाइम पे ये गाना।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: बहुत आला भाई बहुत आला
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के

0: हाँ जी ख्वातीन हज़रात, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, सन एंड साउंड पे इस वक्त बातचीत जारी और सारी, जहां पर तीन का दम जो है वो खेला जा रहा है और देखते हैं कि अब हमारे साथ दम भरने कौन आ गया है भाई, और इनको लेते हैं हम जरा लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सुरर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं?
0: अल्लाह का शुक्र है भाई। कौन है हमारे साथ? आए, आवाज तीन चार बार कट गई नाम बताने बताने में ही।
1: जी जी, मैंने कहा पहचाने, दो तीन काफी देर बाद कॉल किया मैंने आपको।
0: यार ये एक चैलेंज जो है ना, तीन का दिन में मैं ही हार जाता हूँ। नहीं, पहचान अदील भाई। ओके, देखो अब एकदम से याद आ गया यार, एकदम से याद आ गया। क्या बात है भाई, कैसे हैं भाई अदील भाई, कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का।
0: अल्लाह का शुक्र है यार, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अदील भाई, कैसा रहा अभी तक का दिन, कैसा गुजरा?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा दिन में। बस मौका ही नहीं मिलता आपसे कॉल पे बात करने का, माशाल्लाह काम होता है, फिर वो गाड़ी से निकलना उतरना बार बार ना।
0: अल्लाह ताला आपको सेहतियाब रखे, बस हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं, यही आपका बड़प्पन है भाई, और यही आपकी मोहब्बत है, हमें सुनते रहते हैं, ये भी काफी है। बट जब भी टाइम मिलता है तो कनेक्ट जरूर करें, जैसे आपने आज निकाला टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आदिल भाई रेडी हैं तीन के दम के लिए?
1: हाँ जी रेडी है।
0: Alright, इंसान के कितने कान होते हैं?
1: इंसान के दो कान ही होते हैं। मैं भी
0: पाकिस्तान का कैपिटल क्या है?
1: पाकिस्तान।
0: दारुल हुकूमत क्या है?
1: सॉरी,
0: पाकिस्तान का कैपिटल क्या है?
1: पाकिस्तान का कैपिटल पाकिस्तान है ना।
0: अच्छा चलिए, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। आंखों से हम देखते हैं या सुनते हैं?
1: आंखों से देखते हैं।
0: पक्की बात है?
1: मुझे तो लगता है ऐसा ही है।
0: लगता है या सही है? चलिए देखते हैं। आदिल साहब के हवाले से ही सवाल है, दूसरों के लिए भी अपने जवाब जरूर हमें भेजिएगा 6622107 पे, और कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 4434377। तो जनाब आदिल भाई के घर पे उनके कुछ दोस्त आते हैं दूर से, और एक दो दिन के प्रोग्राम के लिए, तो आदिल साहब सबको जब खिला पिला देते हैं, तो जब सोने की बारी आती है तो हर बेड पर होकर अगर उनके दोस्त सोते हैं तो एक बेड बच जाता है, और अगर एक एक करके एक बेड पे सोते हैं तो एक बेड बच जाता है। तो बताएं कि कितने दोस्त हैं और कितने बेड हैं? सवाल मेरे ख्याल में फिर से पूछना पड़ेगा।
1: अदनान वाला जवाब लेके आया
0: ना थोड़ा सा। आदिल से हम आए अदनान की तरफ, और अब आपको देना है ये वाला जवाब।
1: अच्छा दोबारा पूछिएगा, मेरा माइंड अदनान की तरफ।
0: अच्छा इसको और आसान करता हूँ, देसी लैंग्वेज में करता हूँ। आदिल के यहाँ कुछ दोस्त आते हैं जो उनको जब आप उनको सोने सलाने के लिए ले जाते हैं तो चारपाइयां और पलंग आप देते हैं उनको, अगर आप अपने मेहमान को एक चारपाई पर दो दो कर सुलाते हैं तो एक चारपाई बच जाती है, और अगर एक चारपाई पर एक एक के हिसाब से आप अपने दोस्तों को सुलाते हैं तो एक मेहमान बच जाता है। तो बताइए कि आपके कितने दोस्त हैं और कितने बेड हैं?
1: आपने सिर्फ ये बात की है कि आपके दोस्त आते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बोला कितने दोस्त आते हैं, कितने लोग हैं।
0: वही आपको बताना है, मैं वही हिसाब निकालना चाह रहा हूँ।
1: तो ऐसे हिसाब कैसे निकलेगा? मुझे नहीं पता, मेरे पास 5 आए हैं, 10 आए हैं, 3 आए हैं।
0: बहुत आसान है,
1: सुझा रहे हैं ना
0: आप? नहीं नहीं, यकीन जानो आदिल भाई, बहुत आसान है।
1: हाँ, अब मैं क्या हिसाब लगाऊं कि मेरे पास गेस्ट कितने आए हैं अंदाजे से?
0: अच्छा चलिए, अदनान का जवाब बता दिए क्या था?

0: वो मुझे सवाल करें आप दोबारा।
1: ओके, अदनान जो है 15 माले की बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है
0: जी,
1: और 15th फ्लोर पे ही रहते हैं, दो चीजें हो गई। अब जब भी वो घर आते हैं बाहर से और उनके साथ बिल्डिंग वाले मौजूद हैं, तो वो सीधे अपने घर चले जाते हैं, बिल्डिंग वाले हो या कोई एक शख्स भी अगर लिफ्ट में है। मगर जिस दिन वो अकेले होते हैं घर वापस आते वक्त, वो पहले 9th फ्लोर पे जाते हैं और फिर वहां से अपने घर सीढ़ियों के जरिए जाते हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल भी नहीं करते। लिफ्ट का हाँ लिफ्ट का इस्तेमाल भी नहीं करते, पहले 9th फ्लोर पे जाते हैं। मगर तो अदनान ऐसा क्यों कर रहे हैं?
0: 9th फ्लोर से फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं ना?
1: नीचे नहीं, ऊपर। उनका घर तो 15वें वाले पे ही है।
0: नहीं, मेरी बात सुने, आप बोल रहे हैं वो 15th फ्लोर पे रह रहे हैं, सुने
1: जी जी,
0: ठीक है, 9th फ्लोर तक वो आ रहे हैं,
1: आ नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। जब
0: नहीं, मेरी बात सुने, 9th फ्लोर तक वो आ गए हैं, ठीक है, जब वो अकेले होते हैं तो उनको, उन्होंने नीचे करा ना, ऊपर तो ऑफिस है, ऊपर क्या लेने जाएंगे? अगर ऊपर कर रहा तो वो ऊपर कोई सामान अपना भूल गए हैं तो वो दोबारा लेने जाएंगे।
1: ठीक है, सामान भूल गए हैं, वापस आने की बात हो रही है, जाने की बात नहीं हो रही। जाना भूल जाइए, अदनान 15th फ्लोर पे रहते हैं, 15 माले की बिल्डिंग है। जब भी वो घर वापस आते हैं नीचे जमीन से, ग्राउंड से, उनके साथ कोई अगर है बिल्डिंग वाला, तो वो सीधे घर चले जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक? अब अगर उनके साथ कोई भी नहीं होता है, वो अकेले होते हैं, तो पहले वो 9th फ्लोर पे जाते हैं और वहां के बाद वो घर तक का सफर लिफ्ट से करते ही नहीं है, वो सीढ़ी से जाते हैं।
0: लेकिन आप ऑफिस से रहे हैं ना?
1: कहीं से भी आ रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, चाय पी के आ रहे हो, दोस्तों के पास से आ रहे हो, मेरे पास से आ रहे हो, घर जा रहे हैं, ये नहीं बता रहे।
0: बोल फसा देते हैं आप भाई, कसम से बोल पूरा फसा देते हैं।
1: आदिल, आपका वाला भी वैसे सवाल अच्छा है, इसका भी जवाब लोग दें। मैं एक बार रिपीट करता हूं ताकि दूसरे लोग भी सुन लें। भाई आदिल के यहाँ कुछ मेहमान आए, आदिल ने उनको कुछ चारपाइयां और पलंग दिए। अगर मेहमान एक चारपाई पर दो दो होकर सोते हैं तो एक चारपाई बच जाती है, और अगर एक चारपाई पर एक के हिसाब से मेहमान सोते हैं तो एक चारपाई कम पड़ जाती है। बताएं कितने मेहमान हैं और कितनी चारपाइयां मौजूद हैं? हिसाब लगाना आदिल भाई, हिसाब लगाना आराम से पेन कागज लेके, बट इंटरनेट चेक नहीं करना, ठीक है?
0: नहीं नहीं नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, साइड पे लगाई हुई है।
1: मैं कह रहा हूँ इंटरनेट चेक नहीं करना।
0: नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर रहा। अच्छा, मेहमान आए हैं, मुझे मेहमान पता नहीं अब कितने आते हैं।
1: ये मेहमान ही तो नहीं मानते, आते रहते हैं, जाते रहते हैं और पलंग कब पड़ जाते हैं।
0: अगर मैं भी आप लगा लें, तीन आते हैं, तीन मेहमान आते हैं मेरे घर में।
1: हाँ, मैं क्यों लगा लूं? मुझे नहीं चाहिए मेहमान भाई, मैं अपने घर में क्यों लगा लूं?
0: नहीं, मेरा मतलब है कि घर में मेहमान आते हैं ना मेरे।
1: आप क्या आ रहे हैं? मतलब मैं भी आ जाऊंगा।
0: तीन परसेंट आ गए। ओके
1: ओके
0: ओके। और मेरे घर में बेड हैं दो,
1: ठीक है
0: ठीक है, और दो को मैं एक बेड पे सुला रहा हूँ, और जो दूसरा बचा उसको मैं अपने साथ सुला लेता हूँ।
1: कॉम्प्रोमाइज हो रहा, कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। दोस्तों के साथ इतने दिनों बाद बेचारे आए हैं, उसके बाद भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। चलो आदिल भाई, आप इसका सवाल सोचना और इंशाल्लाह मुझे व्हाट्सएप पे जवाब देना, वरना कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, कल जवाब दे सकते हैं आप। मुझे उम्मीद है कि सही जवाब आना मुश्किल है, जरा फंसाया हुआ है।
0: ये तो बहुत पसंद है, लेकिन ये अदनान वाला जो है ना, ये आप डबल माइंड कर देते हैं बंदे को।
1: नहीं नहीं, देखिए आपसे मैंने क्लियर कर दिया, और अभी भी सवाल एकदम अपनी जगह है। आपने पूरी तरीके से क्लियर करवा तो लिया है यार आदिल भाई, दूसरों ने भी सुन लिया, अब जवाब देना है। मगर कोई भी इंटरनेट चेक नहीं करेगा, अपने आप अपने जहन से इंशाल्लाह ताला जवाब देना है। ओके चलिए ठीक है, ओके ओके आदिल भाई, ओके बाय। तो ये थे आदिल भाई हमारे साथ, और मेहमानों के

0: इतने में फंस गए यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं और इनसे करते हैं बात, क्योंकि अब वक्त भी हुआ जाता है मेरे जाने का। हेलो सलाम अलैकुम, कॉल ड्रॉप हो गई, सॉरी। तो जनाब मैसेजेस बहुत सारे हैं, कैसे पढूं, कहां से छेड़ूं दास्तां, कहां तमाम करूं, वक्त भी हो गया है। आई एम वेरी वेरी वेरी वेरी और वेरी सॉरी। यहां पर कोई हमारे साथ जुड़ गया है, ये इनसे बात कर लेते हैं। हेलो सलाम अलैकुम।
1: सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, फाइनली कॉल लग गई। मैं तो मुझे तो लगा कि आज तो टाइम खत्म।
0: फैजल भाई
1: जी भाई
0: तो क्या लाए फैजल भाई, चलिए तीर का दम तो चल ही रहा है। आप दो सवालों में से किसी एक का जवाब बता दीजिए जो आपने सुने।
1: मैं तो दोनों बता दूं सरवर भाई।
0: ओए ओए ओए यार, तो नहीं बताओ यार, अगर सही बता दिया तो क्या होगा मेरा, मेरे सवाल मेरे सवालों का क्या होगा, मेरे सवालों का क्या होगा, है क्या हुआ
1: फिर आपको दूसरे सवाल सर्च करने के लिए टाइम लगेगा।
0: हाँ अच्छा, चलिए बताइए बताइए, इसलिए तो लेके आता हूँ कि आप बता सके सही।
1: वो मैं शुरू से देख रहा हूँ, तो मैंने एक चीज पकड़ी अदनान भाई वाले में, क्या है।
0: ओहो, तो नीचे बैठ गए थे आप बिल्डिंग में, नीचे बैठ गए चाय का गिलास लेके, देखो अदनान
1: कहीं
0: गया।
1: आपने जो अरे सरोवर भाई, आपने जो एक क्लू दिया उसके बाद किसी को ये क्लू नहीं मिला। आपने वो क्लू दिया कि अदनान भाई स्कूल गए
0: थे। हाँ कहीं भी जाते हैं, नहीं नहीं कहीं भी जाते हैं, कहीं भी,
1: हाँ, कहीं भी जाते हैं, लेकिन मैं स्कूल के हवाले से बता रहा हूँ। अदनान भाई 9th फ्लोर तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अदनान भाई की हाइट छोटी है मेरे भाई।
0: तो छोटी है तो
1: तो इसलिए लोग ज्यादा होते हैं तो वो 15 तक जाती है लिफ्ट, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो वो 9 तक ही पहुंच पाते हैं।
0: क्यों पहुंच पा रहे हैं?
1: अरे उनकी हाइट छोटी है भाई।
0: तो हाइट छोटी की, हाइट छोटी से क्या होता है?
1: हाइट छोटी इसलिए लिफ्ट 9 तक जा रही है।
0: हाँ ठीक है, तो ये क्या तो
1: उनसे 10 क्योंकि उनसे 10 नंबर नहीं दब रहा है ना।
0: ये अब आयरा सही ये है सही जवाब। यार सच सच बताओ फैजल भाई, देखो दोपहर के खाने की कसम है, झूठ तो नहीं बोल रहे, इंटरनेट चेक करके आ रही हो या खुद सोच के आ रही हो?
1: मैंने चेक नहीं किया, बस मैं वो थिंक कर रहा था कि अगर वो बच्चा होगा तो जाहिर सी बात है।
0: बिल्कुल सही जवाब है, और मैं तो सोच रहा था यार इसको आज वीकेंड तक चलाने वाला हूँ, ये जवाब आ गया। और किस किस ने सही जवाब दिया या नहीं ये तो अब नहीं पता, क्योंकि वक्त हो गया साहब कि मैं ले लूँ इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया भाई फैजल भाई, सही जवाब दिया आपने, ऐसा हो ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल बात होती है फैजल भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भाई ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अदनान की हाइट जो है वो कम है, अदनान छोटे हैं, अदनान का जो हाथ जाता है वो 9th बटन तक ही जाता है, वो उसको दबाते हैं और उसके बाद क्योंकि उनका हाथ ऊपर नहीं जा रहा तो वो सीढ़ी का सफर करते हैं। और जब कोई साथ में होता है वो कहते हैं भैया इस बटन को दबा दो 15 माले को, मैं ताकि घर चले जाऊं। तो ये था आज का सही जवाब। तो भाई अब इसी के साथ वक्त हो गया कि मैं आपसे ले लूं इजाजत, आपसे थोड़ी सी देर में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया की सारी खबरें समर स्पोर्ट्स में हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अमीन भाई के साथ। तो फिलहाल सरवर मिर्जा को आज के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। छोड़े जा रहा हूं फिलहाल इस गाने के साथ शान कविता कृष्ण मूर्ति, वो लड़की है कहां। बहुत शुक्रिया आप लोग के कॉल्स का, मैसेजेस का, और बड़ी माजरत में मैसेजेस नहीं पढ़ पाया। अभी भी जिनकी कॉल आ रही है इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से जरूर बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: या दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, इस्तकबाल है समर स्पोर्ट्स के इस स्पेशल प्रोग्राम। और ये स्पेशल प्रोग्राम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है और फुटबॉल वर्ल्ड कप से आगे कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। और अभी हमारे स्टूडियो घड़ी पर 1:01, तो आज का जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम जैसे कि आपको पता है इतवार और मंगल को मैं पेश करता हूँ। और हमारे साथ रहिएगा, जुड़ के रहिएगा इस प्रोग्राम के साथ, क्योंकि हम आप तक पहुँचाएंगे कि खेलों की दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और दिलचस्प वाक़े और अहम अपडेट्स। और यू नो अहम अपडेट्स से मुराद ये है कि फुटबॉल को ही लेकर मैं बात करूंगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप सड़ चढ़ के बोल रहा है इन दिनों और हर जगह पे फुटबॉल वर्ल्ड कप है। क्रिकेट अभी अभी ख़त्म हुआ है, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अफगानिस्तान के मैचेस हो चुके हैं। एंड नाउ बेटर टू टॉक अबाउट मोर फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल से अगर थोड़ा सा हटके आई मीन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लियोनल मेसी। या दोस्तों लियोनल मेसी ने एक कमाल का रिकॉर्ड कायम किया है कल के मैच, जिन्होंने भी देखा हो मैं आपको बता दूं कि अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का इस गेम में अर्जेंटीना की जीत हुई है 2-0 से। लेकिन सबसे मजेदार बात, सबसे अहम बात, मुसलसल दोनों ही मैचेस में मेसी के गोल्स के बदौलत अर्जेंटीना की दो जीत के साथ साथ अर्जेंटीना जो कि दिफाई चैंपियन है क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32। और मेसी कल मेसी ही बेसिकली जो हैशटैग लियोनल मेसी हैशटैग मेसी वर्ल्ड नंबर वन इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने का जो रिकॉर्ड है कल मेसी साहब ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा था ही कुछ दिमाग में आता था, पहले तो पेनल्टी उन्होंने मिस कर दिया, उसके बाद जो उनको मौका मिला उस मौके को उन्होंने तब्दील किया गोल्स में। एंड दैट व्हाट मेड मेसी, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इक्वलाइज किया जो 16 गोल्स थे उसको इक्वलाइज करके 17 नंबर गोल जो किया था, जो अर्जेंटीना का नंबर वन गोल था, फर्स्ट गोल था, उसको इक्वलाइज किया मिरोस्लाव क्लोजे को। एंड उसके बाद इन द सेकेंड हाफ फाइनल एंड पे मेसी ने एक और गोल करके नंबर वन पर पहुंच गए हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अब मेसी के जेब में है। एंड मेसी इज द लीडिंग प्लेयर राइट नाउ, टॉकिंग आई मीन अबाउट हिज परफॉर्मेंसेस, सब लोग ये कह रहे हैं कि कमाल का परफॉर्मेंस है। जहां रोनाल्डो साहब जो है थोड़े से धीमे धीमे चल रहे हैं, वहीं रोनाल्डो के जगह अगर कंपेरिजन करें तो लियोनल मेसी ने टोटल 5 गोल्स करके इस टूर्नामेंट में सबको और ज्यादा मुतासर किया कि हाँ रियल टैलेंट। 2006 के बाद डेब्यू होने के बाद लियोनल मेसी अभी भी उसी अंदाज में, थोड़ा सा आई मीन मैं कहूँगा थोड़ा सा स्पीड में तो कमी है, रफ्तार में कमी है, थोड़ा सा रिफ्लेक्स एक्शन में कमी है। नाउ मेसी जस्ट कैन स्कोर गोल्स वेरी फ्लुएंटली। और कल जो फर्स्ट गोल हुआ एंड उसमें भी देखिए किस तरह से स्मूथ एक प्लेसमेंट के जरिए अपने बाएं पैर का इस्तेमाल करते हुए मेसी ने गोल किया, फर्स्ट गोल। एंड मेसी के साथ साथ अर्जेंटीना भी राउंड ऑफ 32, और ये बताया जा रहा कि क्या अर्जेंटीना ब्राज़ील का वो रिकॉर्ड नो इक्वल कर पाएगा। 1962 मुसलसल दो वर्ल्ड कप्स कोई भी दिफाई चैंपियन टीम ने जीती थी वो था ब्राज़ील और उससे पहले इटली, लेकिन 1962 के बाद किसी भी टीम ने मुसलसल दो वर्ल्ड कप जीतने में नाकामयाब रही है। लेकिन अब थोड़ा बहुत ये बताया जा रहा कि हो सकता है कि मेसी अर्जेंटीना कैन इक्वल दिस रिकॉर्ड। अच्छा वहीं फ्रांस की बात करूं दोस्तों, फ्रांस ने भी अपनी जगह बना ली है एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32। कल इस मुकाबले में फ्रांस ने बड़ा ही मतलब वही एज यूजुअल, फ्रांस इज वन ऑफ द लीडिंग टीम और फ्रांस ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाते हुए इराक को 3-0 से हरा दिया। लेकिन बिफोर आई मूव ऑन टू अदर्स अपडेट्स, आप लोगों के लिए एक सवाल ये है, कि क्योंकि इराक की बात मैंने अभी कही है तो इराक के बात करते करते मुझे दिमाग में ये आया कि एक सवाल आप लोगों से पूछा जाए कि इस वर्ल्ड कप में टोटल कितनी एशियाई टीमें हैं, इस वर्ल्ड कप में टोटल कितनी एशियाई टीमें खेल रही हैं। आपको इतना बताना है, नंबर्स बताने हैं आपको, और आप 6622107 पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इस वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो इस टाइम जारी है अमेरिका कनाडा और मेक्सिको में कितने एशियन टीमें शामिल हैं, आपको सिर्फ बताना है नंबर। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। वैसे देखा जाए तो एशियन टीमों की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं वो है मिक्स्ड परफॉर्मेंस, मैं कहूँगा कि मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। अगर जापान की टीम जो है सबसे अव्वल नज़र आ रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे अगर मैं ईरान की बात करूँ, इराक की बात करूँ, ईरान के दोनों मैचेस ही गोलेस रहा है, इराक दोनों मैचेस हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर है, जॉर्डन भी कल अल्जीरिया के हाथों एक के मुकाबले में दो गोल्स के हारने के बाद दे आर ऑल्सो आउट ऑफ द टूर्नामेंट। उज्बेकिस्तान अभी भी थोड़ा बहुत देखते हैं, आज पोर्चुगल के अगेंस्ट में उज्बेकिस्तान का सामना है। और वहीं अगर बात करूं कि कतर इज़ प्लेइंग टुमारो अगेंस्ट बॉस्निया एंड हर्जगोविना, एंड बॉस्निया एंड हर्जगोविना के अगेंस्ट में कतर की अगर जीत हो जाए तो देर इज़ एन आउटसाइड चांस कि कुछ एक थर्ड बेस्ट प्लेस टीम जो है, टोटल बता दूं कि अभी भी कतर के पास एक आउटसाइड चांस है। दो मैचेस में से एक ड्रॉ और एक हारने के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि थर्ड बेस्ट प्लेस टीम जो है टोटल आठ है, कुल आठ टीमें थर्ड बेस्ट प्लेस टीम्स, याद रखिएगा थर्ड बेस्ट प्लेस टीम जो हैं वो आगे तक पहुँचेंगी। तो आठ टीमों को ऐसे डिवाइड किया जाएगा और उन्हीं के दरमियान मैचेस होंगे और वहां से जो भी टॉप टीमें होंगे वो आगे तक पहुंचेंगी। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि कतर के पास चांसेस अभी भी हैं और कहीं कनाडा अगर स्विट्जरलैंड को हरा दे तो देन कतर चांसेस बिकम्स मोर ब्राइटर, प्रोवाइडेड कतर अगर बॉस्निया हर्जगोविना को हरा दे और कमाल हो जाए। और एक इस एक एक आप लोगों को एक फैक्ट्स बता दूं कि आज से 25 साल पहले सन 2001 में इन दोनों के दरमियान मैचेस हुए थे, फ्रेंडली मैचेस, और कतर की जीत हुई थी दोनों मैचेस में और एक

ड्रॉ रहा। सो अगर ये रिजल्ट्स को अगर मद्देनजर रखते हुए हम बात करें कि कल के मैच के बारे में, तो कतर डेफिनेटली कैन स्टार्ट देयर कैंपेन अगेंस्ट बोस्टियन हर्जेगोविना। अगर पुरानी रिजल्ट लेके चलें तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लेके चल सकते हैं। और वहीं अगर खुलेन लोप्तगी जो हेड कोच हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि खुलेन लोप्तगी के सामने आप एक चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि

तो अब खुलेन लोपतेगी के सामने एक टैक्टिकल एक्यूमेन जो है वो हमें दिखना होगा कि किस तरह से इस मैच को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो भी रिप्लेसमेंट्स होंगे इस मैच में आई थिंक दे विल हैव टू बी इक्वली ब्रिलियंट लाइक हुमाम अल अमीन और असीम मदीबू। असीम मदीबू जो है मिडफील्ड में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, हाइट थोड़ा सा कम है लेकिन जिस तरह से वो होल्डिंग मिडफील्डर हैं और जिस तरह से बॉल को वो मूव करवाते हैं शायद कतर को उस दिन मिस हो, लेकिन इनके पास आई मीन खुलेन लोपतेगी के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके रिप्लेसमेंट्स उनके पास हो सकते हैं। तो देखते हैं, हसन अल हैदूस एक ऑप्शन है मेरे ख्याल से, हसन अल हैदूस कैन बिकम अल मोइस को अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है, हो सकता है कि अल मोइस को भी टीम में उतारा जाए एंड वील ऑल सी एंड बेस्ट ऑफ लक टू टीम कतर। अच्छा, वहीं जैसे मैंने बताया कि फ्रांस हैज मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट राउंड और फ्रांस के लिए एम्बापे साहब ने भी दो गोल्स किए, पिछले मैंने मैच में भी दो गोल्स और इसमें भी दो गोल्स, और साथ साथ डेम्बेले उस्माने डेम्बेले ने भी एक गोल आई मीन ही स्कोर इन द 66 मिनट। तो एम्बापे भी अगर देखें कि मेसी के साथ साथ एक रेस है और ये हमें 2022 वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला था एंड आज भी एम्बापे जो है काफ़ी यंग है, देखिए 27 का है और कहीं मेसी जो है वो कल मेसी का जो है बर्थडे होने जा रहा है, 39 ईयर ही इज़ गोइंग टू टर्न एंड राइट नाउ मेसी एट 38 ही इज़ आई मीन शोइंग दैट काइंड ऑफ फॉर्म और उस परफॉर्मेंस जो पहले 2006 के वर्ल्ड कप में एक नौजवान मेसी आया था और धूम मचाया था। तो anyway, congratulations to the France team and congratulations to the Australian, माफ कीजिएगा Argentinian team, जिन्होंने अगले राउंड के लिए अपना जो बर्थ है जो पेस है वो उन्होंने कंफर्म कर लिया है। अच्छा, ये कि यहाँ पे एक एनालिसिस जो है हमारे सामने जो दिखने को आ रहा है कि एक यू नो काइंड ऑफ कि किनके पास ज़्यादा वो है स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन है टू विन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप, कि परसेंटेज के हिसाब से अगर बताया जा रहा है कि फ्रांस हैज़ द चांस ऑफ 17% उनके पास एक प्रेडिक्शन है, एक प्रेडिक्शन है जो कि कहा जा रहा है कि फ्रांस कैन विन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप, स्पेन 14%, इंग्लैंड 11%, अर्जेंटीना कोई 11% दिया है चौथे नंबर पर, पोर्चुगल 7%, ब्राज़ील 6%, ब्राज़ील के बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ, एंड जर्मनी 6%, जबकि जर्मनी मुझे टीम सही लगी है एंड जर्मनी टीम इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग दिस टाइम, नीदरलैंड्स को भी 6% दिया गया है हालांकि पिछले मैच में स्वीडन को धो दिया था, और नॉर्वे को 3% और मोरक्को को 3% दिया गया कि इन सब टीमों को थोड़ा सा चांस दिया गया है कि हो सकता है कि दे कैन विन द वर्ल्ड कप, लेकिन सबसे टॉप पर है फ्रांस। फ्रांस मजबूत टीम है, फ्रांस में एम्बापे फॉर्म में है, उस्माने डेम्बेले फॉर्म में है, और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी हाल ही में पीएसजी यूएफए चैंपियंस लीग में जो जीत उन्होंने हासिल की थी पीएसजी क्लब ने, तो उसमें जितने भी ज़्यादा से प्लेयर्स जो हैं वो फ्रांस के ही हैं, तो ओवरऑल ये एक फाइन ट्यून टीम है और जिसमें फलक्रम जो है जो की प्लेयर्स हैं वो पीएसजी के हैं। तो दोस्तों, जो सवाल मैं आप लोगों से पूछा था दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ बिफोर आई गो इनटू द ब्रेक, कि इस वर्ल्ड कप में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में कितने एशियन टीम में हिस्सा ले रही हैं, आपको सिर्फ बताना है नंबर और आप उसके साथ बताइएगा आपका नाम। टिल देन कीप लिसनिंग टू FM 107, आई विल टेक अ ब्रेक ओवर हियर।

0: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक टू समर स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके मेजबान मोहम्मद अमीन और इस प्रोग्राम में ब्रेक से जाने से पहले एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ा था, मैंने पूछा था और मैंने कहा था कि 666-22-107 पर जरूर इसका जवाब दीजिएगा। और ये सवाल ये था कि इस बार के फुटबॉल वर्ल्ड कप में कितने एशियन टीमें खेल रही हैं यानी पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपको ये बताना है विद द नंबर्स, नंबर से बताइएगा। और मैं इंतज़ार करूंगा बिफोर द शो एंड्स, आप सभी लोगों का जो भी सही जवाब होगा मैं यहाँ पे अनाउंस करूंगा नाम के साथ। सो आप लोग बराए मेहरबानी आप लोग थोड़ा सा फ़ोन चलाइए, देखिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए एंड डू लेट मी नो। अच्छा दोस्तों, अभी अर्जेंटीना की बात हो रही थी एंड अर्जेंटीना के साथ साथ फ्रांस ने भी यू नो दे क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32 और वहीं इजिप्ट की जीत हुई है एंड इजिप्ट की जीत एक तारीखी जीत है क्योंकि पहली मरतबा इजिप्ट की फुटबॉल टीम ने वर्ल्ड कप में पहली जीत हासिल की। और सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद सलाह जो सबसे सुपरस्टार हैं इस रीजन के लिए, अरब ममालिक जितने भी खेल रहे हैं वहाँ पे, तो मोहम्मद सलाह जैसे स्टार, तो आई मीन इट्स अ बिग स्टार, बिग नेम, मोहम्मद सलाह ने भी एक मेडन गोल, आई मीन ही स्कोर्ड अ गोल फॉर इजिप्ट। और ये इजिप्ट की ये जीत एक तारीखी जीत, जैसे मैंने बताया पहली मर्तबा इजिप्ट टीम हैज वन अ वर्ल्ड कप मैच। तो अभी इजिप्ट टीम के पास भी मुझे लगता है कि दे हैव एन आउटसाइड चांस ऑफ क्वालिफाइंग फ्रॉम दिस ग्रुप जिसमें ईरान भी शामिल है। और इजिप्ट अभी दो मैचेस खेलने के बाद एक विन और एक ड्रॉ और 4 पॉइंट्स, और इसमें गोल डिफरेंस इनका काफ़ी बेहतरीन है एंड ग्रीन पर ही है 4 गोल्स एंड 2 अगेंस्ट, तो गोल डिफरेंस 2 हैं। वहीं ईरान के साथ पता नहीं क्या हो रहा है एंड हो सकता है कि कैंपेन शुरू होने से पहले जो उनको इस तरफ जाना उस तरफ भागना उस तरफ जाना इस तरफ भागना जो भागम भागी में एंड टीम के जो कॉन्फिडेंस लेवल है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिल गया है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अफेक्टिंग देयर परफॉर्मेंस मोराल ऑफ द टीम। दो मैचेस में 2 ड्रॉ 2 पॉइंट्स के साथ ईरान की टीम ग्रुप जी में सेकंड है, फॉलोड बाय बेल्जियम, 2 मैचेस में 2 ड्रॉ और 2 पॉइंट्स के साथ थर्ड पोजीशन पर, क्योंकि गोल डिफरेंस में ईरान की टीम जो है वो थोड़ा सा बेहतर पोजीशन पर है। और वहीं न्यूजीलैंड की टीम जो है आखिरी पोजीशन पर है, 2 मैचेस में 1 ड्रॉ 1 हार और सिर्फ 1 पॉइंट के साथ और -2 इज़ द गोल डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ कि इजिप्ट के पास तो बहुत ही अच्छा मौका है एंड दे कैन क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट स्टेज, ईरान के पास भी है एंड ईरान अगर जीत जाए नेक्स्ट गेम तो ईरान कैन बी विल बी थ्रू टू दी यू नो प्रोवाइडेड कि दूसरे मैचेस के क्या रिजल्ट्स होते हैं। और वहीं जापान की टीम ने भी कमाल कर दिया है, जापान ने ट्यूनिशिया को परसों जो मैच हुआ तो उसमें जापान की टीम ने ट्यूनिशिया को बिल्कुल धो दिया है, ब्लू सामुराई 4-0 की जीत। और सबसे बड़ी बात है जापान की जीत के साथ साथ जापान ने सबके दिल भी जीता है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस बट बिकॉज ऑफ क्लीनिंग मेंटालिटी, यानी स्टेडियम में सफाई कर्मचारी बन जाते हैं इनके फैंस और सफाई करते करते सबको, जैसे कतर में उन्होंने दिखाया था, दे लेड बाय एग्जांपल, एक एग्जांपल सेट किया था कि आप जब कचड़ा जो है स्टेडियम के अंदर लेके आते हैं उसको सफाई करने की जिम्मेदारी भी आपके पास होनी चाहिए। आप पैकेट लेके आते हैं, आप खाना लेके आते हैं, आप फेंक के चले जाते हैं, सीट्स को उलट पुलट करके जाते हैं, तो दिस एग्जांपल वाज सेट बाय जापान। और इसी को फॉलो करते हुए कई और टीमों के फैंस ने भी जापान के इस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए अभी इस वर्ल्ड कप में ह्यूमिलिटी के साथ आप सफाई कर रहे हैं स्टेडियम, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, नीड नॉट नेसेसरली कि स्टेडियम के जो मेंटेनेंस वाले हैं उनको ही करना चाहिए, आप आ रहे हैं आप इसको यूज़ कर रहे हैं और आप वहाँ पे गंदगी फैला के जाते हैं तो आपके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जापान इस टीम के फैंस ने दिखाया था। और ये मुसलसल दूसरे वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिल रहा है एंड दैट इज़ ब्रिलियंट एंड दैट इज़ वॉट मेक्स दिस जापानीज फैंस, जापान के फैंस जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द फील्ड है, कहीं अगर उनकी टीम की बात करें तो दे आर रियली रियली रियली यू नो आई मीन अनस्टॉपेबल। उम्मीद है कि हो सकता है कि जापान ऑल्सो मेक्स इट टू द नेक्स्ट राउंड। और ग्रुप ई से ऑलरेडी जर्मनी हैड क्वालिफाइड। और अगर दूसरी टीम की बात करूँ, कोटिडी आइवरी, जिसको आइवरी कोस्ट हम कहते हैं, 2 मैचेस में 3 पॉइंट्स उनके पास भी मौका है। और इक्वेडोर जो है 2 मैचेस में 1 ड्रॉ 1 हार से उनके पास 1 पॉइंट है। और कुरासाओ जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में हैं, सबसे यंगेस्ट अगर मैं कहूँगा मेंबर, और यंगेस्ट नहीं बल्कि सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन वाली टीम जो है वो कुरासाओ है इस वर्ल्ड कप में, 2 मैचेस में 1 ड्रॉ 1 हार के साथ they have just one point. तुर्की की हार जो है बहुत से फैंस को यू नो बड़ा ही दुख पहुंचा है तुर्की की जो परफॉर्मेंस. अच्छा तुर्की के आखिरी मैच में दे क्रिएटेड द मैक्सिमम चांसेस. देखिए सबसे ज़्यादा गोल बाउंड चांसेस तुर्की के पास था, पोजीशन जो है तुर्की के पास था, लेकिन तुर्की ने गोल करने में बिल्कुल वीक रहे और गोल नहीं कर पाए. एंड फाइनली दे लॉस्ट बोथ द गेम्स एंड दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. 2022 के बाद 24 साल के बाद तुर्की टीम का आई मीन दे रीच द वर्ल्ड कप फाइनल्स फॉर द 24th ईयर्स के बाद, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं कर पाया. वहीं यूएसए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में जीत एंड दैट इज सरप्राइजिंग क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम ने तुर्की को हराया था. मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया विल बीट अमेरिका, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद यूएसए मुसलसल दो मैचेस जीत कर दे have also qualified for the round of 32. मेक्सिको पहले ही पहुंच चुकी है टीम और मेक्सिको के ग्रुप में साउथ कोरिया. अगर एशियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साउथ कोरिया के पास भी एक स्लाइट चांस है. दे आर प्लेस्ड सेकंड ऑन द ग्रुप, ग्रुप ए में 3 पॉइंट्स लेकर. अब देखते हैं कि मैचेस क्या क्या मैचेस हैं. आज मैच जो है मैं दोस्तों मैं आज तो ये मैच मैं मिस नहीं करूंगा. द मैच इज पोर्चुगल वर्सेस उज्बेकिस्तान. पोर्चुगल देखना है कि पोर्चुगल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर फिर से दोबारा क्या उनको प्रेशर करेगा कि भाई आप गोल करें या दूसरे प्लेयर्स को आप मौका ना दें, क्या वो करें या नहीं करें हमें देखना पड़ेगा. एंड उज्बेकिस्तान टीम कैनावारो, याद होगा कैनावारो इटालियन टीम के सुपरस्टार थे 2006 में जब इटालियन टीम चैंपियन हुई थी. उस टाइम कैनावारो वाज द नंबर वन प्लेयर इन द टीम और कैनावारो अभी ये कोच के तौर पर और कोच उज्बेकिस्तान के हैं. एंड दे विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक समथिंग कि एक पॉइंट तो ले लें. उज्बेकिस्तान टीम पहली मरतबा दे आर प्लेइंग फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल्स और एशिया की बात है. और आज इंग्लैंड और घाना एक और इम्पोर्टेंट मैच है रात 11 बजे. इंग्लैंड और घाना के मैच जो है मैं तो मिस नहीं करना चाहता हूं और आप लोग भी ना मिस करें बिकॉज घानियन फुटबॉल इज सुपर. क्या देखना है हैरी केन को रोक पाते हैं कि नहीं. ये घाना के जो कोच हैं वो 2 साल पहले कतर के भी कोच थे एंड ही इज वन ऑफ द लीडिंग कोचेज ऑफ ऑल टाइम. मुसलसल 5 वर्ल्ड कप्स में ही इज पार्टिसिपेटिंग एज ए कोच एंड दैट इज वॉट मेक्स घानियन टीम डिफिकल्ट टीम राइट नाउ. घाना की एक जीत है इस मैच पिछले मैच में. सो घाना वर्सेज इंग्लैंड दैट इज वॉट विल बी द टॉप मैच ऑफ द डे. तो दोस्तों मेरा सवाल ये था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कितनी एशियन टीमें फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा ले रही हैं. आपको बताना है, आपको शेयर करना है इस नंबर के साथ कितने नंबर ऑफ टीम्स हैं एशियन टीम्स इस वर्ल्ड कप में विथ

क्वालिफाइड, और अर्लिंग हालैंड को मैं कहता था कि ये नेक्स्ट एम्बापे हैं, और यहाँ पे तो शो ही कर दिया उन्होंने, चार गोल्स करके ही इज ऑन द नंबर सेकंड पोजीशन पर है। किलियन एम्बापे भी चार गोल्स पर हैं, और डेनिस उंडाव जो है जर्मनी के, उनके पास भी तीन गोल्स हैं, एंड जोनाथन डेविड जो है कनाडा के, उनके पास तीन गोल्स हैं। अगर येलो कार्ड्स और रेड कार्ड्स के अगर हिसाब लगाया जाए दोस्तों, तो टोटल जो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स अभी इस साल इस वर्ल्ड कप में दिखाया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 रेड कार्ड्स दिखाए गए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका के दो खिलाड़ी याद होगा फर्स्ट मैच में अगेंस्ट मेक्सिको, उसमें इन दोनों खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिला था, और इन कतर मैच में भी दो रेड कार्ड्स हुए थे। और इसके साथ साथ बोस्निया के तारिक मोहम्मदोविच, बोस्निया के, उनको रेड कार्ड मिला है, सो अगेंस्ट कतर ही इज़ नॉट गोइंग टू प्ले। येलो कार्ड्स तो काफ़ी हैं, येलो कार्ड्स तो बहुत सारे येलो कार्ड्स हुए हैं, जिसमें ब्राज़ील के वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स हैं कैसिमेरो, उनको भी रेड कार्ड मिला हुआ है, एंड अनदर रेड कार्ड, अनदर येलो कार्ड माफ़ कीजिएगा, अगर येलो कार्ड देख जाए तो उनको मैच से बाहर होना पड़ेगा। सो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट नॉट लेटिंग द प्लेयर टू यू नो येलो कार्ड देखें। और अगर असिस्ट की बात करें, अलेक्जेंडर इसाक जो स्वीडन के हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा असिस्ट किए हैं अलॉन्ग विथ माइकल ओलिसे, जो फ्रांस के एक सुपरस्टार बनने जा रहा है माइकल ओलिसेस, इनके बारे में सब कोई कह रहा है कि ही इज़ द बेसिकली द फलक्रम, द की प्लेयर, जो कि फ्रांस टीम के अटैकिंग जो इनका जो रिदम है उसको चलाने का जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है वो माइकल ओलिसे। ब्राहिम डियाज मोरक्को, उनके पास दो असिस्ट हैं, क्रिस वुड न्यूजीलैंड, उनके पास भी दो। अच्छा, ये असिस्ट वाली बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि आजकल असिस्ट जो गोल करता है और जो गोल करवाता है उनका नाम भी शामिल होता है फीफा के अवार्ड्स में, लिस्ट में। तो याद रखिएगा कि जो गोल करता है, तो पहले ये होता था कि जो गोल करा भाई उन्हीं को चांदी चांदी उन्हीं को मिल जाते हैं, बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड या यू नो बेस्ट गोल्डन बूट भी मिल जाता है, लेकिन अब उसके साथ साथ एक अवार्ड भी क्रिएट किया गया है जो असिस्ट, जो आप मददगार साबित हो रहे हैं, आपने मदद किया है गोल करने के लिए, सो दैट इज व्हाट द फीफा हैज आल्सो हैज नोटिस देयर कंट्रीब्यूशन इन द सक्सेस ऑफ एनी टीम। सो दोस्तों, सवाल मेरा दोबारा रिपीट करता हूं, इस एशिया कप, माफ कीजिएगा, इस वर्ल्ड कप में एशिया की कितनी टीमें हैं आपको उसे बताना है। अच्छा, जवाब जो हैं कंप्लीट है, अच्छा नाम आप लोग थोड़ा सा लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा, आई मीन दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि मैं कुछ बोल पाऊँ कि हाँ इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया। अच्छा, कुछ लोगों ने कुछ मिस्टेक्स भी हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया, कुछ मैसेजेस आई डिन अंडरस्टैंड, आप लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, फर्स्ट मैसेज जो है उनका नाम यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ फुटबॉल जर्सी में दिख रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है। कृपा करके बराए मेहरबानी आप अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। 9 एशियन टीम्स इन 2026 वर्ल्ड कप, शोएब अख्तर लिख रहे हैं, एंड कोई और लिख रहे हैं कि 9 एशिया टीम्स इन, नाम आप लोग क्यों क्लियरली नहीं रहते, आई थिंक 9 टीम्स फ्रॉम एशिया इन फीफा वर्ल्ड कप 2026, नाम इमरान खान, आई थिंक का मतलब है यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। मुमताज़ अहमद, अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हाँ वालेकुम अस्सलाम मुमताज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज का। 8 टीम मुमताज़ लिख रहे हैं, 8 टीम्स, वेल द करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, करेक्ट आंसर इज़ 9 टीम्स, नॉट 8 टीम मुमताज़। अगर ऑस्ट्रेलिया को कैलकुलेट करें, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सोचने में हमें लगता है कि 2006 में जब उन्होंने अपील किया था कि हमें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में शामिल कर लिया जाए, तो सिंस देन टाइम देन ऑनवर्ड्स आज तक ऑस्ट्रेलिया ही दे प्ले फॉर एशिया। सो अगर ऑस्ट्रेलिया को हम अगर काउंट करें तो 9 टीमें, एशियन टीमें जो है इस बार के वर्ल्ड कप में दे आर पार्टिसिपेटिंग, और रेस्ट ऑफ द जो भी रिप्लाइज है वो बिल्कुल करेक्ट है, 9 टीम्स एंड या 9 टीम्स, नाम इमरान खान आपने भी सही दिया है, आई थिंक नहीं बल्कि इट्स अ कन्फर्म 9 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। समबडी इज़ राइटिंग 19 टीम्स, नहीं 9 टीम्स हैं आई थिंक, नहीं खलील साहब जो हैं 19 नहीं है, 9 टीमें हैं, 9 टीम्स तो बहुत ज़्यादा है, यूरोप से भी इतनी टीमें नहीं खेलती होंगी। सो दीज आर 9 टीम्स प्लेइंग इन एशिया, बहुत बड़ी बात है इस बार के वर्ल्ड कप में काफ़ी तादाद में एशियन टीमों की मौजूदगी, यही साबित करता है कि एशियन फुटबॉल इज़ ऑन the rise and they are really growing and they're really doing well. So, dosto

इसी के साथ मैं कहूंगा कि आज का स्पोर्ट्स समर स्पोर्ट्स प्रोग्राम है हमारे साथ। इस प्रोग्राम में आप लोग जुड़े रहे हैं और इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। अगले एतवार में हम फिर हाजिर होंगे दुनिया भर और कतर की दिलचस्प स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ, स्पेशली वर्ल्ड कप के साथ, वर्ल्ड कप न्यूज़ के साथ, खासतौर पर जैसे कि मैंने कहा फुटबॉल वर्ल्ड कप कवरेज के साथ जो कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में मुनक्किद हो रहा है। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ और खेलों की दुनिया से जुड़े रहिए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check. चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 1:30 यानी इट्स टाइम फॉर।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: सो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा मरहबा। सो वेलकम है आप सभी का ऑन एफएम 107। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता एस्केप रूम। भाई ये बड़ा कमाल का शो है हमारा, जहां एक घंटा हम एक दूसरे के साथ होते हैं और चैलेंज पे चैलेंज पे चैलेंज मिलते रहते हैं। वेल आज की सिचुएशन क्या होने वाली है? हाँ आज की सिचुएशन बड़ी कमाल की है। आपने ग्रीन हाउस तो देखा ही होगा, देखा है कि नहीं? हमारे कतर में काफ़ी सारे हैं। सो बस आज हम एक ऐसी जगह पर कैद होने वाले हैं जहाँ पर पौधे जो हैं या यूँ कहें प्लांट्स जो हैं वो हमें चैलेंज देने वाले हैं। कभी सोचा था ऐसा कि ऐसा कुछ हो जाएगा? कभी सोचा था कि किसी ग्रीन हाउस में फंस जाएंगे और प्लांट्स आपको चैलेंज देंगे या आपका रास्ता रोकेंगे या फिर कहेंगे बच के दिखाओ नहीं तो हम आपको खा जाएंगे? सो गेट रेडी आज के एस्केप रूम की सिचुएशन के लिए जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड इफ़ यू आर रेडी और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं देन 666-22-107 इज़ आर नंबर। उस पर अपने नाम के साथ अपने मैसेजेस आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और अभी हम क्या करने वाले हैं? हाँ जी, थोड़ा लूजन अप होंगे, अपने ब्रेन को थोड़ा सा इत्मीनान करेंगे और फिर उसके बाद इस म्यूजिक ब्रेक के बाद सीधा मिलेंगे और आज की सिचुएशन आपके सामने आएगी। सो डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन

0: और स्पोर्ट्स का एक्शन
1: लाइव अपडेट्स बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट
0: गेम ऑन
1: वॉल्यूम अप
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन
0: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी दिल से देसी आर यू रेडी फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको टॉप 10 काउंटडाउन सबसे जबरदस्त गाने लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। भैया जनाब सिर्फ बातें ही नहीं होने वाली हैं, आज हमें सरवाइव भी करना है। हाँ जी, एस्केप रूम का यही फंडा है, अगर सरवाइव नहीं किया तो आप वही कैद हो जाएंगे जिस सिचुएशन में आपको हमने डाला हुआ है। तो आज की सिचुएशन चले इमेजिन करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक बायोडोम एक्स के अंदर हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, बायोडोम एक्स के अंदर है, एक ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट जिसे हम बोटानिकल रिसर्च सेंटर कहते हैं, जहां दुनिया भर के नायाब पौधे प्लांट्स मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही आप ट्रॉपिकल सेक्टर में कदम रखते हैं माहौल बदल जाता है, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और तभी एकदम से जोर की आवाज आई, थट, एक भयानक आवाज के साथ वो भारी जो ग्लास के डोर्स थे वो बंद हो जाते हैं। होए होए, ये क्या हो गया, बायोडोम के अंदर हम हैं, इट्स अ बोटानिकल रिसर्च सेंटर जहां दुनिया भर के पौधे मौजूद हैं, ट्रॉपिकल सेक्टर में हमने कदम रखा और हम वहां फंस गए। आप देखते हैं कि एक मोटी हर रंग की पल्सेटिंग वाइन्स, या वो कहते हैं ना कि जो पेड़ पौधों की बेलें होती हैं, बेल पता है ना आपको, यस, वो सारी दरवाजे को जकड़ के रखी हुई है। अब पूरे डोम में वो फैलती जा रही है, जिस जगह पर, जिस पर्टिकुलर रीजन में आप हैं, सूरज की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही है और हवा में एक बहुत ही खतरनाक सी एक स्मेल जो है वो भर गई है। तभी एक ऑटोमेटेड वॉइस गूंजती है, इकोसिस्टम बैलेंस डिस्टर्ब्ड, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स राइजिंग, इनिशिएटिंग ऑर्गेनिक लॉकडाउन। उफ, इस आवाज ने हमको और भी ज्यादा टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा दिया है। ओए होए, अब इस जगह पे ये जो पौधे हैं ये सिर्फ बढ़ नहीं रहे हैं, ये कार्बन के लिए अब शिकार कर रहे हैं। अगर आपको इस घुटन से निकलना है और ताजा हवा को वापस से फील करना है तो बस अब इस ग्रीन हाउस की पहेलियों को सुलझाना होगा। वक्त तेजी से निकल रहा है और ये जो बेलें हैं, ये जो वाइन्स हैं, अब आपके पैरों को जकड़ने लगी हैं। पास ही एक लकड़ी के पुराने बोर्ड पर शायद किसी घबराए हुए रिसर्चर ने एकदम खुरेज के कुछ लिखा है, ठीक है, क्लू नंबर वन, ऑल राइट, जस्ट लुक एट दैट, क्लू नंबर वन क्या है, आइए चलिए आपको बताते हैं। मैं एक ऐसा कोट हूं जो आपको वॉर्म्थ नहीं देता, मेरे पास रिंग्स तो बहुत है पर उंगलियां एक भी नहीं, मैं उस अजीम जायंट की स्किन हूं जो सदियों से एक ही जगह खड़ा है, और मैं ही हूं जो पेड़ के दिल की हिफाजत करता है, बताओ मैं क्या हूं। देखो अपने आसपास के इन ह्यूज, इन विशाल

पेड़ों को देखो, ठीक है, क्या है वो चीज, क्या वो चीज हो सकती है जो क्लू नंबर वन का जवाब होगा। 666-22-107, 666-22-107 पर आप जवाब दीजिए अपने नाम के साथ। आई रिपीट द क्लू, आई एम वेरी सर्टन कि आप में से बहुत लोग सही जवाब दे सकते हैं, इनफैक्ट हर कोई सही जवाब दे सकता है। तो एक बार फिर से सुने, मैं एक ऐसा कोट हूं जो आपको वार्मथ नहीं देता, मेरे पास रिंग्स तो बहुत है पर उंगलियां एक भी नहीं, मैं उस अजीम जायंट की स्किन हूं जो सदियों से एक ही जगह खड़ा है, और मैं ही हूं जो पेड़ के दिल को हिफाजत देता है, हिफाजत करता है उसकी, बताए मैं क्या हूं। कम ऑन, इट्स अ वेरी इजी आंसर। क्लू नंबर वन को जल्दी से सॉल्व करें। 666-22-107, 666-22-107 पर हमें मैसेज करें अपने नाम के साथ, एंड लेट्स सी आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। आई कैन सी कि हमारे स्क्रीन पर कुछ लोग कह रहे हैं, एक बार प्लीज अमिता फिर से दोहरा दो। ओके, दिस इज द लास्ट टाइम, आई एम गोना रिपीट। मैं एक ऐसा कोट हूँ जो आपको वार्मथ नहीं देता, मेरे पास रिंग्स तो बहुत हैं पर उंगलियां एक भी नहीं, मैं उस अजीम जायंट की स्किन हूँ जो सदियों से एक ही जगह खड़ा है, और मैं ही हूँ जो पेड़ के दिल की हिफाजत करता है, बताएं मैं क्या हूँ। कम ऑन नाउ, थिंक व्हाट इज इट, जवाब दें 666-22-107 पर। एंड इट्स टाइम To think with the music, है कि नहीं? तो चलें enjoy करते हैं इस बेहतरीन से गाने को, उड़े दिल बेफिक्रे को, and don't go anywhere, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखो।
1: यस जनाब, वेलकम वेलकम वेलकम, एफएम 107 सुन रहे हैं आप और एस्केप रूम के सफर में आज आप चल रहे हैं मेरे साथ। तो हम कहां पर हैं? हम बायोडोम एक्स के अंदर हैं एंड बेसिकली ये एक बोटैनिकल रिसर्च सेंटर है जहां दुनिया भर के नायाब पौधे मौजूद हैं। अब हम ट्रॉपिकल सेक्टर में गए, हमने सोचा जरा देख के आते हैं और जैसे ही हम गए, हमने कदम रखा, सारे ग्लास डोर्स लॉक हो गए। हमने जब पलट के देखा तो सारी जो मोटी मोटी हरे रंग की वाइन्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, सारे दरवाज़ों को कैद कर लिया, उसके बाद हमारे पैरों को भी जकड़ लिया। हम मतलब परेशान कि हम करें क्या। एंड देन ऑटोमेटेड वॉइस गूंजती है और उसने कहा कि देखो, इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अब हमें राइज करना होगा, ठीक है, अब इनिशिएटिंग ऑर्गेनिक लॉकडाउन। बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो गई, अब हम सोचे कि क्या करें। तो चैलेंज नंबर वन हमारे सामने आया, क्लू नंबर वन जिसे हमें सॉल्व करना था। तो पहला क्लू हमें मिला जो कि था, मैं एक ऐसा कोट हूँ जो आपको वार्मथ नहीं देता, मेरे पास रिंग्स तो बहुत है पर उंगलियाँ एक भी नहीं, मैं उस अजीम जायंट की स्किन हूँ जो सदियों से एक ही जगह खड़ा है और मैं ही हूँ जो पेड़ के दिल की हिफाजत करता है, तो बताओ मैं क्या हूँ। चले बता देते हैं क्या है। तो हमारे लिसनर्स लिखते हैं कि अमिता, इट्स बार्क, पेड़ की छाल, पेड़ की खाल, कुछ लोग ने लिखा है पेड़ का छिलटा, जिन्होंने भी ये लिखा है वो सही जवाब है भाई, सही जवाब। क्या बात है जनाब, क्या बात है, आप सबने सही जवाब देकर क्लू नंबर वन सॉल्व किया, लेवल वन इज क्लियर। और जिन्होंने सबसे जल्दी सही जवाब दिए उनके नाम है रिजवान, रॉम्स, आफ्ताब, उमर, रिहान, हुसैन, मोहम्मद यूसुफ खान और हिशाम। सो यस, कंग्रेचुलेशंस, यहाँ पर फर्स्ट लेवल क्लियर हुआ। अब क्या होगा, जैसे ही आपने सही जवाब दिया वो जो बेल थी, ठीक है, जो वाइन्स थी जिन्होंने आपको पकड़ा हुआ था, वो ढीली हुई और आप उनसे आज़ाद हुए। और जैसे ही आप आज़ाद हुए, आप भाग कर अंदर ही अंदर उस पूरे डोम के बीचों बीच पहुँचे जहाँ एक फाउंटेन है, ठीक है। अब उस फाउंटेन के अंदर पूरा गंदा पानी है और हर जगह लिलीज ही लिलीज आपको दिखाई दे रही हैं। अब एक स्टैचू है, एक पत्थर का लिली, उस पर क्लू नंबर टू है, अब गौर से सुनिए। मैं अपने पैरों से पानी पीती हूँ और अपनी स्किन से सांस लेती हूँ, मैं एक हरा भरा स्केलेटन हूँ जो हमेशा लाइट की तरफ बढ़ता है, मगर इतनी फ्रजाइल हूँ कि एक बच्चे के हाथ से भी टूट सकती हूँ, मुझ में कई वेन्स या यूं कहें नसें हैं पर खून का एक कतरा भी नहीं, बताएं मैं क्या हूँ। कम ऑन गाइस, थिंक अबाउट इट, ये कौन सी चीज़ है, ठीक है, अपने पैरों से पानी पीती है और अपनी स्किन से सांस लेती है, ये हरा भरा स्केलेटन है, हमेशा लाइट्स की तरफ बढ़ती है और बड़ी फ्रजाइल है, बच्चे भी इसे तोड़ सकते हैं, जल्दी से बताएं पेड़ की सबसे खूबसूरत सबसे नाजुक चीज़ कौन सी होती है। बहुत खूबसूरत होती है, कम ऑन जल्दी से इसका जवाब दें 666-22-107 पर, 666-22-107 एंड लेट मी सी आप में से कितने लोग हैं जो क्लू नंबर टू को आज सॉल्व कर पाते हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी जल्दी हमें जवाब दीजिए। और अभी सुनिधि चौहान, दिव्य कुमार एंड अमित त्रिवेदी का ग्रेट कॉम्बिनेशन, आई होप यू गोना लव दिस सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। इस वक्त हमारे स्टूडियो की जो घड़ी है वो बजा रही दोपहर के 2:02, यानी कि ये बहुत ही कमाल का वक्त है मेक अ विश के एस्केप रूम की आज की सिचुएशन से जल्द बाहर निकल पाए।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: सो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? एस्केप रूम की आज की सिचुएशन बड़ी कमाल की है। यहाँ पर पौधों ने हमारा रास्ता रोका हुआ है। हाँ जी, सो बायोडोम एक्स के अंदर है, जो कि एक बोटानिकल रिसर्च सेंटर है और यहाँ का जो ट्रॉपिकल सेक्टर है। हम जब यहाँ पर गए तो सारे जो दरवाजे थे कांच के वो बंद हो गए और उसके बाद जो बेलें थी पौधों की, यूँ कहें तो उन्होंने वाइन्स मतलब उन्होंने पूरी तरह से दरवाज़ों को सील कर दिया और हमारे पैरों को जकड़ लिया। उसके बाद हमें क्लू नंबर 1 मिला, इसे सॉल्व करो और बाहर निकलो। तो क्लू नंबर 1 हमने सॉल्व किया और सही जवाब था बार्क, पेड़ की छाल, पेड़ की खाल। उसे बोल के, उसका जवाब दे के हम बाहर निकले। ये जो वाइन्स और ये जो जो लताएं थीं या यूँ कहें बेलें थीं, उन्होंने हमको हमारे पैरों को छोड़ दिया। एंड देन हम भाग के जब अंदर गए तो एक फाउंटेन के पास आके हम रुके। ठीक है, ये फाउंटेन में सिर्फ लिलीज ही लिलीज लगे हैं, बट वहाँ हमें क्लू नंबर 2 नहीं मिला। क्लू नंबर 2 हमने देखा, एक स्टैचू, लिली का स्टैचू था, उस पर लिखा हुआ था कि मैं अपने पैरों से पानी पीती हूँ और अपनी स्किन से सांस लेती हूँ। मैं एक हरा भरा स्केलेटन हूँ जो हमेशा लाइट की तरफ बढ़ता है, मगर इतनी फ्रजाइल हूँ कि एक बच्चे के हाथ से भी टूट सकती हूँ। मुझ में कई वेन्स या नसें तो हैं, पर खून का एक कतरा भी नहीं। बताए मैं क्या हूँ। ये पेड़ की बड़ी खूबसूरत सी चीज़ लगती है, मुझे बेहद बेहद पसंद है। इनफैक्ट जब हम स्कूल में पढ़ते तो इस चीज़ को हम अपनी किताबों के बीच में भी रखते थे। हाँ जी, चलें जवाब की तरफ रुक करते हैं। तो हमें लिखा है लोगों ने कि टहनी है, पेड़ की जड़ हो सकती है, ब्रांचेस हो सकती हैं, कुछ ने लिखा है लीफ हो सकती है, कुछ ने लिखा है पत्ते हो सकते हैं। ओके, तो अब सही जवाब की तरफ हम सीधा रुक करते हैं। ये ना तो टहनी है, ना जड़ है, ना फ्लावर है, ना ब्रांचेस है, ये है लीफ, या यूँ कहें तो पत्ते। भाई ज़ोरदार तालियां उनके लिए जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। आई नो क्लू थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, जिसे सुनकर ऐसा लगेगा कि शायद ये टहनियाँ हो सकती हैं, ब्रांचेस हो सकते हैं, लेकिन जब आप क्लू अच्छे से सुनते तो आपको पता चल जाता कि वह किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो सही जवाब इज लीफ, पत्ता। और सही जवाब जिन्होंने सबसे पहले हमें दिए, उनके नाम है मोहम्मद, रोम्स, रिहान, आफ्ताब, रिजवान, हुसैन, रमेश। ओके, इन्होंने ही हमें सही जवाब दिए। सो कंग्रेचुलेशंस, आप सब ने क्लू नंबर 2 को सॉल्व किया और अब हम आगे बढ़ेंगे। हवा थोड़ी सी साफ हुई, ठीक है, पर रास्ता अभी भी बंद है। एक मजबूत ट्रांसपेरेंट दीवार ने एग्जिट को ब्लॉक किया हुआ है। अब इस लॉकडाउन को तोड़ने के लिए आपको इस ग्रीन हाउस के सबसे बड़े हथियार को पहचानना होगा। Now I should tell you, ये सबसे easy clue होने वाला है। So गौर से अब सुने, ये आखिरी रुकावट है, ठीक है? मैं रोशनी से बना एक कैद खाना हूँ, okay? मैं सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेता हूँ और उसे कभी रिहा नहीं करता। मैं पानी की तरह क्लियर हूँ, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हूँ, मगर पत्थर की तरह सख्त भी हूँ। मेरे बिना ये ग्रीन हाउस एक ग्रेवयार्ड बन सकता है, पर मेरी वजह से यहाँ जंगल है, यहाँ जिंदगी है। बताएं मैं क्या हूँ, क्या हो सकता है? देखो, ग्रीन हाउस तो हमने देखा भी है और हम सबको पता भी है, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। सो नाउ लिसन टू द क्लू अगेन और फिर इसका जवाब ढूंढिए, बिकॉज दिस इज द फाइनल स्टेप। ये आखिरी रुकावट है हमारे लिए, ठीक है? तो मैं रोशनी से बना एक कैद खाना हूँ, ऑल राइट, मैं सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेता हूँ और उसे कभी रिहा नहीं करता। मैं पानी की तरह ट्रांसपेरेंट या क्लियर हूँ, मगर पत्थर की तरह सख्त भी हूँ। मेरे बिना ये ग्रीन हाउस एक ग्रेवयार्ड भी बन सकता है, पर मेरी वजह से आज एक जंगल बना हुआ है, इसमें लाइफ है। कम ऑन, व्हाट इज दैट वन थिंग? इस डोम को तोड़ने और बाहर निकलने के लिए किस चीज से हमें गुजरना पड़ेगा? थिंक अबाउट इट, यू नो द आंसर। इसका जवाब दीजिए 6622107 पर अपने नाम के साथ, 6622107। और अभी के लिए भाई देखो, अगर जूस वगैरह पीना है, करक वगैरह एंजॉय करनी है, कुछ खाना पीना है, कहीं थोड़ा सा रिलैक्स करना है, तो डू इट, क्योंकि ये आखिरी मौका है एस्केप रूम से बाहर निकलने का। नहीं निकले तो ये जो

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दीप।
1: वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। तो भाई आज की एस्केप रूम की सिचुएशन, हम एक बोटैनिकल रिसर्च सेंटर के अंदर हैं जहां पर दुनिया भर के कमाल

बेल होती है, यू कहें वाइंस होती हैं, अचानक से उन्होंने ग्लास डोर को बंद कर दिया और हमें भी जकड़ लिया। हम डर गए, भाई क्या करें, कैसे बाहर निकलें, समझ नहीं आ रहा। तो क्लूज हमारे सामने एक के बाद एक आए। अब इन क्लूज को सॉल्व करके ही हम इस ग्रीन हाउस से बाहर निकल सकते हैं। ये जो डोम है इसके अंदर जो हम फंस गए हैं, हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। पहला क्लू का सही जवाब था बार्क, पेड़ की छाल या पेड़ की खाल, ठीक है। दूसरा क्लू भी हमने सॉल्व किया, लीफ यानी पत्ते, ठीक है। अब तीसरा क्लू हमारे सामने है और आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन की काफ़ी जो हमारे लिसनर्स हैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब कुछ डिफरेंट ही जवाब आ रहे हैं। सी आई वांट कि आप सब सही जवाब दें और इस एस्केप रूम की आज की सिचुएशन से बाहर निकले। तो अब गौर से सुनिए, ये आखिरी रुकावट है हमारे लिए एंड वी हैव टू क्रॉस इट। मैं रोशनी से बना एक कैद खाना हूँ, ठीक है। मैं सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेता हूँ और उसे कभी रिहा नहीं करता। मैं पानी की तरह ट्रांसपेरेंट या क्लियर हूँ, मगर पत्थर की तरह सख्त भी हूँ। मेरे बिना ये ग्रीन हाउस एक ग्रेवयार्ड बन सकता है, पर मेरी वजह से आज ये एक जंगल बना हुआ है। यहाँ पर लाइफ है। कम ऑन गाइस, थिंक अबाउट इट। क्या सही जवाब हो सकता है? 666-22107 इज आर नंबर, 666-22107। इस पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए। और क्लू आपके लिए ये है, हिंट आपके लिए ये है कि इस पूरे डोम को तोड़ के बाहर निकलना है हमको, ठीक है। तो ये जवाब देना होगा हमको। तो जब जवाब देंगे तो कौन सी चीज टूटेगी? अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकती मैं। कम ऑन, थिंक एंड गिव मी द आंसर। 666-22107 पर आखिरी मौका है एस्केप रूम की सिचुएशन से बाहर निकलने का, तो इसे आजमा लो और फिलहाल एंजॉय करो ये स्लो मोशन का ब्यूटीफुल ट्रैक। स्टे ट्यून्ड टू FM 107।

0: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
1: हेलो,
2: आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ। कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it.
0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। भैया, आज एस्केप रूम की ये सिचुएशन बड़ी कमाल की रही, जहाँ पर हम कैद हो गए हैं एक ग्रीन हाउस डोम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो पौधों की जो बेलें हैं बड़ी कमाल की हैं, इन्होंने हमको जकड़ के रखा, पूरे दरवाज़ों को बंद कर दिया एंड हमें क्लूज एक के बाद एक मिलते रहे कि भाई सॉल्व करो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। पहले क्लू का सही जवाब था बार्क, पेड़ की छाल। दूसरे का जवाब था लीफ या यूं कहें पत्ते। और तीसरे का था, और ये है कि अभी तीसरे का जवाब से पहले एक बार हम क्लू नंबर 3 दोहरा देते हैं। ये आखिरी रुकावट थी हमारी, ठीक है। मैं रोशनी से बना एक कैद खाना हूँ, मैं सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेता हूँ और उसे कभी रिहा नहीं करता, मैं पानी की तरह ट्रांसपेरेंट क्लियर हूँ मगर पत्थर की तरह सख्त भी हूँ। मेरे बिना ये ग्रीन हाउस एक ग्रेवयार्ड भी बन सकता है, लेकिन मेरी वजह से आज यहाँ जंगल है, लाइफ है, मैं क्या हूँ? ओके, तो हम चलिए जवाबों की तरफ देखते हैं। हमें जवाब आए हैं ग्लास, ग्लास ज़्यादातर लोगों ने लिखा है, फिर प्लास्टिक और प्लास्टिक रूफ, सन, तो इस तरह के जवाब आए हुए हैं। चलिए, ज़्यादातर ग्लास के बारे में मैंने सोचा कि सही होगा, ग्लास, शीशा, कांच। आइए, जिन्होंने पहले सबसे पहले हमें सही जवाब दिए उनके नाम ले लेते हैं। उनके नाम है अनम एंड रूहान, एंड देन रिजवान, आफ्ताब, रॉम्स मोहम्मद, रेहान, निडा है और सबा है। चलिए, इन्होंने सबसे पहले हमें सही जवाब दिए हैं, तो सही जवाब के लिए तालियां तो बनती है कि नहीं? एग्जैक्टली, कंग्रेचुलेशंस। ग्लास ही सही जवाब है, ठीक है। हर किसी ने मैसेज किया, कुछ ने प्लास्टिक कहा, कुछ ने सन कहा, कुछ ने सिर्फ प्लास्टिक रूफ लिखा। सो ग्लास, शीशा, कांच, यही सही जवाब है, क्योंकि जब आपने ये सही जवाब दिया तो जो आपके सामने एक बड़ा सा कांच का डोर था वो अपने आप टूट गया। आय हाय हाय, जब ये हुआ तो क्या हुआ? ग्रीन हाउस का सारा वेंटिलेशन सिस्टम शुरू हो गया। हाँ, मतलब ये शीशा जब टूटेगा तभी आप बाहर निकल पाओगे, अब वापस जुड़ता रहेगा वो अपनी बात है लेकिन यहाँ से एस्केप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अब ताज़ी ताज़ी हवा जो है ना, वो एकदम से हमें महसूस हुई एंड वी आर फीलिंग फाइन नाउ कि चलो भाई, यहाँ की जो ख़तरनाक वाइंस थी, ये जो बेलें थी जिन्होंने हमें जकड़ लिया था, अब हम उनसे आज़ाद हो चुके हैं। सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, कैसी फीलिंग आ रही है? आज की जो लकी विनर है, आइए चलिए उनका नाम भी दोहरा देते हैं। कौन हो सकता है आज का लकी विनर? एनी गेसेस? आज के लकी विनर हैं रिजवान।

मुबारका मुबारका मुबारका, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए और हमारे सारे लिसनर्स जिन्होंने नॉन स्टॉप हमें मैसेजेस दिए, यू नो, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार। अभी हमें कुछ हमारे लिसनर्स मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई अमिता, आज का जो ये जो सिचुएशन थी ना, काफ़ी ट्रिकी हो गई थी हमारे लिए। कोई नहीं, होता है होता है। यही तो एस्केप रूम का मकसद है कि कभी कभी ट्रिकी सिचुएशंस में आपको फंसाए ताकि आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करें और वहाँ से बाहर निकल जाएं। वेल, कल क्या होगा, हम एक अबैंडन्ड कॉलोनी में चलेंगे। अब वो कॉलोनी क्या होगी ये तो कल पता चलेगा। तो दोपहर 1:30 बजे एस्केप रूम अपनी ए4 अमिता के साथ सुनना ना भूलें। FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं और अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। और जाते जाते ये बेहतरीन सा गाना आपके नाम, और जाते जाते ये कहना भी तो ज़रूरी है, हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे ना चलते चलते। तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ।

0: अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और बहुत रेलिवेंट और मॉडर्न स्टाइल एपिसोड। देखें, आज हम बात करेंगे फैशन के एक ऐसे ट्रेंड पर जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है लेकिन उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्वाइटली बहुत बड़ा होता है। मतलब मैं बात कर रही हूँ फास्ट फैशन से दूरी की। चलिए एक रिलेटेबल बात बताती हूँ आपको। देखिए, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं या मॉल में वॉक कर रहे होते हैं। मुझे विंडो शॉपिंग पसंद है, वैसे मॉल जाती नहीं लेकिन जब जाती हूँ तो मुझे विंडो शॉपिंग पसंद है। वैसे ही आप मॉल में वॉक कर रहे होते हैं मित्रा, हर तरफ नए आउटफिट्स, सेल, ऑफर और ट्रेंडिंग स्टाइल्स नजर आ रहे होते हैं। भाई बहुत टेम्पटिंग होते हैं वो। आप सोचते हैं ये ड्रेस बहुत ही सस्ता है भाई, सेल में लगा हुआ और स्टाइलिश भी है, क्या करूं, ले लूं। मेरे भी दिमाग में ये चल रहा होता है, ले लो ले लो ले लो सफा, ले लो ऑफर में प्रमोशन में ले लो। फिर नेक्स्ट वीक एक और न्यू कलेक्शन आ जाता है, हाँ ठीक है, और वो पहला ड्रेस वार्डरोब में पहले ही यूज नहीं हुआ होता लेकिन अटेंशन ऑलरेडी नेक्स्ट आइटम पर शिफ्ट हो चुकी होती है हमारी। ये सबके साथ होता है। अब थोड़ा सा रियलिटी से इसे समझने की कोशिश करते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, फास्ट फैशन का मतलब होता है रैपिडली प्रोड्यूस्ड क्लोथ्स जो लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक बनाए जाते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में मार्केट में आ जाते हैं। इस प्रोसेस में प्रोडक्शन स्पीड हाई होती है लेकिन अक्सर औकात क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। और जब कपड़ा जल्दी यूज के बाद डिस्कार्ड हो जाए ना तो टेक्सटाइल वेस्ट बढ़ जाता है। अब इसमें इको स्विच इस सिचुएशन में क्या है मैं आपको बताती हूँ। आइडिया बड़ा सिंपल है, फैशन को माइंडफुल और सस्टेनेबल बनाए ना, मतलब कम लें, बेटर क्वालिटी क्लोथ्स चूज करें और उनको ज्यादा टाइम तक यूज करें। अब बात करते हैं कि भाई देखें कि फास्ट फैशन से दूर रहने का क्या फायदा है। देखिए, सबसे पहला फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाटर एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा यूज करती है और वेस्ट भी जनरेट करती है तो एनवायरमेंट बचेगी उससे। दूसरा फायदा है वेस्ट प्रोडक्शन। जितना कम कपड़ा डिस्कार्ड होगा उतना कम लैंडफिल बर्डन होगा। तीसरा फायदा है मनी सेविंग। क्वालिटी पीसेस लॉन्ग लास्टिंग होते हैं साथियों, इसीलिए बार बार शॉपिंग की जरूरत कम होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल स्टाइल डेवलपमेंट। आप ट्रेंचेस के बजाय अपनी यूनिक वार्डरोब बिल्ड करते हैं। तो भाई सोचिए, आपके पास 10 सस्ती टी शर्ट है जो 2 या 3 वॉशेस के बाद अपनी शेप और अपना कलर दोनों लूज कर देती हैं, और दूसरी तरफ 3 क्वालिटी शर्ट्स हैं जो सालों तक यूज होती हैं। दोनों सिचुएशंस कंपेयर करें तो सेकंड ऑप्शन ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है ना, इकोनॉमिकल और सस्टेनेबल लगता है कि नहीं। लेकिन दोहा जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में फैशन बहुत फास्ट इवॉल्व करता है। हर सीजन न्यू ट्रेंड्स आते हैं, नई कलेक्शंस आती हैं, सेल्स आती हैं जो कंज्यूमर्स को फ्रीक्वेंट बाइंग की तरफ पुश करती हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इसीलिए यहाँ कॉन्शियस शॉपिंग और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूं जो आप फॉलो कर सकते हैं तो वो ये है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चूज करें, कम आइटम्स लें लेकिन ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग हो आइटम्स, ठीक है। और एक और चीज जो बहुत जरूरी है भाई, ये माइंडसेट फ्लिप है, नीड वर्सेस वांट चेक करें। हर शॉपिंग से पहले अपने आप से पूछें कि क्या ये जरूरत है या सिर्फ एक ट्रेंड है। बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, ट्रस्ट मी। वार्डरोब रोटेशन करें, पुराने कपड़ों को मिक्स एंड मैच करके नए लुक्स क्रिएट करें ना। देखिए, सस्टेनेबल ब्रांड्स एक्सप्लोर करें, ऐसे ब्रांड्स चूज करें जो एथिकल प्रोडक्शन फॉलो करते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोनेशन हैबिट अडॉप्ट करें। जो कपड़े यूज नहीं हो रहे उनको डिस्कार्ड करने के बजाय डोनेट करें। अगर वो अभी भी यूजेबल हैं, और कुछ लोगों का ये होता है कि भाई प्री लव्ड क्लोथ्स होते हैं या आपका दिल भर गया, एनीथिंग, आप उसको कचरे में नहीं फेंक देना। इफ इट्स, अगर आपका है इतना कि वो कपड़ा यूजेबल है तो आप उसे डोनेट करें। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव इस बात का ये है कि फास्ट फैशन इंडस्ट्री दुनिया के लार्जेस्ट एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स में से एक रहती है हमेशा, स्पेशली वाटर यूजेज और टेक्सटाइल वेस्ट के हवाले से। इसीलिए ग्लोबली अब स्लो फैशन का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया जा रहा है जहां फोकस ड्यूरेबिलिटी, एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी पर हो रहा है। साथियों देखिए, अक्सर हम ये सोचते हैं कि सस्ता है तो भाई ले लो, प्रमोशन है तो भाई ले लो, सेल्स है तो भाई ले लो, लेकिन असल में अगर वो आइटम 2 से 3 बार यूज होकर वेस्ट हो जाए तो भाई वो सस्ता नहीं रहता बल्कि वेस्टफुल डिसीजन बन जाता है। अच्छा अगर हम बात करें ना बिहेवियरल चेंज एंगल के बारे में, तो जब आप फास्ट फैशन से दूर होते हैं ना तो आप अपनी शॉपिंग हैबिट्स को ज्यादा इंटेंशनल बना लेते हैं और आप सिर्फ बायर नहीं रहते, आप शॉपहोलिक नहीं हो जाते बल्कि कॉन्शियस कंज्यूमर बन जाते हैं। तो भाई हमारा इको स्विच बड़ा सिंपल है, फास्ट फैशन से डिस्टेंस बनाएं और सस्टेनेबल क्लोथिंग्स चूज करें, अडॉप्ट करें। तो भाई आज का चैलेंज ये है कि आज आप अपनी वार्डरोब को चेक करें और देखें कि कौन सा आइटम सच में यूज हो रहा है और नेक्स्ट शॉपिंग से पहले एक कॉन्शियस डिसीजन लें कि भाई क्वालिटी है या ट्रेंड है, इन दोनों में से चूज करें। और अगर आप ऑलरेडी सस्टेनेबल फैशन फॉलो कर रहे हैं तो किसी और को भी इंस्पायर करें ना, ताकि वो शॉपोहॉलिक से सस्टेनेबल शॉपिंग पर आ सके। साथियों फैशन सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं होता बल्कि सोच का एक्सप्रेशन होता है। जब हम सस्टेनेबल फैशन चूज करते हैं ना तो हम सिर्फ स्टाइलिश नहीं लगते बल्कि रिस्पॉन्सिबल भी लगते हैं। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे रहम दिल होने के बारे में। रहम दिल होना एक ऐसी सिफत है जो इंसान को दूसरों के करीब लाती है। जब हम दूसरों पर रहम करते हैं, उनकी तकलीफ को समझते हैं, तो सोसाइटी एक बेहतरीन जगह बन जाती है। रहम सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों और हर मखलूक पर होना चाहिए। इस्लाम हमें हर मखलूक के साथ नरमी का बर्ताव करना सिखाता है। जब आप किसी पर रहम करते हैं तो अल्लाह आप पर रहम करता है। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो जिंदगी बदल देता है। आज का अमल ये है, किसी की मजबूरी को समझने की कोशिश करें और उसके साथ नरम रवैया अख्तियार करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to
2: 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक पे, और ये टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन कल्चर। एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन कल्चर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सोसाइटी में रिस्क लेना, नए आइडियाज एक्सप्लोर करना और बिजनेसेस स्टार्ट करने का एनवायरनमेंट बनाना। विजन 2030 का एम है यूथ और प्रोफेशनल्स को एनकरेज किया जाए कि वो अपने आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करें। जब लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं तो नए सॉल्यूशंस मार्केट में आते हैं। ये प्रॉब्लम्स को नए तरीके से सॉल्व करते हैं और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करते हैं। इनोवेशन से इंडस्ट्रीज मॉडर्न होती हैं और ग्लोबल कंपटीशन

0: में कंट्री स्ट्रॉन्ग होती है। इस कल्चर को डेवलप करने के लिए सपोर्ट सिस्टम जरूरी है, जैसे फंडिंग, मेंटोरशिप, इंक्यूबेशन सेंटर्स। जब एंटरप्रेन्योरशिप को गाइडेंस मिलती है तो उनका सक्सेस रेट और बढ़ जाता है। कतर में स्टार्टअप्स और इनोवेशन हब्स का एक अच्छा खासा एक ट्रेंड है। गवर्नमेंट भी पॉलिसीज और सपोर्ट प्रोग्राम्स के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज कर रही है। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एनकरेज किया जाए सिस्टम को, क्योंकि ये ग्रोथ का वो इंजन है। जिसकी शुरुआत एक बार हो जाए तो फिर ये गाड़ी सीधा अपने स्टेशन पर ही जाके रुकती है। जी हाँ, जब लोग इनोवेट करते हैं तब इकोनॉमी डायनामिक और फ्यूचर रेडी बनती है। और विजन 2030 का ये फोकस है कि एक क्रिएटिव और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाई जाए, और इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। बस हमें और आपको भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि धीरे धीरे हम और आप इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझना अब हमारी और आपकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारा शौक नहीं है तो हम नहीं सुन रहे, या नहीं है तो हमें नहीं जानना। नहीं, अब हम सबके लिए सारी चीज़ें जानना बड़ा अहम हो गया है। इसीलिए मेरी कोशिश है कि धीरे धीरे हल्के फुल्के अंदाज में कुछ हल्की फुल्की आपसे बात की जाए, जिससे ये सारी टर्मिनोलॉजीज, ये सारे टर्म्स, ये सारे टॉपिक्स आप तक भी पहुँचें। और कभी भी कोई भी आपसे बात करे तो आप यूं ना देखें कि अरे मुझे तो पता ही नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ आपके जहन में जरूर हो। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन, ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे? हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? From smart cities to saving precious water, desert को green करने के ideas से लेकर sustainable living तक, हम explore करेंगे हर green corner of Qatar. मतलब simple tips, cool hacks, inspiring stories from Qatar.
2: सोचो मत, जुड़ जाओ, be part of the conversation जो Qatar को बना रहा है leader in sustainability. Tune into Qatar Green Beat with A for Amita. फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का FM 107 पर, और हम आज एक बड़े ही खूबसूरत और शानदार सफर में चलने वाले हैं हमारे शो कतर ग्रीन बीच पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो हफ्ता अब तक चल रहा है ये बड़ा ही शानदार गुजर रहा होगा, और हमारी कतर की जो गर्मी है ना वो बढ़ती जा रही है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस गर्मी को इंजॉय करते हुए अपना ख्याल रखें। और अभी क्या करें, अभी अपने हाथ में कॉफ़ी ले लें या फिर करक ले लें या फिर जूस ले लीजिए और थोड़ा रिलैक्स कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये जो सफ़र कतर ग्रीन बीट्स का हम शुरू करने वाले हैं

0: inspiring stories from Qatar.
1: Qatar Green Beat. तो पिछले अपने हमने इको लग्जरी पर काफी गहरी बातचीत की. हमने देखा था कि कैसे कतर के बड़े बड़े होटल्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर फाइव स्टार कंफर्ट के साथ हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, उसका भी ख्याल रख रहे हैं. इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि लग्जरी और एनवायरमेंट दोनों हाथों हाथ चल रहे हैं. लेकिन आज का जो मिजाज है वो थोड़ा सा ना अलग होने वाला है. आज हम थोड़ा और करीब आने वाले हैं. हम बात करेंगे उस फैब्रिक की जो हमारी जिंदगी का एक अनोखा हिस्सा है. हम बात करेंगे उन लेबल्स की जो हमारी पहचान बनते हैं और उन फैसलों की जो हम हर बार लेते हैं जब हम किसी मॉल के ड्रेसिंग रूम में खड़े होते हैं. सोचिए, जब हम कोई नया लिबास खरीदते हैं, कुछ नए कपड़े खरीदते हैं, तो क्या हम सिर्फ उसकी चमक धमक देखते हैं या हम ये भी सोचते हैं कि वो आया कहाँ से होगा? फैशन का नाम लेते ही दिमाग में क्या आता है बताएं? वही ग्लिटरी रनवेज, बड़े बड़े ब्रांड्स और हमारे मनपसंद मॉल्स में चलने वाले लेटेस्ट ट्रेंड्स, है ना? यही दिमाग में आता है ना. हम सबको स्टाइलिश दिखना बहुत पसंद है. लेकिन जनाब, हमारे इस शौक के पीछे एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो रही है. एक ऐसी क्रांति जो फास्ट फैशन की रफ्तार को थोड़ा कम करके हमारे प्लैनेट को तवज्जो दे रही है. जी, हम अक्सर फास्ट फैशन के चक्कर में ऐसे कपड़े खरीद लेते हैं जो शायद 2-3 बार पहनने के बाद कचरे में चले जाते हैं. मगर अब वक्त बदल रहा है. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे थ्रेडिंग द फ्यूचर, सस्टेनेबल फैशन एंड रिटेल की. आज हम इस पर गहरी चर्चा करेंगे कि कैसे कतर खर्च करो और फेंक दो वाली तहजीब को छोड़कर संभाल कर रखो और संवारो, यानी चेरिश एंड सस्टेन की तरफ कदम बढ़ा रहा है. आपने कभी सोचा है कि जो पुराने धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, या जो प्लास्टिक बॉटल्स हम फेंक देते हैं, क्या उनसे हाई एंड आर्ट बन सकता है? सुनने में शायद

0: नहीं कि हम फैशन को भूल जाएं। इसका मतलब ये है कि हम अपने लिबास और नेचर के बीच एक बैलेंस बनाए रखें। कतर नेशनल विजन 2030 का भी यही मकसद है, एक जिम्मेदार समझ का निर्माण, यूं कहें एक जिम्मेदार समझ की इम्पोर्टेंस। और इस इम्पोर्टेंस में आपका और हमारा दोनों का बराबर का जो कहते हैं ना कॉन्ट्रीब्यूशन है। हर वो कपड़ा जो हम सोच समझ कर चुनते हैं हमारी अर्थ हमारी धरती के लिए एक तोहफा है। तो जनाब मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज हम दोहा डिजाइन डिस्ट्रिक्ट की सैर करेंगे, हम स्केल 7 जैसे इंक्यूबेटर्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आपका वार्डरोब ना सिर्फ फ्रेंडली दिखेगा बल्कि इको फ्रेंडली भी बन जाएगा। आज हम सिर्फ कपड़ों की बात नहीं करेंगे, हम उन कहानियों की बात करेंगे जो हर एक रेशम के धागे में छुपी है। इट्स टाइम टू लुक बियॉन्ड द लेबल्स, इट्स टाइम टू थ्रेड आवर बेटर फ्यूचर, किसके लिए? हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें हमारे साथ सुनते हुए कतर ग्रीन बीट्स। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, मैं हूं आपकी अमिता, आपके साथ कतर ग्रीन बीट्स सुन रहे हैं आप। तो आपको बता दूं कि आज बात कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत मौजू पर, या यूं कहें सब्जेक्ट पर, सस्टेनेबल फैशन। लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे सबसे पसंदीदा सेगमेंट का, एंड व्हाट इज दैट? द ग्रीन वायर सेगमेंट। ये वो सेगमेंट है जहां हम आपको देते हैं हमारे शहर यानी कि हमारे कतर के वो ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हमारी जिंदगी और हमारे फैमिलीज या हमारे एनवायरमेंट को बेहतर बना रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी अपडेट के साथ। तो आपको पता है या फिर आपको मालूम है कि कतर ने अब ऑफिशियली रिटेल स्टोर्स में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, ये सिर्फ एक मशवरा नहीं था, अब ये एक

ही है। आपने शायद महसूस भी किया होगा कि जब आप पिछले कुछ दिनों में शॉपिंग के लिए गए होंगे, अब वो पतले वाले प्लास्टिक बैग्स आपको नजर नहीं आते, उनकी जगह अब हमें पेपर बैग्स, वोवन बैग्स या बायोडिग्रेडेबल ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। तो जनाब, ये एक बहुत बड़ा कदम है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्लास्टिक बैग से क्या होता है, लेकिन सोचिए कतर में हर साल कितने मिलियंस बैग इस्तेमाल होते हैं। वो सब कचरा हमारे समंदर में जाता है, यस, और अब तक जाता रहा है। हमारी मरीन लाइफ को नुकसान

ये करना काफी टाइम पहले शुरू कर दिया है. वैसे जनाब, ये सिर्फ प्लास्टिक बैग्स ही नहीं, हमारे कतर के बड़े बड़े मॉल्स और रिटेल जायंट्स ने

बड़े बिन्स रखे हैं जहां आप अपने पुराने कपड़े ड्रॉप कर सकते हैं। हम सब के पास ऐसे कपड़े होते ही हैं जो शायद अब हमें फिट नहीं आ रहे या फिर हमारा मन उब गया है, अब हमको उनको नहीं पहनना है और जिन्हें हम बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उन्हें घर के किसी कोने में फेंकने से अच्छा हम इस पर्टिकुलर बॉक्स में ड्रॉप कर दें। अब आप उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं। यस, और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, जब आप अपने पुराने कपड़े इस बॉक्स में, इस बिन में डालते हैं तो बहुत से ब्रांड्स आपको बदले में स्टोर डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं। यानी कि आपने अर्थ की, अपने एनवायरनमेंट की मदद की है।

बड़ा मतलब निकलता है. कतर फैशन सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, फैशन अब हरा भरा भी हो रहा है, यानी गोइंग ग्रीन. हमें सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहना है. कंज्यूमर वो होता है जो सिर्फ खरीदता है और इस्तेमाल करके फेंक देता है. हमें बनना है कॉन्शियस क्यूरेटर्स. कॉन्शियस यानी होशमंद, जो जानता है कि उसका हर फैसले का असर क्या होगा. और क्यूरेटर वो होता है जो अपनी चीजों को बहुत सोच समझ कर चुनता है और उनकी हिफाजत करता है. तो जनाब, अपने वार्डरोब को एक म्यूजियम की तरह देखिए. वहाँ वही चीजें होनी चाहिए जो वाकई कीमती हो, जो लंबे समय तक चले और जिन्हें पहनते वक्त आपको नाज हो, आपको प्राइड फील हो. वैसे वो कहते हैं ना कि सस्टेनेबिलिटी में सेंटिमेंट्स भी जुड़ जाते हैं. सो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर सकते हैं 666-22-107 पर. आई रिपीट द नंबर 666-22-107 पर. वैसे जनाब, यहाँ इस अपडेट की हमने बात की और एक सवाल है जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं जब मैं उनसे मिलती हूँ या सोशल मीडिया पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि फैशन और सस्टेनेबिलिटी ये दोनों साथ कैसे चल सकते हैं. क्योंकि फैशन तो नए ट्रेंड्स के बारे में होता है, हर महीने नई चीज़ें खरीदने के बारे में होता है, तो यहाँ सस्टेनेबिलिटी की जगह कहाँ आती है? वेल, ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी नज़रों में फैशन का मतलब है चेंज.

नेचर की भी किस्मत को बदलने की कोशिश की है. वैसे आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, आपको बताना चाहूंगी कि जो फैशन इंडस्ट्री है उसका दुनिया में सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो है वाटर. हाँ, हम जो एक सिंपल कॉटन टी शर्ट पहनते हैं उसे बनाने में कितना पानी लगता होगा, कभी आपने सोचा? नहीं. वल जनाब, एक सिंगल कॉटन टी शर्ट बनाने में ऑलमोस्ट 2700 लीटर्स पानी लगता है. जस्ट इमेजिन कि इतना पानी एक इंसान के 2 से 2.5 साल तक पीने के लिए काफी होता है. जस्ट इमेजिन इतना बड़ा सैक्रिफाइस सिर्फ एक टी शर्ट बनाने के लिए. और बात सिर्फ पानी की नहीं है जनाब, हर साल लाखों टन कपड़े लैंडफिल्स में फेंक दिए जाते हैं. फास्ट फैशन ने हमें एक ऐसी आदत डाल दी है कि हम सस्ता खरीदते हैं, 2 बार पहनते हैं और फिर भूल जाते हैं. लेकिन वो कपड़ा कभी खत्म नहीं होता, वो हमारे नेचर या यूं कहें हमारे एनवायरनमेंट, हमारी अर्थ पर एक बोझ बनकर रह जाता है.

फील कर रहे हो या सैड फील कर रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कतर इज चेंजिंग द नैरेटिव. हाँ जी, हम यहाँ सिर्फ पुराने तरीकों पर अफसोस नहीं कर रहे बल्कि हम नए रास्ते बना रहे हैं. अब कतर में हम सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, हम ट्रेंड्स सेट कर रहे हैं और वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. आज का कतर एक कॉन्शियस कतर है, मतलब ये तो आप और हम मानते हैं. हमारा जो नौजवान है, यूथ है, अब ये पूछते हैं कि ये कपड़ा कहाँ बना है. मतलब इस तरह के सवाल हमारी आज की जनरेशन पूछती है. हमने कभी ऐसे सवाल शायद अपने बचपने में या अपने यंग एज में पूछे ना हो. इसमें कौन सा रंग इस्तेमाल होता है, ये सारा नॉलेज आज की जनरेशन के पास होता है. मुशरफ डाउनटाउन से लेकर लुसेल की चमकती गलियों तक अब एक नई वाइब महसूस हो रही है. यस, लोग अब स्लो फैशन की कद्र कर रहे हैं. वो ऐसे ब्रांड ढूंढ रहे हैं जो हमारी धरती को नुकसान ना पहुंचाए. कतर ने दिखा दिया है कि लग्जरी और एनवायरमेंट दोनों एक साथ एक ही फ्रेम में फिट हो सकते हैं.

से प्लेटफॉर्म्स अब उन डिजाइनर्स को प्रमोट कर रहे हैं जो इको कॉन्शियस हैं, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स और रीसाइकल्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करके हाई फैशन क्रिएट करते हैं। ये देखकर बहुत प्राइड फील होती है कि हमारे लोकल डिजाइनर्स इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर ये कह सकते हैं कि हम सुंदर भी दिखेंगे और हम जिम्मेदार भी बनेंगे। ये एक तरह की तहजीब या कल्चर दोबारा लौट कर आ रहा है, जैसे हमारी दादी

0: क्वालिटी नॉट अबाउट क्वांटिटी.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ. और अब हम बात करेंगे ऐसी जगह की जो मेरे दिल के बहुत करीब है. ये हमारे शहर की क्रिएटिविटी की धड़कन है. मैं बात कर रही हूँ दोहा डिजाइन डिस्ट्रिक्ट की, एंड दैट इज मुशर्रफ डाउनटाउन. अगर आप कभी मुशर्रफ डाउनटाउन गए हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप गए ही होंगे, तो आप जानते होंगे कि वो जगह अपने आप में ही सस्टेनेबिलिटी की एक बेहतरीन मिसाल है. वहाँ की इमारतें, वहाँ का आर्किटेक्चर, सब कुछ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है. लेकिन मुशर्रफ के दिल में, यानी दोहा डिजाइन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक बहुत ही अनोखा और स्पेशल कुछ हो रहा है. यस, वहाँ लोकल डिजाइनर्स अब फास्ट फैशन की अंधाधुंध दौड़ को छोड़कर स्लो फैशन को गले लगा रहे हैं. स्लो फैशन का मतलब सिर्फ धीरे धीरे काम करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है ईमानदारी से काम करना. वहाँ ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं जो सदियों पुरानी वीविंग टेक्निक्स, यानी बुनाई के तरीकों से बनते हैं. वहाँ ऐसे रंगों का इस्तेमाल होता है जिन्हें हम ऑर्गेनिक डाइज कहते हैं, यानी पेड़ पौधों से निकाले गए रंग जो हमारी स्किन और हमारी मिट्टी दोनों के लिए परफेक्टली सेफ है. और जनाब, सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि हम हमेशा प्लास्टिक बॉटल्स को कचरे में फेंक देते हैं, बट उनसे हाई एंड फैशन भी बन सकता है. जी हाँ, दोहा डिजाइन डिस्ट्रिक्ट में ऐसे डिजाइनर्स भी हैं जो रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल्स से बने फैब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. वो इन बॉटल्स को

ये देखकर हैरानी होती है कि कैसे इंसानी दिमाग कछुए को भी एक आर्ट में बदल सकता है. लेकिन इस पूरे मूवमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, एक इंजन, और उस इंजन का नाम है स्केल सेवन. स्केल सेवन कतर का सबसे

वैसे ही एक नए डिजाइनर को सही रास्ता दिखाने के लिए इस चीज की जरूरत है. स्केल सेवन हमारे कतर के ग्रीन स्टार्टअप्स को वो सारे टूल्स और मेंटरशिप देता है जो उन्हें चाहिए. ये उन्हें सिखाते हैं कि कैसे एक एथिकल विजन को एक कामयाब बिजनेस बनाया जा सकता है. उनका सबसे बड़ा फोकस है सर्कुलर फैशन. सर्कुलर फैशन का सीधा सा मतलब ये है कि कपड़े ऐसे बनाए जाएं जो लंबे वक्त तक चलें और जिन्हें आसानी से रिपेयर किया जा सके और जब उनका वक्त खत्म हो जाए तो उन्हें दोबारा रिसाइकल करके नया बनाया जा सके. तो आज हमारे कतर के डिजाइनर्स दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम जिम्मेदार भी हैं और स्टाइलिश भी. आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट्स. मैं हूं अमिता आपके साथ और मेरे सारे प्यारे लिसनर्स. आज का सफर हमारे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. यस, लेकिन अब वक्त है कुछ एक्शन का. अक्सर लोग सोचते हैं कि सस्टेनेबल बनना बहुत मुश्किल है,

0: कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जवाब नहीं है कि आप सिर्फ एक पार्टी में पहनकर इसे साइड में रखने वाले हैं, वन टाइम आउटफिट है, तो मुझे लगता है कि आपको उस आउटफिट को नहीं खरीदना चाहिए। हमें फास्ट फैशन की दौड़ से निकलकर क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा लिबास चुनिए जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा भी बने, जो बार बार पहनने पर भी पुराना ना लगे। और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी गाइस, इसका हमें ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। दूसरी चीज, बीट द ह्यूमिडिटी। हम सब जानते हैं कि कतर की गर्मी और ह्यूमिडिटी हमारे कपड़ों के लिए कितनी टफ हो सकती है। ह्यूमिडिटी की वजह से फैब्रिक्स जल्दी खराब हो जाते हैं, उनमें मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है। टू मेक योर क्लोथ्स लास्ट लॉन्गर, एक बहुत जरूरी मशवरा सुनिए, उन्हें कभी भी प्लास्टिक ड्राई क्लीन बैग्स में स्टोर मत कीजिए। प्लास्टिक बैग्स मॉइस्चर को लॉक कर देते हैं और जिससे कपड़ों के फैब्रिक्स कमजोर हो जाते हैं और उनमें अजीब सी ना स्मेल आने लगती है। कॉटन गार्मेंट बैग्स के इस्तेमाल कीजिए या पुराने पिलो केस को एक कवर की तरह इस्तेमाल कीजिए, दैट विल आल्सो हेल्प। और उसके बाद गिफ्ट ऑफ गिविंग, तो अगर कोई कपड़ा आपको लगता है आप यूज नहीं करने वाले हैं, तो उसे घर में स्टोर करने की जगह जो चैरिटी बॉक्सेस होते हैं उसमें जाके डोनेट कर दीजिए। तो जनाब, आज का जो ये हमारा खासम खास शो कतर ग्रीन बीच, ये अब खत्म होने जा रहा है। यस, हमने इतनी बातें, इतनी टिप्स आज डिस्कस की हैं। मुझे लगता है कि जो भी हमने डिस्कस किया है वो पार्ट है एक बहुत बड़े सपने का, द कतर नेशनल विजन 2030, जो कि हमारे कतर के इस ख्वाब को पूरा करने जा रहा है, जहाँ पर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट पर पूरा पूरा फोकस किया जाएगा। कल कतर ग्रीन बीच का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप जरूर हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FM 107 के जरिए या 666-22-107 के जरिए, और आप अपनी अमिता को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ढूंढ सकते हैं। अब अगले हफ्ते कतर ग्रीन बीट पर एक नए एपिसोड, एक नए सब्जेक्ट के साथ आपकी मुझसे मुलाकात होगी। सो डोंट गो एनीवेयर, मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।

0: FM 107. Time check. Time check.
1: हाला हबीबी, टाइम फॉर टाइम चेक एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 4:01।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: यार ये कैसा मौसम चलाया यार, कोहरे के बाद कोहरा है, ये कोहरा दिख रहा है मुझे, वेस्ट बे आधा अधूरा दिख रहा है कोहरे की वजह से, क्या मौसम आ गया है। कार में आप बैठे रहे, एसी चलती रहे, सब मजे का माहौल, जैसे ही आप कार के बाहर निकले आपके चेहरे से लेकर आपके चश्मे तक सब भाप जम जाती है हर जगह। ये क्या हो रहा है, ये सब यहाँ होता है क्या? कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरा भाई यार, और अच्छी खासी गर्मी हो रही है, उमस, और रात को जो पता चलती है अब ये हवाएं भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। हवा का भी ये है कि बाबू हम चलेंगे तुम्हारे को और परेशान करेंगे कि अभी तो शुरुआत है बाबू, अरे अभी जुलाई अगस्त और सितंबर आना बाकी, अरे अभी से ये डायलॉग मुझे याद आता है गैंग्स ऑफ वसेपुर का कि अरे अरे अभी से, अभी तो और देखना है भैया, अरे अभी से तो दोस्तों इस्तकबाल एक बार फिर से आप सभी का, 4:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और अभी से लेकर 5 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे, और ये शो है द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आप अपने मर्जी के गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वेल, एक चीज देखने को मिली है जितने दिन से ये शो चल रहा है कि कहीं ना कहीं लोग ना 90s के गाने के रिक्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको कितना भी कह रहे 2010 के गाने या शाम के गाने, सुबह के गाने, एकदम ढिकचिक ढिकचिक वाले गाने, लेकिन एक बंदा ऐसा होगा जो 90s के गाने की रिक्वेस्ट कर लेता। तो मैंने कहा क्यों नहीं एक थीम 90s के गानों की रखी जाए, क्योंकि आज 23 जून है और आज है एक बेहतरीन एक्टर का बर्थडे। ऑल्दो ये आज उस तरह से याद नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये 90s में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, इनके अच्छे खासे फ़ैन थे, और कुछ तो बहुत ही लाजवाब फैंस थे। क्या कुछ किया उन फैंस ने इनके लिए, राज बब्बर के लिए, तो भी हम बताएंगे, क्योंकि आज है राज बब्बर का बर्थडे। बिल्कुल, तो हम उनको यार एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और उनके जन्मदिन और उनके इस खास दिन को स्पेशल बनाएंगे हम और आप मिलके, ठीक है? तो 666-22-107 पे हम और आप बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे राज बब्बर का, क्योंकि 23 जून को है उनका बर्थडे। उनके हिट मूवी के गाने, उनके ऊपर फिल्माए गए गाने, उनके मूवी के गाने, भले उस मूवी में जो सॉन्ग है उस सॉन्ग में वो रहे हो ना रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फिर भी अगर उनके गाने आपको पसंद हैं या आप उनके फ़ैन रहे हैं, राज बब्बर के फ़ैन रहे हैं, तो आप उनके गाने हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और आज की थीम है यही कि राज बब्बर के हिट मूवी के सॉन्ग हम प्ले करेंगे, राज बब्बर के सॉन्ग प्ले करेंगे। व्हाट्सअप नंबर है 666-22-107, और मेरी रोज की इस गलती में आज का दिन भी ऐड होगा कि मोबाइल कहां है।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: तो भाई क्या है कि 5 बजे हमारा और आपका साथ है, और 46% पे ये जान जो है सांस ले रहा है हमारा मोबाइल, और जल्दी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ये जिंदा रहेगा चलेगा, जिंदगी है जिंदगी हर कदम। तो ये देखो क्या है कि हिशाम साहब का मैसेज है, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम हबीबी। हिशाम साहब के पास ना GIF भी ख़त्म हो गया होगा, प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग। कौन सा? खादिम साहब कहते हैं ये है मेरा फैसला। अरे मेरा फैसला भी तो सुन लीजिए अपना फैसला करने से पहले, रुकिए यार। हैप्पी बर्थडे राज बब्बर। बब्बर भाई आपको हैप्पी बर्थडे कहा है, किसने कहा है? अजहर हुसैन सैयद ने। क्या बात है। सलाम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। यस्टरडे नाइट अराउंड 95% ह्यूमिडिटी। अरे भाई मुझे लग रहा है कि मैं भी इवेपोरेट हो जाऊँगा, जिस तरह से गर्मी चल रही है और ये हवाएं गर्म ऐसे थपेड़े पड़ते हैं मुंह पे, चाटों से गाल इतने गर्म नहीं होते जितने इन हवाओं से हो जाते हैं। अल्लाह अपन अब वो डायलॉग बोल सकते हैं कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहेब, कतर की ह्यूमिडिटी से लगता है। इतने में एक गाल पटाक से एक गाल पे चमक जाए तो अपन दूसरा गाल आगे कर देंगे कि दूसरे गाल पे मार लो, लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए बाबू भैया। ओके आगे बढ़ेंगे। ये मैसेज है किस भाई का, यूसुफ भाई ने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया और कहा है कि फजील राज बब्बर 90s में नहीं 80s में थे। यार देखो क्या है ना कि जो 90s में पैदा हुए हैं ना तो वो जनरली 90s को 90s ही कहते हैं, फिर मतलब भले वो 80 और 70 की दशक का कोई एक्टर क्यों ना हो, हम कहते हैं ऐसे कि 90s के। ठीक है, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म हो वो फिल्म वारिस। लो भाई, तो पहली रिक्वेस्ट जो है वो हमें आ गई है। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, ये कुछ भी हो जाए यार, आप कितना भी कह लो कि अरे यार 90s के गाने 80s के गाने हैं कितने पुराने होते हैं, मज़ा नहीं आता। लेकिन लता ने जो गाना गाया, लता मंगेशकर जी ने, वो लाजवाब गाए हैं। और उनके और फिर पुराने फिल्मों के गानों की बात ही अलग होती है। अच्छा, अच्छे क्यों होते हैं, उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि मूवीज से कनेक्टेड होते हैं। आजकल के गाने नहीं कि लड़के लड़की किसी बात पे जो है नाराज़ हो गए, लेकिन कोई ढिक ढिक चिक गाना प्ले हो रहा है। मतलब मूवी में एकदम इमोशनल सीन है, भारी भरकम सीन है, एक दूसरे से लड़ गए हैं, एकदम तबाह हो गए हैं और सेपरेट हो रहे हैं और दिल जो है एकदम दुखा हुआ है, लेकिन स्पेन जाके पार्टी चल रही है। मैं अनजाना तू अनजानी ये सब चल रहा देगा। तो ये सेंस नहीं है ना। तो ऐसे ही वारिस 1988 की ये मूवी मेरे प्यार की हो इतनी उम्र, ये गाने की रिक्वेस्ट की है यूसुफ भाई ने, तो इनके गाने प्ले किए जाएंगे। ओके फिर ये मैसेज है किस भाई का, कबीर कहाँ है कबीर, अरे 5 बजे आएगा यार वो मोहम्मद साहब, तो रुको जरा सब्र करो। फिर ये है, सलाम फजील भाई कैसे हैं, यू प्ले एनी सैड सॉन्ग, हैप्पी बर्थडे राज बब्बर फ्रॉम खलील पारशा, पराशा है शायद। ओके एनी सैड सॉन्ग, ये कौन सी डिमांड है भाई कि भाई जिस गाने में आंसू आ जाए, जिस गाने में छाती पीटने का मन करे, जिस गाने में कुर्ता नोचने का मन करे, जिस गाने में गाल को गर्म करने का मन करे, दूसरे का या अपना, जिस गाने में जो है इंसान इतना सैड हो जाए कि ऊंचाई से मतलब मोहब्बत हो जाए कि छलांगी लगा दूं, ऐसे गाने क्यों सुनने यार आप लोगों को। ऐसा गाना प्ले करो फजील भाई कि छत से कूदने का इच्छा कर जाए, नहीं क्यों। सैडनेस जो है उसको दूर भगाया जाता है और करीब थोड़ी लेकर आया जाता है। भाई कैसी बातें करते, नाम क्या है इनका, खलील पारशा भाई, खलील साहब बहुत ही जानदार आदमी है। फजील भाई योर वॉइस इज़ गुड, यू शुड गो टू इंडियन आइडल। अगर मैं जिस दिन गा दूंगा ना तो वो कहेंगे आप मुंबई आ रहे हैं और आके कहीं पर भी गा दें आप, बस आप मुंबई आए, आपको ऐसे पार्टी के हवाले किया जाएगा कि पता नहीं चलेगा आप गायब कहाँ हुए हैं। मुझे स्टेशन पे बैठा दिया जाएगा, इतना भी ना कहा करो यार। देखो ये क्या होता है ना कि जब आप मोटिवेट करते हैं किसी आदमी को और वो कभी कभार फेक मोटिवेट हो भी जाता है तो नुकसान बहुत होता है, तो इसलिए मेरे को तो मेरे बारे में पता है। ऐसे जनरल जाके कहीं मोटिवेट मत करना अजहर भाई, तुम तो मोटिवेट करके चले आओगे, वो आदमी जो एक गाल से दूसरे गाल पर पड़ रही होगी ना कि गाना मत गा। मैं नहीं जाऊँगा कहीं भाई। ओके भाई वो गाना चला दो, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, राजा हिंदुस्तानी फिल्म का, उसमें राज बब्बर हैं कि नहीं मेरे को ये देखना पड़ेगा। ठीक है, सलाम वालेकुम फजील भाई कैसे हो आप, मैं बहुत अच्छा हूँ मेरा भाई, आप सुनाए कैसे हैं, उम्मीद है कि आप भी एकदम हस्त पुस्त तंदुरुस्त होंगे। लेकिन ये गाना जो आपने रिक्वेस्ट किया है, आपका नाम क्या है, मोहम्मद अशफाक, अशफाक मियाँ है। ओके फिर है, जिंदगी एक धोखा है, मकसूद आलम एज अस्सलाम वालेकुम, ओके एज अलग है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, लेकिन मुझे अभी देखना पड़ेगा कि ये गाना है कि नहीं। बीते हुए लम्हों की अभी अलविदा, कभी अलविदा में के नहीं लगाया भाई ने, मेरा फ्लो इतनी तेज़ था कि मैं के सोच भी नहीं पाया भाई, अभी अलविदा मत कहना ठीक है, और अभी मैं अलविदा कह रहा हूँ आपको, क्योंकि ये गाना मैं प्ले नहीं कर सकता फैसल भाई, राज बब्बर का बोलो कुछ कुछ होता है सॉन्ग नेम, अरे मेरा भाई राज बब्बर का बर्थडे है, सेलिब्रेट तो कर ले हम लोग यार, कामरान साहब ये क्या बात है यार, अभी अभी आपने ट्यून इन किया है ना, है ना, सच बताना, झूठ नहीं। सज्जाद हुसैन ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम फजील भाई, सब खैरियत है, बट पैसा अभी तक नहीं आया। अरे भाई साहब, ये बीच बीच में जो है एम्बेरसमेंट आ ही जाती है। भाई आपके पास मैसेज आया हुआ, उसी नंबर पे मैसेज कर दो। ये वाला जो हमें मैसेज करता है ना, वो उधर कर दो, क्योंकि हमारे जेब में थोड़ी है भाई, हम तो खुद उनके जेब से ले रहे होते हैं। हमारे हाथों में नहीं भाई, हमारे खुद अकाउंट में आता है। तो जिधर आपको मैसेज आया ना कि आप जीते करके, ऐसा उधर ही मैसेज कर दो भाई, ठीक है, वो उधर समझ लेंगे। अपन तो एकदम अलग है, हमारा उस वाले बिल्डिंग से कनेक्शन नहीं है ना इतना, और फिर उधर आना जाना गर्मी, आप बता ही रहा हूँ मैं। ख्वाजा साहब ने क्या कहा है, ख्वाजा नाम है प्रोफाइल पे, अस्सलाम वालेकुम, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बनके, ये प्ले करके, क्या ये प्ले कर दें, ओके, तो आए हो तुम मेरी ज़िंदगी में, ये राज बब्बर का है, क्योंकि भाई मैं पुराने गानों में मूवी के मामले में बहुत ही ख़राब हूँ भाई। ये निकल फिल्म का गाना है, निकल, राज बब्बर हीरो थे, कभी अलविदा मत कहना। यार अब मेरे को देखना पड़ेगा, अब आपने अभी लिखा है तो मैं के हटा ही देता हूँ, अभी अलविदा, ठीक है मैं देख लेता हूँ, हो सकता है कोई मूवी हो गई, मेरे को तो यहाँ पर कभी अलविदा के अलावा कुछ देख ही नहीं रहा है। इनने लिखा है अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, बीते हुए लम्हों की, मैं और भी सर्च कर लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले गाना जो है वो तो प्ले कर दूँ, इतनी देर में मैं और भी जो आपकी गाने की रिक्वेस्ट है वो फिर पीछे से अपन सर्च कर लेंगे। और अभी मनमोहन और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना प्ले कर रहा हूँ, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, क्या बात है यार, है तो इस वाले में, लेकिन मेरे ये जो गाना है ये रिक्वेस्ट की है, क्या नाम है अपने यूसुफ भाई ने, तो मुझे पूरा यकीन है कि एकदम सही होगा। हाँ, इसमें राज बब्बर हैं। वारिस मूवी का ट्रैक एंजॉय करें और वापस आएंगे कुछ देर में एफएम 107 पे, बाकी आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं राज बब्बर का, जो कि जबरदस्त हीरो थे, उनके मूवी के जो भी गाने आप कहेंगे वो आज प्ले होंगे एफएम 107 पे।

0: मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में ब्यूटीफुल सा ट्रैक, ऐसा लग रहा है कि रात के 11 बजे हैं और इस तरह के गाने चल रहे हैं। लेकिन आप कितने भी नए जमाने के लड़के क्यों ना हो, आप 2000 में पैदा हुए हों, आप 95 में पैदा हुए हों, 2008 में, 2005 में, लेकिन इस तरह के गाने असल में दिल को छू जाते हैं, कितने भी नए जमाने के लड़के क्यों ना हो।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: कुछ भी हो यार, मेरी नॉलेज ना बड़ी तेज हो जाएगी जब मैं इस तरह के गाने प्ले करूंगा, और मुझे खुशी है कि ये द रिक्वेस्ट शो अपने पास है, और ऐसे पता चल जाएगा ना कि कैसी कैसी मूवी है और उसमें कौन कौन से गाने हैं, क्योंकि आप लोगों की जो नॉलेज है माशाल्लाह जबरदस्त है। एक भाई ने कहा था निकल मूवी के गाने को प्ले करें जो कि है बीते हुए लम्हे, निकल नहीं था वो, शायद उनसे मिसटाइप हो गया और मैं भी नहीं समझ पाया क्योंकि मेरे को थोड़ी पता है यार 1980s में ये मूवी देखनी है, क्योंकि मैं काफी मूवीज तो नहीं देखा है, अपन नए जमाने के ना तो इसलिए। लेकिन मुझे ये पता कि निकाह मूवी का ये गाना है, 1982 की ये फिल्म है निकाह, और इसके सदाबहार गाने भी हैं, और उनमें से एक गाना है बीते हुए लम्हों की कसक जिसे महेंद्र कपूर ने गाया है, और लाजवाब ये गाना है, इसकी कॉम्पोजिशन रवि ने की है, हालांकि आप रवि को क्या ही जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन गाना बहुत ही आला दर्जे का है। वो गाना है बीते हुए लम्हों की कसक, साथ तो होगी, थोड़ा स्लो ट्रैक ही होगा क्योंकि अगर हम राज बब्बर के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कॉम्पोजिशन तो नहीं होगी चले झाइया झाइया अच्छा ये तो नहीं होगा इस तरह के गाने आप अगर उम्मीद कर रहे हैं तो नहीं। उसके अलावा एक और बहुत ही हिट गाना है, और ये मुझे आज पता चला है कि इसमें राज बब्बर हैं, लेकिन इस गाने को सिर्फ गाने के लिए मैं सुनता था क्योंकि इसके सिंगर भी लेजेंडरी रहे हैं, एंड द अदर सॉन्ग इज होठों से छू लो तुम बाई जगजीत सिंह। बहुत ही गजब का ये गाना है, इसमें राज बब्बर हैं, और सुपरहिट फिल्म थी प्रेम गीत 1981 की, और इसमें जो एक्ट्रेस थी वो थी अनीता राज, जिनको पता है उनको पता है, मैं कहता हूँ 90s 80s और 70s वालों से पूछ लो अनीता राज कौन थी अगर आपके फादर साहब बगल में हैं और वो 80s और 70s के हैं, या अगर 90s के भी हैं तो पूछ लो पापा वो अनीता राज कौन थी, वो बताएं कायदे से कि, और आप यकीन माने गूगल वो नहीं बता पाएगा जो आपके पापा बता देंगे और अगर आप खुद भी 2000 के हैं, 90s के हैं, या 80-85 के हैं, तो आप अपने पापा से पूछ लीजिए अनीता राज के बारे में, तो वो भी बता देंगे बगैर गूगल के और बाकायदा हर एक डिटेल में हर एक चीज़। तो प्रेम गीत 1981 की ये मूवी जिसमें राज बब्बर हैं, दूसरा गाना मैं प्ले करूंगा होठों से छू लो तुम, और किसका गाना, किसका रिक्वेस्ट है ये किया हुआ ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है, और ये है हुसैनी सैयद, इन्होंने रिक्वेस्ट करी है, तो होठों से छू लो तुम बहुत ही प्यारा गाना, मैं मेरे ख्याल से आज से 15-10 साल पहले सुनता था, और जब मैं क्रिकेट के लिए कैंप वगैरह के लिए जाता था ना, तो उस ज़माने में पता नहीं कहीं मैंने ये सुना था, और उसके बाद मुझे ये गाना, उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी लिरिक्स हैं, वो बहुत पसंद आ गई थी। फिर निकाह का ये पहला गाना मैं प्ले करूंगा जिसमें राज बब्बर हैं, और ये गाना है बीते हुए लम्हों की कसक। फिर एक और गाना था, वो गाना मुझे मिला नहीं, मकसूद साहब आई एम रियली सॉरी, ज़िंदगी एक धोखा है, ये मैंने ट्राई किया बट मुझे नहीं मिला, आई एम रियली सॉरी। फिर ये मैसेज है, बिल्कुल सही इन्होंने बताया, निकाह, जावेद खान जब ये सुन रहे थे तो उन्होंने कहा निकल नहीं निकाह की बात कर रहे होंगे, बीते हुए लम्हों का जो गाना सुनना चाह रहे हैं। फिर ये मैसेज है, भाई सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, परसों वाले बादाम नहीं मिले, अभी तक सॉन्ग गेस किया था चीटिंग करके अगर आप एक्चुअली मैंने कल बादाम जो है वो बांट दिया है, जिनको नहीं पता जो नए हैं उनको बता दें, परसों एक्चुअली एक गाना मैंने प्ले किया था और कहा था कि वो ऐसा गाना है रेयर कि अगर वो कोई पहचान जाए तो मैं उसे बादाम फ्री में दूंगा, क्योंकि वो सही में बहुत ही रेयर गाना तो नया था, लेकिन उसके लिरिक्स ऐसी जगह से मैंने प्ले किए थे कि रेयर बन गए थे वो, और गाना पहचानना बड़ा मुश्किल था, बट इवन आफ्टर दैट 4-5 लोगों ने गाना पहचान लिया, तो मैंने कहा था कि यार वादा था मेरा कि मैं फ्री में बादाम दूंगा।

0: वादा अपना निभाया, आप ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादती है, ये ज्यादती नहीं है भाई लिख भी रहे ज्यादती है। ओके आगे बढ़ते हैं और भाई को बोलो कच्चा बादाम कच्चा हाँ मैं बोल दिया मेरा भाई, मैं हुसैनी साहब आपकी तरफ से आगे मैसेज किस भाई का, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम। मैसेज अभी इन्होंने सिर्फ सलाम का लिखा, ओके। फिर ये यूसुफ भाई ने कहा है फजील आज थीम राजब्बर, शायद आपके फैंस को चूज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। ऐसे कैसे, इतना तो उन्होंने रिक्वेस्ट कर ली। अभी मैं आपको बता दूं तीन गाने लगातार है, बीते हुए लम्हों की कसक, होठों से छू लो तुम, और एक और कोई गाना है मैं कहीं तो निकल गया, मैं वो भी कर देता हूँ। तो दो गाने तो अभी हैं लाइन में। फिर एक और है निकाह का, चेहरा छुपा लिया है किसने हिजाब में, सिंगर सलमा, आशा भोसले, महेंद्र कपूर, स्टार कास्ट, असरानी सलमा, बहुत ही उम्दा, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। गाना जो कहा है वो है चेहरा छुपा लिया है किसने, और मूवी है निकाह। ठीक है तो ये मैं प्ले कर दूंगा अबू सिद्रा की रिक्वेस्ट पे। तो देखें लोग यहाँ तैयार बैठे हैं, सबको पता है, और मुझे लगता है कि जो पुराने गाने हैं ना उसमें लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार बैठे हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि कौन से गाने अच्छे हैं। सबसे जो पहला गाना आ रहा है वो आएगा बीते हुए लम्हों की कसक। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंने तो कभी सुना ही नहीं है, बट ये बात ज़रूर है कि थोड़ा अभी अभी जो सुना है वो अच्छा ज़रूर है। तो निकाह मूवी का सबसे पहला जो ट्रैक है वो यही है। फैसल की रिक्वेस्ट पे
1: अलविदा मत कहो,
0: और फैसल की रिक्वेस्ट के बाद जो दूसरा सॉन्ग है होठों से छू लो तुम, ये हुसैनी की रिक्वेस्ट।

0: सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: एफएम 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: दिस वन इज माई फेवरेट, जगजीत सिंह की आवाज में लेजेंडरी सिंगर, उन्होंने गाया ये गाना, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। क्या बात है, FM 107 पे गाना सुना आपने।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: हाँ जी हबीबी, दिल से देसी, ये शो द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आप अपनी मर्जी के गाने प्ले करवा सकते हैं, मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 पे, 666-22-107 पे। थोड़ा लेट हो जाता है कई बार, कई गाने मैं प्ले नहीं कर पाता, माजरत उसके लिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, और इतने में क्योंकि आज गाने भी थोड़े से लंबे ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट ज़रूर हो जाता है। अब दो और गाने हैं जो मैं जल्दी से प्ले करूँगा आपके लिए, क्योंकि 4:36 हो गया है और आखिर के 15 में हम गेम खेलते हैं पहचान कौन टाइप्स का, जहां पर एक बंदे से एक सॉन्ग का गेम खेला जाता है, यानी कि कोई भी लिरिक्स जो है बीच से एक हम प्ले करते हैं सॉन्ग के बीच से, और आपको सॉन्ग का नाम पहचानना होता है। और अगर आप लाइव खेलना चाहते हैं तो नंबर है 4434377, आप हाई फजील लिखकर भेज सकते हैं, मैं खेलना चाहता हूं, व्हाटएवर आप लिखकर भेज सकते हैं हमारे 666-22-107 वाले नंबर पे, और कॉल कर सकते हैं 4434377 पे। कॉल करने वाला अलग है नंबर और व्हाट्सअप वाला अलग है। बाकी दो गाने हैं जो मैंने निकाल लिए हैं, एक तो है ये तुम याद ना आया करो, हाँ ये गाना है लता का और शब्बीर कुमार जी का गाना है, आसिफ कमाल ने कहा है, तो सबसे पहला गाना यही मैं प्ले करने वाला हूँ। और फिर दूसरे नंबर पे ये गाना किसने कहा था, कहीं ना कहीं तो निकल जाता है, सलाम रफ़ी सॉन्ग, ये जो चिलमन है इब्राहिम, इसमें इब्राहिम साहब अगर इसमें राज बब्बर है तो बताइए, क्योंकि आज का सॉन्ग का जो थीम है वो राज बब्बर के मूवी के गाने का है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आज है राज बब्बर का बर्थडे, 23 जून को उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, और यही वजह है कि आज उनके गाने हम आपको सुना रहे हैं। तो उनके कोई भी ऐसे गाने, या ताकि ये भी हो सकता कि वो मूवी में रहे हों लेकिन गाने में ना रहे हों, तो मूवी के हिट गाने हैं तो भी आप प्ले करवा सकते हैं, फिल्म में, मूवी में या सॉन्ग में अगर वो फिल्माए गए हैं तो भी आप वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 666-22-107, लेकिन एक तरह से मतलब अब थोड़ा सा वक्त लगेगा प्ले करने में, क्योंकि दो गाने ऑलरेडी हमने निकाल के रखे हुए हैं, पहले आसिफ का ये गाना है और दूसरा ये कौन सा गाना है, कहाँ गया, कहनी है दो बातें तुमसे मगर कहूँगा कहूँ मैं, लता का है और शैलेंद्र का है, और ये एक मूवी है आपस की बात, इस मूवी का ट्रैक है, लेकिन भाई ने गलती से लिख दिया था, क्या लिखा था गलती से, आपकी खातिर कोई मूवी है उसमें लिख दिया था उन्होंने, खैर जल्दी से हम आओ मिल जाएं हम प्रेम गीत, ये ठीक है, मैं कोशिश करूंगा लास्ट में प्ले कर दूं, ये रिक्वेस्ट है इब्राहिम की तरफ से। इब्राहिम अब आपने सही करा है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले ये दो गाने मैं प्ले कर रहा हूं, तो पहला तो आसिफ भाई की रिक्वेस्ट पे और दूसरा वाला नाम मुझे मिल नहीं रहा है, ओके ये रहा गाना, पहले मैं प्ले कर देता हूं, और ये रहा, ओके ये दूसरा वाला आशिक भाई, हाँ यार ये बहुत पुराने वाले हैं, आशिक भाई ने दूसरे, एक मिनट रुक जाओ, फिर अब ये वाला गाना रुक के ही प्ले करूंगा, आशिक भाई ने दूसरे गाने के लिए कहा है जो है कहनी है दो बातें तुमसे। FM 107 पे इन दो गानों को एंजॉय करें और वापस आते हैं कुछ ही देर में, और फिर हम खेलेंगे पहचान कौन गेम, सुनते हैं FM 107, दिल से देसी।

देखा भाई, मर्दों की ऐसी बात की इज्जत नहीं है। वो कह रहा है कहनी है, ये कह रही है कहते रहो। ये गाना आपने सुना था मंगेशकर और शैलेंद्र की आवाज में, कहनी है दो बातें तुमसे मगर कहूंगा मैं। क्या बात है ये लाजवाब गाना। FM 107 पे सुना आपने और अब वक्त आ गया है पहचानने का, गाना पहचानने का। लेकिन आज का जो गाना पहचानना है आपको, थोड़ा सा मुझे लगता है टफ होगा। आमतौर पे जो गाने आप पहचानते हैं वो नए जमाने के होते हैं, लेकिन ये थोड़े पुराने जमाने का। राज बब्बर का आज बर्थडे है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके गाने, उनके हिट मूवी के गाने प्ले करते हुए, और जिन गानों में वो रहे उनको प्ले करते हुए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हीं का बर्थडे 23 जून को। तो राज बब्बर के ही मैंने गाने निकाले हैं 3, और ये बीच से लिरिक्स मैंने निकाली हैं। अब आपको गेस करना है कि ये गाने असल में नाम क्या उसका, क्योंकि बीच से हमने लिरिक्स निकाली है, तो गाने का नाम आपको पहचानना होगा। अगर आप नहीं भी पहचान पाते हैं तो आज मैंने दो ऑप्शन रखी, या तो गाने का नाम पहचाने या फिर मूवी का नाम पहचान ले गाना सुनकर, क्योंकि थोड़ा रखना पड़ेगा ना, फिर बहुत पुरानी बात हो गई, कई चीज़ें तो याद ही रहती, कई बातें याद नहीं रहती, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा ऑप्शन अपन बढ़ा दे। तो अपन बढ़ा चुके हैं ऑप्शन, जहां पर आपको गाने भी, गाने का नाम भी बता सकते हो और मूवी का नाम भी बता सकते हो। तो सबसे पहला जो गाना आ रहा है वो मैं प्ले करने वाला हूं। अगर आप बाहर से खेलना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 666-22-107, 666-22-107, यहां पर आप गेस कर सकते हैं। और हाय फजील, मैं भी गेम खेलना चाहता हूं, तो आपको मैं खुद अपने नंबर से कॉल करूंगा, पैसे बचाएंगे ना आपके यार। बाकी अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास फ्री का पड़ा हुआ ख़त्म हो रहा है आज यार, मैं खुद कॉल करना चाहता हूं, तो उसके लिए नंबर है 443-443-77, 443-443-77। तो पहला गाना जो आपको गेस करना है, जो मैं बीच से कहीं से भी प्ले कर रहा हूं लिरिक्स, उस गाने का नाम बताना या फिर मूवी का नाम, वो रहा ये।

0: हवा।
1: क्या बात है यार, बहुत हिट सॉन्ग्स में से है। मैं मेरे को पता नहीं था वैसे, मैंने भी उसी का सहारा लिया कई बार जिसका आप सहारा लेते हैं। लेकिन क्योंकि जो सिंगर है वो ऑब्वियसली हम सबको नोन है, मोहम्मद रफ़ी लेजेंडरी सिंगर ने इस गाने को गाया है। इस गाने का नाम आपको बताना। सबसे पहले हमारे पास जो मैसेज आया है वो है यूसुफ साहब का, और कहते हैं तू इस तरह से। अच्छा, इन्होंने आगे लिखा है, ऊपर लिखा है, अगर आप इजाज़त दे तो एक और सॉन्ग बताऊं, अच्छा और हिट सॉन्ग है। दो दिस सॉन्ग डिंट पिक्चराइज्ड बट ही इज़ इन द फिल्म, इफ़ यू वॉन्ट प्ले, आपके फैंस को पसंद आएगा, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। ओके, ठीक है, इन्होंने इसी का जवाब भी दे दिया है। तो आगे एक और हैं, इन्होंने कहा है मेरी ज़िंदगी में शामिल हो, तू इस तरह मेरी ज़िंदगी में शामिल हो। ये किस भाई ने, ये फ़ैन लोग हैं भाई, इमरान भी हैं भाई। आज काम करूं या नहीं, ऐसे गाने चला रहे हो कि कार से उतरने का मन ही नहीं कर रहा। क्या बात कर रहे हो भाई, हैं, मज़ा आ जाता है पुराने गानों में, एक अलग मतलब चस्का लग जाता है लोगों को। जिनको मज़ा आ जाता भाई वो रात के दो दो बजे तक सुनते हैं। और ये छोड़ो भाई, हमारे UPSRTC के बस, ये UPSRTC जिनको नहीं पता, ये बस वाले हमारे उत्तर प्रदेश समथिंग ट्रांसपोर्टेशन करके है, ये सरकारी बस ऐसा समझो भाई, ये गाना प्ले कर देते हैं रात के 3-4 बज रहे हों भाई। ये जो चस्का लगता है ना इनको, इनको कितना भी दूर ले जा लो भाई, अगर पुराने गाने चल रहे हैं तो कहीं से कहीं को ले जाएंगे। कई बार सच में ये कहीं से कहीं को ले जाते हैं, इनको सही में सैडनेस पकड़ लेती है, बहुत तेज चलाने लगते हैं भाई ये। मुझे याद है एक बार दिल्ली से अब्बा के साथ मैं सफर कर रहा था, तो दिल्ली से मुझे आना था लखनऊ, फिर क्योंकि वो फैजाबाद तक नहीं आती, छोटा शहर है फैजाबाद, तो दिल्ली से लखनऊ तक का सफर था, और लखनऊ से फिर हम लोग को मार्शल में जाना था। वो 120 रुपए लेती थी, 100 रुपए लेती थी उस वक्त। तो भाई शुरुआत में तो उसने नोएडा तक कोई गाने ऐसे कोई खास प्ले नहीं करे, भाई को एक बार हाईवे मिल गया यार, और उनने ऐसे ही राज बब्बर के होठों से झूलो तुम कुछ सैड सॉन्ग लगा दे भाई ने, 40 से जो 100 की स्पीड डाली है यार, रफ्तार खींच दी है यार हाईवे पे उनने। उस दिन मुझे पता चला है कि अम्मी क्यों कहती बेटा जब भी जब भी कहीं बैठो, जब भी कहीं सफर करो तो दुआएं पढ़ा करो, ऐतल कुर्सी पढ़ा करो। मैं अच्छा इसलिए, तब मेरे को एहसास हुआ है कि दुआएं क्यों होती है। बिल्कुल, वेल कई लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है, मोहम्मद रफ़ी का ये सॉन्ग है तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है जहां, और बहुत ही उम्दा ये सॉन्ग, इमरान बी ने इसे पहचाना है और यूसुफ भाई ने भी पहचाना है। मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जो आज पहचान पाएंगे। आई मुकेश रिक्वेस्ट सॉन्ग है हुस्न पहाड़ों का, हुस्न पहाड़ों को का है, आई एम फ्रॉम नेपाल, नेपाल से हैं मुकेश भाई, थोड़ा सा लेट हो गया माजरत के साथ, इंशाल्लाह कल प्ले करेंगे, कल आप थोड़ा जल्दी आए तो कल ज़रूर मैं प्ले करूँगा। अब हम दूसरे सॉन्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये भी आधी लिरिक्स जो है बीच से मैंने निकाली है, इसे सुनना है और आपको बताना है हमारे व्हाट्सअप नंबर 6622107 पे, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे। गेस करिए इस गाने का नाम।

ये गाना सलमा ने गाया है, महेंद्र कपूर हैं इसमें, और सलमा शिकायत कर रही है कि जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले हैं भाई। जल्दी से गाने का नाम बताइए। ये गाना मैंने प्ले कर दिया है और यूसुफ भाई ने सबसे पहले अगेन पहचान लिया है। नहीं, ये गाने का नाम जो यहाँ पर सेव है वो बिल्कुल नहीं है। आई एम फ्रॉम बॉम्बे, और बिल्कुल सही पहचाना बॉम्बे वाले भाई ने। क्या बात यार, यूसुफ भाई आपसे बड़ा फैन आ गया है कोई, मतलब जो 90s के गाने हैं या मूवी के गाने हैं या मूवीज हैं, अगर आप नहीं पहचान पाए और इमरान ने पहचान लिया फ्रॉम बॉम्बे गाने का नाम, तो मुझे लगता है आपसे बड़ा फैन कोई आ गया है भाई शहर में, है ना। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान साहब क्या कहते हैं, निकाह मूवी का ये ट्रैक है। आई डोंट नो कि ये निकाह का है या नहीं। एक तो इतने हिट मूवी रही है, बट मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से सर्च मार लूँ तो पता चल जाए ये निकाह का ही गाना है कि नहीं। हाँ सही कह रहे हो, निकाह का गाना है। 1982 में ये मूवी आई थी जिसमें महेंद्र कपूर और सलमा आ गए थे। क्या बात है यार, भारी फैन फॉलोइंग हो गई है 90s की। और सुल्तान अहमद साहब ने बिल्कुल सही पहचाना है। थोड़ा मुनव्वर राना जैसा चेहरा मिल रहा है माशाल्लाह सुल्तान साहब का। बिल्कुल सही मूवी है और मोस्ट वेलकम बॉम्बे वाले भाई को, आई विल बी मोर देन हैप्पी। ओके, फिर ये निकाह बोला है एक और भाई ने, इनका नाम है इमरान। ओके, द करेक्ट आंसर इज दिल की ये आरजू थी कोई दिलरुबा। यहाँ यही लिखा है तो मैंने सोचा कि बता दूँ, दिल की ये आरजू थी कोई दिलरुबा।

क्या बात है, बिल्कुल सही पहचाना। और अब आखिरी सॉन्ग पहचानिए, उम्मीद है कि 90% लोग इसे पहचान जाएंगे क्योंकि बहुत हिट गाना ये रहा है। ये गाना तो इतना हिट रहा है कि मैंने भी सुना है। और फिर हमारे सरकारी बस वाले तो भाई चला देते हैं तो 10-10 घंटे के लिए ये गाना रिपीट पे सुन सकते हैं उनके पास उस ज़माने में। अब तो चलिए ऑनलाइन हो गया तो आई डोंट नो कि वो कैसे, क्योंकि सफ़र भी इतना नहीं करता हूँ बसों में। तो उस वक्त ना उनके पास पेन ड्राइव होती थी, वो जाते थे साइबर कैफे, उनसे कहते थे भैया 80 और 90 के दशक का जितना भी सॉन्ग है सब इसमें घुसेड़ दो, और वो सही में एकदम ठूस ठास के भर देता था जब तक फिल ना हो जाए 8 GB। और उसके बाद जो सुनना शुरू करते थे ये लोग भाई, आतंक, आतंक का दूसरा नाम ये यूपीएस आरटीसी वाले। ओके, ये तीसरा सॉन्ग आपके लिए, पहचानिए इस गाने।

क्या बात है, स्मार्टली मैंने ये गाना प्ले कर दिया। एक बार मर्द ने वही लाइन गई, एक बार फीमेल ने। ओके, तो शोएब साहब ने रिप्लाई कराया है सबसे पहले, और मूवी क्रांति, हेमा मालिनी, शोएब। यार ऐसे मत बताओ, गाने का नाम बताना है आपको, मूवी का नाम नहीं बताना है। मैं फिर भी आपकी इतनी मेहनत पर पानी नहीं फिरने दूंगा। मैं जिंदगी के बाद है जिंदगी, ठीक है। तो ये गाना 1981 का कहना है, क्रांति का, जिसमें हेमा मालिनी है। ओके, इस पर मैं टिप्पणी करता हूँ। फिर है मोहम्मद यूसुफ का बिल्कुल सही जवाब, मूवी भी सही बताई है, और फिर हिशाम भाई ने भी बिल्कुल सही बताया है। पिछला सॉन्ग बताया था इन भाई ने, इनका नाम क्या है, सुलेमान मुनव्वर इनका नाम है। पिछला सॉन्ग भी बिल्कुल सही बताया था, जो था दिल के दिल की ये आरजू थी कोई दुलरबा मिले, बिल्कुल सही। और दूसरा सॉन्ग भी जिंदगी, ठीक है। हाँ, अब तो पता चल गया होगा लोगों को कि मैं इतनी देर से जिंदगी बोल रहा हूँ, तो इसी से कहीं होगा शुरुआत। कॉल नहीं लगा, सॉरी मेरा भाई, माजरत। फिर एक और है, बिल्कुल सही जवाब है, करीम शाह ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या बात है यार, देख रहे हैं 90s के जो शौकीन हैं उनको सब पता है। सुल्तान अहमद ने सही जवाब दिया है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, ये कहा है किस भाई ने, ये कहा है, नाम नहीं लिखा यहाँ पर, सिर्फ नंबर है, शोएब। ओके सॉरी, शोएब ऊपर ही लिखा था। फिर हिशाम भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, और आंसर बिल्कुल सही है, क्रांति मूवी का ट्रैक जिंदगी की ना टूटे लड़ी, ये गाना उसी फिल्म का है, और जो बहुत ही ज्यादा हिट भी हुआ था। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल शाम 4 बजे नए थीम के साथ, नए बेहतरीन गानों के साथ। फिलहाल इब्राहिम की रिक्वेस्ट पे ये गाना आ रहा है, अनुराधा पौडवाल और सुरेश की आवाज में, वन ऑफ द फेवरेट इब्राहिम भाई का ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। इंशाल्लाह मुलाकात अब कल आपसे शाम 4 बजे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: गुड इवनिंग क्लास एवरीबॉडी, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, 5:01 ऑन द क्लॉक। और अभी तक ये सारे के सारे शोर बजा रहे हैं। ओके, आज क्लास हम पढ़ेंगे एक महापुरुष के बारे में जिन्होंने 21वीं सदी में रेडियो पर जलजला लाया। ये क्या मतलब है? पीछे बैठ के पराठे खा रहे हो? मैं बताऊं, तंग आ गया हूं मैं। प्रिंसिपल सर को बुलाता हूं अभी, रुको।

0: असलामुअलैकुम। बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास आते के साथ ही, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार। एक मैसेज आया सर टेस्ट का रिजल्ट अभी तक मिला नहीं, अभी तक गिव अस द रिजल्ट। इनका नाम नोट करो, ये क्या नाम है, कामरान नाम है, कामरान। ये जहां दिखे ना वो रिजल्ट वाली विंडो नहीं हमारी, बंद कर लेना, बंद कर लेना, नहीं आने आने नहीं देना। हाँ कामरान बेटी ये लिखवा दो यहाँ पे अपने नाम। एक मैसेज आया था उसमें बहन का लिखे गुड इवनिंग कबीर सर मेरे अटेंडेंस नोट कीजिए, शाबाश माशाल्लाह। ये फर्स्ट वेंचर बच्चे पे बड़े प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। वालेकुम सलाम बच्चे, वालेकुम सलाम। एक मैसेज मेरे प्यारे भाई को सलाम, वालेकुम सलाम मेरे प्यारे भाई को। ये मैसेज किया मोहम्मद हुसैन भाई ने, हुसैन भाई क्या चल रहा है मेरा भाई। ये मैसेज गुड मॉर्निंग वॉज प्रेजेंट अब्दुल नवीद भाई, थैंक यू भाई। एक और मैसेज है अस्सलाम वालेकुम कारी मौलाना कबीर सर कारी साहब हमें भी परेशान कर दीजिए, क्या कर दीजिए कह रहे कारी साहब हमें परेशान कर दीजिए। अच्छा तुरपाई लेके आओ यार, आवाज के लिए तुरपाई लेके आओ यार, मेरे सामने बैठ के सबक याद करो, समझ में आई। हाँ नहीं तो एक और मैसेज है शुएब भाई, वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। यूसुफ भाई कह रहे हैं आज टीचर है जनाब, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर लग रहा है जी। मैं बेटे मैं छोड़ता नहीं हूँ यूसुफ मैं स्टूडेंट के साथ मैं बड़ा वो हूँ, स्ट्रिक्ट पढ़ेंगे कैसे ये लोग। नाजिब बन वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज है भाई ये रिकॉर्डेड था या लाइव, कौन सा लाइव, क्या रिकॉर्डेड क्या था है, एक सेकेंड ग्लिच आ गया मेरे दिमाग में, क्या रिकॉर्डेड था, सब कुछ लाइव है भाई, ये जो अभी बोल रहा हूँ एकदम लाइव एकदम। सुल्तान अहमद भाई वालेकुम अस्सलाम। और एक भाई मुझे कह रहे हैं चम्मक चल लो, मैं चम्मक चल नहीं पटूंगी मैं, तुम्हारा क्या नाम है रहमान बाबू, नहीं पटूंगी मैं चम्मक चल लो कह रहा हूँ, मुझे 5:01 पे चार हो गए अब तो। मोहम्मद अशफाक साहब वालेकुम अस्सलाम तीसरा वाला ऐड नहीं भाई, एकदम लाइव किया था भाई आपके भाई ने, एकदम लाइव कहते ही एकदम रिकॉर्डिंग में बिलीव ना रखते भाई हम। खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम गुड इवनिंग, एक मैसेज है क्या हाल है भाई, बढ़िया भाई वालेकुम अस्सलाम। बजवा साहब एक और मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई, फैन भाई फैन बनने देखो भाई बोल लिया करो भाई, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, फैन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एकदम से। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है जावेद भाई, वालेकुम अस्सलाम। परेशान नहीं प्रेजेंट, अच्छा प्रेजेंट आप, इन्होंने पहले लिखा कारी साहब हमें आप प्रेजेंट कर दीजिए, पर आपने परेशान लिखा देखो ऊपर अरबाज भाई, स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर काटता हूँ। एक मैसेज कबीर भाई हिंदी नहीं लिखना आ रहा, सिखा दें थोड़ा। अच्छा अभी तो टेस्ट के रिजल्ट चाहिए थे कामरान, बहुत शैतानी कर रहे हो तुम, डायरी लेके आओ और कल से साइन करवा के लेके आना ठीक है, हिंदी लिखना सिखा दीजिए, बताइए सिखाता हूँ अभी रुक जाओ कामरान भाई बहुत सारा प्यार आपको, सिखा देंगे भाई क्या सीखना है बताओ। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, ये मैसेज क्या है महफूज रॉबिन भाई ने, रॉबिन भाई थैंक यू। और एक भाई जिन्होंने मुझे चम्मक चल लो बोला था, उन्होंने कुछ वॉइस नोट भेजा है अभी सुन लेता हूँ मुझे क्लास दें आप स्ट्रिक्ट, मैच बिल्कुल क्लास बिल्कुल फुल क्लास मिलेगी आपको, टेंशन ना लें आप, कोई सी भी ट्यूशन लेनी हो आपको पूरी फुल ट्यूशन देंगे या चम्मक चल लो मुझे नए नए नाम बहन देते रहते हैं तब उसमें बहन बड़ी हैरानी क्या है ये ये मुझसे, हाँ कभी घोड़े की आवाज़ निकाल दो, कभी आइसक्रीम वाले की आवाज़ निकाल दो, मैं सबके चार्जिंग लूँगा मैं 5-5 रियाल। एक मैसेज है खलील भाई का, सलाम भाई स्टोरी भेज दिया करो प्लीज़ भाई, मैसेज एक बार ड्रॉप कर दिया करो बस। एक मैसेज आया है गुड इवनिंग कभी कॉल किया करो, रनिंग हो रहा है कि नहीं, ये आदमी मेरे पीछे पड़ गया इनका नाम है अर्श भाई। कभी मुझसे कहते हैं रनिंग चल रही नहीं चल रही, स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही नहीं चल रही, अरे मेरी जान मैं एक पुरानी कहावत बता रहा हूँ हरियाणा की ठीक है, जाट को समझाया नहीं करता भाई, जाट ने बहकाया करते हैं, जाट को बहकाना आसान है समझाना मुश्किल है मेरी जान, मैं कोई रनिंग वनिंग ना करता भाई, मार से होती नहीं भाई। एक और मैसेज है नाजिब बन का, वालेकुम अस्सलाम ब्रेव गर्ल हेड्स ऑफ अचर वाली स्टोरी थैंक यू। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई आप क्या धोरे में हाजिरी झांपना आशीष भाई वालेकुम अस्सलाम, श्रद्धा कपूर की कसम खा ली माई इवनिंग सुकून कभी ब्रो वॉइस भाई थैंक यू सो मच भाई दैट इज सो स्वीट थैंक यू सो मच, इस पर श्रद्धा कपूर की कसम खाने की क्या जरूरत थी, पर आपने खा ली है तो जुग जुग जिए वो। एक मैसेज है GT6 आ रहा है आ रही रनिंग क्या करना है अब, भाई खर्चा होगा नवंबर में रिलीज होते ही खर्चा होगा। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई प्लीज़ मुझे शाहरुख खान का गाना चम्मक छल्लो दे दो दे दो मैंने को CD चुरा रखी है शाहरुख खान की भाई अभी गाने नहीं चलने वाले इस पूरे घंटे में तो मैं दे नहीं पाऊंगा अच्छा अभी 11 मिनट 2 सेकंड के लिए शाम के अधिकार, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। एक और चीज़ बता दूँ, आज की जो कहानी है इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्गर, मगर ये कहानी ऐसी है कि इसके लिए मैंने कई लोगों से बात करी है, जिन लोगों ने मेरी इस कहानी में मदद करी है फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, उसमें इंटरनेशनली लोग शामिल हैं। तो ये बहुत मेहनत से तैयार की हुई, इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल स्टोरी एंड थोड़ा टाइम लेगी, तो कुछ देर में वो भी आ जाएगी, पर अभी जाना नहीं है आपने। 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिलते हैं। मैसेजेस आते रहने दीजिए 666-22-107 पे, एंड सी यू ऑन द अदर साइड, स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: आपको, सफाई जी और आपका था।
1: थैंक यू सो मच मेरे भाई, आप आए, आप इतनी दूर से, इसके लिए बहुत मोहब्बत, थैंक यू सो मच।
0: ओके मेरे भाई, मैं बहुत दिन से सोच रहा था बोलूं कभी।
1: नहीं नहीं भाई, आप कभी भी कॉल कर सकते, कभी भी बताइएगा मुझे, ठीक है। और इनके पास जो है एक और भाई ने बोला है मुझे कॉल करने के लिए, उनको भी जरा कॉल लगा ली जाए, तो इनको मैंने कॉल लगाई है। उठाए लो अमन भाई, अमन भाई, अमन भाई, अमन भाई। हाँ जी अमन भाई। हाँ जी, वालेकुम सलाम, बताओ मेरे भाई
0: कैसे हैं?
1: बस भाई बढ़िया हूँ, कंफ्यूजन में जी रहा हूँ, हो क्या रहा है?
0: कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होने का।
1: हाँ बताओ मेरे भाई, क्या क्या?
0: बस ठीक है, वैसे मैं वेट कर रहा था, मैं भूल गया, मैं आज ऑफिस में ही था तो आपको कॉल करना ही भूल गया, तो मैं अभी बस ऑन किया तो देखा तो आप मतलब अपना प्रोग्राम चालू किए हुए हैं।
1: हाँ मैं तो मैंने चालू ही किया, और आज आज भाई क्वेश्चन आ ही नहीं पाया लोगों ने कॉल किया। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ पूछ ही नहीं पाया, अभी शेब भाई आ गए थे, फिर शेब भाई ने बात करना शुरू करी, फिर शेब भाई भी अलग डायमेंशन में, उन्होंने फिशिंग के लिए बुलाने लगे, एक भाई ने बोला कि आप रनिंग करने के लिए आइए, सब मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे किसी गुफा में जाने की जरूरत है, छुप जाने की।
0: तो यही पूछ लीजिए ना कौन सा फेवरेट पार्क रहेगा अगर आपको जॉगिंग करनी हो तो।
1: अरे भाई मैं अरे मैंने गन्ने के खेत देखने ही नहीं है, जबरदस्ती तो वो वाला चीज़
0: नहीं, तो हाँ। नहीं तो आप पकड़े जाएंगे अगर उनको मालूम पड़ गया ना कौन से पार्क में रनिंग करना है, तो गए आप खलास।
1: तो हाँ भाई, मैंने कहा नहीं भाई, देखो कुछ हर किसी के अलग अलग चॉइस होते हैं। वैसे मैं सवाल आपसे पूछना शुरू कर देता हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हर किसी की ना बोरिंग की डेफिनेशन बहुत अलग होती है ना, कुछ लोगों को, कुछ लोग बोरिंग लगते हैं अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, तो आपके लिए कोई इंसान बोरिंग कब हो जाता है, आपके लिए कब बोरिंग है वो इंसान, ये बताइए।
0: मतलब इंसान कब बोरिंग हो जाता है?
1: हाँ, आपको क्या लगता है कि आपके लिए कब कोई बोरिंग हो जाता है?
0: ओके, अभी ये सोचना पड़ेगा अपने क्वेश्चन।
1: सोचिए सोचिए सोचिए, मुझे जरूर जरूर बताएगा, बिकॉज आई वुड वांट टू नो, हर किसी की डेफिनेशन बहुत अलग है ना बोरिंग की, इसलिए मैंने कहा मैं आज ये सवाल पूछूंगा, तो मुझे सोच के बताइएगा आप।
0: बोरिंग जैसे पहले इनिशियली जब पूछते हैं आप कैसे हो, सब कुछ हो गया, हाँ जी खाना वाना हो गया, उसके बाद की जो साइलेंस है वही बोरियत है।
1: अच्छा, तो आप मतलब बातें जब कोई ज्यादा घसीटने लगे तो आपको बोरिंग लगने लग जाता है, ऐसा
0: मतलब दिमाग में कब, मतलब दिमाग में कुछ और नहीं आ रहा ना, बस हेलो हाय, हाँ जी मैं ठीक हूँ जी, चल रही है लाइफ, खाना पीना हो गया, बस अभी यहाँ से घूम के आया, जो उसके बाद की साइलेंस होती है वो वाली बोरियत थोड़ी सी गुजारनी मुश्किल हो जाती है, बाकी तो सब नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ ज्यादा फेस नहीं किया किसी इंसान के लिए, बोरियत तो होता है तो बस एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बहुत ज्यादा है।
1: अच्छा तो ठीक है, आपका फिर डेफिनेशन ही अलग है, मतलब आपको बिल्कुल कोई आदमी बात करते करते एकदम चुप बैठा हुआ है, कुछ कह नहीं रहा है, वो ऑकवर्ड साइलेंस इज बोरिंग टू यू।
0: हाँ जी, जैसे किसी हॉल में हो गया, अपने वर्क प्लेस में हो गया, और फोन पे भी हो गया।
1: ओके, बहुत बहुत अलग डेफिनेशन है आपकी, ठीक है। ठीक है अमन भाई, और अभी कुछ देर में कहानी आगे सुनेंगे जरूर, थैंक यू सो मच मेरे भाई।
0: और स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं?
1: बस स्टार्ट करने वाला हूं कुछ ही देर में,
0: ठीक है जी, सुन रहा हूं फिर आपको।
1: डन है मेरा भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार।
0: ओके शुक्रिया, हैव अ नाइस डे,
1: यू टू मेरा भाई, थैंक यू थैंक यू। और अमन भाई के बाद जो है एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
1: भाई नदीम भाई, कैसे मेरा भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे?
1: बस भाई सुनी रहे हैं आप क्या?
2: शोएब भाई का फोन खो गया मेरे को लग रहा है भाई। कोई और ही था फोन पे,
1: है ना? उनको हुआ क्या?
2: तो बहुत ज्यादा लंबा गैप हो गया, तो उनको समझ नहीं आया क्या बात कर दी है।
1: उनके लिए एक्सटेम्पोर हो गया, चलो बेटा आज हम गाय पे ऐसे लिखेंगे।
2: उनको आपने बताया नहीं, आपने इतनी मच्छियां पकड़ी है, वो पूछ रहे थे मच्छी के बारे में।
1: अरे हाँ,
2: ऐसी ऐसी मच्छियां पकड़ी है जो तुमने देखी भी नहीं होगी।
1: अरे नदीम भाई ये पंच रह गए यार, अब याद दिला रहे हो, अब ये वाली बात हो गई, काश मैंने ये भूल दिया होता।
2: मैं तो रेडियो में सोच रहा था कि अभी पंच आएगा, अभी पंच आएगा,
1: मुझे पता, मैं ध्यान में नहीं रहा, मैंने कहा हाँ यार ये तो पंच हो सकता है। गेम में हमने शोएब भाई, अगर आप सुन रहे हैं, हमने बहुत बढ़िया मच्छियां पकड़ी।
2: और वो रनिंग वाले भाई को भी बताओ, बोलो भाई इतनी एक्टिविटी करते ना जितनी तुम पूरी जिंदगी में नहीं किए, कूदना, बिल्डिंग में चढ़ना, भागना।
1: पर पता क्या हो जाता है ना, स्पेशली लोगों को किसी और एक्टिविटी से दिक्कत नहीं है, सबको गेमर से ही दिक्कत है, ये क्यों बैठे हुए खेलते रहते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम।
2: वही तो बता रहा, जितना ट्रैवल और जितनी एक्टिविटी गेमर बैठे बैठे कर लेते हैं ना, उतना तो सोच भी नहीं सकते लोग।
1: हाँ एग्जैक्टली, पर मैं वही घूम फिर की बात हो जाती है कि लोग हमें क्यों जज कर रहे हैं।
2: भागने वाला माइंड एक्टिविटी नहीं कर रहा, हम तो माइंड एक्टिविटी भी कर रहे हैं, उसके अंदर पजल भी सॉल्व कर रहे हैं।
1: बिल्कुल भाई, ऐसे ऐसे पजल कोई, अरे भाई धुआं निकल जाता है भेजे से, तो क्या बताएं, अब दुनिया हमें ही जज करती है, कोई और एक्टिविटी किसी को बुरी नहीं लगती, हम ही बुरे लगते हैं। क्या करें, बट लेट इट बी, क्या करें।

0: नदीम भाई, वैसे आपके लिए बोरिंग इंसान क्या क्या डेफिनेशन
1: है? यार मेरे को लगता है मेरे लिए बोरिंग इंसान मैं खुद हूँ, क्योंकि सब लोग मेरे को बोरिंग सोचता है, हर कोई गेमर को बोरिंग ही सोचता है।
0: हाँ ये बात तो है, ये बात तो है, आई एग्री।
1: अपने लिए तो बोरिंग इंसान हम ही है कि एक जगह बैठ गए, कंप्यूटर ले लिया, जो दिल में आया वो कर रहे बैठ के सुकून से।
0: I'm pretty sure मैं भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बोरिंग हूँ। I'm pretty sure
1: बोरिंग मेरा, मैं तो अपने घर वालों की जिंदगी में बोरिंग हूँ, बाहर वालों का तो
0: कर बाहर की तो सोचो ही मत, घर वाले ही कह रहे हैं बोरिंग है भाई, तो
1: घर वाले ही बोल रहे भाई तू निकलता है। मतलब देखो सीधी सी बात है, मैं सबको यही बोलता हूँ, मैं घर वालों को भी बोलता हूँ, ठीक है वॉक करना अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, लोग जो भी बोलते हैं भाई, मैं घर के अंदर बैठा हूँ, ठंडी ठंडी एसी की हवा आ रही है, कंप्यूटर मेरे सामने, मैं क्यों जाके कहीं मॉल में चलूं, मैं क्यों जाके कोई गार्डन में चलूं, क्यों क्यों मैं मेहनत करूं।
0: हाँ, और ये एक्चुअली मैं कह रहा हूँ ना, इकलौती एक्टिविटी है जिसको बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया गया है। सो पीपल टेंड टू थिंक कि यही है कीड़े, समाज के कीड़े यही है जो गेमिंग कर रहे हैं।
1: AWC वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहे हैं, आपको तो पता ही होगा।
0: यस यस,
1: तो कितना प्रेशर, कितना प्रेशर है मैचेस एकदम देख के, ऐसा मतलब कहाँ तक चली है गेमिंग, जो मतलब इंडिया पाकिस्तान के मैच में जैसे प्रेशर आता है ना क्रिकेट, उससे ज्यादा प्रेशर AWC के मैचेस में आ रहा है कि हमारी टीम क्वालिफाई होगी कि नहीं होगी।
0: हाँ ये प्रेशर आप समझ सकते हैं, जो कि ऑनलाइन मल्टीप्लेयर खेल रहे हैं तो उनके लिए तो और भी ज्यादा प्रेशर हो जाता है।
1: मतलब अभी ऑर्गेनाइजेशन को हम गेमिंग में भी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, मतलब गेमर है तो जैसे उसकी भी एक अलग अलग टीम्स है अलग अलग गेम्स की, तो अपना और एक मतलब जानने वाले ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग पार्ट है AWC का इंडिया।
0: अच्छा, ओके ओके,
1: तो भाई वो कितना प्रेशर आता है, वो जब टीम सेलेक्ट होगी आगे जाएगी, गेम हार जाएगी, क्या प्रेशर गेम हुए,
0: और इनाम भी तो बहुत बड़े बड़े रखे जाते हैं आजकल,
1: 50-50 लाख तो नॉर्मल टूर्नामेंट,
0: नॉर्मल टूर्नामेंट है। यस यस यस, ये मैंने भी देखा, ये मैंने भी देखा। आगे के नदीम भाई कहानी शुरू कर रहा हूँ मैं, सुनिएगा जरूर, आज की अच्छी कहानी है, यू विल लाइक इट। ठीक है मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना। और नदीम भाई के बाद एक मैसेज आया जकी भाई का, वालेकुम सलाम जकी साहब, कैसे हैं आप? आई एम गुड। एक और मैसेज सीबी भाई का, सीबी भाई कह रहे हैं बोरिंग वन स्टॉप टॉकिंग। ओके, अगर कोई बात करते करते रुक जाए तो उनके लिए बोरिंग हो जाता है वो शख्स। एक और मैसेज है, लिखते हैं भाई बोरिंग की डेफिनेशन ये है कि जब कोई मेरे आके बड़ी बड़ी बातें करे। मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, अगर आप एक यू आर अराउंड अ बंच ऑफ पीपल और लोग जो है खामा खामे अपनी एज से ज़्यादा बड़ी बातें करने लग जाते हैं, तो फिर मैं उनसे नाता तोड़ने लग जाता हूँ। आई नो इट्स अ वेरी बैड हैबिट फॉर सम पीपल, बट अगर मैं किसी ग्रुप में बैठा हूँ और लोग अपने एज ग्रुप से ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएँ और ओवर द टॉप बातें करने लग जाएँ, देन आई जस्ट फाइंड इट कम्प्लीटली बोरिंग। और उर्दू रेडियो .qa पर जा सकते हैं, वो कह रहे हैं कैसे सुन सकते हैं ऑनलाइन, सो उर्दू रेडियो .qa राइट टॉप कॉर्नर प्ले बटन दबाना है आपको, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप उस पर क्लिक करके लाइव सुन सकते हैं। एक मैसेज है, जो मेरे साथ घूमने नहीं जा रहा है वो बोरिंग है, फिजूल है। ये भी सही है। एमएल भाई अस्सलाम वालेकुम, भाई मैं सुन रहा हूँ, एमएल भाई मेरा भाई, एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, हमारे फंड्स हैं फ्रेंड, वो सिंपल, जिस इंसान से हमारी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती वो हमारे लिए बोरिंग है, बेसिकली। यस, समीर अजीज जिन्हें मैसेज किया, आई एम ऑल इयर्स फॉर द स्टोरी। ओके, आई एम जस्ट बिगिनिंग द स्टोरी नाउ, दो तीन मैसेज पढ़ दूँ। यूसुफ भाई कह रहे हैं, कभी मेरे लिए बोरिंग वो है जो मैं अकेला होता हूँ या जब कोई मेरे साथ ना हो तो बात करने के लिए, मेरे आसपास कोई ना कोई होना चाहिए, अदरवाइज आई विल बी बोर्ड। मेरे साथ ठीक उल्टा है इसका, मैं अकेले रहना काफ़ी पसंद करता हूँ, ऑफकोर्स अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है अकेले रहने का, बट आई एम बेटर अलोन। सैम भाई वालेकुम अस्सलाम, सलाम गुरु भाई, मुदस्सिर हूँ, मेरे लिए बोरिंग वो शख्स है जो नेगेटिव और बेईमानी करे। नहीं, बेईमानी और नेगेटिविटी इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, वो तो आपको अलग टेंजेंट में है, बोरिंग सिर्फ बोरिंग। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसा मेरा भाई?
0: बस बढ़िया भाई, आप सुनाए मेरे भाई, क्या हाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: जी,
2: मैं आज लेट हो गया था ना, आपका टॉपिक सुन पाया भाई।
0: भाई कोई बात नहीं, मैं ये बात कर रहा था कि हर इंसान की ना एक डेफिनेशन होती है बोरिंग की, है ना। जैसे मैंने कहा मेरे लिए वो लोग बोरिंग हो जाते हैं जो अपनी एज ग्रुप से कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मतलब आप हैं 20s में, आप बात कर रहे हैं 40-50 साल के इंसान के जैसे, तो मेरे लिए फिर वहां पे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट व्हाट इज बोरिंग टू यू, आपके लिए बोरिंग क्या है? सोचा नहीं, पर होता तो होगा। ऐसा तो नहीं है, है ना? आया दिमाग में आ रहा है?
2: ये तो सवाल आपका मेरे लिए, ये तो सवाल आपका मेरे लिए तजस्सुस बन गया है।
0: अब सोच में जाएंगे, अब लोगों को चिन्हित किया जाएगा।

थी, रुवांडा में एक टेंट के अंदर थी, और कुछ टाइम पहले ही अपने फ्रेशमैन ईयर को पूरा करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आई थी। यहाँ पर ये पेशेंट्स की खिदमत करने के लिए वॉलंटियरली आई थी और यहाँ पर एक मेडिकल कैंप, एक मेडिकल एड ग्रुप का हिस्सा थी। मैकेंजी भले ही 19 साल की थी मगर उसके जो सपने थे वो बहुत बहुत बड़े रहे शुरुआत से ही शी वॉन्टेड टू हेल्प पीपल। अभी इस वक्त वो इस टेंट में कुछ नोट्स बना रही थी पेशेंट्स के, एक क्लिप बोर्ड पर लगा रही थी। प्लेस करने के बाद शी वॉज जस्ट वेरी सैड इनसाइड क्योंकि समर्स, ये जो गर्मियों की छुट्टियां थी वो ख़त्म हो रही थी। अब वो वापस कॉलेज तो जाएगी, उसके लिए बड़ी खुश है, मगर ये जो कर रही थी वो अभी वॉलंटियरिंग इन लोगों की खिदमत, उसे करने का मौका कुछ वक्त बाद ही मिलेगा। वो बचपन से डॉक्टर बनके अफ्रीका में या दुनिया में और जगहों में लोगों की मदद करना चाहती थी। और ये उसकी कोई पहली ट्रिप नहीं थी, ये उसकी दूसरी ट्रिप थी महज 19 साल की उम्र में। दिस वॉज हर सेकेंड ट्रिप। इससे पहले वो युगांडा में एक क्लिनिक में काम कर चुकी थी, पर राइट नाउ अभी काम करने के बाद शी वॉज रियली रियली टायर्ड। आंख मलते हुए अंगड़ाई ली, और जैसी थकावट में उसने अंगड़ाई ली उसको एक बहुत ही शार्प पेन, बहुत शदीद दर्द एकदम से उठा, और इस शार्प पेन उसके पेट में हो रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने चाकू मारा हो। उसने अपना पेट दबाया कि शायद प्रेस करने के बाद एब्डोमेन में थोड़ा सा आराम आ जाएगा, लेकिन दर्द गया नहीं। और ये कोई नया दर्द नहीं था, ये ऐसा दर्द था जो पिछली बार भी हुआ था उसे। और जब भी वो कुछ खाने की कोशिश कर रही थी उसके पेट में एक अजीब सा शार्प पेन उठने लगा था। इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि वो ना वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, वो तो पूरी तरह से छोड़ चुकी थी, और लंच और डिनर कम से कम जितना कम खाने की नौबत आए उतना ही वो खा रही थी, और उसमें भी दर्द। युगांडा में जब वो सर्व कर रही थी वहां पे भी बाकायदा उसने लोगों की खिदमत करी, तो वहां पर भी उसकी हालत खराब हो गई थी। इस टाइम जब वो रुवांडा में थी, भले ही उसके इर्द गिर्द सारे के सारे उसके कलीग से सारे के सारे डॉक्टर्स नर्सेस थे, पर उसने किसी को अपने दर्द के बारे में बताया नहीं। उसे लगा ये क्या बताने का फायदा, बिकॉज वो एंटी मलेरियल ड्रग्स ले रही थी, दवाइयां ले रही थी, और इन दवाइयों का हो सकता है साइड इफेक्ट हो, तो वजन अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक हो जाएगा जब घर का खाना खाएगी। तो उसने बस अपने दर्द को सप्रेस करते हुए लंबी सांस खींची, उसने कहा चलो भाई काम पे चलो, और फोकस करने लगी। कुछ दिनों बाद जब ये सब कुछ खत्म हुआ, उसके यहाँ पे सर्विसेज खत्म हुई, तो एक एयरपोर्ट पर मैकेंजी की माँ जोएन इल और उनके हस्बैंड वेन, ये दोनों इंतजार कर रहे थे। ये जो एयरपोर्ट था ये था सैक्रामेंटो का एयरपोर्ट। वो अपने घर से नवाडा कैलिफोर्निया से 105 किलोमीटर दूर सफर करके अपनी बेटी को पिक करने के लिए आए थे। अब माँ बाप इंतजार कर रहे थे कि उनकी बेटी मैकेंजी सामने आएगी। जोआन जो माँ थी मैकेंजी की, शी कुड नॉट वेट कि बस मेरी लाडली बेटी आए और उसे अपने सीने से लगा लूँ, और दोनों के दोनों बड़े एक्साइटेड थे। वेट करते करते थोड़े टाइम बाद मैकेंजी एयरपोर्ट से बाहर आईं, और जब बाहर आईं तो जोआन ने अपनी बेटी को देखा, शी वॉज इन शॉक्ड। उनके चेहरे पर से मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो गई। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का वजन बिल्कुल, ऐसा लग रहा है ना जाने कितना वजन खो दिया उसने। मैकेंजी पहले से पतली थी मगर अभी एकदम स्केलेटन लग रही थी। जोआन ने अपने हस्बैंड वेन की तरफ देखा, वेन भी उतने ही हैरान थे कि उनकी बेटी को आखिर हुआ क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे 10 से 15 किलो वजन उसका कम हो चुका है। खैर मैकेंजी ने अपनी माँ को जैसे देखा वो दौड़ती हुई आ रही थी। अब माँ ने अपनी जो सैडनेस थी उसको छुपाने के लिए एक मुस्कुराहट का मुखौटा पहन लिया और फिर अपने सीने से अपनी बेटी को लगा लिया। ये सब घर गए, और घर जाने के बाद रात का वक्त था। जोएन जो लिविंग रूम में बैठी हुई थी अपने हस्बैंड और अपनी बेटी मैकेंजी के साथ, ये लोग टीवी देख रहे थे। टीवी देखते हुए जोएन ने सोचा कि क्यों ना मैं आज पिज्जा ऑर्डर करती हूँ अपनी बेटी के लिए, कुछ ऐसा जंक फूड खाएगी, हो सकता थोड़ा वजन वजन बढ़े और बेचारी ने खाया भी नहीं होगा। तो उसने जो है पिज्जा ऑर्डर किया सबके लिए। टीवी देखते देखते जोएन जो थी वो टीवी की बजाय अपनी बेटी को नोटिस कर रही थी। उन्होंने नोटिस किया कि उनकी बेटी ने पिज्ज़ा जो है अभी तक वैसे का वैसी है, उसे छुआ तक नहीं है, और जब भी वो एक बाइट ले रही है अजीब सा उसके या तो दर्द उठ रहा है या उसे टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। उन्होंने मैकेंजी से पूछा, बेटा व्हाट हैपन, सब ठीक तो है? और फिर उसने बताया कि आजकल ऐसा हो रहा है

के पेट में दर्द होता है, वो कभी भी कुछ खाती है तो बहुत तेज दर्द होता है। मगर शी सेड मॉम आई प्रोमिस सब ठीक है, ये बस मैं दवाइयाँ ले रही हूँ ना एंटी मलेरिया की, इस वजह से ये थोड़ा हो रहा है बट ठीक हो जाएगा ये। पर जुआन जो माँ है मैकेंजी की वो कन्विंस नहीं थी, वो जानती थी ये किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट इतना वजन कम नहीं कर सकता, और इस कदर के दर्द की वजह से इंसान खा ना पाए, दिस हैज टू बी समथिंग एल्स। उन्होंने अपनी बेटी को बोला, मैकेंजी ये ऑर्डर है, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग, सुबह सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैकेंजी वो सैड के, क्या मॉम आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं, मगर शी न्यू कि जाना पड़ेगा। अगली सुबह दोनों माँ बेटी एक लोकल क्लिनिक में गए, वहां पे डॉक्टर साहब जो थे वो बड़े बिजी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारे टेस्ट करा के फिर मुझे बताइए। सारे के सारे टेस्ट जो थे वो कराए गए, और अब माँ बेटी वेट कर रहे थे। उनके सामने शीशे के दूसरी तरफ एक काउंटर था, और शीशे में से एक बंदे ने ऐसे हाथ वेव किया, यानी कि रिजल्ट आ गया है। और रिजल्ट लेने के लिए दोनों माँ बेटी बड़ी ही नर्वसनेस के साथ बढ़ी, उनको रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट लेके सीधा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब ये रिजल्ट बताइए क्या करना है। डॉक्टर साहब ने रिजल्ट देखा, एंड ही वाज लाइक एवरीथिंग इज नाइस, सब कुछ नेगेटिव तो है। आई थिंक वो क्या है, सेंसिटिव सिस्टम हो गया है, वो घर का खाया नहीं ना, घर का खाएगी आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, वेट वापस हो जाएगा गेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माँ जो जोएन थी मैकेंजी की, उनकी जान में जाना है, चलो मेरी बेटी ठीक है, बस घर का खाना खिलाऊंगी, तंदुरुस्त कर दूंगी वापस। मैकेंजी वाज लाइक ओके चलो बढ़िया है, सब ठीक है। जोएन की टेंशन ख़त्म तो हो गई थी, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि क्वालिटी टाइम बिताऊंगी अपनी बेटी के साथ, क्योंकि फिर वो वापस चली जाएगी कॉलेज बोस्टन, और फिर मैं उसे मिस करूंगी। सो शी डिसाइडेड कि वो घर का खाना स्ट्रिक्टली अपनी बेटी के लिए बनाएगी, हेल्दी फूड। अब वक्त को थोड़ा आगे ले जाते हैं, कुछ हफ्तों के बाद मैकेंजी एक डिनर टेबल पे थी, ये लकड़ी का पूरा वुडन का डिनर टेबल था, फैंसी सा, इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दोस्तों के बीच बैठी हुई थी। She was really, really happy कि वो अपने दोस्तों के साथ हैं। She was enjoying this air of college. मगर अभी भी dangerously उसका वजन कम था। कुछ फर्क नहीं पड़ा किसी भी खाने से, क्योंकि खाना जा ही नहीं रहा है। जिसका पेट था वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। सामने लोग पास्ता खा रहे थे और वो भी कोशिश कर रही थी कि पास्ता खा सके। वो इस कदर चबा रही थी पास्ता को कि बिल्कुल उसका पेस्ट बन जाए, तब वो गले से उतारे। ये ऐसा था जैसे कोई टास्क किसी ने उसे दे दिया हो, मगर पेन जाने का नाम नहीं ले रहा था। मैकेंजी की एक दोस्त ने नोटिस किया, उसने बोला, मैकेंजी यू ओके? एंड मैकेंजी ने बोला, या आई एम टोटली फाइन। मगर पेन, वो जो दर्द था वो बढ़ता चला गया, एंड 5-10 मिनट्स में ब्रेथलेस सी हो गई, वो सांस लेने तक में दिक्कत आ रही थी। उन्होंने फाइनली अपने दोस्त को बोला, क्या तुम मुझे डोम रूम तक ड्रॉप कर सकती हो प्लीज़? एंड वो दोस्त काफ़ी कंसर्न थी, उसने कहा वाई नॉट, श्योर। वो लेके गई डोम रूम तक, उसके रूम में ड्रॉप किया और वहाँ पे रुकी कुछ देर। एंड उसने भी नोटिस किया कि वो बस जैसे तैसे बिस्तर में लेट गई और बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी घंटों तक, वो ऐसी ही रही, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, शी कुड नॉट मूव। जब बहुत देर बाद दर्द थोड़ा सा कम हुआ तो वो उठी, उसने कहा आई एम रियली सॉरी कि मैंने इतनी देर तक रोक के रखा तुम लोगों को, थैंक यू सो मच। उसने ब्रश किया और सोने के लिए तैयार हो गई, फिर जाके सो गई जैसे तैसे। 2 हफ्ते बाद फिर से इस दर्द के चलते मैकेंजी एक इमरजेंसी रूम में थी, दर्द में कराह रही थी। इस बार उसने डिसाइड किया था कि भाई दिखाना तो पड़ेगा। वो अब स्टूडेंट हेल्थ सेंटर में थी, जो कि कैंपस में ही बना हुआ था। वो काफी अंडरवेट थी। स्टाफ ने उसे देखते हुए बोला कि ये तो क्या हालत है इसकी। उन्होंने बोला कि नहीं, वी कैन नॉट ट्रीट यू, यू आर टू अंडरवेट, हम एक काम करते हैं, हम एम्बुलेंस बुलाते हैं। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और फौरन हॉस्पिटल में भेज दिया। जब हॉस्पिटल में भेजा मैकेंजी को, तो वहां पे वो बैठी हुई थी, और इस वक्त एक डॉक्टर जो था उसने देखी मैकेंजी की हालत, एंड ही वॉज ऑल्सो कंसर्न कि आखिर हुआ क्या है। आप एक सेकेंड वेट पे आइए, और उन्होंने वेट किया, और जब वजन चेक किया तो बहुत कंसर्न थे वो। उन्होंने मैकेंजी को बोला, मैकेंजी लिसन टू मी रियली केयरफुली, तुम्हें अंदाजा है तुम्हारा कितना वजन कम हो चुका है? राइट नाउ यू आर 34 केजीज। सिर्फ 34 किलो की थी मैकेंजी।
इतना अंडरवेट होना जानलेवा हो सकता है एक 5 फिट 3 इंच की लड़की के लिए भी. इट वॉज टू मच. डॉक्टर ने यह भी बोला कि अच्छा हुआ तुम आ गई और अपनी दिक्कत को तुमने आगे रखा. ये सुनते के साथ ही उसका दिल मैकेंजी का बहुत बहुत जोरों से धड़क रहा था. डॉक्टर ने संभाला. डॉक्टर ने बोला डोंट वरी एक काम करो इन्फॉर्म योर मॉम. एंड उसने अपनी माँ को कॉल किया. एंड इस बार उसकी हिम्मत नहीं थी कहने की कि मॉम आप बहुत ओवर रिएक्ट करती हैं. इस बार वो रो रही थी और अपनी माँ से बोला माँ प्लीज जस्ट कम राइट नाउ प्लीज हरी अप. और अगली ही फ्लाइट से जोआन और वेन दोनों के दोनों पहुंचे. कुछ दिनों के बाद डॉक्टर और डॉक्टर की पूरी मेडिकल टीम मौजूद थी मैकेंजी के आसपास. मैकेंजी और उसके पेरेंट्स जवाब मांग रहे थे कि आखिर हुआ क्या है. पर डॉक्टर ने बोला टेस्ट नॉर्मल है आपके. और मैकेंजी चिढ़ गई. आई डोंट फील नॉर्मल. आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है. इस पर डॉक्टर ने बोला मैकेंजी आई अंडरस्टैंड बट एक बात करनी है आपसे. मुझे लगता है कि आपका जो वेट कम है जो आपके हालात हैं ये साइकोलॉजिकल हैं फिजिकल नहीं है. सर्जरी और मेडिकेशन काम नहीं आएगी. आपको इन पेशेंट ट्रीटमेंट सेंटर भेजना पड़ेगा जहां पे ईटिंग डिसऑर्डर्स का इलाज हो सके. और ये सुनते के साथ ही मैकेंजी को बहुत गुस्सा आया. उसने बोला व्हाट आर यू सेइंग डॉक्टर ईटिंग डिसऑर्डर. मैं खाने की डेस्परेटली कोशिश कर रही हूं और आप कह रहे हैं कि मैं खाना नहीं चाहती हूं. डॉक्टर ने बोला देखिए समझो मैकेंजी ऐसा आप गलत समझ रही हैं. कई मर्तबा ऐसा होता है. ये एनोरेक्सिया भी हो सकता है. एनोरेक्सिया बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर ही है. वो रोने लगी कि यार मैं दर्द में हूं और ये मुझे कह रहे हैं कि मैं मेरा वहम है. डॉक्टर ने कहा देखो दिस इज ये ईटिंग डिसऑर्डर है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. उसने अपनी माँ की तरफ देखा. शायद माँ समझेंगी. उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने बोला बेटा लिसन टू मी वी हैव टू ट्रस्ट देम. डॉक्टर्स को पे भरोसा दिखाना पड़ेगा ना. है ना ये भी ट्राई कर लेते. मैकेंजी कुडन बिलीव कि उसकी माँ को भी लगता है कि ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है. बट शी हैड नो चॉइस. फाइन ओके. एक महीने के बाद इसी इन पेशेंट सेंटर में जहां पे ईटिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स थे वहां पे लंच टेबल पे बैठी हुई थी एक मेटल बेंच पे मैकेंजी. उनके साथ में एक नर्स थी और नर्स के सामने मैकेंजी खाने की कोशिश कर रही थी. निवाला उतारने की कोशिश कर रही थी. उनको ऐसा लग रहा था हर निवाले के बाद उनके पेट में जैसे गरम गरम लोहा झुलसता हुआ बिल्कुल कोई लगा रहा हो. 4 हफ्तों से वो यहां थी. यहां मील टाइम पर देने के बाद ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन कैसे खा रहा है. शी वॉज हेयर फॉर ईटिंग डिसऑर्डर. उसने जैसे तैसे इस खाने को जबरदस्ती अपने गले से उतारा क्योंकि वो जानती थी कि इस जगह से आजादी तभी मिलेगी जब इन लोगों को भरोसा होगा कि ईटिंग डिसऑर्डर मेरा ठीक हो गया और मेरा वजन जरा सा बढ़ जाएगा. तो यहां से निकलने भर के लिए उसने अपने दर्द को छुपाया और जैसे तैसे इस खाने को जबरदस्ती उतारने लगी. और नर्स जब भी पूछे कि दर्द हो रहा है अभी तो बोलती नहीं आई एम एब्सोल्युटली फाइन. मगर उसे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था अंदर से. शी वॉज गोइंग क्रेजी. उसके बाद नर्स ने कहा यू नो वी हैव टू डू अ वेट. और जब वो वजन चेक करने के लिए गई तो नर्स ने बीच में पर्दा लगा दिया ताकि पेशेंट यहां पर मैकेंजी ये देख ना पाए कि उसका वजन कितना आया वरना कुछ और कहानी उसके मन में बन जाएगी. इस बात पे मैकेंजी को बहुत गुस्सा था लाइक व्हाट इज दिस. पर नर्स वजन चेक करने के बाद पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद आई और बोली मैकेंजी यू नो व्हाट यू डिड अ गुड जॉब वेल डन. उसके बाद उसे थोड़ी राहत आई कि अब इसको लग रहा है कि मैं ठीक हूं. लेकिन दर्द छुपाते छुपाते एक महीना हो चुका था. शी वॉज इन पेन ट्रू पेन. 5 महीने के बाद इन द स्प्रिंग ऑफ 2011 में मैकेंजी फिर से एक मेडिकल फैसिलिटी में थी. इस वक्त वो एक बेड पर थी एंड सिटिंग अपराइट सिराने से लग के. एक नर्स उनके वाइटल्स चेक कर रही थी और उनके दोनों साइड में उनके पेरेंट्स थे जोआन और वेन. वेट जो उनका वजन था मैकेंजी का वो स्टेबलाइज हो चुका था जिसकी वजह से उसको ये अलाउ कर दिया गया था कि काम करो तुम अब घर जा सकती हो नवाडा सिटी वापस पहुंच जाओ कोई मसला नहीं है.

बट अभी भी खाना वॉज रियली रियली पेनफुल. और ऐसे में मैकिन्जी के जो एक और डॉक्टर थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वो वहां पर आए. उन्होंने बोला कि मेरे पास एक तरीका है. उन्होंने कहा कि आपको नेजल ट्यूब, फीडिंग ट्यूब लगानी पड़ेगी. अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं नेजल ट्यूब कैसे काम करती है. बेसिकली ये नाक से एक ट्यूब डाली जाती है सीधा अंदर, और ये बायपास करती है सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बायपास कर देते हैं हाइपर सेंसिटिव पेट को, जैसे मैकिन्जी के दर्द हो रहा था, और ये डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं. मैकिन्जी को अब इस ट्यूब के साथ रहना है. डॉक्टर ने बोला देखो एक काम करते हैं, कुछ टाइम ये ट्राई करते हैं, तुम्हारे गट को मतलब पेट वगैरह को आराम मिलेगा थोड़ा, और हो सकता है कुछ टाइम बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ. एंड मैकिन्जी वॉज रेडी फॉर एनी रिस्क. उसे बस कॉलेज वापस जाना था, बहुत हो गया हॉस्पिटल हॉस्पिटल. कुछ देर में डॉक्टर साहब आए, सारे इक्विपमेंट लेकर आए, ट्यूब को इंसर्ट किया नोज से, नाक से, ईजोफेगस के थ्रू, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से. माँ ने पूछा आर यू ओके मैकिन्जी. उसने बोला नो मॉम आई एम नॉट गुड, पर पहले से थोड़ा सा आराम था. दो हफ्ते बाद मैकिन्जी रूटीन चेकअप के लिए अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आई. उन्होंने अपना वजन चेक किया, और वजन जो पहले 34 किलो था वो भी 48 केजी से पहुंच चुका था, विच वॉज ग्रेट. डॉक्टर ने भी कहा इट इज फिनोमिनल. शी वॉज हैप्पी कि चलो कुछ तो ठीक है जिंदगी में. डॉक्टर ने कहा सुनो तुम्हें एनोरेक्सिया नहीं है, तुम्हें कोई ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, सो गुड ऑन योर पार्ट. और फिर बोला कि तुम्हें बहुत जल्दी मैं अप्रूवल देता हूं ताकि तुम कॉलेज बहुत जल्दी जा सको. मगर ये था कि पेन, ये दर्द अभी भी उसके साथ जीना पड़ेगा. अर्ली सितंबर 2011 मैकिन्जी जो थी इस वक्त अपने दोस्तों के साथ डाइनिंग हॉल में थी. एक साल बाद अपने दोस्तों के बीच वो बेहद बेहद खुश थी अपनी यूनिवर्सिटी के इस डाइनिंग हॉल में. हाँ अभी भी उसके वो फीडिंग ट्यूब नाक से लगी हुई थी, मगर शी वॉज हैप्पी शी इज एटलीस्ट बैक इन कॉलेज. पर एक प्रॉब्लम थी, इस वक्त सब के सब इस डाइनिंग हॉल में टाकोज खा रहे थे. वो ग्रिल की हुई प्याज और पेपर्स, उनकी खुशबू, उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी. उसका मन करा था कि काश मैं भी खा लूं, पर शी कुडंट. पूरा कॉलेज उसको जानता था अब नोज ट्यूब गर्ल के नाम से. आधे लोग चिढ़ाते थे, आधे लोग मजाक उड़ाते थे. ऊपर से उसे ऑड भी लगने लगा. पहले तो उसने सोचा कि मैं खाऊं क्या यार, पर उसने कहा रहने दो, तो पढ़ाई करने लगी. जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि आप मैकिन्जी की जगह हूँ, आप ही के दोस्त हैं, सबके सब खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, चटोरी चीज़ें खा रहे हैं, एंड आप डिसाइड करें यार मैं होमवर्क ही कर लेती हूँ. शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, क्योंकि वो एक साल पढ़ाई में पीछे हो चुकी थी और कवर भी करना था. इस बीच भी ये लड़की इतनी मेहनती कि इसने लोकल होमलेस शेल्टर में भी वॉलंटियरिंग करने का फैकिया, ये ट्यूब लगा के. एंड शी टोल्ड हरसेल्फ, अपने आप को बताती रहती थी कि कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं. इस बीच एक दोस्त ने पूछा उससे कि सुनना ये चेरोस खा ले, थोड़े से डेजर्ट है, मीठा मीठा अच्छा लगेगा तुझे. मैकिन्जी का बहुत मन हो रहा था यार खा लूं क्या, जरा सा खा लूं क्या. उसने कहा नहीं यार रहने दे, इट्स ओके, कोई बात नहीं. और उसने अपना पूरा मन मार के काम पे ध्यान दिया. फिर आया जुलाई 2012. मैकिन्जी इस वक्त एक लाइन में लगी हुई थी, ये बर्गर लेने के लिए एक लाइन थी, और बहुत शानदार रेस्टोरेंट था. शी वॉज आउटसाइड ऑफ एल्बरक्यू न्यू मैक्सिको, और यहाँ पर वो वॉलंटियरिंग कर रही थी नेटिव अमेरिकन रिजर्वेशन और एरिजोना और न्यू मैक्सिको के लिए. वो बहुत ज़्यादा खुश थी इस वक्त. उसकी जो नेजल फीडिंग ट्यूब थी वो इस वक्त नहीं थी, निकाल दी गई थी, और वो इस वक्त ऑर्डर दे रही थी. बहुत बड़ा ऑर्डर देने के लिए आई थी यहाँ पे. यहाँ पे जो थे डॉक्टर्स के लिए वो बर्गर और सैंडविचेस ऑर्डर कर रही थी. एंड एक दिक्कत थी बस, अपने लिए कुछ भी नहीं ले रही थी वो. मैकिन्जी अभी भी नहीं खा सकती थी. भले ही उसकी ये नेजल फीडिंग ट्यूब हट गई थी, मगर डॉक्टर्स ने उससे कह दिया था कि ये दिक्कत आपकी अभी भी हमारे समझ में नहीं आ रही है, और उन्होंने इसलिए ये फीडिंग ट्यूब अब एक अलग तरीके से लगाई ताकि वो बाहर ना दिखे और लोग उसका मजाक ना उड़ाएं. एक और मसला हो चुका था इस लड़की का, मैकिन्जी का गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया गया था ताकि गॉल स्टोन्स ना बन जाए, पैदा ना हो, और शायद थोड़ी आसानी हो जाए.

अभी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली उसके पेट में जा रहे थे। पहले से कम दर्द था मगर था। बहरहाल उसने ऑर्डर लिया और फिर ऑर्डर देने के बाद पार्किंग लॉट में वेट करने लगी कि कॉल आएगी, मैं ऑर्डर लेने जाऊंगी, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। उसके बाद उसके जो मेन डॉक्टर थे, लाइक हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं, उन्होंने कॉल करी और हाल चाल के लिए कॉल करी। पर मैकिन्ज़ी ने उनसे कहा, डॉक्टर साहब अब मुझे ना एक सवाल पूछना है आपसे, मुझे अफ्रीका में जाना है, वहाँ पे मुझे वॉलंटियरिंग करने जाना है, आप प्लीज़ क्लियरेंस दे देंगे क्या मुझे? डॉक्टर ने कहा, मैकिन्ज़ी क्या मजाक कर रहे हो, तो यू आर इन पेन, यू रियली वॉन्ट टू गो, सो प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर साहब प्लीज़। मैंने कहा अच्छा, लेट मी थिंक अबाउट इट। इतने में डॉक्टर ने कहा ठीक है, ठीक है ठीक है, जाओ। मैकिन्ज़ी वॉज रियली रियली हैप्पी। उसने फ़ौरन के फ़ौरन अपना फ़ोन काटने के बाद पूरे जो उसने ऑर्डर दिए थे वो उठाए और वहां सीधा गाड़ी में बैठी और झूमती हुई गई। अब कहानी को आगे बढ़ाता हूं। दो साल बाद 2014 में मैकिन्ज़ी की मॉम जोएन एक हाइक पर गई थी। उनकी मॉम जोएन और उनके हस्बैंड वेन दोनों हाइकिंग कर रहे थे सियरा नेवाडा माउंटेन्स में, और दोनों के दोनों एक टीम के साथ थे। अब ऐसे में क्या हुआ, जवान जो थी वो धीरे धीरे चल रही थी और सामने उनके हस्बैंड वेन जो मैकिन्ज़ी के फादर हैं वो सर पे ठंडा ठंडा पानी डाल रहे थे क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। जवान इसलिए पीछे रह गई थी क्योंकि उनके साथ एक बंदा चल रहा था और ये बंदा खुद एक डॉक्टर था। उसे पूरी की पूरी उन्होंने कहानी बताई कि सर ऐसा है मेरी बेटी के साथ, ये हो रहा है, आप कुछ बताइए। अब ये जो फेलो हाइकर था और साथ में डॉक्टर भी था, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एट सैन फ्रांसिस्को वहाँ पे काम करता था और इनका डिपार्टमेंट था मुश्किल से मुश्किल कॉम्प्लेक्स मेडिकल केसेस को देखना। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी बेटी ना साउथ अफ्रीका में है, अभी वॉलंटियरिंग कर रही है, अभी मई में ग्रेजुएट हुई है 2014 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर ने बोला आपकी बेटी शी इज़ वेरी इंप्रेसिव, अभी भी शी इज सर्विंग, वाओ बड़े इंप्रेस हुए वो। एक काम कीजिए, मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि कांटेक्ट करे, आप नंबर दे दीजिएगा। जॉन वाज रियली रियली हैप्पी। जॉन को एज अ मदर उन्हें लगा कि चलो 5 सालों में शायद शायद इस बार इस बीमारी का इलाज मिल जाए। ये कौन सा दर्द है जो 5 सालों से सॉल्व नहीं हो रहा है। वो फौरन हाइकिंग के बाद कार में बैठी और बेटी को कॉल लगाई और बताया सब कुछ कि बेटा शायद शायद इस बार कुछ इलाज मिल जाए। कुछ हफ्तों के बाद कुछ हुआ। एक मेडिकल स्टूडेंट थी जिसका नाम था जेसिका गोल्ड। जेसिका एक प्रोफेसर के साथ बैठी हुई थी जिन्होंने जुआन से बात करनी थी और इन लोगों ने वीडियो कॉल लगाई सीधा मैकिन्ज़ी को जो अफ्रीका में सर्व कर रही थी। अभी जेसिका बहुत नर्वस थी, वो खुद एक फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट थी, वो क्या इलाज ढूंढेगी मैकिन्ज़ी का। मगर फिर उसने बातें चालू करी। उसके सामने जैसी मैकिन्ज़ी आई, बहुत ही पतली लड़की, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था भी बस कभी भी बेहोश हो जाएगी, ब्राउन बाल और मैसी बन बनाए हुए थे। जेसिका वाज इम्प्रेस्ड कि यार क्या लड़की है ये, सब कुछ भुला के लोगों को सर्व कर रही है। जेसिका वाज रियली रियली इंस्पायर्ड। उसने कहा यार जो दुनिया के लिए इतने कर सकती है, मैं उसके लिए क्यों कुछ नहीं कर सकती, आई विल डेफिनेटली ट्राई। महीने बाद ढूंढते इलाज, जेसिका वॉज फ्रस्ट्रेटेड। उसने हर रीडिंग रिसर्चिंग हर मेडिकल डेटा हर चीज को ढूंढ निकाला खंगाले, लेकिन कोई इलाज नहीं मिल रहा था। उसने बोला प्रोफेसर आई एम रियली रियली सैड, उस लड़की की मुझे मदद करनी है, मैं क्या करूं। प्रोफेसर ने कहा देखो दोबारा देखो उन रिपोर्ट्स को जिसको उसने दिखाया। जेसिका ने बोला प्रोफेसर पर इतने टॉप डॉक्टर्स देख चुके हैं, ये पैसे वाले लोग हैं, सबने देखा है, बड़े से बड़े डॉक्टर ने, वो क्या गलती करेंगे जो मैं पकड़ लूंगी। मगर फिर जनवरी 2015 में मैकिन्ज़ी अपने घर पे थी नेवाडा सिटी में, उसे एक कॉल आई और इस बार कॉल करने वाला जो शख्स था उसका नाम था डॉक्टर क्रिस्टोफर स्केली। ये चीफ थे ऑफ वेस्कुलर सर्जरी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मेडिकल सेंटर में काम करते हैं। डॉक्टर स्केली ने बताया कि उनको एक स्टूडेंट ने जेसिका उसने कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट करी कि मैं तुम्हारा केस देखूं और मुझे लगता है कि तुम्हारे केस को सॉल्व करने में मजा आएगा। 6 सालों से किसी ने भी इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी, जिन्होंने भी करी टॉप डॉक्टर्स ने, सबके सब फेल हुए। ये सुनकर थोड़ी बहुत राहत मिली थी मैकिन्ज़ी को कि शायद अब सॉल्व हो जाएगा। मैकिन्ज़ी ने कहा सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आती हूँ फ्लाइट पकड़ के। 4 हफ्तों के बाद मैकिन्ज़ी डॉक्टर स्केली के ऑफिस में थी, नर्वस थी, एक्साइटेड थी।
छह सालों में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, ये सब जानने के लिए सबसे पहले जो डॉक्टर ने कहा वो ये था कि बेटा तुम्हें जितने भी डॉक्टर्स ने दिखाया है, जो तुम्हें बताया है, सब गलत है। साइकोलॉजिकल परेशानी नहीं है, ये फिजिकल है और ये चीज तुम्हारे साथ बचपन से है। ये सुनकर मैकेंजी वाज क्राइंग कि फाइनली किसी के पास जवाब तो है देने के लिए। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें एक रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसका नाम है मीडियन आरू लिगामेंट सिंड्रोम, शॉर्ट फॉर्म में मोल्स। उन्होंने बताया कि मीडियन आरू लिगामेंट ये एक बैंड ऑफ टिश्यू होता है जो आपके गले में से निकलकर, ये इसकी जो मसल्स होती हैं डायफ्राम से निकलकर ये आगे जाती है, मतलब आपकी सांस जहां से आप लेते हैं और आपके दिल तक कनेक्ट होती है। और जिसको भी बीमारी होती है ये बैंड ऑफ टिश्यूज गलत जगह पे होते हैं, मतलब दिल से कनेक्ट होने के बजाय दिल के ऊपर से निकल जाते हैं, देसी भाषा में समझा रहा हूं, ऊपर से निकल जाते हैं और उस आर्टरी को, उस नस को दबा देते हैं जिससे खून पेट को मिलता है। अब पेट को खून नहीं मिल रहा है इसलिए वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और इसलिए इंटेंस पेन हो रहा है। जेसिका ने डॉक्टर साहब को कन्विंस किया था कि दोबारा देखें और फिर मार्च 18, 2018 ढाई घंटे की सर्जरी चली और अगले ही दिन सर्जरी की जब होश आया तो पहली मर्तबा इन सो मेनी इयर्स, इतने सालों बाद खाना उसके सामने रखा हुआ था और कहा गया कि अब खा के देखो। स्क्रैम्बल्ड एग्स थे और उसने चबाया और खाया और मैकेंजी के आंसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि खाने के बाद कोई भी दर्द नहीं हुआ, किसी किस्म का पेन नहीं हुआ एंड शी कुड ईट आफ्टर सो मेनी इयर्स, शी रिकवर्ड। मैकेंजी के पेट को आदत नहीं थी खाने की तो रिकवर होने में थोड़े हफ्ते लगे मगर फाइनली शी रिकवर्ड। शी अटेंडेड मेडिकल स्कूल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन इन सिएटल और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, इतने टॉप डॉक्टर्स गलती कर रहे थे वो डॉक्टर स्केली ने तुरंत पकड़ी। लेकिन सिर्फ डॉक्टर स्केली की मेहनत नहीं थी, इसमें एक लड़की का बहुत बड़ा हाथ था, जेसिका। ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर एंड उन्हें पता लगा कि डॉक्टर्स जो पहले वाले थे टॉप डॉक्टर्स, उनको भी इस चीज के बारे में पता लगा मगर उन्होंने इग्नोर कर दिया क्योंकि शायद उन्हें लगा कि कुछ और ही है। बट ये कंडीशन कभी भी किसी को भी हो सकती है एंड ये कंडीशन ने उसे इतने सालों तक, यूं समझ लीजिए कि जबरदस्ती भूखा रखा। सो दिस वॉज द केस विच वॉज वेरी वेयर्ड। और इस केस के लिए बताना चाहूंगा, आफ्टर आई केम टू ऑफिस इसकी तैयारी के लिए आई कॉन्टेक्टेड द मेन डॉक्टर जिनसे मेरी बात हुई, डॉक्टर क्रिस्टोफर स्केली, एंड उन्होंने इस केस में मेरी मदद करी। सो डॉक्टर, इफ यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ बिकॉज आई सेंट यू द लिंक, सो इफ यू आर ट्यूनिंग टू दिस स्टोरी राइट नाउ, मिस्टर स्केली, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फर्दर इन्फॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइडेड एंड आई होप दैट आई कुड वन डे एक्चुअली नरेट और सेंड दिस स्टोरी टू यू। सो आप, इन्होंने बताया डॉक्टर स्केली ने कि देर इज दिस डॉक्टर अरुण कुमार उनके यहाँ पे, सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर अरुण टू नरेट दिस होल स्टोरी टू यू एंड यू कैन गिव मी अ फीडबैक। सो ये उनके लिए मैसेज था, अब आपके लिए कहानी आपको मिल चुकी है। 666-22-107 ये नंबर है, ये कहानी किसी के काम आ सकती है तो आप कोशिश कीजिएगा कि औरों तक जरूर जरूर पहुंचाएं। बाकी ऑल योर्स। 666-22-107

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: भाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक मेडिकल स्टोरी। फिलहाल 6:11 हो चुके हैं, आप बताइएगा आपको आज का किस्सा कैसा लगा। इसमें बहुत सारे मेडिकल टर्म्स थे, तो जो जितने भी मेडिकल फील्ड्स हैं मैं माजरा चाहता हूँ अगर मुझसे इधर उधर हुआ मामला। व्हाट आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं जितना बता सकूँ उतना बताऊँ। एंड प्लीज़ आपके भी फीडबैक बड़े ज़रूरी है। बाकी आपने जिन्होंने कहानी सुनी है बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसी लगी, बिकॉज ये ऐसी रेयर कंडीशन है जो हमारे यहाँ भी हो सकती है मगर पीपल वुड नॉट फिगर इट आउट। समझ रहे हैं आप, ये मेरे लिए भी नई चीज़ है और मैं तो डॉक्टर भी नहीं। डॉक्टर साहब जो जितने सुन रहे हैं उनका तो भाई मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो ज़रूर बताएं कि ऐसी कंडीशन कभी उन्होंने देखी। एक कॉल उठा लेता हूँ फिर गाना। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी, भाई बताइए।
2: भाई ये बस मिस हो गया, ट्विस्ट यार मिस हो गया भाई।
1: नहीं भाई कोई ट्विस्ट नहीं,
2: मैंने स्पेशली मैसेज किया है।
1: अच्छा ओके ओके,
2: स्टोरी भेजिएगा लाजमी। वो असल में ट्विस्ट नहीं था लेकिन बात कहने की है, वो मेडिकल का जो सीन था उस बच्चे ने जितनी देर बर्दाश्त किया है। ठीक है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है कि ठीक है यार बस सही है चल रहे हैं, कुछ नहीं होता, खैर है थोड़ा बहुत दर्द ही तो है, तो ये चीजें नहीं समझ में आती बहुत बार।
1: हाँ क्योंकि मुझे लगता है हमारी तरफ अगर ऐसा कुछ होगा तो पता नहीं लोग ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ काबिल नहीं है, हमारे यहाँ तो उल्टा बहुत काबिल लोग हैं, बट पता नहीं कि हमारी तरफ क्या इतनी मेहनत हो पाएगी इस कंडीशन पे या नहीं। आई डोंट नो, डाउटफुल है थोड़ा सा।
2: बट वो यही कहानी है ना कि हम लोग इतना ध्यान नहीं देते इन चीजों में। खैर उसकी तो कंडीशन बहुत, आपने बताया कि 2-3 साल 4 साल तक उस बच्ची ने बर्दाश्त किया, उसकी हिम्मत थी। और यार बस वो मैंने वो सुननी है भाई,
1: मैं भेजूंगा ना भाई,
2: पैसे लाजमी भेजना भाई।
1: नो प्रॉब्लम भाई, जरूर भाई अभी भेजूंगा ना कुछ
2: देर में। मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था, मतलब अभी अभी स्टोरी मुकम्मल होगी।
1: नहीं नहीं,
2: मेरे को ऑर्डर आया हुआ था और मैं ऑर्डर उठाने नहीं जा रहा था।
1: कोई मसला नहीं मेरी जान, मैं भी भेजता हूँ आपको, कोई मसला नहीं, फौरन भेजता हूँ आपको। आपने मैसेज किया था ना वैसे मुझे अभी आज?
2: हाँ मैंने अभी भी मैसेज किया यार। असल में ना वो जो दूसरा मोबाइल था मेरा वो उसका ना स्क्रीन डैमेज हो गई।
1: ओहो चलो कोई,
2: और ये मेरे पास पहले वाला मोबाइल पड़ रहा था तो ये मेरा मैं अपना पाकिस्तानी नंबर इसमें चला रहा था।
1: अच्छा,
2: तो वो इसलिए हम नंबर भी चेंज होकर आ रहा है, वो पहले वाली कहानी उसी में सेव पड़ी है।
1: डन डन डन, मैं भेजता हूँ भाई आपको, तुरंत भेजता हूँ कुछ देर में। ठीक है,
2: आपकी कहानियां ना मैं स्पेशली रात में फ्री होता हूँ ना या लंबे सफर पर निकलता तो मैं स्पेशली लगा के सुनता हूँ कि यार क्या क्या चीज सीखने को मिल सकती है।
1: थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत बहुत सारा प्यार मेरी जान। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट।
2: बड़ी मेरे भाई खुश रहे,
1: बहुत प्यार भाई, मैं आप भी खुश रहे मेरी जान।
2: बहुत शुक्रिया,
1: वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और भाई के बाद एक मैसेज आया, कभी इस्लामिक स्टोरी भी सुनाना। भाई देखो उसका एक टाइम एंड जगह होती है, कुछ मैटर होता है, इस्लामिक स्टोरीज में क्यों नहीं सुनाऊंगा, बट आई थिंक उसका कोई टाइम वाइम होता है। अब मैं आसपास उसके गाने चला रहा हूँ, मासी मदाज भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो थोड़ी सी समझ रहे, दैट इज़ नॉट द राइट टाइम। बट मैंने सुनाई है भाई इस्लामिक कहानियाँ, इफ़ यू गो बैक इन टाइम और आप अगर रमदान में सुनेंगे या फिर कहीं जाएंगे तो हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई है, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। यू नो मेरे दिल से वो मुझे लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, सो उसके लिए प्रॉपर टाइम हो, बैठ के आसपास ना गाने चल रहे हो तो सब सही रहता है, दैट इज़ द ओनली पार्ट। बाकी मैसेज भाई ऐसे ऑर्डर टाइम पर उठाए, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। जकी भाई थैंक यू सो मच। एक मैसेज, वेरी गुड, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर्स। सैयद फरोज भाई थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि कहानी लोगों के काम आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल करीम साहब, थैंक यू। और एक भाई ने मैसेज किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वाली स्टोरी चाहिए। अच्छा वो वाली भी चाहिए, वाली भी चाहिए, मिल जाएगी भाई, दोनों स्टोरी मिल जाएगी। यार भाई प्लीज़ स्टोरी भेजना, भेजूंगा भाई नो प्रॉब्लम। दिस वॉज अ वेरी पेनफुल स्टोरी, वसीम भाई लिखते हैं। वसीम भाई थैंक यू। नदीम भाई को एक और कहानी याद है ऐसी वाली, जी मैंने पहले ऐसी कहानी सुनाई थी। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, ये फराज भाई

0: हाँ जी भाई साहब, डॉक्टर साहब ने सीधा अमेरिका से तारीफें दे दी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर क्रिस्टोफर स्केली। एनिंग मैसेज आया है, सलाम जामिया वाले निजबान निजबान, थैंक यू सो मच। वालकम वालेकुम सलाम। यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, यूसुफ भाई ने बताया है सिमिलर किस्सा। उन्होंने कहा है कि कबीर बहुत इमोशनल एंड दुख भरी स्टोरी थी, बट एंड में एवरीथिंग वॉज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने बताया है सिमिलरली, लिखते हैं मेरे कज़न को कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, वो यहीं कतर में था, अभी इंडिया में है। उसका वजन बहुत कम हो गया था, 80 किलो से ड्रॉप होके 55-56 के करीब आ गया था। एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, खाली ही पेट में बेहद दर्द स्टार्ट हो गया था, स्पेशली वीट की रोटी ये सब खाने के बाद। कुछ दालें और सम स्पेसिफिक फूड, दो तीन दिन खाना नहीं खा पाता था दर्द की वजह से। इंडिया जाके स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया, ट्रीटमेंट किया और छोटी से एब्डोमिनल सर्जरी, इंटेस्टाइन दब गया था, सर्जरी से ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज़ व्हाट सिमिलरली ये था यूसुफ भाई, इसलिए मैंने कहानी भी सुनाई। हो सकता है कि यू नो पेशेंट्स, अगर किसी को खुदा ना खासा ये है तो वो खुद भी अवेयर रहेंगे इन चीज़ों को लेके। मोहम्मद भाई थैंक यू सो मच। और एक हमारे भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो भाई, लव यू भाई, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैदराबाद। आपको सुन के भाई वाली फीलिंग आते हैं, मेरा भाई बहुत सारा प्यार है हैदराबाद को, क्या सलमान भाई। तो बस मैंने मैसेज किया है, सुपर्ब स्टोरी कबीर भाई, नो वर्ड्स, फाइनली शी गॉट रिड ऑफ दैट पेन अल्हम्दुलिल्लाह। द स्टोरी ट्रिगर्ड माई रिसेंट इनकाउंटर्स ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड वट एवर हैपेंड फर्दर विद सर्जरी एंड ऑल। रियली ह्यूमन बॉडी इज सो मच कॉम्प्लेक्स, वी टेक आर हेल्थ सो लाइटली। आई होप आर साउथ एशियन कंट्रीज टू गेट मोर एंड मोर डेवलप्ड इन द हेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एफर्ट्स। सैडली मैंने एक बहुत ही, जो मैंने आपको मैसेज भी किया था, ट्रूथ इज कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, बट द ओनली प्रॉब्लम इसके जो बहुत ज़्यादा माहिरीन मेडिकल के हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो हमारे यहाँ उनको मौका नहीं मिलता है, हमारे यहाँ कुछ ना होता रहता है। वरना बाहर भी देखें तो भाई लोग पूछते हैं स्पेसिफिकली कोई इंडियन पाकिस्तानी कुछ और देसी डॉक्टर है क्या। एक मैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, हमेशा की तरह बहुत बहुत कमाल की कहानी, खुश रहे। उस्मान भट्टी साहब ने मैसेज किया, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अब्दुल करीम भाई कह रहे हैं, कल कौन सी बर्फ गिर रही थी अब्दुल भाई। वालेकुम सलाम दीपक भाई, एक मैसेज है रमेश यादव का, थैंक यू सो मच। एंड डीपी भाई ने मैसेज किया, थैंक यू दीपक भाई। एमल भाई ने मैसेज किया, भाई कल मेरी अपॉइंटमेंट है HMC में, काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल द लिसनर्स फॉर प्रेयर्स। एमल भाई की कल अपॉइंटमेंट है भाई अहमद मेडिकल कॉर्पोरेशन में, इनके लिए सब दुआ करें भाई। आमीन। क्या हुआ साथ, खैरियत से, सब ठीक तो है। एक मैसेज, कबीर भाई मैंने अभी ज्वाइन किया भाई, थोड़ा सा लेट ही हैं आप, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है कुरैशी भाई। देन अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग इकबाल भाई, किदा है भाई। एक मैसेज है, भाई मैं रिक्वेस्ट कार नहीं है मेरी जान, रिक्वेस्ट कार 4 बजे से है, फजील भाई को बोलिएगा एक दिन वो योगा लगाने जरूर चलाएंगे। एक मैसेज है, मेरे कज़न है, उसके बेटे को जेनेटिक डिसऑर्डर है, वैक्सीन कॉस्ट क्या लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, एक डिसऑर्डर वैक्सीन की कीमत है 11 मिलियन रियाल। अफजल उस्मानी भाई मैं सही पढ़ रहा हूं क्या, तोते फायर हो गए भाई, एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई।
0: अल्हम्दुलिल्लाह कमाल भाई, आप सुनाए क्या हाल है।
1: अल्लाह का करम है भाई, कहानी सुना दिए
0: जी भाई, सुना दिए भाई, आप सुनाए।
1: आज मैं लेट हूं भाई।
0: कोई बात नहीं भाई, मिलेगी ना आपको कहानी, कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं। कहाँ घूम रहे कमाल भाई आज, क्या चल रहा है।
1: अभी इस वक्त मैं हूँ खरतियात के पास भाई, बस वही मैडम की शॉपिंग, कभी ये बुटीक, कभी उधर, कभी इधर,
0: हाँ, हाँ, वही चल रहा है बस। तो आप कब छुट्टी
1: बांटने का है, कभी कुछ करना,
0: छुट्टी पे कब जा रहे हैं वैसे आप।
1: ये महीने में शायद अगले महीना 1 या 2 तारीख तक।
0: अच्छा ओके, मुंबई में तो बारिश शुरू हो चुकी
1: है हमारी मैडम कहीं। हाँ मुंबई में तो अभी थोड़ी हल्की फुल्की आज बारिश हुई है।
0: अरे मुंबई वालों मत जलाओ, मत जलाओ, मुबारक हो बारिश वहाँ की।
1: मेरे जाने तक बारिश हो जाएगी भाई, गए साल में जो मालूम है, जो गया था मई में, मई में बारिश स्टार्ट हो गई थी
0: भाई। आप जाएंगे तो फिर तो आप बाहर ही निकल पाएंगे, मुंबई जाके भी बारिश में घर पे रहना पड़ेगा।
1: नहीं भाई,
0: निकल जाते
1: मुंबई की बारिश भाई, कितनी भी बारिश हो कोई टेंशन नहीं रहता।
0: अरे ये हुई मुंबई वाली,
1: एंजॉय मुंबई की बारिश में उतना एंजॉय कहीं नहीं है।
0: ये देखो निकला अंदर का जागरूक बम्बैया। अच्छी बात है, एंजॉय कीजिएगा आप।
1: मैं मुंबई में ज्यादा बारिश होती है उसी टाइम पे चले जाओ माथेरन।
0: मैं हाँ मैंने सुना, इनफैक्ट आपको पता है, इत्तफाकन शो से पहले मैं और हमारे दो भाई हैं शहबाज भाई और शकीब भाई, वो दोनों मुंबई के हैं, हम इसी बारे में बात कर रहे थे, सेम टॉपिक बात कर रहे जो अभी आपने बोला, तो डिस्कस कर रहे थे। जाऊंगा मैं, घूमूंगा उस तरफ में इंशाल्लाह।
1: बहुत अच्छा भाई, हिल है बहुत अच्छा, और बारिश में जाएंगे तो ऐसा लगेगा बादल आपके साथ उड़ रहा है।
0: यही फीलिंग चाहिए मुझे, आज कुछ तूफानी करते हैं। पर ठीक है कमल भाई, आपको मैं कहानी भेजता हूँ कुछ देर में, सुनिएगा टाइम निकाल के।
1: ठीक है भाई, कहानी भेजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ अभी गाड़ी में बैठे बैठे, वो भी सुन लूंगा।
0: डाने डाने
1: आपका शो खत्म होने के बाद।
0: जज़ाकअल्लाह भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और कमल भाई के बाद एक मैसेज आया, भाई मुंबई की बारिश का अलग ही स्वाग है, ये तो है, पर क्या मैं दिल्ली का हूँ ना, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, मैं तो नहीं कर रहा एक्सेप्ट। एक मैसेज है भाई।

0: आज तो ऐसे लग रहा है बाहर निकलने वाला टास्क इतना बड़ा लग रहा है ना, इससे आसान तो टास्क होता है बंदा कोयलों पे चल ले।
1: भाई मैं तो खुद, हमें तो चश्मे लगे हुए हैं, हमें पता है बाहर निकलती ऐसी भाप लगती है ना कि कहाँ आ गए सबको धुंधला धुंधला वही वाला सीन है भाई अभी तो, करंटली इन द सेम सिचुएशन। तो क्या घूम रहे हैं काबा जी, कहाँ बाहर निकले आज?
0: चश्मों की बात से याद आया कबीर भाई, अगर यार सोचो कष्ट आया है, चश्मों के ऊपर वाइपर होते तो कितना अच्छा था यार,
1: बहुत बेहतरीन काम हो जाता भाई। ये मैं बता रहा हूँ आने वाले कल में होगा, देख लेना कोई ना कोई अकलमंद ये सच में लॉन्च कर देगा, पर ये उन जगहों पे लॉन्च जरूर होगा जहाँ पे ऐसे हालात होते हैं। गर्मियों में तो मैं जरूर पहनूंगा वाला चश्मा, वाइपर वाला, मेरा तो मन
0: ही होना भी चाहिए कबीर भाई। पता क्या है यार, आप कितनी बार फोग को साफ करोगे, उसको फोग बोल लो, स्मोग बोल लो, जो मर्जी बोल सकते हो आप, आप करोगे वो, फिर गाड़ी से बाहर निकलोगे फिर वही मसला।
1: अरे सोल्यूशन निकालिए गाबा जी। तो आज क्या प्लान है?
0: आज भाई मैंने फर्स्ट टाइम आपकी स्टोरी सुनी है कबीर भाई।
1: ओके ओके
0: जी, फर्स्ट टाइम सुनी यार कबीर भाई। मैं ये स्टोरी सुन के दिमाग में बात आ रही थी
1: जी,
0: भाई जिस बंदे का पेट सही है ना, पेट फ्रेश है, वो जिंदगी का सबसे खुश नसीब बंदा है।
1: हाँ बेशक, ये बात तो सही है, ये बात तो सच है। हाँ।
0: जी क्योंकि कबीर भाई आपकी जो तंदुरुस्ती का पता चलता है ना, वो जैसे आप सुबह जाते हो ना फ्रेश होने के लिए, जितनी जल्दी आप फ्री हो जाते हो उतनी जल्दी पता चल जाता है कि आप हेल्दी हो।
1: हाँ वो लोग कहते ना कि पेट से सारी एक तरीके से घर है बीमारियों का, यही से ही सबसे बेस्ट रहे, सही रहे तो पूरी की पूरी बॉडी ठीक रहती है।
0: पर ये अगर हम लोग जैसे इसके पास भी कभी,
1: हाँ डॉक्टर के पास भी, और ये भी नहीं, आप बोलिए बोलिए, मैं जो ये कह रहा था मतलब ये वाली कंडीशन भी, जैसे इसकी बहुत रेयर कंडीशन थी कहानी में, ये भी बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है, अल्लाह ना करे किसी को, बट या इसीलिए भी बोलिए
0: जी। तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो ये चीज जरूर पूछते हैं, अभी आपको कब्ज तो नहीं है, क्योंकि उनका पूछने का यही मकसद होता है ना कि भी आपका पेट सबसे पहले या नहीं है,
1: सबसे पहले यही सवाल किया जाता है, करेक्ट। तो यही वाला सीन है। पर काबा जी बाकी गाने भी सुनिएगा, मैं आपको भेजूंगा, आज की तो मेडिकल मिस्ट्री थोड़ी सीरियस है लेकिन बाकी भी जॉनरास टच किए जाते हैं, मैं भेज दूंगा आपको इंशाल्लाह, आप जरूर सुनिएगा, बताइए कभी एक दुकान।
0: यार कबीर भाई आज ना आपकी कहानी सुन के मैंने महसूस किया भी पूरा बंदे को फोकस करना चाहिए अगर कहानी सुननी है तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: पूरा माहौल बन जाता है ना, जैसे थिएटर में एक माहौल सा बन जाता है ना, बंदा स्टोरी देखता है। हाँ क्योंकि आपकी कहानी है ना भाई साइकी पे, जब आप सुनोगे तो बिल्कुल पूरा असर करती है साइकी पे, तो उसको पूरा कंसंट्रेट होके सुनना चाहिए।
1: थैंक यू सो मच,
0: तभी बेस्ट लगेगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, और अभी अजान का वक्त है इंशाल्लाह गाबा जी, फिर मैं आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह, है ना?
0: ओके भाई,
1: पर बहुत शुक्रिया भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार, थैंक यू सो मच। तो भाई अजान के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होती है, जाइएगा नहीं।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है।
3: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।

0: हाँ जी, मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था,
1: मिस्टर पुत्तर,
0: मिस्टर पुत्तर,
1: बेबी लव।
0: आज आज क्या है कि नहीं, दिन की बात नहीं कर रहा मैं, आज मौसम जो है ना बहुत ही अलग ही किस्म का हो गया, अपनी पे आ गया है। अभी बहुत दिनों से अपनी पे आया नहीं था, अब आ गया है। अभी क्या है, 29 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम 42-45 पार। लेकिन मेन मुद्दा है भाई ह्यूमिडिटी का, ये ह्यूमिडिटी चढ़ रही है भाई, बढ़िया वाली, बिल्कुल बढ़िया वाली जा रही है। आज 60% पे है और रात होते होते इट कैन क्रॉस, मतलब इट कैन ईदर क्रॉस 70 और बी क्लोज टू 70। तो अगर चश्मे पे, जैसे मैंने चश्मे पहना हुआ है, इस पे और गाड़ी के शीशों पे भाप आ जाए, जैसे हमारे अब्दुल करीम साहब ने मैसेज किया है, तो ये तो रहेगा भाई। मुबारक हो गर्मी, मुबारक हो। हाँ जी, तो 6:43 कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास। एक भाई लिखा है, भाई आरजे बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? भाई सबसे पहले ग्रेजुएशन, पहले मास कम्युनिकेशन चाहिए होता था, अभी क्या ग्रेजुएट भी हैं तो चलेगा, मगर उसके बाद चलेगा का मतलब ये नहीं कि कुछ भी चलेगा। उसमें क्या होता है, लोग एक बात को लेकर बड़ी गलत फहमी, लोगों को लगता है कि सिर्फ आवाज़ अच्छी होना ही सब कुछ होता है। आवाज़ अच्छी होना सब कुछ नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। आप एक बात को कितने तरीके से, कितने अच्छे से कह सकते हैं, कितनी क्रिएटिवली कह सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए आरजे बनने की रिक्वायरमेंट ऐसा सच कुछ नहीं है, रिक्वायरमेंट यही है कि आप ओपिनियन होना चाहिए आपका। एक तो मतलब ओपिनियन ऐसे नहीं कि हर चीज़ में, ये नहीं कि अरे खेल खेल में तो होता रहता है, बट यू शुड हैव योर ओन ओपिनियन। आपकी पर्सनालिटी रेडियो पे जानी चाहिए लोगों तक कि आप कैसे हैं। तीसरी चीज़, आपकी क्रिएटिविटी बहुत मायने रखती है, आपकी वोकैबुलरी, डिक्शनरी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी नहीं है तो आपके फिर कहने का अंदाज़ बहुत शानदार होना चाहिए। तो जो लोग ये मानते हैं अभी तक कि आवाज़ बड़ी अच्छी है और आरजे बन जा, आवाज़ अच्छी होने से कुछ नहीं होता, वो एक एड ऑन है, समझ रहे हैं आप, उसका फायदा ज़रूर है पर वो सब कुछ नहीं है भाई। आई होप दैट हेल्प्स। तो 6:39 घड़ी में हो गए हैं। एंड एक चीज़, एक वेरी सीरियस चीज़ है, मैं म्यूज़िक बंद करके बताता हूँ। तो अफजल उस्मानी भाई ने मुझे केस बताया कि जहाँ पर एक बच्चा है जिसे कज़न का ही बेटा, उन्होंने बताया कि उसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है एंड 11 मिलियन कतरे रियाल की डोज है। एंड ही शेयर्ड दिस विद मी, सब दुआ करें उनके लिए, बिकॉज ऐसी बहुत ही रेयर कंडीशन है, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यही नाम है ना उसका, ये नाम है उस क्या कहते हैं बीमारी का, इस डिजीज़ का। एंड दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट, अभी भी दे आर अलाइव एंड हेल्दी, अभी तक तो चल रहा है मामला। उन्होंने बोला है इस कंडीशन में ही कांट ग्रो, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। पर प्लीज़ दुआ करें इस बच्चे के लिए, अल्लाह ताला इसको सही रखे बस, और कुछ ना कुछ जल्दी से कुछ जुगाड़ उगाड़ हो जाए। आई रियली होप सो। अफजल उस्मानी भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस विद मी। बाकी राशिद भाई, वालेकुम अस्सलाम। और ज़रा मैं ट्रैफिक का बता दूँ, सीरिंग रोड की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक मिल सकता है। एंड इसके अलावा एक भाई ने शेयर किया था कि भाई मैं सरवा रोड पर हूँ, ट्रैफिक यहाँ पे तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन

गर्मी बहुत हो रही है। अरे तो शीशे डाउन करके गाड़ी क्यों चला रहे हैं यहाँ, पहले तो ये बता मुझे, क्या एसी काम कर रहा है ना, तो गाड़ी के अंदर गर्मी क्यों लग रही है? अच्छा हाँ देखा, मैं गई तो कहूँ, उन्होंने फोटो मुझे भेजा, ये भाई ने नाम नहीं लिखा है लेकिन उन्होंने फोटो मुझे भेजा और गाड़ी के शीशे खुले हुए हैं, तो कह रहे हैं एसी काम नहीं कर रहा। मेरे भाई मैं तो निकलता ही नहीं घर से अगर ऐसा होता तो, ये तो बहुत ही खतरनाक है। एक मैसेज आया, मिस टुडेज यस्टरडे स्टोरी, प्लीज सेंड मी इफ पॉसिबल। ऑफकोर्स आई विल सेंड। नो ट्रैफिक पाजी, किधर नो ट्रैफिक? ये तो आप जहाँ जा रहे हैं ये किस तरफ ट्रैफिक नहीं है, ज़रा मुझे जगह बता दीजिएगा प्लीज़। अच्छा रयान रोड की तरफ ना, ठीक है वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है भाई, खाली खाली रोड पे जा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका नाम मुझे अभी तक नहीं बताया, मुझे अपना नाम तो बताइए, क्योंकि आपने जो व्हाट्सएप पे नाम लिखा है दैट इज़ डी ट्रैक, आई डोंट नो योर नेम मेरे भाई, जब से आपका नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइएगा ज़रूर। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जसविंदर जी, वीर जी और क्या हाल है। एक और मैसेज, शेख नाम है आपका, शेख, अच्छा ओके, थैंक यू सो मच शेख भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई कहानी ज़रूर भेजिएगा, मुझसे मिस हो गई है, मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली नहीं, ट्रैफिक अपडेट दीजिएगा, कुछ देर में वापस आके बात करेंगे। 666-22-107 पर रहो बच के जस्ट मानक। 6:40

एक भाई साहब ने मैसेज किया है और उनका कहना है, नहीं भाई बता रहे हैं एक्चुअली, मैं रियली सॉरी, तो उन्होंने बताया कि आपकी बताई मैंने एक सीरीज देखी फ्रॉम अभी चल रही है, पहले सीजन पर हूँ और कुछ बताइए सेम ऐसा। सेम ऐसा तो नहीं है, मतलब और बहुत सारी सीरीज है आप देख सकते हैं, मैंने उस दिन बताया था ना वो इफ विशेस कुड किल, वो कोरियन सीरीज है, वो आप देख सकते हैं। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम बरोद भाई, जिस हिसाब से आपने आरजे बनने की रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, वैसे कोई आरजे नहीं बताता भाई, हेड्स ऑफ टू यू, क्या मैम विल बी सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। नहीं भाई सिंपल हुसैन भाई, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग कहते हैं आरजे बनने की रिक्वायरमेंट क्या है, मगर सिंपल रिक्वायरमेंट यही है कि भाई ये गलत फहमी सबसे पहले अपने दिमाग से उतारिए कि आवाज़ अच्छी है तो आप आरजे बन सकते हैं, ये गलत फहमी है और ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। तो जिसको भी बनना है ना उसको पहले ये बताओ कि भाई ये मत समझना कि आवाज़ अच्छी है तो आरजे बन जाओगे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। यू कैन बिकम एन आरजे विच एवर वॉट एवर काइंड ऑफ वॉइस यू हैव, यू जस्ट नीड क्रिएटिविटी। अगर आपको क्रिएटिविटी आती है, ठीक है, क्रिएटिविटी कैसे हुई भाई, आपकी या तो वोकैबुलरी बहुत शानदार है, ठीक है, डिक्शनरी में आपके भर भर के वर्ड्स हैं जिसे हम हिंदी में शब्दकोश कहते हैं, या आपको एक बात को 10 तरीके से कहना आता है बिना पकाए, ये है बस भाई, आवाज़ लास्ट में वो एड ऑन है बस। हाँ जी, तो क्या मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मिस द स्टोरी, कुड यू शेयर इट, आई विल डेफिनेटली शेयर इट भाई। एक मैसेज है भाई, कोई भी आपकी पसंद है सिद्धू मूसेवाला गाने लगा दो भाई, अभी क्या शो खत्म हो गया शेख भाई, बट जाने से पहले मैं लगा दूंगा, डोंट वरी। एक और मैसेज है, क्या कह रहे हैं ये, इन्होंने फिर से मैसेज करके डिलीट कर दिया। एनीवे, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद अस, आप किसी भी जगह सकते हैं, अगर मुझसे जुड़ना चाहें तो प्लीज़ dohawalakabir.fm107 आप जुड़ सकते हैं, वी कैन कनेक्ट देयर एज वेल। और हमें लाइव सुनने के लिए आप जो है सीधा सीधा वेबसाइट पर आ जाइएगा, अगर आपको लगता है कि आप गाड़ी से निकल चुके हैं, सो urdu radio.qa आ जाओ जी, ठीक है। एक मैसेज, शो खत्म हो गया, टाइप करके रिमूव कर दिया, ये भी हो सकता है। बात तो सही कही आपने कि शो खत्म हो गया, छोड़ो डिलीट करो व्हाट्सएप का मैसेज। अरे भाई ये बात तो सही है, वैसे आपने भी अपना नाम बताया नहीं है अभी तक, मैं बताऊं आपको, ठीक है, क्या है, मुबशिर मुबीन आज, अरे आपका बाकी मैसेजेस कहाँ गए मुबीन भाई, सारे के सारे गायब हो गए, ऐसा क्या किया आपने कि हमारे वालों ने आपके मैसेज डिलीट कर दिए। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपको इंडिया से सुन रहा हूँ, किधर सुन रहे हैं आप, इंडिया में कहाँ से सुन रहे हैं आप, मतलब इंडिया में बैठे हुए सुन रहे हैं आप, ऐसा है क्या भाई जी, बहुत बढ़िया, मौज करा देंगे भाई अगर आप इंडिया में भी सुन रहे हैं तो। बाकी मेरे जाने का वक्त हो गया, आपसे ज़्यादा चाहूँगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, और जो लोग कह रहे हैं हॉरर चाहिए, हॉरर मिलेगी, लेकिन अभी उसमें टाइम है, हॉरर सुनाने के लिए भाई साहब ऐसा है कि बढ़िया कहानी मिलनी चाहिए, मज़ा आए, जैसे पिछली वाली में आया था आपको, वैसी वाली जब तक नहीं मिलेगी तब तक नहीं, बढ़िया मिल गई तो भाई वीकेंड में सुना देंगे, उसमें क्या है। वैसे दूसरा नंबर है दो फोन से, बड़े लोग बड़ी बात है भाई, मैं फिलहाल कुछ देर में आपको कहानी भेज रहा हूँ आज वाले जिनको नहीं मिली है, बट आप मुझे अभी जीत दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह होगी आपसे कल मुलाकात, 5 बजे वापस, 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, दिस इज़ दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। मगर साइन ऑफ करने से पहले भाई प्लीज़ ड्राइव सेफली, एक तो लोग जो हैं जो जोश में आ जाती हैं, और फिर धक्का मुक्की नहीं, प्लीज़ आराम से चलाइए गाड़ी। एक और मेरे पास मैसेज है, वो कह रहे हैं कि कहानी कब आई है, कहानी कब आएगी, बस कुछ देर में आएगी, कमाल हो गया यार, चली गई कहानी भाई कब की। अच्छा ये वही है जो सुबह मैसेज करते हैं उन्हें, आप समझ गया, नाउ आई हैव सम क्लैरिटी, कमाल हो गया, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मां सलामत।

0: सुबह।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और बहुत रेलिवेंट और मॉडर्न स्टाइल एपिसोड। देखें, आज हम बात करेंगे फैशन के एक ऐसे ट्रेंड पर जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है लेकिन उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्वाइटली बहुत बड़ा होता है। मतलब मैं बात कर रही हूँ फास्ट फैशन से दूरी की। चलिए एक रिलेटेबल बात बताती हूँ आपको। देखिए, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं या मॉल में वॉक कर रहे होते हैं। मुझे विंडो शॉपिंग पसंद है, वैसे मॉल जाती नहीं लेकिन जब जाती हूँ तो मुझे विंडो शॉपिंग पसंद है। वैसे ही आप मॉल में वॉक कर रहे होते हैं, मित्रा हर तरफ नए आउटफिट्स, सेल, ऑफर और ट्रेंडिंग स्टाइल्स नजर आ रहे होते हैं। भाई बहुत टेम्पटिंग होते हैं। आप सोचते हैं ये ड्रेस बहुत ही सस्ता है भाई, सेल में लगा हुआ है और स्टाइलिश भी है, क्या करूं, ले लूं। मेरे भी दिमाग नहीं चल रहा था, ले लो ले लो ले लो सफा, ले लो ऑफर में, प्रमोशन में ले लो। फिर नेक्स्ट वीक एक और न्यू कलेक्शन आ जाता है, हाँ ठीक है, और वो पहला ड्रेस वार्डरोब में पहले ही यूज नहीं हुआ होता लेकिन अटेंशन ऑलरेडी नेक्स्ट आइटम पर शिफ्ट हो चुकी होती है हमारी। ये सबके साथ होता है। अब थोड़ा सा रियलिटी से इसे समझने की कोशिश करते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, फास्ट फैशन का मतलब होता है रैपिडली प्रोड्यूस्ड क्लोथ्स जो लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक बनाए जाते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में मार्केट में आ जाते हैं। इस प्रोसेस में प्रोडक्शन स्पीड हाई होती है लेकिन अक्सर औकात क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। और जब कपड़ा जल्दी यूज के बाद डिस्कार्ड हो जाए ना तो टेक्सटाइल वेस्ट बढ़ जाता है। अब इसमें इको स्विच इस सिचुएशन में क्या है मैं आपको बताती हूँ। आइडिया बड़ा सिंपल है, फैशन को माइंडफुल और सस्टेनेबल बनाए ना, मतलब कम लें, बेटर क्वालिटी क्लोथ्स चूज करें और उनको ज्यादा टाइम तक यूज करें। अब बात करते हैं कि भाई देखें कि फास्ट फैशन से दूर रहने का क्या फायदा है। देखिए, सबसे पहला फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाटर एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा यूज करती है और वेस्ट भी जनरेट करती है तो एनवायरमेंट बचेगी उससे। दूसरा फायदा है वेस्ट प्रोडक्शन। जितना कम कपड़ा डिस्कार्ड होगा उतना कम लैंडफिल बर्डन होगा। तीसरा फायदा है मनी सेविंग। क्वालिटी पीसेस लॉन्ग लास्टिंग होते हैं साथियों, इसीलिए बार बार शॉपिंग की जरूरत कम होती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल स्टाइल डेवलपमेंट। आप ट्रेंचेस के बजाय अपनी यूनिक वार्डरोब बिल्ड करते हैं। तो भाई सोचिए, आपके पास 10 सस्ती टी शर्ट है जो 2 या 3 वॉशेस के बाद अपनी शेप और अपना कलर दोनों लूज कर देती हैं, और दूसरी तरफ 3 क्वालिटी शर्ट्स हैं जो सालों तक यूज होती हैं। दोनों सिचुएशंस कंपेयर करें तो सेकंड ऑप्शन ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है ना, इकोनॉमिकल और सस्टेनेबल लगता है कि नहीं। देखिए, दोहा जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में फैशन बहुत फास्ट इवॉल्व करता है। हर सीजन न्यू ट्रेंड्स आते हैं, नई कलेक्शंस आती हैं, सेल्स आती हैं जो कंज्यूमर्स को फ्रीक्वेंट बाइंग की तरफ पुश करती हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इसीलिए यहाँ कॉन्शियस शॉपिंग और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूं जो आप फॉलो कर सकते हैं तो वो ये है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चूज करें, कम आइटम्स लें लेकिन ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग हो आइटम्स, ठीक है। और एक और चीज जो बहुत जरूरी है भाई, ये माइंडसेट फ्लिप है, नीड वर्सेस वांट चेक करें। हर शॉपिंग से पहले अपने आप से पूछें कि क्या ये जरूरत है या सिर्फ एक ट्रेंड है। बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, ट्रस्ट मी। वार्डरोब रोटेशन करें, पुराने कपड़ों को मिक्स एंड मैच करके नए लुक्स क्रिएट करें ना। देखिए, सस्टेनेबल ब्रांड्स एक्सप्लोर करें, ऐसे ब्रांड्स चूज करें जो एथिकल प्रोडक्शन फॉलो करते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोनेशन हैबिट अडॉप्ट करें। जो कपड़े यूज नहीं हो रहे उनको डिस्कार्ड करने के बजाय डोनेट करें। अगर वो अभी भी यूजेबल हैं, और कुछ लोगों का ये होता है कि भाई प्री लव्ड क्लोथ्स होते हैं या आपका दिल भर गया, एनीथिंग, आप उसको कचरे में नहीं फेंक देना। इफ इट्स, अगर आपका है इतना कि वो कपड़ा यूजेबल है तो आप उसे डोनेट करें। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव इस बात का ये है कि फास्ट फैशन इंडस्ट्री दुनिया के लार्जेस्ट एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स में से एक रहती है हमेशा, स्पेशली वाटर यूजेज और टेक्सटाइल वेस्ट के हवाले से। इसीलिए ग्लोबली अब स्लो फैशन का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया जा रहा है, जहां फोकस ड्यूरेबिलिटी, एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी पर हो रहा है। साथियों देखिए, अक्सर हम ये सोचते हैं कि सस्ता है तो भाई ले लो, प्रमोशन है तो भाई ले लो, सेल्स है तो भाई ले लो, लेकिन असल में अगर वो आइटम 2 से 3 बार यूज होकर वेस्ट हो जाए तो भाई वो सस्ता नहीं रहता बल्कि वेस्टफुल डिसीजन बन जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें ना बिहेवियरल चेंज एंगल के बारे में, तो जब आप फास्ट फैशन से दूर होते हैं ना, तो आप अपनी शॉपिंग हैबिट्स को ज्यादा इंटेंशनल बना लेते हैं और आप सिर्फ बायर नहीं रहते, आप शॉपहोलिक नहीं हो जाते बल्कि कॉन्शियस कंज्यूमर बन जाते हैं। तो भाई हमारा इको स्विच बड़ा सिंपल है, फास्ट फैशन से डिस्टेंस बनाएं और सस्टेनेबल क्लोथिंग चूज करें, अडॉप्ट करें। तो भाई आज का चैलेंज ये है कि आज आप अपनी वार्डरोब को चेक करें और देखें कि कौन सा आइटम सच में यूज हो रहा है, और नेक्स्ट शॉपिंग से पहले एक कॉन्शियस डिसीजन लें कि भाई क्वालिटी है या ट्रेंड है, इन दोनों से चूज करें। और अगर आप ऑलरेडी सस्टेनेबल फैशन फॉलो कर रहे हैं तो किसी और को भी इंस्पायर करें ना, ताकि वो शॉपोहॉलिक से सस्टेनेबल शॉपिंग पर आ सके। साथियों, फैशन सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं होता बल्कि सोच का एक्सप्रेशन होता है। जब हम सस्टेनेबल फैशन चूज करते हैं ना, तो हम सिर्फ स्टाइलिश नहीं लगते बल्कि रिस्पॉन्सिबल भी लगते हैं। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है। कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक पे, और ये टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन कल्चर। एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन कल्चर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सोसाइटी में रिस्क लेना, नए आइडियाज एक्सप्लोर करना और बिजनेसेस स्टार्ट करने का एनवायरनमेंट बनाना। विजन 2030 का एम है यूथ और प्रोफेशनल्स को एनकरेज किया जाए कि वो अपने आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करें। जब लोग स्टार्टअप्स शुरू करते हैं तो नए सॉल्यूशंस मार्केट में आते हैं, ये प्रॉब्लम्स को नए तरीके से सॉल्व करते हैं और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करते हैं। इनोवेशन से इंडस्ट्रीज मॉडर्न होती हैं और ग्लोबल कॉम्पिटिशन में कंट्रीज स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस कल्चर को डेवलप करने के लिए सपोर्ट सिस्टम जरूरी हैं, जैसे फंडिंग, मेंटोरशिप, इंक्यूबेशन सेंटर्स। जब एंटरप्रेन्योरशिप को गाइडेंस मिलती है तो उनका सक्सेस रेट और बढ़ जाता है। कतर में स्टार्टअप्स और इनोवेशन हब्स का एक अच्छा खासा एक ट्रेंड है। गवर्नमेंट भी पॉलिसीज और सपोर्ट प्रोग्राम्स के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज कर रही है। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इनकरेज किया जाए सिस्टम को, क्योंकि ये ग्रोथ का वो इंजन है। जिसकी शुरुआत एक बार हो जाए तो फिर ये गाड़ी सीधा अपने स्टेशन पर ही जाके रुकती है। जी हाँ, जब लोग इनोवेट करते हैं तब इकोनॉमी डायनामिक और फ्यूचर रेडी बनती है। और विजन 2030 का ये फोकस है कि एक क्रिएटिव और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाई जाए, और इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। बस हमें और आपको भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि धीरे धीरे हम और आप इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझना अब हमारी और आपकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारा शौक नहीं है तो हम नहीं सुन रहे या नहीं है तो हमें नहीं जानना। नहीं, अब हम सबके लिए सारी चीज़ें जानना बड़ा अहम हो गया है। इसीलिए मेरी कोशिश है कि धीरे धीरे हल्के फुल्के अंदाज में कुछ हल्की फुल्की आपसे बात की जाए, जिससे ये सारी टर्मिनोलॉजीज, ये सारे टर्म्स, ये सारे टॉपिक्स आप तक भी पहुँचें। और कभी भी कोई भी आपसे बात करे तो आप यूं ना देखें कि अरे मुझे तो पता ही नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ आपके जहन में जरूर हो। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
3: One step to 2030.
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। मस्जिद अल्लाह ताला के नजदीक जमीन का सबसे महबूब मकाम है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मस्जिद में दाखिल होने और मस्जिद से निकलने के भी मखसूस आदाब और दुआएं सिखाई हैं, और इन दुआओं में बिलखसूस मस्जिद में दाखिल होने की जो दुआ है इसमें यह बात झलकती है कि मस्जिद तो रहमत का घर है। उसकी हकीकत यह है कि दुनिया में बहुत सी जगहें हैं जहां इंसान अपनी जरूरियात के लिए जाता है, बाजार खरीदारी के लिए, दफ्तर रोजगार के लिए, स्कूल और यूनिवर्सिटी तालीम के लिए, लेकिन मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान अपनी रूह की गजा हासिल करने जाता है। ये अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह। ये वो जगह है जहाँ दिल सुकून पाते हैं, जहाँ फरिश्ते रहमत के परों को बिछाते हैं। इसलिए मस्जिद में दाखिल होना एक आम दाखिला नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे में दाखिल होना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते तो दुरूद व सलाम के बाद ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा फिर ली ज़ुनूबी वफ्तह ली अबवाब रहमतिक। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाहुम्मा ग़फिर ली ज़ुनूबी वफ्तह ली अबवाब रहमतिक, और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। रिवायत है जामिया तिर्मिज़ी की। ज़रा गौर कीजिए, मस्जिद में दाखिल होते वक्त दो चीज़ों की तलब है, पहली मग़फ़िरत और दूसरी रहमत, क्योंकि बंदे को अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी दरकार है और फिर अल्लाह की रहमत। समझे कराम, ये दुआ हमें एक अजीम हकीकत सिखाती है कि मस्जिद रहमत का मरकज़ है। मस्जिद में दाखिल होना कोई अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत के दरवाजे पर हाजिर होना है। और इसी तरह इस दुआ से पहले जो दुरूद शरीफ की बात आ गई, इसमें दुरूद सलाम की अहमियत भी वाज़ेह हो गई कि मुख्तलिफ आमाल से पहले भी दुरूद की बात आई, बल्कि इस बात की ताकीद भी की गई कि हम उठते बैठते दुरूद शरीफ पर अमल तो ज़रूर करेंगे, साथ साथ मुख्तलिफ आमाल की शुरुआत में भी इस तरह दुरूद शरीफ हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ इस दुआ से पहले दुरूद शरीफ का अमल है, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, फिर आप ये मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली ज़ुनूबी वफ्तह ली अबवाब रहमतिक। तो सामने किराम, दुरूद शरीफ मोमिन की ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये एक गोया के तमहीदी और मुकदमा है मुख्तलिफ़ इबादात के हवाले से। मुख्तलिफ जहाँ पर भी हम हैं, कहीं कोई काम शुरू कर रहे हों, हर हालत में, क्योंकि दुरूद शरीफ ये दिल को नरम करता है, इंसान को अपने अहम सोर्स से जोड़ता है, अपने अहम जो मर्जा है उस मर्जा से जोड़ता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इन छोटे आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر. ماہرین کی رائے پر لیجیے, حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ. ہیلتھ گائیڈ, جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی. بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک. علاج اور احتیاط تک. سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی. دل سے دیسی. یاد رکھیے, صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.

0: जब हम दूसरों पर रहम करते हैं, उनकी तकलीफ को समझते हैं, तो सोसाइटी एक बेहतरीन जगह बन जाती है। रहम सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों और हर मखलूक पर होना चाहिए। इस्लाम हमें हर मखलूक के साथ नरमी का बर्ताव करना सिखाता है। जब आप किसी पर रहम करते हैं तो अल्लाह आप पर रहम करता है। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो जिंदगी बदल देता है। आज का अमल ये है, किसी की मजबूरी को समझने की कोशिश करें और उसके साथ नरम रवैया इख्तियार करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ RJ मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे। सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ RJ नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने में नए स्कैम्स हो रहे हैं और इस तरह के स्कैम से बचना आसान नहीं है जब तक आप इन स्कैम्स के बारे में ना जानते हो, और इसीलिए FM 107 की पूरी कोशिश है कि आपको नए जमाने के नए स्कैम से या फ्रॉडस्टर से बचाए। दोस्तों, घरों में स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज, स्मार्ट लॉक्स और AI असिस्टेंट्स का यूज बहुत बढ़ गया है और यहीं से शुरू होता है हाईजैकिंग फ्रॉड। हैकर्स आपके होम वाईफाई नेटवर्क के जरिए इन अनसिक्योर्ड स्मार्ट डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद वो आपके घर के अंदर की प्राइवेट वीडियो रिकॉर्डिंग्स और पर्सनल फोटोज निकाल लेते हैं। फिर शुरू होता है एक्सटॉर्शन यानी ब्लैकमेलिंग का खेल, जहां आपसे डिजिटल करेंसी में बड़ी रकम मांगी जाती है और पैसे ना देने पर आपकी प्राइवेट लाइफ को इंटरनेट पर लीक करने की धमकी दी जाती है। कुछ केसेस में तो क्रिमिनल्स स्मार्ट लॉक्स को लॉक करके लोगों को उनके ही घर में कैद कर देते हैं जब तक रैंसम ना मिले। इस सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड से बचने के लिए अपने हर स्मार्ट डिवाइस का डिफॉल्ट पासवर्ड बदलें और राउटर पर स्ट्रॉन्ग फायरवॉल लगाएं। 2026 में ये हैकर्स एडवांस्ड ऑटोमेटेड स्कैनर्स का यूज करते हैं जो वीक इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस को ऑटोमेटिक ढूंढ निकालते हैं, जिससे हर वो घर निशाने पर होता है जो बेसिक साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स को इग्नोर करते हैं। लेकिन FM 107 आपको इसका सॉल्यूशन भी देता है। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने स्मार्ट होम को सिक्योर रखने और इस एक्सटॉर्शन फ्रॉड से बचने के लिए आपको नेटवर्क सिक्योरिटी पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला कदम ये है कि अपने वाईफाई राउटर का डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड बदलकर एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाएं। अपने मेन इंटरनेट राउटर पर एक गेस्ट नेटवर्क बनाएं और अपने सारे स्मार्ट होम डिवाइसेस, कैमरा, लॉक्स, टीवीज को इसी गेस्ट नेटवर्क से कनेक्ट करें।

0: इससे अगर कोई हैकर किसी डिवाइस को हैक कर भी लेता है तो वो आपके मेन कंप्यूटर या मोबाइल फोन तक नहीं पहुंचेगा। जहां आपका फाइनेंशियल डेटा होता है, किसी भी स्मार्ट डिवाइस को खरीदते वक्त सिर्फ उन ब्रांड को चुनें जो रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स और फर्मवेयर पैचेस प्रोवाइड करती हैं। हर डिवाइस के डिफॉल्ट एक्सेस क्रेडेंशियल को सेटअप करते वक्त ही चेंज कर दें और उनमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करें। दोस्तों, ये था नए जमाने के स्कैम से बचने का तरीका। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी नए जमाने के नए स्कैम पर बात करते हुए। सुंदर एफएम 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि एक खूबसूरत मुस्कुराहट ना सिर्फ हमारी शख्सियत को निखारती है बल्कि अच्छी मजमूई सेहत की भी अलामत होती है। तो आइए जानते हैं कि दांतों की जो सेहत है वो कितनी ज़रूरी है और इस तरह से दांतों की सफाई और कैविटीज़ और बाकायदा जो डेंटल चेकअप है वो क्यों ज़रूरी है। दांत हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं, जो कि खाना चबाने, साफ बोलने और चेहरे की खूबसूरती बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर दांतों की मुनासिब देखभाल ना की जाए तो मुख्तलिफ मसाइल सामने आते हैं, जैसे कि दांतों में दर्द, गम्स की सूजन, सांस में बदबू और फिर दांतों का ख़राब हो जाना। ओरल हाइजीन यानी मुंह और दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम 2 मरतबा फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से आप दांत ब्रश कीजिए। ब्रश करते वक्त दांतों की तमाम सतहों और जबान को भी साफ करना चाहिए। इसके अलावा रोज़ाना फ्लास इस्तेमाल कीजिए। अब ये कि कैविटीज क्या हैं? कैविटीज या दांतों में सुराख उस वक्त बनते हैं जब मुंह में मौजूद बैक्टीरिया मीठी या निशास्तादार गिजाओं पर भी अमल करते हैं, उससे फिर एसिडिटी पैदा करते हैं और ये एसिड दांतों की बैरूनी सतह को नुकसान पहुंचाता है जिससे सुराख बन जाते हैं। मीठी अशिया, सॉफ्ट ड्रिंक और बार बार स्नैक्स खाने से आप परहेज कीजिए तो कैविटीज से बचाव मुमकिन हो जाता है। पानी ज़्यादा पीजिए और मुतवाजन गिज़ा इस्तेमाल करें जिसमें फल, सब्जियां, दूध और कैल्शियम से भरपूर गिज़ाएँ शामिल हैं। बच्चों के दांतों की सफाई पर खसूसी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है और बहुत से अफराद सिर्फ दर्द होने पर ही डेंटिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन माहरीन ये कहते हैं कि हर 6 माह के बाद दांतों का मुआयना ज़रूर करवाइए। बाकायदा चेकअप के ज़रिए मसाइल की जो इब्तदा है अगर वो शुरू में ही तशखीस हो जाती है तो फिर बड़े इलाज से बचा जा सकता है। दिन में 2 मरतबा ब्रश कीजिए, रोज़ाना फ्लास इस्तेमाल कीजिए, मीठी और चिपकने वाली गिज़ाओं का इस्तेमाल कम कीजिए, हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट से मुआयना ज़रूर कराइए और स्मोकिंग से दूर रहिए। बच्चों को कम उम्री ही में दांत साफ करने की आदत डाल दीजिए। याद रखिए कि सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद हैं। दांतों की मुनासिब देखभाल ना सिर्फ दर्द और बीमारियों से बचाती है बल्कि आपके एतमाद और मुस्कुराहट को भी बरकरार रखती है।
3: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
0: ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: चुप्पन निरतिले सारी ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। मैं आज कतर के एक अहम खिलाड़ी के बारे में जिक्र करूंगा, जिनका नाम है अमरवाल हमाद। दोस्तों, अमरवाल हमाद पहले तो कतरी बाइकर थे, यानी बाइक रेसिंग में हिस्सा लेते थे। आज कतर मोटर स्पोर्ट्स के एक टॉप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। क्या दोस्तों, अमरवाल हमाद कतर के मोटर स्पोर्ट्स के सबसे नुमाया नामों में से एक हैं और उन्होंने मुल्क में मोटर रेसिंग की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। उनका नाम खास तौर पर कतर मोटर एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन यानी QMMF के साथ जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने कई सालों तक लीडरशिप के फराइज अंजाम दिए। उनकी कोशिशों की वजह से कतर ने मोटर स्पोर्ट की दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाई और कई बैन अक्वामी इवेंट्स की मेज़बानी की। अमरो ने सिर्फ इंतजामी सतह पर ही काम नहीं किया, बल्कि मोटर स्पोर्ट को आवाम तक पहुंचाने और नए टैलेंट को मौके फराहम करने में भी अहम किरदार निभाया। उनकी क्यादत में कतर ने मोटो जीपी और वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप जैसे बड़े पैमाने के इवेंट्स की मेजबानी की, जिसमें मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ। लोसैल इंटरनेशनल सर्किट को दुनिया के बेहतरीन रेसिंग वेन्यूज में शुमार किया जाता है और इस कामयाबी के पीछे अमरो अल हमाद की मेहनत भी शामिल है। उनका नजरिया हमेशा ये रहा है कि कतर को मोटर स्पोर्ट का रीजनल हब बनाया जाए, इसीलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ डेवलपमेंट और इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर खास तवज्जो दी। दोस्तों, आज अमरो अल हमाद को कतर के मोटर स्पोर्ट के तरक्की पसंद रहनुमाओं में शुमार किया जाता है, जिन्होंने इस खेल को नए बुलंदी तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।
3: Yo, lavish.

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: दोस्तों, रिक्रिएशनल और प्ले एरियाज में बच्चों के हिफाजती इकदामात को तरजीह देना उन्हें हादसात से बचाता है और खुश

0: तो बिस्तर की शिकनों में कहीं हम अपना वतन तलाश करते हैं।
1: क्या बात है। तो सर इसी सिलसिले से जब घर की याद आती थी तो आप खुद को कैसे संभाला करते थे?
0: दो चीजें बड़ी मतलब उमदा हैं। एक तो जिक्रुल्लाह तो है ही, बहरहाल अल्लाह का जिक्र आप करें तो सबसे ज्यादा मतलब तत्मईनुल कुलूब, अल्लाह जिक्र, अल्लाह के जिक्र से कल्ब को इत्मीनान मिलता है। लेकिन मैंने दो चीजों का बहुत सहारा लिया, जिक्र के अलावा शायरी और किताबें। ये मेरे ख्याल में सबसे बहुत जबरदस्त आपके साथी हैं।
1: वाह वाह। और यही आप हमें भी हमेशा सिखाते और समझाते आए हैं। आपके इस सफर में आपके खानदान का क्या किरदार रहा?
0: देखिए खानदान का जो मसला है ना, ये ऐसी है जैसे कि आपके पास पेट्रोल हो गाड़ी ना हो, या आपके पास गाड़ी और पेट्रोल ना हो। तो ये बड़ा मुस्बत और पॉजिटिव रहा अगर खानदान का और या आपकी फैमिली का अगर आपके साथ वो ना हो किरदार, तो फिर आप कुछ सफर तन्हा नहीं कर सकते। ये अल्लाह ने निजाम बनाया है और मैं इसका क्रेडिट अपने वालदा, मेरी वालदा हयात थी सद वालदा को रहा, और मेरी बीवी को जाता है, मेरे बच्चों को जाता है, कि इन लोगों का बड़ा पॉजिटिव मेरे साथ किरदार रहा। चूंकि वही मैं फिर एक बार मिसाल दूं कि भाई पेट्रोल आपके पास कितना ही हो और गाड़ी ना हो तो पेट्रोल बेकार, और गाड़ी कितनी कीमती हो पेट्रोल ना हो तो गाड़ी बेकार। लिहाजा खानदान और आप दोनों मिलकर एक ये इकाइयों से मिलकर एक दहाई बन जाती है, और इन इकाइयों को अलग कर दें इन दहाइयों से तो फिर ये इकाइयां रह जाती
1: हैं। वाह बहुत खूब बहुत खूब। सर दोहा में आपकी जिंदगी का अहम मोड़ या यूं कह लीजिए कि टर्निंग पॉइंट क्या रहा?
0: यूं तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं यहाँ आया, चूंकि अलीगढ़ से मैंने पास आउट किया 93-94 में, उसके बाद फिर मैं वहाँ पर मैंने फ्रीलांसिंग की, मैंने अखबार में भी लिखा, मैंने मदरसे में पढ़ाया और मैंने मदरसे में काम भी किया। लेकिन यहाँ आना मेरा एक टर्निंग पॉइंट रहा, और यहाँ आने के बाद मेरा टर्निंग पॉइंट ये रहा कि मैं अदबी सिलसिले से वाबस्ता हुआ, अदबी तंजीम खासतौर से अंजुमन शुरा उर्दू हिंद से वाबस्ता हुआ, और उसी के साथ साथ पैरेलली मैं अलीगढ़ ओल्ड बॉयज से और अलीगढ़ वालों से मिला। तो बस मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि भाई पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर।
1: वाह वाह वाह।
0: हम अलीगढ़ से निकल के भी अलीगढ़ में आ गए।
1: वाह वाह वाह। बहुत अच्छे सर। आज अगर पीछे मुड़कर देखते हैं, या आपसे ये जानना चाहूं कि जो नए लोग आ रहे हैं इस वक्त, जो नए लोग आए हुए हैं जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, उन सब सब के लिए क्या सीख हासिल हुई, क्या पैगाम देना चाहते हैं उनके लिए, खास तौर पे आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं?
0: बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए जिंदगी हर कदम पर एक नया सबक देती है, बस याद रखना जरूरी है उस सबक को कि जिंदगी में हमें सबक क्या दिया।
1: क्या बात है।
0: तो आपका हर दिन आपके लिए एक नया सबक लेकर आता है, कहीं ऊंच नीच होती है, कहीं मुस्बत कहीं मनफी, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, कोई खराब मिलता है आदमी, कोई अच्छा मिलता है, कोई मोतदिल मिलता है। तो आपका दिन हमेशा एक सा नहीं रहता। वो मुझे याद है कि वो गालिबन महमूद गजनवी के बारे में आता है कि उसने अपने दरबार में एक मरतबा ऐलान किया कि मुझे कोई एक ऐसा जुमला बताओ कि जो मुझे रुलाए भी और हंसाए भी। सब परेशान हो गए कि क्या लिखा जाए। एक गुलाम ने, कहा जाता अयाज ने या किसी और गुलाम ने, एक जुमला लिख के दिया और महमूद गजनवी सर पकड़ कर बैठ गया, और वो जुमला ये था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा।
1: वाह।
0: तो अगर अच्छा है तो गुजरेगा और बुरा है तो गुजरेगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई जिंदगी हर कदम नया सबक देती है, बस याद रखना जरूरी है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा।
1: क्या बात है। बहुत अच्छे सर। यादों और कहानियां कुछ अगर हम जोड़ें और उसके हिसाब से कुछ सवाल करूं, तो आज आपके लिए दोहा क्या मायने रखता है?
0: देखें दोहा आज मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सब कुछ है। इसकी वजह ये कि अल्लाह ने हमें यहाँ एक बेहतर जिंदगी दी, एक अच्छा रोजगार फराहम किया, अल्लाह ताला ने हमें पुरअमन और पुरसुकून जिंदगी दी, पांचों वक्त हमारे कानों में अजान की आवाज आती है, यहाँ मजहबी आजादी है, और यहाँ की क़यादत, यहाँ की हुकूमत आवाम के लिए इतना सब कुछ करती है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो दोहा आज हमारे लिए सब कुछ है, हम ये कहते हैं
1: सब कुछ है। क्या बात है। काम की जगह या रोजमर्रा जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो आज भी यादगार हो?
0: मेरे ख्याल में अमली जो जिंदगी है आपकी, चूंकि आप भी जॉब करते हैं, जो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो उसका हर दिन यादगारी है। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ने आप उसे रोजगार वाबस्ता किया है, आपके अहलो अयाल को अल्लाह ने उस रोजगार के जरिए मरबूत कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अमली जिंदगी जो है ना आपकी, उसका हर दिन आपके लिए यादगार ही होता है। यूँ तो बहुत सारे ऐसे यादगार पल होंगे, लेकिन मेरे नजदीक तो हर दिन एक यादगार ही रहता है।
1: क्या बात है। हर दिन नया होता है और एक सबक देखे जाता है, क्या ही कहने। क्या

0: कल्चरल हब है और कल्चरल कैपिटल है ये कतर, और ये उसकी बहुत बड़ी मिसाल अगर आप यहाँ जाते हैं तो मौसस कतर है, कतर फाउंडेशन है। इतनी सारे वहाँ पर तालीमी इदारे एक ही उन्होंने कंपाउंड के अंदर रख दिए हैं। दुनिया के बड़े तालीमी इदारे आपको वहाँ मिल जाएंगे जहाँ पर इल्म, सकाफत, तहजीब सिखाई जाती है। दूसरी यहाँ का आप जाएं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी जो QNL कतर नेशनल लाइब्रेरी, वो यहाँ की क़यादत का और यहाँ का जो इल्मी ज़ौक है और जो तहजीबी और जो अदबी ज़ौक है उसका सबसे बड़ा तर्जमान यहाँ की कतर नेशनल लाइब्रेरी है, जो दुनिया की टॉप लाइब्रेरीज का मुकाबला कर सकती है। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमने देखा कि जबान के लिए बड़ा काम है। मैं आपको बताऊं सरवर साहब, आप रेडियो के हवाले से अब तक तकरीबन यहाँ पर मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक मैंने इस मौजू पर काम भी किया है और मैं जद्दा भी मैंने एक अपना मकाला पढ़ा था इसी मौजू पर सेमिनार में कि दोहा में जो अदबी सरगर्मियां हैं, तो मैंने जो हिसाब निकाला था तकरीबन 300 किताबें अब तक दोहा से उर्दू की छप चुकी है।
1: वाह वाह वाह।
0: तो ये किसी ऐसे मुल्क के लिए नामुमकिन है कि जहाँ पर आपको सकाफती आजादी ना हो। तो यहाँ जो सकाफती जो माहौल है और खासतौर से मुशायरों का जो माहौल है, किताबों का जो माहौल है, वो बड़ा अमेजिंग है। साल में कितने 4 से 5-6 मुशायरे होते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं। एक तंजीम से मेरा भी ताल्लुक अंजुमन मोहिबान से, पाकिस्तानी तंजीम आलमी मजलिस फरोग उर्दू अदब, वो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कतर से दिया जाता है उर्दू का, एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी अदीब को। 1959 की बज़्म उर्दू कतर यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश है। तो यहाँ ये कल्चरल और कल्चरल एक्टिविटीज का कैपिटल और हब दोहा कतर है। और मुझे सबसे ज्यादा इस बात की खुशी होती है कि हम यहाँ रहते हैं तो हमें वतन नहीं महसूस होता कि हम वतन से दूर हैं। थोड़ी देर के लिए हमें अपनी गलियां तो याद आती हैं, वहाँ की सौंधी मिट्टी की खुशबू भी हमें जो है याद आती है, वहाँ की पतली पतली गलियां याद आती हैं, वहाँ धड़कते हुए इंसान और वहाँ पर चलते फिरते लोग याद आते हैं। लेकिन जब हम सकाफत की तहजीब की बात करते हैं तो हमें दोहा में जर्रा बराबर महसूस नहीं होता कि हम हिंदुस्तान में हैं या कतर।
1: क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर है आपसे जब भी बात होती है तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलता है। नदीम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करी, अपने जज्बात और अपनी लर्निंग हमारे साथ शेयर करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं चाहूँगा कि कुछ आप शेर से भी हमें नवाजें और जो भी आप कहना चाहते हैं।
0: दरअसल सबसे पहले तो मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सरवर साहब, आपका शुक्रिया और रेडियो उर्दू कतर का शुक्रिया कि उन्होंने एक अच्छा दोहा डायरीज के नाम से एक ऐसा अट्रैक्टिव प्रोग्राम निकाला। क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई हमें कुछ जानने का मौका मिले, बारे में पता चले। जो लोग यहाँ पुराने रहते हैं तो अब हमें इस दश्त में आए 26 साल हो गए, तो यकीनन जो नए सहरा नवर्द आ रहे हैं उनके लिए हम जैसे लोगों की शायद कुछ बातें काम में आ जाए। और मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक दो गजल के दो तीन शेर सुना देता
1: हूँ। जी सर प्लीज।
0: एक मेरी बड़ी मशहूर गजल है कि बस इतनी बात थी कहते तो हम तरमीम कर लेते, बस इतनी बात थी कहते तो हम तरमीम कर लेते, सफर को बांट लेते हम थकन तकसीम कर लेते। सफर को बांट लेते हम थकन तकसीम कर लेते, अगर हमसे शिकायत थी तो फिर इजहार करना था। अगर हमसे शिकायत थी तो फिर इजहार करना था, माफी मांग लेते हम खता तस्लीम कर लेते।
1: क्या बात है भाई।
0: माफी मांग लेते हम खता तस्लीम कर लेते, और अगर तुमको सितारे चांद सूरज सब मयस्सर थे, अंधेरा बढ़ गया था रोशनी तकसीम कर लेते।
1: क्या बात।
0: और एक और गजल के 2-3 शेर और सुन ले फिर इसके बाद इजाजत। ये खुद को तन्हा देख रहा हूँ एक तमाशा देख रहा हूँ, खुद को तन्हा देख रहा हूँ एक तमाशा देख रहा हूँ, मुझको मिट्टी खींच रही है खुद को मरता देख रहा हूँ, और मेरी आंखें थक ना जाएं तुझको कितना देख रहा हूँ। मेरी आंखें थक ना जाएं तुझको कितना देख रहा हूँ, चारों जाने भीड़ है लेकिन सबको तन्हा देख रहा हूँ।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सरवर साहब।
1: थैंक यू।
0: आप भी खुसूसी दुआओं में याद रखिए। चलिए खुदा
1: अल्लाह। और दोस्तों आप सबसे भी बस इतना कहना है कि जिंदगी के हर सफर में हर नई मंजिल पर अपना हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ शहर नहीं लिखता, कहानी आप लिखते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए।

0: मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
3: FM 107 दिल से देसी।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। एफएम 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। एफएम 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहम कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामने के नाम प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान तलहा अशरफुज़्ज़मान। कुरान मजीद की एक नहायत अजीम और ईमान अफरोज़ मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और वो है नुज़ूल कुरान करीम। सामने कराम ज़रा तसव्वुर कीजिए, आज से 1400 बरस पहले अरब के गर्म सहरा, मक्का मुकर्रमा की खामोश वादी, जबल नूर की तन्हाई, गार हिरा का पुरसुकून माहौल और वहाँ एक शख्सियत, इबादत और

0: غور و فکر میں مشغول ہے۔ یہ کوئی بادشاہ نہیں، یہ کوئی فلسفی نہیں، یہ کوئی شاعر نہیں، یہ کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں پوری دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ وہ نبی جو امی تھے، نہ انہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، نہ کسی کالج میں گئے، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا، نہ کسی استاد کے سامنے ادب و بلاغت کے اسباق پڑھے۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ سمجھ کے نام اچانک تاریخ کا سب سے عظیم لمحہ آتا ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا رابطہ قائم ہوتا ہے جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمانا چاہتا ہے۔ جبریل امین وحی لے کر نازل ہوتے ہیں اور پہلی آواز گونجتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ذرا اس منظر پر غور کیجئے، ایک امی نبی، اور پہلا حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ پڑھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جہالت کا نہیں، علم کا دین ہے۔ اسلام روشنی کا دین ہے، اسلام شعور اور بصیرت کا دین ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی ہیبت اور عظمت طاری ہو گئی۔ یہ کوئی عام کلام نہیں تھا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں تھا، یہ وہ کلام تھا جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو سن کر اسے محفوظ کرنے کی فکر کرتے، یہاں تک کہ قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی الفاظ دہراتے تاکہ کہیں کوئی حرف رہ نہ جائے۔ آپ کے دل میں یہ فکر تھی کہ یہ عظیم امانت مکمل طور پر محفوظ رہنی چاہیے، تب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، یا نبی جلدی جلدی زبان نہیں لائیے، اسے جمع کرنا اور محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا شان ہے اس قرآن کی! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا اللہ یقین دلا رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اسے آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے۔ سمجھنے کے نام دنیا میں بے شمار کتابیں لکھی گئیں، بادشاہوں کی تاریخیں لکھی گئیں، فلسفیوں کے نظریات لکھے گئے، شاعروں کے دیوان مرتب ہوئے، لیکن وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا۔ بہت سی کتابیں گم ہو گئیں، بہت سے نظریات مٹ گئے، بہت سے فلسفے دفن ہو گئے، لیکن قرآن، 1400 سال گزر گئے، ایک حرف نہیں بدلا، ایک نقطہ نہیں بدلا، ایک آیت زیادہ نہیں ہوئی، ایک آیت کم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کی حفاظت انسانوں نے نہیں کی، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ اب قرآن کا نزول دراصل یہ پوری انسانیت کے لیے ایک انقلاب تھا۔ ذرا سوچیے، عرب کون تھے؟ عرب اس دور میں جب قرآن نازل ہوا قبائلی تعصبات میں بٹے ہوئے، لڑائی جھگڑوں میں مصروف، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے، شراب اور جوا عام، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ پھر یہی لوگ قرآن سنتے ہیں اور چند ہی سالوں میں دنیا کے رہنما بن جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی قرآن نے کی، اور اس قرآن سے دشمن بھی متاثر ہوئے، غیر مسلم بھی متاثر ہوئے، جنات بھی متاثر ہوئے، اور آج بھی جب کوئی شخص اخلاق کے ساتھ قرآن سنتا ہے تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام کا آغاز فرمایا اور قرآن کی آیات لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئیں تو قریش ایک عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو شخص قرآن سنتا ہے اس کے دل میں تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے، جو نوجوان سنتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، جو غلام سنتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے، جو عورت سنتی ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض سخت دل لوگ بھی قرآن کے سامنے جھکنے لگتے ہیں۔ قریش نے سوچا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ان کی قیادت، ان کا اثر و رسوخ اور ان کا جاہ و منصب سب خطرے میں پڑ جائے گا۔ پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی لالچ دی، کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکہ کا سب سے امیر آدمی بنا دیتے ہیں، اگر حکومت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر عزت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، अगर शादी चाहते हैं तो अरब की खूबसूरत तरीन औरतों से आपकी शादी करा देते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या हो सकता था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये दावत किसी दुनियावी मफाद के लिए नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है, ये नबूवत की अमानत है, ये इंसानियत की नजात का रास्ता है। जब तमाम दुनियावी पेशकशें नाकाम हो गईं, तो कुरैश ने सोचा कि हमें खुद कुरान को सुनना चाहिए और इसमें कोई खामी तलाश करनी चाहिए। चुनांचे उन्होंने अपने सबसे बड़े अदीब, अपने सबसे मशहूर खतीब और अरबी जबान के माहिर इंसान को मुंतखब किया। ये थे वलीद इब्न मुगीरा। वलीद इब्न मुगीरा कोई आम आदमी नहीं था, वो अरब के बड़े सरदारों में शुमार होता था। दौलत, तिजारत, शोहरत और असर और रसूख में उसका कोई सानी न था। अरबी अदब और फसाहत और बलागत में भी उसकी बड़ी हैसियत थी। कुरैश ने कहा, तुम जाओ और मोहम्मद का कलाम सुनकर आओ। वलीद इब्न मुगीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। पहले उसने अपनी तरफ से लंबी गुफ्तगू की, कुरैश की शिकायतें बयान की, तरह तरह की बातें की। फिर जब वो खामोश हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक सवाल फरमाया, ए अबुल वलीद, क्या तुम्हारी बात ख़त्म हो गई? उसने कहा, जी हाँ। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कोई फ़लसफ़ा पेश नहीं किया, कोई सियासी तकरीर नहीं की, कोई जज्बाती जवाब नहीं दिया, बल्कि कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम। ये सूरह फुसिलत की आयात हैं। सामिन किराम, ये वो लम्हा था जब अरब का सबसे बड़ा अदीब पहली मर्तबा बराह रास्त कुरान की तासीर से दो चार हुआ। वो सुनता रहा, खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे, दिल की कैफियत तब्दील होने लगी। जैसे जैसे आयात आगे बढ़ती गई, कुरान का असर उसके दिल में उतरता चला गया। यहाँ तक कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत तक पहुँचे, فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود। इसका मतलब ये है कि अगर ये लोग मुंह मोड़े तो कह दीजिए कि मैं तुम्हें आद और समूद जैसी हलाकत से डराता हूँ। तो वलीद इब्न मुगीरा बेइख्तियार घबरा उठा। उसने फौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगा, बस बस, मुझे मजीद न सुनाओ। ये एक दुश्मन का रद्देअमल था, एक ऐसा शख्स जो ईमान लाने नहीं आया था, तंकीद करने आया था, ऐब निकालने आया था। लेकिन कुरान ने उसके दिल को हिला दिया। वो वापस अपनी कौम के पास गया, जबकि कुरैश उसके गिर्द जमा हो गए। सब मुंतजर थे कि आज वलीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई मजबूत दलील लेकर आएगा। लेकिन वलीद ने जो कहा वो तारीख का हिस्सा बन गया। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने शेर भी सुना है, जादू भी देखा है, काहिनों का कलाम भी जानता हूँ, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम इनमें से किसी चीज़ जैसा नहीं। फिर उसने वो मशहूर जुमला कहा, वल्लाही इस कलाम में एक ख़ास मिठास है, एक ख़ास चमक है। उसका ऊपर वाला हिस्सा फलदार है, उसके नीचे वाला हिस्सा सरसब्ज है, और ये हर कलाम पर गालिब आता है, इस पर कोई कलाम गालिब नहीं आ सकता। तो ये एतराफ़ कुरान के एक मुखालिफ का एतराफ़ है, और यही कुरान का मुजज़ा है कि कुरान दिलों को फतह करता है, सिर्फ दलाइल से नहीं, उसके अपने एक रूहानी तासीर भी है। और इसीलिए अरब के बड़े बड़े लोग कुरान सुनकर मुतासर होते थे। बल्कि हकीकत तो यह है कि सिर्फ अरब के नहीं, आज भी अरब और गैर अरब, समझकर या बिना समझे, सब लोग इस कुरान को सुनकर मुतासर होते हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाना भी कुरान की तासीर का नतीजा था। जुबैर इब्न मुतअम रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान भी कुरान की तासीर का नतीजा था। और आज भी लाखों लोग कुरान सुनकर इस्लाम कबूल करते हैं। समय कराम, यहाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर कुरान ने वलीद इब्न मुगीरा जैसे मुतकब्बर सरदार को मुतासर किया, अगर कुरान ने अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब जैसे सख्त मिजाज इंसान को बदल दिया, अगर कुरान ने अरब के जाहिल मुआशरे को दुनिया का रहनुमा बना दिया, तो क्या कुरान आज हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकता? ज़रूर बदल सकता है। शर्त सिर्फ एक है कि हम कुरान को खुले दिल से सुने, इखलास के साथ, समझने की नीयत से, अमल की नीयत से। ये कुरान हिदायत की किताब है, इनकलाब की किताब है, ये दिलों को जिंदा करने वाली किताब है। ये वही कुरान है जो आज भी उम्मत को इज्जत और सरबुलंदी अता कर सकता है। प्रोग्राम के इस मरहले में एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। मुलाकात होती है ब्रेक के उस पार जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम बैक सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस मरहले में सामीन किराम, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के उस अजीम ताल्लुक का जिक्र करेंगे जो तारीख इंसानियत में अपनी मिसाल आप है। जब हम कुरान की बात करते हैं तो दरअसल हम उस किताब की बात करते हैं जिसके साथ एक नबी का ताल्लुक है, जो वही के तौर पर नबी अकरम खातमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही के तौर पर नाजिल किया गया था। तो इस बात में एक हिकमत है, मैं जो ये बात कह रहा हूँ सामने कराम, इस लाइन में एक मैसेज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मरकज क्या था। आपसे सल्लम के पास न कोई बड़ी लाइब्रेरी थी, न किताबों के ज़खीरे, न फ़लसफे की जिल्दें, न शायरी के दीवान, न कोई अखबार, न कोई रिसाला, एक ही किताब थी और वो थी कुरान करीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे, कुरान सुनते थे, कुरान पर गौर करते थे, कुरान के ज़रिए लोगों को दावत देते थे, कुरान के ज़रिए उनका फ़ैसला, कुरान के ज़रिए उम्मत की तरबियत। इसी वजह से उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब किसी ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो उन्होंने मुख्तसर मगर जामे अंदाज में ही फरमाया, काना खुलुकुहुल कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान थे। वो ये कुरान सिर्फ आपकी ज़बान पर नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी कुरान की अमली तफसीर थी। जब पहली मरतबा वही नाजिल हुई, गारे हरा की तन्हाई, रात का सुकूत, इबादत में मशगूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अचानक फरिश्ता वही का लेकर आता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, करा पढ़िए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मान बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। ये मंजर कई मरतबा पेश आया, फिर वही के अल्फाज नाजिल हुए, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक। सामने किराम, एक अजीम लम्हा था लेकिन इंसानी एतबार से नहायत हैबतनाक भी था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से वापस आए तो जिसे मुबारक कांप रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, जम्मिलोनी जम्मिलोनी दस्से रोनी। इस मरहले में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की अजमत भी नज़र आती है। उन्होंने घबराहट में इजाफा नहीं किया, उन्होंने खौफ को हवा नहीं दी, बल्कि अपने शौहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। उन्होंने फरमाया, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान की, आपसे ले रहमी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, कमज़ोरों का सहारा बनते हैं, सच बोलते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये वो सिफात है जिनकी वजह से अल्लाह अपने बंदे को ज़ाया नहीं करता। सामने कराम, यहाँ एक अहम नुक्ता ये है कि नबूवत के आगाज़ ही से कुरान का नुज़ूल एक जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ था। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन थकीला, हम आप पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। ये बोझ अल्फाज का नहीं था, ये जिम्मेदारी का बोझ था, हिदायत का बोझ था, इंसानियत की रहनुमाई का बोझ था। ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा वही नाजिल हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ ही बैठे थे, वही की शिद्दत ऐसी थी कि मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे जिस्म ही टूट जाएगा। यही वजह थी कि शदीद सर्दी के दिनों में भी जब वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से पसीना जारी हो जाता। समने कराम, लेकिन इस भारी जिम्मेदारी के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी खुशी भी कुरान ही था। जब गम आता तो कुरान, जब मुश्किलात आती कुरान, जब रात होती कुरान, जब इबादत करते कुरान, जब दुआ करते कुरान, जब जिहाद का वक्त आता कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर मरहला कुरान के नूर से रोशन था। रिवायत में आता है कि बाज़ औक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात एक ही आयत दोहराते रहते थे। मसलन ये आयत, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को बार बार पढ़ते, इस पर गौर करते, दुआ करते और उम्मत के लिए रहमत मांगते रहते। یہ تدبر قرآن کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

0: ऐसी किताब होती जिसके जरिए पहाड़ अपनी जगह से चल पड़ते, जमीन शक हो जाती या मुर्दे बोलने लगते, तो किताब यही कुरान होता। यही दरअसल इस आयत में इस सवालिया अंदाज का जवाब है। जिस आयत में अल्लाह ताला कुरान करीम की अजमत बयान फरमा रहे हैं, कुरान ऐसा कलाम है जिसमें हिदायत, हिकमत, नसीहत और तासीर अपने इंतहा को पहुंची हुई है। अगर अल्लाह की मशीयत यह होती कि किसी किताब के जरिए ऐसी गैर मामूली निशानियां जाहिर हों, तो कुरान उसका सबसे ज्यादा मुस्तहिक था। मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि मुशरिकीन मक्का बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ मौजज़ात का मुतालबा करते थे। इमाम इब्न कसीर के मुताबिक उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो मक्के के गिर्द मौजूद पहाड़ों को हटा दीजिए ताकि ज़मीन कुशादा हो जाए और हम इसमें खेती बाड़ी कर सकें, या ज़मीन को हमारे लिए इस तरह तय कर दीजिए जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा मुसख़्त थी, या हमारे मुर्दों को ज़िंदा कर दीजिए जैसे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते थे। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई कि अगर कोई किताब ऐसी हो सकती थी जिसके ज़रिए पहाड़ चल पड़ते, ज़मीन शक हो जाती या मुर्दे बोलने लगते, तो वो कुरान ही होता। अल्लाह ताला इसके बाद फौरन फरमाता है, बल्लिल्लाहिल अम्रु जमीआ, तमाम इख्तियार और तमाम फैसले सिर्फ अल्लाह के हाथ में हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला इन मुतालबात को पूरा करने से आजिज़ नहीं था। पहाड़ों को हिलाना, ज़मीन को शक करना या मुर्दों को ज़िंदा करना उसकी कुदरत के लिए कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन अल्लाह ताला जानता था कि इन लोगों का मसला हक की तलाश नहीं बल्कि ज़िद और हठधर्मी है। अगर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मौजज़ात भी दिखा दिए जाते तब भी वो ईमान न लाते। लिहाजा असल मकसद मौजज़ात का मुतालबा नहीं बल्कि हक को कबूल करना है। जब दिल हिदायत के लिए खुला हो तो कुरान ही काफ़ी है, और जब दिल इनात से भरा हो तो बड़े से बड़ा मौजज़ा भी फ़ायदा नहीं देता। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और उसके नूर को दुनिया तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम तफ़हीम अल-कुरान का आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफ ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी,
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it. Don't miss it.
3: दोस्तों, आपका ट्रैम से मुतालिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। मैं आज कतर के एक अहम खिलाड़ी के बारे में जिक्र करूंगा, जिनका नाम है अमरवाल हमाद। दोस्तों, अमरवाल हमाद पहले तो कतरी बाइकर थे, यानी बाइक रेसिंग में हिस्सा लेते थे। आज कतर मोटर स्पोर्ट्स के एक टॉप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। या दोस्तों, अमरवाल हमाद कतर के मोटर स्पोर्ट्स के सबसे नुमाया नामों में से एक हैं और उन्होंने मुल्क में मोटर रेसिंग की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। उनका नाम खास तौर पर कतर मोटर एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन यानी QMMF के साथ जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने कई सालों तक लीडरशिप के फराइज अंजाम दिए। उनकी कोशिशों की वजह से कतर ने मोटर स्पोर्ट की दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाई और कई बैन अक्वामी इवेंट्स की मेज़बानी की। अमरो ने सिर्फ इंतजामी सतह पर ही काम नहीं किया, बल्कि मोटर स्पोर्ट को आवाम तक पहुंचाने और नए टैलेंट को मौके फराहम करने में भी अहम किरदार निभाया। उनकी क्यादत में कतर ने मोटो जीपी और वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप जैसे बड़े पैमाने के इवेंट्स की मेजबानी की, जिसमें मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ। लोसैल इंटरनेशनल सर्किट को दुनिया के बेहतरीन रेसिंग वेन्यूज में शुमार किया जाता है और इस कामयाबी के पीछे अमरो अल हमाद की मेहनत भी शामिल है। उनका नजरिया हमेशा ये रहा है कि कतर को मोटर स्पोर्ट का रीजनल हब बनाया जाए, इसीलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ डेवलपमेंट और इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर खास तवज्जो दी। दोस्तों, आज अमरो अल हमाद को कतर के मोटर स्पोर्ट के तरक्की पसंद रहनुमाओं में शुमार किया जाता है, जिन्होंने इस खेल को नए बुलंदी तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
2: FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
4: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ RJ नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
5: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक।

0: यह आपका वीकली एस्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ पजल्स एंड एक्साइटमेंट।
1: अनलॉक योर माइंड, ट्यून इनटू रेडियो का यूनिक गेम शो एस्केप रूम विद ए फॉर अमिता, संडे टू थर्सडे दोपहर 1:30 बजे से, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि एक खूबसूरत मुस्कुराहट ना सिर्फ हमारी शख्सियत को निखारती है बल्कि अच्छी मजमूई सेहत की भी अलामत होती है। तो आइए जानते हैं कि दांतों की जो सेहत है वो कितनी ज़रूरी है और इस तरह से दांतों की सफाई और कैविटीज़ और बाकायदा जो डेंटल चेकअप है वो क्यों ज़रूरी है। दांत हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं, जो कि खाना चबाने, साफ बोलने और चेहरे की खूबसूरती बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर दांतों

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक

ले लूं, मेरे भी दिमाग नहीं चल रहा था, ले लो ले लो ले लो सफा ले लो, ऑफर में प्रमोशन में ले लो। फिर नेक्स्ट वीक एक और न्यू कलेक्शन आ जाता है, हाँ ठीक है, और वो पहला ड्रेस वार्डरोब में पहले ही यूज नहीं हुआ होता, लेकिन अटेंशन ऑलरेडी नेक्स्ट आइटम पर शिफ्ट हो चुकी होती है हमारी। ये सबके साथ होता है। अब थोड़ा सा रियलिटी से समझने की कोशिश करते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, फास्ट फैशन का मतलब होता है रैपिडली प्रोड्यूस्ड क्लोथ्स जो लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक बनाए जाते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में मार्केट में आ जाते हैं। इस प्रोसेस में प्रोडक्शन स्पीड हाई होती है, लेकिन अक्सर औकात क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। और जब कपड़ा जल्दी यूज के बाद डिस्कार्ड हो जाए ना, तो टेक्सटाइल वेस्ट बढ़ जाता है। अब इसमें इको स्विच इस सिचुएशन में क्या है, मैं आपको बताती हूँ। आइडिया बड़ा सिंपल है, फैशन को माइंडफुल और सस्टेनेबल बनाए ना, मतलब कम ले बेटर क्वालिटी क्लोथ्स चूज करें और उनको ज्यादा टाइम तक यूज करें। अब बात करते हैं कि भाई देखें कि फास्ट फैशन से दूर रहने का क्या फायदा है। देखिए, सबसे पहला फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाटर एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा यूज करती है और वेस्ट भी जनरेट करती है, तो एनवायरमेंट बचेगी उससे। दूसरा फायदा है वेस्ट प्रोडक्शन। जितना कम कपड़ा डिस्कार्ड होगा उतना कम लैंडफिल बर्डन होगा। तीसरा फायदा है मनी सेविंग। क्वालिटी पीसेस लॉन्ग लास्टिंग होते हैं साथियों, इसीलिए बार बार शॉपिंग की जरूरत कम होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल स्टाइल डेवलपमेंट। आप ट्रेंचेस के बजाय अपनी यूनिक वार्डरोब बिल्ड करते हैं। तो भाई सोचिए, आपके पास 10 सस्ती टी शर्ट है जो 2 या 3 वॉशेस के बाद अपनी शेप और अपना कलर दोनों लूज कर देती हैं, और दूसरी तरफ 3 क्वालिटी शर्ट्स हैं जो सालों तक यूज होती हैं। दोनों सिचुएशंस कंपेयर करें तो सेकंड ऑप्शन ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है ना, इकोनॉमिकल और सस्टेनेबल लगता है कि नहीं। लेकिन दोहा जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में फैशन बहुत फास्ट इवॉल्व करता है। हर सीजन न्यू ट्रेंड्स आते हैं, नई कलेक्शंस आती हैं, सेल्स आती हैं, जो कंज्यूमर्स को फ्रीक्वेंट बाइंग की तरफ पुश करती हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इसीलिए यहाँ कॉन्शियस शॉपिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूं जो आप फॉलो कर सकते हैं, तो वो ये है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चूज करें। कम आइटम्स लें लेकिन ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग हो आइटम्स, ठीक है। और एक और चीज जो बहुत जरूरी है भाई, ये माइंडसेट फ्लिप है, नीड वर्सेस वांट चेक करें। हर शॉपिंग से पहले अपने आप से पूछें कि क्या ये जरूरत है या सिर्फ एक ट्रेंड है। बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, ट्रस्ट मी। वार्डरोब रोटेशन करें, पुराने कपड़ों को मिक्स एंड मैच करके नए लुक्स क्रिएट करें ना। देखिए, सस्टेनेबल ब्रांड्स एक्सप्लोर करें, ऐसे ब्रांड्स चूज करें जो एथिकल प्रोडक्शन फॉलो करते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोनेशन हैबिट अडॉप्ट करें। जो कपड़े यूज नहीं हो रहे उनको डिस्कार्ड करने के बजाय डोनेट करें। अगर वो अभी भी यूजेबल हैं, और कुछ लोगों का ये होता है कि भाई प्री लव्ड क्लोथ्स होते हैं या आपका दिल भर गया, एनीथिंग, आप उसको कचरे में नहीं फेंक देना। इफ इट्स, अगर आपका है इतना कि वो कपड़ा यूजेबल है तो आप उसे डोनेट करें। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव इस बात का ये है कि फास्ट फैशन इंडस्ट्री दुनिया के लार्जेस्ट एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स में से एक रहती है हमेशा, स्पेशली वाटर यूजेज और टेक्सटाइल वेस्ट के हवाले से। इसीलिए ग्लोबली अब स्लो फैशन का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया जा रहा है, जहां फोकस ड्यूरेबिलिटी, एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी पर हो रहा है। साथियों देखिए, अक्सर हम ये सोचते हैं कि सस्ता है तो भाई ले लो, प्रमोशन है तो भाई ले लो, सेल्स है तो भाई ले लो, लेकिन असल में अगर वो आइटम 2 से 3 बार यूज होकर वेस्ट हो जाए तो भाई वो सस्ता नहीं रहता, बल्कि वेस्टफुल डिसीजन बन जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें ना बिहेवियरल चेंज एंगल के बारे में, तो जब आप फास्ट फैशन से दूर होते हैं ना, तो आप अपनी शॉपिंग हैबिट्स को ज्यादा इंटेंशनल बना लेते हैं, और आप सिर्फ बायर नहीं रहते, आप शॉपहोलिक नहीं हो जाते बल्कि कॉन्शियस कंज्यूमर बन जाते हैं। तो भाई हमारा इको स्विच बड़ा सिंपल है, फास्ट फैशन से डिस्टेंस बनाएं और सस्टेनेबल क्लोथिंग चूज करें, अडॉप्ट करें। तो भाई आज का चैलेंज ये है कि आज आप अपनी वार्डरोब को चेक करें और देखें कि कौन सा आइटम सच में यूज हो रहा है, और नेक्स्ट शॉपिंग से पहले एक कॉन्शियस डिसीजन लें कि भाई क्वालिटी है या ट्रेंड है, इन दोनों से चूज करें। और अगर आप ऑलरेडी सस्टेनेबल फैशन फॉलो कर रहे

0: तो किसी और को भी इंस्पायर करें ना, ताकि वो शॉपोहॉलिक से सस्टेनेबल शॉपिंग पर आ सके। साथियों, फैशन सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं होता, बल्कि सोच का एक्सप्रेशन होता है। जब हम सस्टेनेबल फैशन चूज करते हैं ना, तो हम सिर्फ स्टाइलिश नहीं लगते, बल्कि रिस्पॉन्सिबल भी लगते हैं। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे रहम दिल होने के बारे में। रहम दिल होना एक ऐसी सिफत है जो इंसान को दूसरों के करीब लाती है। जब हम दूसरों पर रहम करते हैं, उनकी तकलीफ को समझते हैं, तो सोसाइटी एक

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक पे, और ये टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन कल्चर।

0: एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन कल्चर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सोसाइटी में रिस्क लेना, नए आइडियाज एक्सप्लोर करना और बिजनेसेस स्टार्ट करने का एनवायरमेंट बनाना। विजन 2030 का एम है यूथ और प्रोफेशनल्स को एनकरेज किया जाए कि वो अपने आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करें। जब लोग स्टार्टअप्स शुरू करते हैं तो नए सॉल्यूशंस मार्केट में आते हैं, ये प्रॉब्लम्स को नए तरीके से सॉल्व करते हैं और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करते हैं। इनोवेशन से इंडस्ट्रीज मॉडर्न होती हैं और ग्लोबल कंपटीशन में कंट्रीज स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस कल्चर को डेवलप करने के लिए सपोर्ट सिस्टम जरूरी हैं, जैसे फंडिंग, मेंटोरशिप, इंक्यूबेशन सेंटर्स। जब एंटरप्रेन्योरशिप को गाइडेंस मिलती है तो उनका सक्सेस रेट और बढ़ जाता है। कतर में स्टार्टअप्स और इनोवेशन हब्स का एक अच्छा खासा एक ट्रेंड है। गवर्नमेंट भी पॉलिसीज और सपोर्ट प्रोग्राम्स के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज कर रही है। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एनकरेज किया जाए सिस्टम को, क्योंकि ये ग्रोथ का वो इंजन है। जिसकी शुरुआत एक बार हो जाए तो फिर ये गाड़ी सीधा अपने स्टेशन पर ही जाके रुकती है। जी हाँ, जब लोग इनोवेट करते हैं तब इकोनॉमी डायनामिक और फ्यूचर रेडी बनती है। और विजन 2030 का ये फोकस है कि एक क्रिएटिव और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाई जाए, और इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। बस हमें और आपको भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि धीरे धीरे हम और आप इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझना अब हमारी और आपकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारा शौक नहीं है तो हम नहीं सुन रहे या नहीं है तो हमें नहीं जानना। नहीं, अब हम सबके लिए सारी चीज़ें जानना बड़ा अहम हो गया है। इसीलिए मेरी कोशिश है कि धीरे धीरे हल्के फुल्के अंदाज में कुछ हल्की फुल्की आपसे बात की जाए, जिससे ये सारी टर्मिनोलॉजीज, ये सारे टर्म्स, ये सारे टॉपिक्स आप तक भी पहुँचे। और कभी भी कोई भी आपसे बात करे तो आप यूं ना देखें कि अरे मुझे तो पता ही नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ आपके जहन में जरूर हो। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। दिल से देसी
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: कोई ऐसा वीडियो उठाया जाएगा और उसके ऊपर अक्षय कुमार की AI वॉइस यूज करके किसी और चीज को प्रमोट किया जाएगा, जिसकी लिंक ये डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, आपको लगेगा कि अक्षय कुमार साहब जो हैं उस लिंक में जो चीज बोल रहे हैं वो प्रमोट कर रहे हैं, और आप उस लिंक को क्रिएट करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन भर देंगे, क्योंकि आपको बहुत भरोसा है अक्षय कुमार के चेहरे पर. ये नॉट जस्ट अक्षय कुमार बट एनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिस पे भी आपको भरोसा है, उसके चेहरे को यूज करके, AI टूल्स को यूज करके, आवाज का इस्तेमाल करके, दे विल प्रमोट वट एवर दे वॉन्ट. अगर उन्हें आपको किसी लिंक की तरफ ले जाना है, क्योंकि आप सारी आदतों से तो वाकिफ हो चुके हैं, तो वो अब हथियार यूज करेंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज का, उनकी आवाज का, उनके चेहरे का, ताकि आप मजबूर हो जाएं. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली एक स्कैमर, उसने एक आर्ट पीस उठाया, एक इंस्टाग्रामर को उठाया और उसकी आवाज को, उसी की वीडियो को उठा के प्रमोट किया बिटकॉइंस को, जबकि बात ओरिजिनल वीडियो में हो रही थी महज आइसक्रीम की. पर क्योंकि AI से आवाज को फोर्ज कर दिया गया था तो समझ में नहीं आया और बहुत सारे लोग इस जाल में फंस गए और जाके ऑनलाइन अपनी सारी डिटेल्स भर के बहुत भारी लॉस में गए. तो अपने फेवरेट डिजिटल स्टार का चेहरा देख के भी आपको फंसाया जा सकता है, ये आपको इस फ्रॉड अवेयरनेस की एपिसोड में बताने की कोशिश है. आइडेंटिफिकेशन, अब कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ही आपका फेवरेट डिजिटल क्रिएटर या सेलिब्रिटीज किसी अजीब से ऑफर के बारे में वीडियो में बात करता नजर आए, तो सबसे पहले उसी सेलिब्रिटी या डिजिटल क्रिएटर के ओरिजिनल पेजेस पे जाइए और क्रॉस चेक कीजिए कि क्या उनके पेजेस पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है. अगर नहीं है तो आप बिल्कुल भी किसी ऐरी गैरी लिंक पर क्लिक ना करें. इसके अलावा सबसे जो बेहतर आइडेंटिफिकेशन है, आप गलती से किसी लिंक पर क्लिक कर भी देते हैं तो आपको जो चीज प्रमोट की जा रही है उस वीडियो में, उसकी जगह किसी और ही जगह ले जाया जाएगा. तो आप समझ जाएंगे कि अरे यहां तो बिटकॉइन की बात चल रही थी, यहां तो आइसक्रीम की बात चल रही थी और ये तो कहीं और ले गए. तो वेबसाइट भी आपको साफ साफ नकली नजर आएगी, जिसमें महज एक फॉर्म होगा और कुछ भी नहीं. उसमें कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा होगा, उसमें कोनों में कुछ नहीं होगा, किसी किस्म का नंबर नहीं दिया होगा, सिर्फ एक फॉर्म होगा जो आपसे आपका नाम, आपकी ईमेल एड्रेस और आपकी डिटेल्स मांगेगा, कार्ड मांगेगा. तो ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्कैम है जो बहुत बहुत इंटेलिजेंटली लोगों को फंसा रहा है, और इससे बचने का यही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये आप बताएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं और फंसाना इसमें इन स्कैमर्स के लिए आसान है, लेकिन हमें फंसना नहीं. सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की बात करते हैं. सॉल्यूशन एक ही है, सिंपल है. जब भी ये चीजों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं तो मोस्टली ये यूरोज और डॉलर्स में बात करते हुए नजर आएंगे. अगर आपके कंट्री का भी वीडियो है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंडिया का हूं और कोई इंडियन स्कैमर भी होगा तो वो उसमें डॉलर्स का इस्तेमाल करेगा, वो भी इंडियन सेलिब्रिटी के चेहरे पर, विच इज क्लियरली आइडेंटिफाइड. अगर आप उस वक्त अपने ब्रेन को अलर्ट पर रखें तो आप इस बात का ध्यान रखें, आपके डिजिटल क्रिएटर की को लेकर जो स्कैम किया जाएगा उसमें एक और खास चीज होगी, वो ये कि ये लोग यूज करेंगे जो आपको प्रोडक्ट की तलाश है. फर्ज कीजिए आप पिछले 10 हफ्तों से, 10 महीनों से, वट एवर, आप किसी एक चीज को ढूंढ रहे हैं, अचानक वो चीज आपको इंटरनेट पर दिखने लग जाती है लगातार, है ना. वही चीज का इस्तेमाल करके, वही एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके ये लोग AI वीडियोस बनाते हैं आपके फेवरेट डिजिटल क्रिएटर या सेलिब्रिटी को लेकर, और रेंडमली कोई सेलिब्रिटी आपको जूता बेचता हुआ नजर आएगा, कोई डिजिटल क्रिएटर आपको मनपसंद आपका लैपटॉप बेचता हुआ नजर आएगा, और ये इकट्ठे करके वीडियोस ये रेंडमली एल्गोरिथम में बिठा देते हैं. मान लीजिए आप लैपटॉप ढूंढ रहे हैं तो आपको लैपटॉप अचानक से दिखना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा अरे वाह, मेरा फेवरेट डिजिटल क्रिएटर लैपटॉप बेच रहा है, एंड आप ऑटोमेटिकली उसमें फंसते चले जाएंगे इंटरनेट के रैबिट होल में. तो इसलिए सबसे पहले डिजिटल क्रिएटर की पेज पर जाइए और जरूर जरूर देखिए कि ये मसला क्या है. और अगर आपको कुछ भी समझ ना आए और आपको लग रहा है मैं शायद फंस चुका हूँ, मैंने इन्फॉर्मेशन पंच इन कर दी है, तो आप फौरन रिपोर्ट करें, फौरी तौर पर अपने जो आपका कार्ड है, डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उसे फौरी तौर पर बंद कराएं, ब्लॉक कराएं. ये सबसे पहला स्टेप है और उसके बाद आप पेजेस को रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसका पोस्ट डालें, उसके बाद आप साइबर पुलिस में जाएं, ये बाद की चीज़ें हैं. लेकिन ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें एंड प्लीज़ प्लीज़ बच के रहें. आपकी ही पसंद की चीज़ को स्कैमर्स आपके ही खिलाफ यूज़ कर सकते हैं. स्टे ऑन हाई अलर्ट. स्कैम अलर्ट.
1: क्रिकेट हो फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।

0: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ। छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सस्टेन द फ्यूचर, आपका अपना शो जो बात करता है हमारे प्लैनेट अर्थ के फ्यूचर के बारे में। मैं हूं आपकी आरजे महावर्ष और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक,
0: टॉपिक ऑफ द डे,
1: वाटर, ब्लू गोल्ड ऑफ द फ्यूचर। जी हाँ, ये पानी जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, आजकल स्कार्सिटी और वेस्टेज के चैलेंजेस को फेस कर रहा है। तो चलिए आज डीपली जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। वी विल शेयर सम प्रैक्टिकल टिप्स और सुनेंगे सस्टेनेबिलिटी की न्यू आइडियाज और इंस्पायरिंग वॉइसेस। सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्ट होना ना भूलिए @FM107 कतर, और हमें व्हाट्सएप करें अपना फीडबैक ताकि हम जान सकें कि आपको हमारे शोज कैसे लग रहे हैं ऑन 666-22-107। तो चलें शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पानी के बारे में, पानी जो हम सब के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन दुनिया भर में इसकी कमी एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। ग्लोबली 2.2 बिलियन लोग पीने के साफ पानी तक एक्सेस नहीं कर पाते, और ये है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। और जब हम बात करते हैं कतर जैसे एरिड रीजन्स की, तो ये मसला और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि यहाँ नेचुरल फ्रेश वाटर रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड हैं। कतर में हम मोस्टली डिसोलिनेटेड सी वाटर पर डिपेंड करते हैं। डिसोलिनेशन एक प्रोसेस है जहां समंदर के पानी से सॉल्ट निकालकर उसे ड्रिंकिंग और डेली यूज के लिए सूटेबल बनाया जाता है। कतर इज अ ग्लोबल लीडर इन डिसोलिनेशन टेक्नोलॉजी, और ये प्रोवाइड करता है 99% पीने का पानी इसी प्रोसेस के थ्रू। ये टेक्नोलॉजी इस रीजन के लिए लाइफ सेविंग है, क्योंकि यहाँ के नेचुरल फ्रेश वाटर सोर्सेस जैसे रिवर्स, लेक्स बहुत लिमिटेड हैं। जब हम वाटर स्कैसिटी की बात करते हैं, तो ये सिर्फ कतर तक लिमिटेड नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी ये एक बड़ा इशू है, जिसमें क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन

इफेक्ट हो सकती हैं, जो कि जॉब लूजर्स, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट और ओवरऑल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का सबब बन सकती हैं। जियोपॉलिटिक्स से पानी का रोल और भी बढ़ गया है। वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करना खासतौर पर ड्राई रीजन्स में बेहद जरूरी है। वाटर डिप्लोमेसी अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें कंट्रीज अपने म्यूचुअल वाटर रिसोर्सेज का एफिशिएंट मैनेजमेंट करने के लिए एग्रीमेंट्स पे साइन करते हैं। वाटर को अब एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स समझा जा रहा है, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए मैनेज करना जरूरी हो गया है। अगर ये रिसोर्सेज प्रॉपरली मैनेज नहीं किए गए तो फ्यूचर में ये कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का सबब बन सकते हैं। पानी का एग्रीकल्चर में रोल बहुत ही क्रिटिकल है। एग्रीकल्चर दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है और ये वाटर रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज पर हेविली डिपेंडेंट है। वाटर स्कार्सिटी एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है, जो डायरेक्टली फूड प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। इरिगेशन के लिए पानी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में बहुत कॉमन है, खास करके उन एरियाज में जहां रेनफॉल का अमाउंट कम होता है। क्रॉप्स की ग्रोथ पानी पर डिपेंड करती है, जैसे कि वीट, राइस और मेज वगैरह। इन क्रॉप्स को इरिगेशन के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है। अगर पानी की सप्लाई लिमिटेड हो तो क्रॉप प्रोडक्शन का लेवल गिर जाता है, जो फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को थ्रेट कर सकता है। वाटर एफिशिएंसी को इन्हांस करना और वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में बेहद जरूरी है। आजकल एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम्स का यूज किया जा रहा है, जो पानी की वेस्ट को कम करते हैं और क्रॉप्स को इफिशियंट तरीके से पानी देते हैं। ये टेक्नोलॉजीज स्पेशली ड्राई रीजन्स में फायदेमंद है, जहां नेचुरल वाटर सोर्सेस लिमिटेड हैं। क्लाइमेट चेंज भी एग्रीकल्चर पर पानी के यूजेज को इम्पैक्ट करता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। ड्रॉट्स और वाटर शॉर्टेजेस का रिस्क बढ़ गया है, जो डायरेक्टली क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। अब वाटर कंजर्वेशन का रोल एग्रीकल्चर में ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया है। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर साइक्लिंग को अडॉप्ट करना बेहद जरूरी है, ताकि वाटर रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज किया जा सके। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स जो रियल टाइम वेदर और सॉइल मॉइस्चर डेटा को एनालाइज करते हैं, वो भी फ्यूचर एग्रीकल्चर के लिए एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन है। वाटर स्कार्सिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट फूड प्राइसेस पर भी होता है। जब क्रॉप्स का प्रोडक्शन लो होता है तो फूड प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जो कि गरीब कम्युनिटीज को ज्यादा अफेक्ट करती हैं। ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है और सोशल अनरेस्ट तक भी लीड कर सकता है। पानी के कंजर्वेशन के लिए आजकल बहुत सी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, जो वाटर स्कार्सिटी के इशू को टैकल करने में मददगार साबित हो रही हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वाटर मैनेजमेंट में एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा है और ये ग्लोबल स्केल पर पानी के सस्टेनेबल यूज के लिए जरूरी हो गया है। डिसोलिनेशन टेक्नोलॉजी ने सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने का एक अहम तरीका दिया है। डिसोलिनेशन प्लांट्स के जरिए समंदर के पानी से सॉल्ट को रिमूव करके उसे यूजेबल बनाया जाता है। कतर जैसे रीजन्स में ये टेक्नोलॉजी एक लाइफलाइन बन गई है, जहां नेचुरल फ्रेश वाटर सोर्सेस काफी लिमिटेड हैं। डिसोलिनेशन एक्सपेंसिव है, लेकिन एक की सॉल्यूशन भी है यहां पे फ्रेश वाटर फराहम करने के लिए। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स भी वाटर कंजर्वेशन में बहुत मददगार हैं। ये सिस्टम्स वेदर कंडीशंस और सॉइल मॉइस्चर को मॉनिटर करते हैं, जिससे पानी का कंजप्शन मिनिमम हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी बढ़ गया है, जो पानी को डायरेक्ट क्रॉप रूट्स तक पहुंचाते हैं और वाटर वेस्ट को रिड्यूस करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज खास तौर पे वहां जहां पे पानी की कमी है बहुत इफेक्टिव है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉम्बिनेशन वाटर मैनेजमेंट में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। IoT बेस्ड वाटर सेंसर्स फील्ड में

0: रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं जो वाटर रिसोर्सेज के एफिशिएंट मैनेजमेंट में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल स्मार्ट वाटर मीटर्स की हेल्प से वाटर कंजप्शन को एक्यूरेटली मॉनिटर किया जा सकता है और वेस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है. वाटर फिल्टरेशन टेक्नोलॉजीज भी एवोल्यूशन के रास्ते पर हैं. रिवर्स ऑस्मोसिस RO और UV फिल्टरेशन जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज पानी को इम्प्योरिटीज से प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जा रहा है जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए जरूरी है. ये टेक्नोलॉजीज होम्स और इंडस्ट्रीज दोनों में अपना रोल अदा कर रहे हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी पुराने जमाने से है लेकिन आजकल इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को डिजाइन करना और इंस्टॉल करना इजी हो गया है जो पानी को स्टोर करके यूज किया जा सकता है. ये स्पेशली उन रीजन्स में फायदेमंद है जहां सीजनल रेनफॉल होती है. डिसॉलिनेशन प्लांट्स, स्मार्ट इरिगेशन, AI एंड IoT बेस्ड वाटर मैनेजमेंट और रेनफॉल हार्वेस्टिंग जैसी टेक्नोलॉजीज की वजह से वाटर कंजर्वेशन में नई उम्मीद जागी है. अगर इन टेक्नोलॉजीज को एफिशिएंटली इंप्लीमेंट किया जाए तो वाटर रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया जा सकता है जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए बेहद जरूरी है. अब हम अपनी रियल लाइफ की बात करें तो हम अपनी डेली लाइफ में पानी का वेस्टेज बहुत देखते हैं. गार्डनिंग में बहुत से लोग होस का इस्तेमाल करते हैं विदाउट टाइमर्स या ड्रिप इरिगेशन जिससे गैलन्स ऑफ वाटर वेस्ट हो जाता है. सिमिलरली घर में क्लीनिंग के दौरान टैप्स को अननेसेसरीली चलता छोड़ देते हैं. एक छोटी सी मिसाल, जब हम डिशेस धोते हैं या कार वॉश करते हैं रनिंग टैप से एक मिनट में 10 से 15 लीटर पानी वेस्ट हो सकता है. अब सवाल ये है हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी. सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है. कतर में गवर्नमेंट ऑलरेडी इनिशिएटिव्स ले रही है लाइक कहारमा तरशी प्रोग्राम जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन को प्रमोट करता है. एज इंडिविजुअल हम भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं. इंस्टॉल वाटर सेविंग टैप्स जो पानी का फ्लो कम करते हैं. ग्रे वाटर का इस्तेमाल यानी वॉशिंग मशीन या सिंक से निकले पानी को गार्डनिंग के लिए रीयूज किया जा सकता है और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स अडॉप्ट करना जो कतर के क्लाइमेट के लिए परफेक्ट है. पानी की वेस्टेज को ये ड्रामेटिकली रिड्यूस कर सकते हैं. लेट्स मेक इट सिंपल, हर कतरा काउंट होता है. अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लें लाइक शॉर्टर शावर्स या लीक्स को फिक्स करना, वी कैन इंश्योर कि हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए पानी ही बचा रहे हैं. आफ्टर ऑल वाटर इज द ब्लू गोल्ड ऑफ आवर प्लैनेट्स फ्यूचर. अब चलते हैं सस्टेनेबिलिटी न्यूज की तरफ ग्रीन फ्लैश पे.
1: ग्रीन फ्लैश,
0: लेट्स डाइव इनटू 3 इंस्पायरिंग वाटर रिसाइक्लिंग स्टोरीज. पहली खबर सिंगापुर से. सिंगापुर का एनी वाटर प्रोग्राम दुनिया में एक मिसाल है. ये कंट्री अपने 40% वेस्ट वाटर को हाईटेक ट्रीटमेंट के जरिए रिसाइकिल करता है जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी का हिस्सा होता है. इसका एक प्लांट चंगी वाटर रिक्लेमिनेशन प्लांट हर रोज 900,000 क्यूबिक मीटर्स पानी रिसाइकिल करता है. इजंट दैट इनक्रेडिबल. दूसरी खबर है ऑस्ट्रेलिया से. पर्थ में ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट स्कीम के अंडर ट्रीटेड वेस्ट वाटर को अंडरग्राउंड एक्वाफर्स में इंजेक्ट किया जाता है जो फ्यूचर में ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होता है. ये एक सस्टेनेबल वे है पानी के रिसोर्सेज को सिक्योर करने का. ये स्टोरीज हमें इंस्पायर करती हैं टेक्नोलॉजी और प्लानिंग से हम वाटर स्कैसिटी के चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट की जहां हम देखते हैं कटिंग एज आइडियाज जो सस्टेनेबिलिटी को शेप कर रहे हैं.
1: ग्रीन इनोवेशन.
0: आज हम स्पॉटलाइट डाल रहे हैं गेम चेंजर टेक्नोलॉजी पे, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स. ये मशीन हवा में मौजूद मॉइस्चर से पानी एक्सट्रैक्ट करती है इवन इन एरिड क्लाइमेट लाइक कतर. कुछ कंपनीज ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है जो सोलर एनर्जी से चलती है और घर, ऑफिसेज या रिमोट एरियाज के लिए क्लीन वाटर प्रोवाइड कर सकता है. इमेजिन कतर के डेजर्ट में एक मशीन जो हवा से पानी बनाए. ये टेक्नोलॉजी अभी एक्सपेंसिव है लेकिन फ्यूचर में इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है.

0: टिप्स।
1: डियर लिसनर्स, अब चलेंगे हम कुछ इको लिविंग टिप्स की तरफ, जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं पानी बचाने के लिए। एरेटर्स या लो फ्लो टैप्स लगाएं, जो पानी का फ्लो 50% तक कम कर सकते हैं। अपनी वॉशिंग मशीन या सिंक से निकला हुआ पानी कलेक्ट करें और इससे प्लांट्स को पानी दें। स्प्रिंकलर्स की जगह ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करें, तो पानी डायरेक्टली प्लांट रूट्स तक पहुंचाता है और वेस्टेज कम करता है। एक छोटा सा लीक भी महीने में थाउजेंड ऑफ लीटर वाटर वेस्ट कर सकता है। अपने टैप्स और पाइप्स चेक करें रेगुलरली। इन टिप्स को फॉलो करके आप ना सिर्फ पानी बचा सकते हैं, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब वक्त है वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट का।
2: Voices of the planet.
3: Climate change has impacted the hydrological cycle. It has created more variability, unpredictability in the rainfall cycle. So you have fewer rainy days, protracted dry days, and as a result, you have a scenario where you have more extreme events happening in the countries. And that is creating fundamental challenges in the water sector. But the good news is that the water sector also provides solutions to be able to respond to the climate crisis. This is about better water storage management, right kind of policies and the institutions in the country, right pricing of the water services. There are many things which can be done. At the World Bank, we have what we call one water strategy, where we look at managing water resources in an integrated manner.
1: जी तो लिसनर्स, आपने सुना ये जबरदस्त सा मैसेज। उनके दिल की बात जो कि थी तो छोटी, लेकिन हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपना हिस्सा डालें। अब टाइम है हमारे टेक अवे चैलेंज का।
2: वीकली चैलेंज।
1: इस हफ्ते में आप सबको चैलेंज देती हूँ, नो रनिंग टैप्स फॉर अ वीक। जब आप डिशेस धो रहे हो, टीथ ब्रश कर रहे हो या कार वॉश कर रहे हो, टैप को बंद रखें। जब यूज नहीं कर रहे तो पानी सिर्फ उतना ही यूज करें जितना जरूरी है। अगले हफ्ते हमें व्हाट्सएप करें ऑन 666-22-107 या सोशल मीडिया पे @FM107 कतर पे बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे कंप्लीट किया। लेट्स सेव वाटर टुगेदर। शुक्रिया आप सबका, आपने सस्टेन द फ्यूचर के साथ ये इको फ्रेंडली सफर शेयर किया। अगले हफ्ते हम बात करेंगे फूड वेस्ट के हवाले से और सुनेंगे एक नई इंस्पायरिंग वॉइस। कनेक्ट विद अस एट FM107 कतर और व्हाट्सएप पे 666-22-107। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मिलते हैं। खुदा हाफिज और अपना और अपने प्लेनेट का ख्याल रखिए।
2: सस्टेन द फ्यूचर।
4: आप सुन रहे हैं FM 107।
5: दिल से देसी।

0: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
2: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज को भी नहीं देखते कि उसका साया किस तरह अल्लाह के हुजूर सजदा करते हुए दाएं और बाएं गिरता है। सब के सब इस तरह इजहार इज्ज कर रहे हैं। जमीन और आसमानों में जिस कदर जानदार मखलूकात हैं और जितने मलाइका, सब अल्लाह के आगे सरबसुजूद हैं। वो हरगिज सरकशी नहीं करते। अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं और जो कुछ हुक्म दिया जाता है उसी के मुताबिक काम करते हैं। अल्लाह का फरमान है कि दो खुदा न बना लो, खुदा तो बस एक ही है, लिहाजा तुम मुझी से डरो, उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और खालिसन उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे? तुमको जो नेमत भी हासिल है अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो, मगर जब अल्लाह उस वक्त को टाल देता है तो यकायक तुम में से एक ग्रोह अपने रब के साथ दूसरों को इस मेहरबानी के शुक्रिये में शरीक करने लगता है ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करे। अच्छा मजे कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ नहीं है उनके हिस्से हमारे दिए हुए रिस्क में से मुकर्र करते हैं। खुदा की कसम जरूर तुमसे पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे घड़ लिए थे। ये खुदा के लिए बेटियां तजवीज करते हैं, सुबहान अल्लाह, और इनके लिए वो जो ये खुद चाहें। जब इनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो उसके चेहरे पर क्लोनस छा जाती है और वो बस खून का सा घूंट पी के रह जाता है। लोगों से छुपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाए। सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये खुदा के बारे में लगाते हैं। बुरी सिफात से मुत्तसिफ किए जाने के लायक तो वो लोग हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते। रहा अल्लाह तो उसके लिए सबसे बरतर सिफात है, वही तो सब पर गालिब और हिकमत में कामिल है।

अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी हम जिन्स बीवियां बनाई और उसी ने इन बीवियों से तुम्हें बेटे पोते अता किए और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें खाने को दी। फिर क्या ये लोग ये सब कुछ देखते और जानते हुए भी बातिल को मानते हैं और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं और अल्लाह को छोड़कर उनको पूछते हैं जिनके हाथों में ना आसमानों से इन्हें कुछ भी रिस्क देना है ना जमीन से और न ये काम वो कर ही सकते हैं। बस अल्लाह के लिए मिसालें न घड़ो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते।

الحمد لله بل أكثرهم

फरमाबरदार हो। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पर साफ साफ पैगाम हक पहुंचा देने के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अल्लाह के एहसान को पहचानते हैं फिर उसका इनकार करते हैं, और इनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो हक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इन्हें कुछ होश भी है कि उस रोज क्या बनेगी जबकि हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर काफिरों को न हुज्जतें पेश करने का मौका दिया जाएगा न उनसे तौबा व इस्तिग़फ़ार ही का मुतालिबा किया जाएगा। ज़ालिम लोग जब एक दफा अज़ाब देख लेंगे तो उसके बाद न उनके अज़ाब में कोई तख़फीफ की जाएगी और न उन्हें एक लम्हा भर मोहलत दी जाएगी। और जब वो लोग जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया था अपने ठहराए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे, ऐ परवरदिगार, यही हैं हमारे वो शरीक जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। इस पर उनके वो माबूद उन्हें साफ जवाब देंगे कि तुम झूठे हो। उस वक्त ये सब अल्लाह के आगे झुक जाएंगे और उनकी वो सारी इफ्तिरा परदाजियां रफू चक्कर हो जाएंगी जो ये दुनिया में करते रहे थे। जिन लोगों ने खुद कुफर की राह इख्तियार की और दूसरों को अल्लाह की राह से रोका, उन्हें हम अजाब पर अजाब देंगे उस फसाद के बदले जो वो दुनिया में बर्पा करते रहे।